सुप्रभात। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 जून सन 2026। सुबह के 5:55 हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा के प्रसारण मीडियम वेव और FM पर एक साथ आरंभ हो रहे हैं।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 6:05 हुए हैं। आप प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

प्रथम पूज्य गिरजा तनय कोटि सूर्य सम आभ, विघ्न विनाशक आप हैं जीवन के शुभ लाभ। लंबोदर गज कर्ण का विघ्न विनाशक रूप, सिद्ध सभी कारज करें पावन रूप अनूप। शिव नंदन प्रभु गज वदन, रिद्ध सिद्ध के नाथ, श्री गणेश के चरण में झुका रहे ये माथ।

अब आन बसो मोहन मन में, तेरी सूरत मन को भावत है। बचपन में तू जीवन की सवे खूब लीला करत दिखावत है। ठुमकत चलत बजे पैजनिया तन मन में प्रीति जगावत है। किलकारी मार हसत आंगन जग भर में सवे हसावत है। बचपन का तेरा रूप सलोना चंचल चित्त को ठहरावत है। नैन कमलवत तिरछी वोहें मेरे चित्त को चोर बनावत हैं। मोर मुकुट सिर सोहत जैसे इंद्रधनुष रंग बनावत है। श्याम मल वर्ण मनोहर तन घनश्याम के याद दिलावत है।

सारे जहां में फैला जिनका नूरानी नूर है, हर आशिके रसूल का दिल उनसे ही भरपूर है। वो रहमते दो आलम, वो शफीए मशर हैं, उनकी इबादत में ही जन्नत की हर हूर है। खुदा की मोहब्बत का रास्ता है नूरे नबी, उनकी इबादत ही तो है ईमान की सच्ची रोशनी। झुकता है जब सर उनके दर पर अकीदत के साथ, झुकता है जब सर उनके दर पर अकीदत के साथ, दुनिया और आखिरत की हर राहत मिल जाती है वहीं।

जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरोभय नहीं जाके कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, हर्ष सौखते रहे न्यारो नाही मान अपमाना, आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा, काम क्रोध जही पड़से नाही तेही घट ब्रह्म निवासा, गुरु कृपा जही नर पे कीनी तिन्ह ये जुगुर्ती पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी सो पानी।

श्वेत वस्त्र धारे माँ वीणा कर्मे सोहे, श्वेत वस्त्र धारे माँ वीणा कर्मे सोहे, मधुर संगीत सुरों का सबका मन मोहे। हंस पे विराजित माँ ज्ञान की ज्योति जलाती, अंधकार मन का सारा पल भर में मिटाती। पुस्तक और माला ज्ञान का भंडार है, तेरी शरण में माँ विद्या का संसार है। बुद्धि दे, विवेक दे, वाणी में मिठास दे, हे शारदे मातु हर जीवन को प्रकाश दे।

इसी भजन के साथ वंदना कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आज की वंदना में कलाकार थे अनुराधा पौडवाल, हेमा मालिनी, महेंद्र कौर, भाई गोपाल सिंह रागी और लखविंदर सिंह लखा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: समाज को धर्म की आवश्यकता सबसे अधिक है। धर्म सही अर्थों में एक ही है, मानव धर्म। धर्म के नाम पर जो अलग अलग रूप हम देखते हैं, वे वास्तव में अलग अलग धर्म नहीं, एक ही धर्म के अलग अलग संप्रदाय हैं। आज धर्म के साथ ही साथ इन अलग अलग संप्रदायों में आपसी सहकार की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि धर्म और विज्ञान में, धर्म और उच्चतम सामाजिक नैतिकता में, धर्म और इसके पृथक पृथक संप्रदायों के पारस्परिक सहयोगात्मक समन्वयात्मक भाव में कोई विरोध नहीं है। धर्म का उद्देश्य है इस प्रज्ञा जगत में जहां विभेद है, द्वैत है, वहां हम में सामंजस्य, समन्वय, एकत्व लाते हुए जीवन में सुविकसित होते रहने में हमारी सहायता करना। धर्म एक आंतरिक रूपांतरण है, एक आध्यात्मिक परिवर्तन है। धर्म हमारे अपने विभेदवादी स्वरों में एक रूपता लाने की क्रिया है। धर्म का ये स्वरूप इतिहास के आरंभ से ही मिलता आया है, यही इसका मूल रूप भी है। धर्म एक आध्यात्मिक परिवर्तन है, एक अंतर्मुखी रूपांतरण है। धर्म नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा कर उनकी महत्ता प्रतिपादित करता है, ये अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, आत्मोद्धारहीनता से आत्मोद्धार की स्थिति में पहुंचाता है। धर्म एक जागरण है, एक प्रकार का पुनर्जन्म है। अपना गौरव तथा अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के अनेक मार्ग लोगों ने खोज निकाले हैं, पर यह समझना चाहिए कि जो वस्तु अपने लिए दुखदायी और हानिप्रद हो सकती है, उसे दूसरों पर आरोपित करना उचित नहीं है। जिससे किसी का अहित हो और पीड़ा पहुंचे, उसे ही अधर्म कहा जाता है। अधर्म जीवन की आवश्यकता नहीं, उसमें कुछ शक्ति भी नहीं है, वह तो पराभूत है। धर्म की शक्ति ही जीवन की शक्ति है। शक्ति का अर्थ है संरक्षण, अर्थात जिसमें प्राणी मात्र के हितों की सुरक्षा होती है, वह धर्म है। इसी की मनुष्य जीवन में अपेक्षा भी की जाती है। धर्म समाज की अंतः चेतना है, सुख शांति का आधार है, इसी रूप में वह ग्राह्य भी है। धर्म में ही सबकी भलाई है, धर्म की दृष्टि ही जीवन की दृष्टि भी है। आज हमें अभूतपूर्व संकटों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हम उन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें लोगों के अंदर धर्म की प्रेरणा जगानी होगी। आज केवल वाच्यार्थ ज्ञान से काम नहीं चलेगा, आत्मज्ञान की अति आवश्यकता है। जब हम ये घोषणा करते हैं कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, तो इसका अर्थ ये कदापि नहीं होता कि हम उस अदृश्य सर्वव्यापी सत्ता के अस्तित्व से इनकार करते हैं, अथवा जीवन में धर्म की उपयोगिता से इनकार। ये अर्थ भी नहीं है कि धर्म निरपेक्षता का स्वयं ही एक मजहब मान लें, अथवा सरकार स्वयं को शक्तिमान समझ बैठी है। ईश्वर की सर्वव्यापी सत्ता के प्रति परंपरा आस्था रखते हुए भी हमने ये निश्चय किया है कि शासन किसी मजहब विशेष का अनुयायी न होगा और न किसी मजहब विशेष के अनुसार संचालित होगा। धार्मिक निरपेक्षता हमारे राष्ट्रीय जीवन में प्रमुख स्थान रखेगी, पर सनातन धार्मिक मूल्यों के प्रति हमें निष्ठा रखनी ही पड़ेगी। धर्म से विमुख होकर हम निर्जीव हो जाएंगे।
0: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश। आज इस कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर उषा भट्ट से की गई भेंट वार्ता। विषय है चिकित्सा पूर्व जांचें। आपसे बात कर रहे हैं राम स्वरूप गंगवार।
2: डॉक्टर उषा भट्ट जी, आप एक चिकित्सक हैं। अक्सर मरीज जब डॉक्टर के जाता है तो डॉक्टर कहता है कि जांचें करा लो, तो आखिर इन जांचों का क्या महत्व?
3: मरीज जब डॉक्टर के पास आता है, कोई बीमारी लेके ही आता है, और उस बीमारी की पुष्टि करने के लिए चिकित्सक हमेशा जांचें करवाते हैं। और जब बीमारी की पुष्टि होती है तभी उसका इलाज भी संभव है। तो इसीलिए कई प्रकार की बीमारियां ऐसे होती हैं जो कि जांचों से ही पता लगती हैं। तो उसमें पे कुछ लक्षण होते हैं, जब भी कोई मरीज आता है कुछ लक्षण लेके आता है, साइन और सिम्टम्स कहते हैं। सिम्टम्स जो होते हैं लक्षण होते हैं, और साइंस जो है वो डॉक्टर देखते हैं कि इसको क्या क्या लग रहा है
2: जी।
3: तो उनके बेसिस पे डॉक्टर अपने अनुभव के हिसाब से उनको जांचें करवाते हैं। मसलन बीमार जो कोई आया, बुखार का कोई मरीज आता है, बुखार के मरीज जो है बहुत सारे हमारे कॉजेज होते हैं बुखार के, मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, वायरल फीवर हो गया, गले में इन्फेक्शन हो गया, यूरिन में इन्फेक्शन हो गया, ये बहुत सारी चीजों में, कई बार जो है ब्लड कैंसर होता है उसमें भी बुखार और कमजोरी से आता है। तो डॉक्टर को उसके सारे सिम्टम्स देख के उसको वही जांचें करानी है जो कि उनको ये लगता है कि इस वजह से ये हो सकता है, तो टाइफाइड के लिए कराएंगे या मलेरिया के लिए जांच कराएंगे, यूरिन इन्फेक्शन के लिए कराएंगे। तो जब तक वो जांचों की रिपोर्ट नहीं आती है तो तब तक उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है जो लक्षण है उसका केवल ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे बुखार है, बुखार के लिए वो पैरासिटामोल दे देंगे, दर्द है तो कोई दर्द की दवाई दे देंगे। जब रिपोर्ट आ जाएगी, जब जांच की पुष्टि हो जाएगी, तब उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया जाता है।
2: डॉक्टर साहब, अक्सर मरीज ये कहते सुने गए हैं कि भाई डॉक्टर क्या गए, जांचें बता देते हैं, बताइए जांचों में इतना पैसा खर्च होता है, जांचें क्या जरूरी है। मरीजों में अक्सर एक आम धारणा आप खुद ही देखती होंगी।
3: जी, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी ये मानती हूँ कि अनावश्यक जो है जांचें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जो आवश्यक है वही जांचें होनी चाहिए, जो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि जिसकी आशंका हो रही है उसी की जांचें होनी चाहिए। और ये देखने में भी आया है काफी जांचें हो जाती हैं, जिससे आजकल बहुत महंगाई भी हो गई, जांचें भी बहुत महंगी हो गई हैं, आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सारी जांचें करना। तो केवल वही जांचें करानी चाहिए जिनकी आवश्यकता हो, अनावश्यक रूप से जांचें कराने के पक्ष में हम भी नहीं है और किसी को करानी भी नहीं चाहिए। जो मिनिमम जिससे आपको डायग्नोसिस बन जाती है, जांच की पुष्टि हो जाती है, वो वाली जांचें करानी चाहिए।
2: डॉक्टर, एक जांच और की जाती है, कहते हैं भाई ब्लड ग्रुप।
3: जी जी जी।
2: तो ब्लड के टेस्ट से आप ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड करती हैं, कैसे तय करती हैं कि इसका ये पॉजिटिव है, बी है, जी, ये जी, है जी।
3: ब्लड ग्रुप के बेसिस पे हमारे जो ब्लड में जो हमारा रक्त होता है, इसमें एक रेड ब्लड सेल होती है, एक WBC, एक जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, और श्वेत होती हैं, प्लेटलेट होते हैं। लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनके बाहर की वॉल पे, सरफेस पे कुछ एंटीजन होते हैं।
2: जी जी।
3: उन एंटीजन के बेसिस पे हम लोग इसको ग्रुप के पे बांटते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल है उसके ऊपर में अगर ए एंटीजन होता है तो उसको हम ए ब्लड ग्रुप कहते हैं, अगर बी एंटीजन होता है तो बी ब्लड ग्रुप कहते हैं, और रेड ब्लड सेल के ऊपर में दोनों एंटीजन होते हैं तो ए बी कहते हैं, और कोई भी एंटीजन नहीं होता तो उसको ओ कहते हैं।
2: अच्छा।
3: और ऐसे ही RH भी होता है, तो अगर ए भी है और RH भी है तो वो ए पॉजिटिव हो गया, RH पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है RH ग्रुप पॉजिटिव, और नेगेटिव अगर RH नहीं है तो नेगेटिव होता है।
2: हाँ, डॉक्टर साहब, अक्सर एक बात और कही जाती है कि भाई ये यूनिवर्सल डोनर है और ये इस ब्लड ग्रुप का एक्सेप्टर है, तो ये क्या है?
3: ये पहले की बातें थी कि जैसे ओ ग्रुप है, ओ ग्रुप हम कभी भी ब्लड देते हैं तो कोई एंटीजन नहीं देना होता है बॉडी में, ताकि एंटीजन जो है वो फॉरेन बॉडी या बाहर का तत्व होता है जिससे हमारी बॉडी लड़ने की क्षमता रखती है, तो हम एंटीजन नहीं देने के उसमें हमारा ओ पॉजिटिव जो है, ओ जो ग्रुप है उसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, तो उसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं कि वो सबको ब्लड दे सकता है। और ए बी पॉजिटिव जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती उसको हम कहते हैं कि सबसे ब्लड ले सकता
2: है। अच्छा।
3: लेकिन अब कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ओ नेगेटिव हम एक इमरजेंसी ब्लड कहते हैं।
2: अच्छा।
3: अब यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, अब एक ये इमरजेंसी ब्लड होता है जिसमें ओ नेगेटिव पैक सेल कहते हैं उसको।
2: अच्छा।
3: उसमें अगर कोई इमरजेंसी है, जैसे कोई एक्सीडेंटल आया केस, और उसमें हमें ब्लड बैंक में जाके इतना देर हो जाती है, उसमें क्रॉस मैच की, ग्रुपिंग की, सब कुछ करना पड़ता है, आधा पौना घंटा लगता है जांच करनी, तो जब तक पेशेंट की जान बचाने के लिए हम ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप सेफली चढ़ा सकते हैं मरीज।
2: अच्छा।
3: तो इसको हम इमरजेंसी ब्लड ग्रुप कहते हैं। होता है वो प्रिमिटिव, बहुत पुराना होता है, उसे नए नए सेल बनते हैं।
2: जी जी।
3: तो वो सेल कितने सालों तक कॉर्ड ब्लड बैंक में रहता है, अगर उसी बच्चे को कोई बीमारी होती है तो वही सेल लेके उसको उसी लाइन में ग्रो करके उससे उसका ट्रीटमेंट किया जाता
2: जी
3: है
2: जी।
3: तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, हमारे यहाँ तो ये बहुत कम है, अभी दो चार सिटीज में है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में इसकी बहुत ज्यादा अब स्टेम सेल थेरेपी बहुत होने लगी।
2: महत्व है,
3: महत्व है, बहुत महत्व है ट्रीटमेंट के लिए, बहुत महत्व।
2: डॉक्टर,
0: चिकित्सा पूर्व जांचें, अभी आप इस विषय पर डॉक्टर उषा भट्ट से की गई भेंट वार्ता सुन रहे थे। आपसे बात कर रहे थे राम स्वरूप गंगवार। स्वास्थ्य संदेश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब हम आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में बता दें। आज रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल ढूंढता है, प्रस्तुति असीम सक्सेना की होगी। चर्चा का विषय है, यह कार्यक्रम रात्रि 9:30 पर होगा। इसको हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल आप सुन सकेंगे आज रात 8:00। सुगम संगीत में शाम 7:31 पर आप सुनेंगे तहरीम निषाद की गाई कुछ गजलें। शाम 7:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है। प्रायोजक होंगे फोकस नेत्रालय बरेली। कृषिगत कार्यक्रम में शाम 6:20 पर आज आप सुनेंगे ज्वार बाजरा की बुआई पर चर्चा, साथ ही कृषि पत्रिका खेत खलिहान का प्रसारण होगा। इसके अलावा कृषि संकेत में आप सुनेंगे अधिक लाभ हेतु फूलों की खेती पर चर्चा, साथ ही मौसम की जानकारी भी आपको दी जाएगी। युववाणी कार्यक्रम होगा शाम 5:15 पर, जिसमें आज के आकर्षण रहेंगे आज का सवाल कुछ खास है आज, कौशल विकास, शैक्षण संस्थान, द वेलनेस जर्नी, इन सब विषयों पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम। हमारी दूसरी सभा में शाम 5:00 आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कम्पेयर्ड कार्यक्रम आज शाम। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। दोपहर 1:30 पर महिलाओं का कार्यक्रम होगा कुमकुम। दोपहर 1:15 पर धरती गाती कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे उभय भारती के गाए कुछ लोकगीत। गीत आपके नाम ये कार्यक्रम होगा दिन में 12:10 पर। मनभावन कार्यक्रम में दिन में 11:30 पर आज आप सुनेंगे एक ही संगीतकार राजेश रोशन के संगीतबद्ध कुछ फिल्मी गीत। और फन बेमिसाल है, इसकी कड़ी संख्या 11 आप सुन सकेंगे कार्यक्रम धरोहर के अंतर्गत दिन में 11:00। सुनहरा दौर यह कार्यक्रम होगा आज सवेरे 10:30 पर। उस शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सवेरे 9:50 पर आप सुनेंगे श्यामलाल का राग रामकली में शहनाई वादन। सवेरे 10:05 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। उर्दू प्रोग्राम आप समाप्त फरमाएंगे सुबह 9:30 पर। इसको हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से नशर करेंगे। और सवेरे 7:31 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का एंटरटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। आज सुनिए प्रसंग संख्या 338।
4: एपिसोड नंबर 338। 338।

रावण की आसुरी सेना का प्रायः विनाश हो चुका है। श्री राम और रावण का युद्ध सन्निकट है। रावण अपने बंधु बांधवों खर, दूषण, विराट, बाली आदि योद्धाओं का वध करने वाले तपस्वी को ललकार रहा है कि वो उन जैसा नहीं है। वो जगत प्रसिद्ध रावण है, जिसका बल और पराक्रम अनंत है। हे तपस्वी, आज तुम यदि युद्ध से भाग नहीं गए तो मैं अपना सारा वैर निकाल लूंगा। तुमने मेरे मेघनाथ और कुंभकर्ण का भी वध किया है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हारा पाला रावण से पड़ा है। श्री राम ने उसे ललकारा कि व्यर्थ की बकवास न कर, अब वो अपना पराक्रम और पौरुष दिखाए। बोले, संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, गुलाब, आम और कटहल की तरह। एक केवल फूल देते हैं, दूसरे फूल और फल दोनों देते हैं, और तीसरे प्रकार के पुरुष कटहल के समान केवल फल देते हैं। इसी प्रकार एक केवल डींग हाँकते हैं, दूसरे कहते और करते हैं, और तीसरे केवल करते हैं, कहते नहीं। श्री राम की इस उक्ति से क्रुद्ध होकर रावण ने वाण छोड़ना प्रारंभ किया, किंतु श्री राम के अग्निवाण से वे भस्म होते गए। रावण के एक वाण से अपने सारथी को आहत होता देख श्री राम ने क्रोध में आकर अपने धनुष पर टंकार की, जिसका नाद सुनकर महल में मंदोदरी तथा अन्य रानियों के हृदय कांप गए। समुद्र, पर्वतों तथा पृथ्वी पर चारों ओर भय और आतंक व्याप्त हो गया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेर के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: घोष विक्रयणस्य सप्तमस्य खण्डस्य अन्तर्गतं दश महत्वपूर्ण सामरिक खनिज खण्डाः सफलतया सघोष विक्रयणं कृताः। भारतेन पाकिस्तान आक्रमित जम्मू कश्मीरस्य स्थिति विषये कृत टिप्पणी सम्बद्धं पाकिस्तानस्य रक्षा मन्त्री ख्वाजा आसिफ इत्यस्य घोर आलोचना कृता। विदेश मन्त्रालयेन कथितं यत् एताः टिप्पण्यः प्रतिवेशी देशस्य स्वस्य असफलताम् अवच्छादनाय स्वस्य मानव अधिकारस्य उल्लंघनात् ध्यानं दूरीकर्तुं क्रियमाणाः निराशाजनकाः प्रयासाः सन्ति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः अवदत् यत् भारतम् एतान् कल्पित आरोपान् स्पष्टतया तिरस्कुर्वति। सः आशां प्रकटितवान् यत् अन्ताराष्ट्रिय समुदायः पाकिस्तानस्य दुष्कृतानां दुरुपयोगानां च उत्तरदायी भविष्यति। विदेशमन्त्रालयेन कतरदेशे विस्फोटेन द्वादश भारतीय नागरिकाणां मृत्योः पुनः पुष्टि कृता अस्ति। जयसवालः अवदत् यत् अस्यां घटनायाम् आहत्य 66 जनाः घातिताः सन्ति, ये सम्प्रति चिकित्सां प्राप्नुवन्ति। कतरदेशे अग्निदुःखद घटनायां प्रभावितानां जनानां साहाय्यार्थं तमिलनाडु सर्वकारेण सहायता घोषिता। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः अस्यां घटनायां ये प्राणान् त्यक्तवन्तः तेषां परिवारेभ्यः 10 लक्ष रूप्यकाणाम् अनुग्रह राशिं घोषितवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः गतसायं राष्ट्रपतिभवने नागरिक सम्मान समारोहे पद्मपुरस्कार प्रदानं कृतवती। पत्रकारः पी नारायणन्, टेनिस क्रीडकः विजय अमृतराज, अभिनेतारौ मम्मुट्टी तथा आर माधवन्, गायिका अलका याज्ञिकः च प्राप्त पुरस्कारेषु अन्यतमाः सन्ति। अस्मिन् वर्षे सर्वकारेण आहत्य 31 उत्तर 100 पद्मपुरस्काराः घोषिताः आसन्। एतेषु 5 पद्मविभूषणं, 13 पद्मभूषणं, 13-100 पद्मश्रीपुरस्काराः च सन्ति। कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान अवदत् यत् यलनिनो कारणात् उत्पद्यमानस्य दुर्लभ दुर्बल मानसूनस्य संभाव्य प्रभावस्य निवारणे भारत सर्वकारः कृषकाणां सहायतायै पूर्वसिद्धतां कुर्वन् वर्तते इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम अमृत कलश। आज इस कार्यक्रम में सुनिए श्री अनिरुद्ध मिश्र की वार्ता। विषय है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और भारत।
2: लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य हैं जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। इन समाज सेवाओं के अनेक रूप होते हैं। इनके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा वृद्धावस्था में पेंशन आदि की व्यवस्था होती है। इनका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना होता है। कल्याणकारी राज्य शासन की वह संकल्पना है जिसमें राज्य नागरिकों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कल्याणकारी राज्य अवसर की समानता, धन संपत्ति के समान वितरण तथा जो लोग अच्छे जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वयं जुटा पाने में असमर्थ हैं उनकी सहायता करने जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। यह एक सामान्य शब्द है जिसके अंतर्गत अनेकानेक प्रकार के आर्थिक एवं सामाजिक संगठन आ जाते हैं। कल्याणकारी राज्य सरकार का एक रूप है जिसमें राज्य समान अवसर के सिद्धांतों, धन के समान वितरण और नागरिकों के लिए सार्वजनिक जिम्मेदारी के आधार पर नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक भलाई की रक्षा करता है और उन्हें बढ़ावा देता है जो स्वयं का लाभ उठाने में असमर्थ हैं। समाजशास्त्री TH मार्शल ने आधुनिक कल्याणकारी राज्यों को लोकतंत्र, कल्याण और पूंजीवाद के विशिष्ट संयोजन के रूप में वर्णित किया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में कल्याणकारी राज्य सरकारी संस्थाओं को स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए धन देते हैं, साथ ही व्यक्तिगत नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ देते हैं। आधुनिक कल्याणकारी राज्यों में जर्मनी और फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड शामिल हैं। साथ ही नार्डिक देश जो नार्डिक मॉडल के रूप में जानी जाने वाली प्रणाली को रोजगार देते हैं। कल्याणकारी राज्य के विभिन्न कार्यान्वयन 3 श्रेणियों में आते हैं, सामाजिक, लोकतांत्रिक, उदारवादी और रूढ़िवादी। आधुनिक कल्याणकारी राज्य को 2 भागों में बांटा गया है, राज्य के आवश्यक एवं अनिवार्य कार्य, राज्य के ऐच्छिक कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अत्यंत प्राचीन काल से ही भारत में रही है। लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य किसी विशेष वर्ग का कल्याण न होकर संपूर्ण जनता का कल्याण होता है। इस तरह संपूर्ण जनता को केंद्र मानकर जो राज्य कार्य करता है वह लोक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के संबंध में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज के विचार है। लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व तो समझता है। कल्याणकारी राज्य लोगों का ऐसा संगठन है जिसमें सबका सामूहिक रूप से अधिकाधिक हित निहित है। डॉक्टर अब्राहम के अनुसार वह समाज जहां राज्य की शक्ति का प्रयोग निश्चय पूर्वक साधारण आर्थिक व्यवस्था को इस प्रकार प्रवर्तित करने के लिए किया जाता है कि संपत्ति का अधिक से अधिक उचित वितरण हो सके, लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। डॉक्टर आरसी वादम के शब्दों में लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ है राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तार ताकि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। अर्थशास्त्री क्राउथन ने कहा है नागरिकों के लिए अधिकार रूप में इन्हें स्वस्थ बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए, निवास वस्त्र आदि के न्यूनतम जीवन स्तर की ओर से उन्हें चिंता रहित होना चाहिए, उन्हें शिक्षा का पूर्णतया समान अवसर प्राप्त होना चाहिए और बेरोजगारी बीमारी और वृद्धावस्था में दुख से उनकी रक्षा की जानी चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य की प्रमुख विशेषताएं। कल्याणकारी सिद्धांत व्यक्तिवादी विचार के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है और इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य को वे सभी हितकारी कार्य करने चाहिए जिनके करने से व्यक्तिगत स्वतंत्रता कमियां नष्ट होती है। राजनीतिक सुरक्षा का प्रबंध ऐसी की जानी चाहिए कि सभी व्यक्तियों में राजनीतिक शक्ति निहित हो और वे अपने विवेकानुसार इस शक्ति का प्रयोग कर सकें। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्न तत्व आवश्यक हैं: प्रजातंत्रात्मक पद्धति, नागरिक स्वतंत्रता। राजनीतिक सुरक्षा व शक्ति की कल्पना केवल तभी की जा सकती है जबकि नागरिक स्वतंत्रता का वातावरण हो, अर्थात नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति और राजनीतिक दलों के संगठन की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य संपूर्ण विश्व में पंक्तियों के हितों में संबंध रखता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना और शांति व विकास में योगदान देना इसका लक्ष्य है। लोक कल्याणकारी राज्य वसुधैव कुटुंबकम की धारणा पर आधारित विचार है। लोक कल्याणकारी राज्य का प्रमुख आधार आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था है। आर्थिक सुरक्षा के प्रबंध के निम्न तत्वों का होना आवश्यक है: सभी को रोजगार के अवसर, संपत्ति व आय का समान वितरण, न्यूनतम पारिश्रमिक का आश्वासन। कल्याणकारी राज्य के प्रमुख कार्य: जब तक एक राज्य विदेशी आक्रमण से अपनी भूमि और सम्मान की रक्षा करने की क्षमता नहीं रखता तथा आंतरिक शांति और स्वव्यवस्थता रखते हुए व्यक्तियों को जीवन की सुरक्षा व आश्वासन नहीं देता, उस समय तक वह राज्य कहलाने का ही अधिकारी नहीं है। इस कार्य को संपन्न करने के लिए राज्य सेना और पुलिस रखता है, सरकारी कर्मचारी तथा न्याय की व्यवस्था करता है और इन कार्यों से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए नागरिकों पर कर लगाता है। कृषि, उद्योग तथा व्यापार का नियमन और विकास। लोग कल्याणकारी राज्य के दायित्व एक ऐसे राज्य के द्वारा ही पूरे किए जा सकते हैं जो आर्थिक दृष्टि से पर्याप्त संपन्न हो, अतः इस प्रकार के राज्य द्वारा कृषि, उद्योग तथा व्यापार के नियमन एवं विकास का कार्य किया जाना चाहिए। कृषकों को राजकोषीय सहायता, नहरों का निर्माण, बीज के वितरण के लिए गोदाम खोलना और कृषि सुधार आदि सम्मिलित हैं। लोक कल्याणकारी राज्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य आर्थिक सुरक्षा संबंधी होता है। आर्थिक सुरक्षा के अंतर्गत अनेक बातें सम्मिलित हैं जिसमें सभी व्यक्तियों को रोजगार और अधिकतम समानता की स्थापना प्रमुख है। ऐसे सभी व्यक्तियों को जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कार्य करने की क्षमता रखते हैं राज्य के द्वारा उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार किसी न किसी प्रकार का कार्य अवश्य ही देना चाहिए। नागरिकों के जीवन स्तर को निरंतर ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। सार्वजनिक सुविधा संबंधी कार्य। लोग कल्याणकारी राज्य के द्वारा परिवहन, संचार, सिंचाई, बैंक, विद्युत, कृषि के नवीनतम उपकरण आदि की व्यवस्था से संबंधित सार्वजनिक सुविधा के कार्य भी किए जाते हैं। अधिक व्ययशील राज्य व्यक्ति के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यरत है, अतः इन कार्यों को पूरा करने के लिए उसे अधिक व्यय साध्य व्यवस्था अपनानी पड़ती है, इसलिए यह व्यवस्था अपेक्षाकृत खर्चीली होती है। क्या भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है? भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की परंपरा बहुत प्राचीन है। 4वीं शताब्दी में मगध सम्राट चंद्रगुप्त के महात्य कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में यह व्यवस्था की थी कि राजा को प्रजा का पालन पिता की तरह करना चाहिए। बालक, बूढ़े, रोगी और विपत्तिग्रस्त अनाथ व्यक्तियों के भरण पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए। कालिदास ने राजा शब्द की व्युत्पत्ति रंजन अर्थात प्रसन्न करने का अर्थ देने वाली धातु से करते हुए राजा का प्रमुख कार्य प्रजा का सब प्रकार से कल्याण करना बताया था। अपनी इस प्राचीन परंपरा के अनुसार भारत के संविधान निर्माता लोक कल्याणकारी राज्य के विचार से प्रेरित थे, लेकिन एक लोक कल्याणकारी राज्य से जिन कार्यों को करने की अपेक्षा की जाती है उन कार्यों का निष्पादन करने के लिए बहुत अधिक आर्थिक शक्ति और साधनों की आवश्यकता होती है। इंग्लैंड के अधीन दीर्घकालीन दासता के उपरांत व स्वाधीनता प्राप्त भारत के पास इतने साधन नहीं थे कि राज्य इस प्रकार के नियत कार्यों को कर सकता। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विधान के नीति निर्देशकों तत्वों में निम्न बातों का उल्लेख किया गया है। राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि सामान्य

0: रूप से पुरुषों और स्त्रियों तथा सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हों, राष्ट्रीय वन का स्वामित्व और वितरण सबके हित में हो, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, राज्य अपने आर्थिक साधनों की सीमा में काम दिलाने तथा बेकारी, बुढ़ापा, मारी व अंगहीन होने की दशा में सार्वजनिक सहायता देने की व्यवस्था करे, राज्य काम करने की दशाओं में सुधार करे तथा स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता का प्रबंध करे, राज्य नागरिकों के स्वास्थ्य को सुधारे तथा उनके आहार, पुष्टि स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाए। उपयुक्त बातों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की दिशा में कुछ कदम उठाए हैं। लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नियोजन का सहारा लिया है। स्वीकार विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में लोक कल्याण के लिए अनेक योजनाएं स्वीकार की गई हैं। शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। मजदूरों के कल्याण के लिए अनेक कानूनों का निर्माण किया गया है। यद्यपि वर्तमान समय तक भारत में पूर्ण लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं हो सकी है और चारों ओर गरीबी, बेकारी और अज्ञानता का साम्राज्य है, लेकिन इस लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने के प्रयास किए जा रहे हैं और ये आशा की जाती है कि समय की गति के साथ साथ इस दिशा की ओर बढ़ने के हमारे प्रयासों में तीव्रता और गति आएगी।
1: कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और भारत। अभी आप इस विषय पर श्री अनिरुद्ध मिश्र से वार्ता सुन रहे थे। अमृत कलश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
2: आज की सबसे पहली जरूरत ERSS
3: यानी इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम,
2: और ये उपलब्ध है हेल्पलाइन नंबर 112 पर।
3: आपातकाल में साथ निभाए,
2: तुरंत सहायता उपलब्ध कराए
3: 112।
2: सवाल चाहे महिला सुरक्षा का हो
3: या सार्वजनिक स्थानों पर आत्मरक्षा का,
2: यदि चाहिए पुलिस सहायता
3: या फिर अग्निशमन सेवा की हो आवश्यकता,
2: बुलाना हो एम्बुलेंस को,
3: मिटाकर हर सस्पेंस को
2: डायल 112।
3: कोई भी राज्य हो कोई भी इलाका,
2: 112 सच्चा हम सफर है आपका।
3: कॉल 112, SMS करें या पैनिक बटन दबाएं,
2: या फिर भेजें ईमेल always use 112 India Mobile App।
3: जब घेरे कोई भी आपदा,
2: तुरंत मिले सहायता
3: डायल 112।
2: चिंता से पाएं छुटकारा,
4: पुष्पा झुकेगी नहीं,
5: 112 की सेवा रुकेगी नहीं।

0: जल के बिना है मुश्किल जीना, दुर्लभ हुआ स्वच्छ जल पीना। सबकी प्यास बुझाता पानी, पानी है तो है जिंदगानी।
1: जरा सोचिए, जब धरा पर रहेगा जल, तभी तो बचेगा आने वाला कल। जल की बचत, कल की सुरक्षा।
2: पानी पानी रे।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे?
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
3: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
5: हमने अपनाई है एक नई संस्कृति, उपयोग करो और फेंक दो।
6: सामने हैं इस संस्कृति के विनाशकारी परिणाम, प्लास्टिक कचरे और पॉलीथीन के बड़े बड़े ढेर।
7: रेलवे लाइन हो या सड़क का किनारा, हर जगह प्लास्टिक कचरे का नजारा।
6: ये प्लास्टिक कचरा खासकर पॉलीथीन पैदा करता है नालियों और डिस्पोजल पाइपों में अवरोध।
5: और हमें अब भी नहीं हो रहा आने वाले संकट का बोध।
6: जागिए और जगाइए,
7: पहले तो कभी न नष्ट होने वाली प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से हटाइए
5: और फिर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की समुचित तकनीक अपनाइए।
6: हर परिवार को लेना होगा संकल्प, पॉलीथीन का छोड़ना होगा विकल्प।
8: से नो टू प्लास्टिक।
6: श्रोताओं के हमेशा रहा पास, हुआ न कभी दूर, आपका अपना आकाशवाणी रामपुर। जारी है हमारे प्रसारण मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही आप सुनते हैं हमें न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी।
9: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
10: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

0: अतुलनीय है हमारा भारत देश।
1: हम भारतीयों में कदापि नहीं है
0: छल कपट दंभ और द्वेष।
1: सरल और सौम्य है हमारा वेश।
0: संपूर्ण जगत में एक ही है ऐसा देश
1: हमारा भारत।

0: भी आजादी भारत की अलामत है, अपना तिरंगा भी अहिंसा की निशा में। उर्दू हो वो हिंदी हो वो इंग्लिश हो कि संस्कृत, कोई भी नहीं गैर मोहब्बत की जबा में।
1: आइए हिफाजत करें अपनी विरासत की
0: और मोहब्बत करें अपने वतन से।
2: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, अब से कुछ ही देर बाद यानी सवेरे 7:31 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे। आज सवेरे 8:45 पर आप सुनेंगे नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। प्रेरक प्रसंग कार्यक्रम आप सुनेंगे आज सवेरे 9:25 पर। उर्दू प्रोग्राम आप समाप्त फरमाएंगे सुबह 9:30 पर। इसको हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। उप शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज सवेरे 9:50 पर आप सुनेंगे श्यामलाल का राग रामकली में शहनाई वादन। तबले पर इनका साथ देंगे ठाकुर प्रसाद मिश्रा। सवेरे 10:05 पर आज आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आपके अनुरोध पर। 80 के दशक के सदाबहार फिल्म गीत आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सुनहरा दौर में आज सवेरे 10:30 पर। दिन में 11 बजे कार्यक्रम होगा धरोहर, जिसमें आज आप सुनेंगे धारावाहिक और फन बेमिसाल है की कड़ी संख्या 11। दिन में 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मन भावन। दिन में 12:10 पर फरमाइशी ईमेल मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा गीत आपके नाम। धरती गाती है कार्यक्रम होगा दोपहर 1:15 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे उभय भारती के गाए कुछ लोकगीत। कुमकुम कार्यक्रम होगा दोपहर 1:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग आप सुन सकेंगे दिन में 2:30 पर। रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल ढूंढता है, प्रस्तुति असीम सक्सेना की होगी। समय याद रखिए आज रात 10 बजे। गीत गाता चल ये कार्यक्रम होगा आज रात 8 बजे। सुगम संगीत कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर, इसमें आज आप सुनेंगे तहरीन निषाद की गायी कुछ गजलें। फोकस नेत्रालय बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है आप सुन सकेंगे आज शाम 7 बजे।

0: रामपुर। जारी है हमारे प्रसारण मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही आप सुनते हैं हमें न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी।
1: आज शाम 6:20 पर आप सुनेंगे कृषि जगत कार्यक्रम। शाम 5:15 पर युवाओं का दैनिक कार्यक्रम होगा युववाणी। शाम 5 बजे आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम।

0: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम। लीजिए अब सुनिए अगली प्रस्तुति।
1: सात बजकर 19 मिनट होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
2: में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर। अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
2: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
3: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य। इमारत को गिराने का नोटिस जारी। कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर प्रदेश भर में जांच अभियान शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने के दिए निर्देश। कहा, आवासीय भवनों में नहीं होना चाहिए व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित एसआईटी ने गृह विभाग को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट। कहा, अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। और प्रदेश सरकार की तरफ से बेंगलुरु में आज हो रहा निवेशक रोड शो, उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग का आयोजन। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे देश के कई उद्योगपति। और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के मामले की जांच के लिए कल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल एसआईटी के सदस्यों ने संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसआईटी ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद केजीएमयू पहुंचकर घायलों से भी बातचीत की। वहीं फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने के साथ ही जांच के लिए पूरी इमारत को सील कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत में एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने बताया कि
5: हमें कुछ शुरुआती साक्ष्य मिले हैं, उसके बेसिस पर हमें फर्दर लोगों से पूछताछ करनी है, विक्टिम से भी बातचीत करनी है।
6: हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमा है, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआईटी में संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और लखनऊ के एडीजी जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। अलीगंज पुलिस की ओर से रविवार देर रात इस मामले में 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर इमारत के मालिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही नगर निगम के 2 और ऊर्जा विभाग और फायर डिपार्टमेंट के 1-1 अधिकारी को निलंबित किया गया है। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ में घटना में जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है।
7: बहुत ही दुखद घटना है हमारे जीवन परिजनों को तत्काल यूपी गवर्नमेंट ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचा दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2-2 लाख रुपए की सहायता पहुंचाई है और ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार पीड़ित परिजनों के साथ खड़ी है। आगे घटनाएं न हो उसके उपाय किए जाएंगे और जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
4: लखनऊ में अग्निकांड के बाद कल प्रदेश के सभी जनपदों में अग्निशमन सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन ने कोचिंग सेंटरों में जांच अभियान चलाया। वाराणसी के दुर्गा कुंड क्षेत्र में वाराणसी विकास प्राधिकरण, पुलिस और फायर सर्विस की संयुक्त टीम ने निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर एक कोचिंग संस्थान को सील कर दिया। वहीं गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, प्रयागराज, जौनपुर, अमरोहा, अम्बेडकर नगर, फर्रुखाबाद, आगरा समेत अन्य जिलों में जांच अभियान चलाकर नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया। जांच का क्रम आज भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अलीगंज में सोमवार को आग लगने की घटना को एक बड़ा सबक बताते हुए कहा कि इससे सीख लेते हुए ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो। मुख्यमंत्री ने हर जिले में अग्नि सुरक्षा ऑडिट के लिए प्रदेश के सभी जिलों में SIT का गठन कर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
8: कल देर शाम लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश भर में अग्नि सुरक्षा को लेकर चलाया जाने वाला अभियान पूरी तरह जनहित में संचालित किया जाएगा। पहले जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न होने पाए। समाचार कक्ष से रितेश।
4: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम कल घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। UPTET 2026 की परीक्षा अगले माह 2 से 4 जुलाई के बीच होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र 30 जून से आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल SIT ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। SIT के प्रमुख सदस्य और लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने टीम के अन्य 2 सदस्यों के साथ कल अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को ये प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। विजय विश्वास पंत ने बताया कि ये प्रारंभिक प्रतिवेदन है। SIT की जांच अभी जारी है और सबूत जुटाए जा रहे हैं।
9: शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय SIT की रिपोर्ट हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी है।
4: प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के अंतर्गत आज बेंगलुरु में एक निवेशक रोड शो का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रोड शो की अध्यक्षता करेंगे। देश के कई प्रमुख उद्योगपति भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। 3 सत्रों के कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार के अवसरों पर एक लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी। इस दौरान निवेशकों को उत्तर प्रदेश की मजबूत बुनियादी ढांचागत व्यवस्था, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, क्षेत्रीय नीतियों, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, रक्षा गलियारे, डेटा सेंटर पार्क, इलेक्ट्रिक वाहन और विनिर्माण क्षेत्र आदि में हुई प्रगति से अवगत कराकर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और हज सुविधा मोबाइल ऐप पर 20 जुलाई तक पंजीकरण कराया जा सकता है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित यात्रियों की सूची जारी की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने बताया,
10: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
4: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने कहा कि कोई सक्रिय मौसमी तंत्र न होने के कारण पछुआ हवाएं आ रही हैं, जिसके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर लू की स्थितियां बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात का एक नया दौर आरंभ होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य, इमारत को गिराने का नोटिस जारी। कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर प्रदेश भर में जांच अभियान शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने के दिए निर्देश, कहा आवासीय भवनों में नहीं होना चाहिए व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित एसआईटी ने गृह विभाग को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट, कहा अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। और प्रदेश सरकार की तरफ से बेंगलुरु में आज हो रहा निवेशक रोड शो उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग का आयोजन, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे देश के कई उद्योगपति। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
11: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
12: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को समझना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सुबह सवेरे कार्यक्रम में आप सभी को अखिलेश सक्सेना का नमस्कार। श्रोताओं, आज है 24 जून और कल से प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, बेसिक शिक्षा के उत्तर प्रदेश में खुल जाएंगे और बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देंगे और बाकी के विद्यालय 1 जुलाई को खुलेंगे। लेकिन बच्चों की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। नए सत्र छुट्टियों के बाद एक अलग ही उमंग होती है स्कूल जाने की और एक मैनेजमेंट बनाकर चलते हैं, वो एक मैनेज करके चलते हैं उनके माँ बाप भी कि बच्चों को किस समय पढ़ाना है, किस समय सुलाना है। और कभी कभी ये होता है कि बच्चे चिंता में होमवर्क के या पढ़ाई के सही से सो नहीं पाते तो उनको लोरी आदि सुना, छोटे बच्चों की खास तौर पर बात कर रहा हूँ मैं, उनको लोरी वगैरह गाने वगैरह सुनाकर सुलाकर उनको सुलाने की कोशिश की जाती है। लोरियाँ सुनाई जाती हैं, कहानियाँ सुनाई जाती हैं, परियों की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, एक काल्पनिक इमेज उनके दिमाग में बनाई जाती है और सुकून की नींद से उनको रूबरू कराया जाता है। परियां जो बचपन के साथी रही हैं और उनकी आकर्षक कहानियां हर बचपन और नन्हे मुन्नों के आकर्षण का केंद्र रहा है। शायद ही कोई बच्चा हो जिसे उसकी दादी नानी ने परी की कहानी ना सुनाई हो। मैजिक और कल्पना के साथ इन्होंने बचपन को सजाने का काम किया है। हर साल 24 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय परी दिवस मनाया जाता है। ये दिन परियों, इनकी पौराणिक जादुई कहानियों और उनकी कल्पनाशील दुनिया को समर्पित है। परियां न केवल बच्चों की कहानियों का हिस्सा हैं बल्कि वो कई संस्कृतियों, साहित्य और फिल्मों का हिस्सा भी रही हैं। ये दिन हमें बचपन की उन कल्पनाओं को फिर से जीने का मौका देता है जहां जादू और आश्चर्य हर कोने में बिखरे हैं। जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय परी दिवस की शुरुआत का श्रेय फैंटेसी कलाकार जैसिका गालब्रेथ को दिया जाता है। उन्होंने परियों और अन्य पौराणिक प्रणालियों की कला के माध्यम से इस दिन को लोकप्रिय बनाया। लोक कथाओं में माना जाता है कि परियां मानव दुनिया में सक्रिय होती हैं और दुनिया को और भी खूबसूरत बनाने में अपना योगदान देती हैं। परियों की अवधारणा प्राचीन काल से रही है। यूरोपीय लोक कथाओं में परियां प्रकृति के साथ जुड़ी रहती थीं और कभी मददगार तो कभी शरारती मानी जाती थीं। प्राचीन भारत में गंधर्व और अप्सराएं जैसी पौराणिक हस्तियां परियों से मिलती जुलती थीं जो जादुई शक्तियों और सुंदरता के लिए जानी जाती थीं। ग्रीक, रोमन और सेल्टिक संस्कृतियों में भी परियों का उल्लेख मिलता है। समय के साथ परियां बच्चों की कहानियों और आधुनिक सिनेमा का न केवल हिस्सा बन गईं बल्कि उनकी पसंद भी बन गईं। परियां विश्व के कई संस्कृतियों में अलग अलग रूपों में मौजूद हैं। भारत में परी शब्द यूरोपीय प्रभाव से आया लेकिन हिंदू पौराणिक कथाओं में अप्सराएं, यक्षिणियां और देवियां परियों जैसी भूमिका निभाती थीं। उदाहरण के लिए उर्वशी और मेनका जैसी अप्सराएं अपनी सुंदरता और जादुई शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थीं। साहित्य के पन्नों को अगर पलटें तो विलियम शेक्सपियर की ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम और जे एम बेरी की पीटर पैन ने परियों को आधुनिक रूप दिया। डिज्नी के टिंकर बेल आज की पीढ़ी के लिए परियों का प्रतीक बन चुकी है। परियों को पर्दे पर उतारने में भारतीय सिनेमा भी पीछे नहीं है। परियां सीधे तौर पर कम दिखाई देती हैं लेकिन जादुई और अलौकिक किरदारों के रूप में उनकी मौजूदगी स्पष्ट है। भारतीय फिल्में अक्सर पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं और फैंटेसी से प्रेरित होती हैं जहां परियों जैसे किरदार कहानियों को जादुई बनाते हैं। तो ये है कुछ परियों की कहानी और छोटे छोटे बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय परी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

श्रोताओं, 24 जून है। हमने बताया कि आज का दिन खास करके छोटे बच्चों से जुड़ा हुआ अंतर्राष्ट्रीय परी दिवस है और छोटे छोटे बच्चों को, खासतौर पर जो कन्याएं होती हैं, उनको परी का दर्जा दिया जाता है। सुंदर लगते हैं बच्चे, छोटे सभी प्यारे होते हैं, मासूम होते हैं। और बच्चे कभी कभी ज़िद भी करते हैं छुट्टियों में कि हमें घुमाने ले चलो और हम कहीं घूमने जाएंगे, तो पेरेंट्स जो हैं उनके घुमाने ले भी जाते हैं, पर्यटन स्थलों पर ले जाते हैं। और अब छुट्टियां लगभग ख़त्म होने के कगार पर हैं, तो अब सब अपने घर की ओर लौट रहे हैं। लेकिन आज भी आप पवित्र गंगा स्नान कर सकते हैं, क्योंकि आज है ज्येष्ठ माह का गंगा दशहरा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बार गंगा दशहरा इतना लेट क्यों आया। वैसे आपको बता दें कि दशवीं तिथि जो है कल 23 जून 2026 को शाम 4:42 से शुरू हो चुकी है, जो कि आज यानी 24 जून 2026 को शाम 6:13 तक रहेगी। इस वर्ष ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस वर्ष ज्येष्ठ माह दो हैं। अमावस्या के बाद पुरुषोत्तम मास नामक एक अतिरिक्त महीना आता है और गंगा दशहरा शुद्ध ज्येष्ठ मास के उत्तरार्ध में मनाया जाता है। पुरुषोत्तम मास में कोई बड़ा त्यौहार नहीं मनाया जाता है, इसलिए इसकी तिथि जून में स्थानांतरित हो गई है। ये पवित्र समय गंगा में स्नान करने, दान देने और प्रार्थना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन कार्यों से पाप धुल जाते हैं और शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त होती है। गंगा दशहरा एक पवित्र हिंदू त्यौहार है जो ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है, जो देवी गंगा के पृथ्वी पर दिव्य अवतरण का प्रतीक है। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन अनुष्ठानों से पाप दूर होते हैं और आध्यात्मिक शुद्धि एवं मुक्ति प्राप्त होती है। गंगा नदी पृथ्वी की सबसे पवित्र नदी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गंगा जल का उपयोग सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों में किया जाता है, जो अत्यंत लाभकारी है। माता गंगा ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। देवी माँ गंगा मुक्तिदाता और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। अब गंगा दशहरा है, लोग गंगा की तरफ रुख करेंगे, आएंगे जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक का लोड बढ़ेगा रोड्स पर, सड़कों पर। तो इसलिए दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर रूट डायवर्जन 25 जून की सुबह तक रहेगा। ये श्रोताओं याद रखिएगा, बदले मार्ग से भेजे जाएंगे वाहन। गंगा दशहरा पर ब्रजघाट और तिगरी धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के गंगा स्नान के लिए पहुंचने की उम्मीद है और इसको लेकर ही दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर रूट डायवर्जन लागू हो गया है, जो 25 जून सुबह तक रहेगा। रामपुर यातायात पुलिस ने बाईपास पर बैरियर लगाकर वाहनों को बदले मार्ग से भेजा है। वाहन बाया शाहबाद होकर दिल्ली मेरठ की तरफ जा रहे हैं। यातायात प्रभारी मिस्टर राजीव कुमार ने बताया है कि रूट डायवर्जन लागू हो गया है, यातायात कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। अब रूट डायवर्जन कैसा रहेगा ये आपको बता दें कि मुरादाबाद व रामपुर से गाजियाबाद दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को शाहबाद से डायवर्ट कर बेलारी, चंदौसी, बहजोई से गंगा एक्सप्रेस वे होकर खड़लिया कट सिंभावली से दिल्ली तक की तरफ रवाना किया जाएगा। दिल्ली गाजियाबाद से बरेली लखनऊ की ओर जाने वाले वाहनों को लालकुआं, खड़लिया कट, सिंभावली, हापुड़, गंगा एक्सप्रेस वे बुलंदशहर, डेवाई, नरोरा, गुन्नौर, सहजवान, बदायूं होते हुए बरेली व लखनऊ की ओर भेजा जाएगा। हापुड़ व मेरठ से रामपुर की ओर जाने वाले वाहनों को गढ़ चौपला, सियाना चौपला, खड़लिया कट, सिंभावली, हापुड़ गंगा एक्सप्रेस वे से या फिर जनपद हापुड़ से डायवर्ट कर बुलंदशहर, डिवाई, नरोरा, बबराला, बैजुई, चंदौसी, बिलारी, शाहबाद से रामपुर की ओर भेजा जाएगा। हापुड़ और मेरठ से रामपुर की ओर जाने वाले वाहनों को गढ़ चौपला, सियाना चौपला, खड़लिया कट, सिंभावली, हापुड़ गंगा एक्सप्रेस वे या फिर जनपद हापुड़ से डायवर्ट कर बुलंदशहर, डिवाई, नरोरा, बबराला, बहजोई, चंदौसी, बिलारी, शाहबाद होते हुए रामपुर की ओर भेजा जाएगा। इसलिए आज आप अगर बाहर निकल रहे हैं तो इस रूट डायवर्जन को ध्यान में रखकर बाहर निकलें और जाएं गंगा माँ के स्थान पर, गंगा के किनारे जाएं, गंगा में स्नान करें और माँ गंगा से सुख समृद्धि और देश के विकास में उनकी कृपा बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद उनसे मांगे। और एक चीज और, गंगा पवित्र नदी है, हम सब इसकी पूजा करते हैं, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम मां गंगा को गंदा ना करें, उसमें प्रदूषण ना फैलाएं।
इसलिए कोशिश कीजिए कि जो भी कूड़ा करकट है वो कूड़ेदान में डालें, गंगा के अंदर कोई भी कूड़ा करकट ना डालें, और प्रत्येक व्यक्ति संकल्प ले अपने स्तर से काम करे तो यकीनन हर कोई प्रेरित होकर माँ गंगा को साफ रखने में सहयोग करेगा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे अखिलेश सक्सेना के साथ। और अब हम आपको जानकारी दे दें 24 जून के दिन देश विदेश के इतिहास में क्या क्या घटित हुआ। इस बारे में 24 जून 2004 को जान नेग्रोपोटे इराक में अमेरिका के पहले राजदूत बने। अमेरिका द्वारा भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी को मान्यता दी गई 2005 में 24 जून को। 24 जून 2006 को फिलीपींस में मौत की सजा समाप्त हुई। 24 जून 2008 को नेपाल के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। भारतीय राजनेता और बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ मिश्रा का जन्म 24 जून 1937 में हुआ। अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका अनिता देसाई का जन्म 24 जून 1937 को हुआ। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, संगीतज्ञ एवं हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक ओंकार नाथ ठाकुर का जन्म 24 जून 1897 को हुआ। भारतीय लेखक, इतिहासकार, श्रेष्ठ वक्ता और विद्वान रहे विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े का जन्म 1863 में आज के दिन हुआ। ओम जय जगदीश हरे आरती के रचयिता और हिंदी पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रद्धाराम शर्मा का निधन आज के दिन 1881 में हुआ था। और श्रोताओं, आज भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध वीरांगना रानियों में से एक रानी दुर्गावती की भी पुण्यतिथि है। रानी दुर्गावती का जन्म 1524 में हुआ था। उनका राज्य गोंडवाना में था। महारानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से उनका विवाह हुआ था। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती का पुत्र नारायण 3 वर्ष का ही था, इसलिए रानी ने स्वयं ही गढ़मंडला का शासन संभाल लिया, जो कि वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। दुर्गावती बड़ी वीर थीं। उन्हें कभी पता चल जाता था कि अमुक स्थान पर शेर दिखाई दिया है तो वो शस्त्र उठा तुरंत शेर का शिकार करने चल देती और जब तक उसे मार नहीं लेती पानी भी नहीं पीती थी। दुर्गावती के वीरतापूर्ण चरित्र को भारतीय इतिहास से इसलिए हटाकर

झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से रानी दुर्गावती का शौर्य किसी भी प्रकार से कम नहीं रहा। दुर्गावती के वीरतापूर्ण चरित्र को लंबे समय तक इसलिए हम याद करेंगे क्योंकि वो निपुण थीं, शस्त्रों में निपुण थीं। जन जन में रानी ही माँ रानी थी, जन जन में रानी ही रानी थी। वो तीर थी, तलवार थी, भालों और तोपों का वार थी, फुफकार थी, हुंकार थी, शत्रु का संहार थी। थर थर दुश्मन कांपे, पग पग भागे अत्याचार, नरमुंडों की छड़ी लगाई, लाशें बिछाई कई हजार। जब विपदा घर आई चंगोर, सीने में खंजर लिया उतार। जी हाँ, वो सामने वाले दुश्मन से मृत्यु को प्राप्त होने से बेहतर उन्होंने समझा कि खुद ही अपने प्राण ले ले जाएं तो अच्छा है, इसलिए उन्होंने खुद अपने सीने में खंजर उतार लिया था। रानी दुर्गावती कीर्ति स्तंभ, रानी दुर्गावती पर डांग चित्र, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती अभयारण्य, रानी दुर्गावती सहायता योजना, रानी दुर्गावती संग्रहालय और मेमोरियल, रानी दुर्गावती महिला पुलिस बटालियन आदि न जाने कितनी कीर्ति आज बुंदेलखंड से फैलते हुए संपूर्ण देश को प्रकाशित कर रही है। चंदेलों की बेटी थी, गोंडवानी की रानी थी, चंडी थी, रणचंडी थी, वो दुर्गावती भवानी थी। स्वतंत्रता संग्राम की महान महिला सेनानी व खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी कि शौर्य गाथा काव्य को लिखने वाली वीर रस की महान कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान के शब्द ही अदिति शौर्य का प्रदर्शन करते हुए अमर बलिदान करने वाली रानी दुर्गावती की सच्ची कहानी कहते हुए महसूस होते हैं। नमन कर रहा है सुनूंगी माता की आवाज, नमन कर रहा है सुनूंगी माता की आवाज, रहूंगी मरने को तैयार कभी भी इस वेदी पर देव, न होने दूंगी अत्याचार, मातृभूमि में हुई पुकार, चलो मैं तो हो जाऊं बलिदान, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। तो कुछ इस तरह की शौर्य गाथा है रानी दुर्गावती की। और वैसे ही भारत की नारी हमेशा वीर और साहसी रही है, वो कोमल नहीं है। आज भी भारतीय नारी भारत के उच्च पदों पर आसीन होकर देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

अब चलते चलते कुछ काम की समाचार आपको दे दी जाए। राजस्व अभिलेखों को अधिक पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने के लिए उद्देश्य से जनपद रामपुर में 26 जून तक विशेष अंश निर्धारण एवं त्रुटिपूर्ण अंश निर्धारण संशोधन किया जाएगा। लोक विभाग से संपर्क कर समस्या का समाधान करा सकते हैं। जनपद रामपुर में शासकीय अधिवक्ताओं के 6 रिक्त पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पदों के लिए 8 जुलाई तक आवेदन होंगे। विस्तृत जानकारी जिला प्रशासन के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए 25 जून 2026 को मोबाइल कोड दिव्यांग न्यायालय का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रामपुर शहर स्थित संत शिरोमणि रविदास सभागार में ये आयोजित होगा। आगामी 2 से 4 जुलाई को रामपुर जनपद में होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग में कमर कस ली है। जिले में 11 केंद्रों पर 13,545 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। लखनऊ के अलीगंज स्थित एक कोचिंग संस्थान में आग लगने की घटना के बाद रामपुर में भी कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है।

जिले में वर्तमान में करीब 16 पंजीकृत कोचिंग संस्थान संचालित हैं। जुलाई में एक बार फिर कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें सुरक्षा मानकों और पंजीकरण संबंधी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। DIOS ने बताया है कि जल्दी चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।

आज के कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस बारे में हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। हमारा पता है आपका पत्र मिला कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर पिन 244901। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है patramila@rampur.gmail.com। आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम समाप्त करने की अब अखिलेश सक्सेना को आगे दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने को हैं। कुछ ही देर में समाचार प्रभात का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।
1: बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
2: रास लाफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
2: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
2: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नागरिकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
4: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केनिया, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने की आशंका है।
5: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है, हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
0: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज़ को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून। जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा, पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। ब्रिक्स नेशंस कॉल फॉर स्ट्रॉन्गर कोऑपरेशन टू एड्रेस वाइडनिंग रेंज ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस इंक्लूडिंग टेररिज्म एंड साइबर थ्रेट्स। Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0, match between England and Ghana draw goalless. And now the news in detail. National security advisers and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisers meeting, held under India's chairship of the grouping, led by India's NSA, Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders. Delegates exchanged views on issues ranging from energy and food security to climate-related instability and the misuse of emerging technologies by terrorist organizations. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Doval stressed the need for collective deliberation and cooperation among BRICS nations to address the emerging security risks and evolving forms of terrorism in an increasingly digitized world.
8: We need to be cognizant of the new security threats and challenges. Non-traditional threats have transcended national borders and have developed defeat systems against conventional responses. Innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism, cyber threats in a world which is getting increasingly digitized, they all constitute an important threat for us.
7: Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from the Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. He expressed condolences over the loss of lives of 12 Indian nationals in the accident at Ras Laffan Industrial City in Qatar on Sunday and conveyed his wishes for the speedy recovery of those injured. Mr. Modi thanked the Qatari leader for his words of sympathy for the affected families and appreciated the prompt medical assistance extended to the injured. The two leaders also reaffirmed their commitment to ensuring the well-being and safety of their citizens and reiterated their solidarity and support for each other. During discussions on the situation in West Asia, Prime Minister Modi appreciated Qatar's constructive role in the ongoing peace efforts. India has strongly criticized Pakistani Defense Minister Khwaja Asif's remarks over the situation in Pakistan-occupied Kashmir, saying these remarks are desperate attempts by the neighboring country to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. Addressing media in New Delhi, Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, New Delhi categorically rejects these fabricated claims with the contempt they deserve.
9: The ongoing protests in Pakistan-occupied Kashmir are a direct consequence of Pakistan's decades-long policy of systemic economic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses.
7: On India-UAE defense partnership, the spokesperson said India's relationship with the UAE in recent several years has seen a major upswing.
10: Our relationship with United Arab Emirates several years has actually seen a major swing, a major upswing. In that upswing, the defense partnership also plays an important role. It that also has strengthened and deepened. So that is where we are in our defense partnership with UAE.
7: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has called for stronger multilateral cooperation to build resilient economies, accelerate sustainable development, and ensure inclusive growth. Addressing the Global Convergence for Growth Summit virtually in New Delhi yesterday, she said that while prosperity and challenges are shared in an interconnected world, the consequences of conflicts and uncertainty fall disproportionately on developing countries and the Global South. Ms. Sitharaman stressed that coordinated global action is essential to address these challenges. Highlighting India's economic progress, the finance minister said the country's growth is primarily driven by domestic demand, supported by a largely market-determined exchange rate. She added that India continues to be among the world's fastest-growing major economies, with GDP growth projected to remain robust at around 7% over the medium term. The summit was chaired by French President Emmanuel Macron. Vice Chairperson of Niti Aayog, Dr. Ashok Kumar Lahiri, has said that the total trade of India has grown by 5.4% in the last quarter. He said this while releasing the latest edition of the Trade Watch quarterly report in New Delhi. Dr. Lahiri added that India's exports reached $1.84 trillion and imports grew by 6.5% in the last quarter. Talking about the situation in West Asia, Dr. Lahiri said that the crisis was temporary and expressed hope that soon peace will prevail in the world.
11: It was a short-term problem. I hope the war is going to end, peace will prevail, and the impact was in terms of energy prices and transportation cost. Freight rates went up. There was disruption. You'll find even in these figures somewhere, prices went up, but quantities were not available, so there was a problem. I think it was a temporary supply shock.
7: India's critical mineral mission has gained significant momentum with the successful auction of 56 critical and strategic mineral blocks and 11 exploration license blocks by the Ministry of Mines. The Ministry has successfully auctioned 10 critical and strategic mineral blocks under the 7th tranche of auctions, taking the total number of such blocks auctioned to 56 out of 88 blocks offered so far, with a success rate of over 63%. The Ministry informed that for the first time, critical mineral blocks in Gujarat, Uttarakhand and Telangana were auctioned by the centre. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in and download the News on AIR app. India and the United States opened high-level trade talks in New Delhi to salvage and recalibrate a proposed bilateral trade agreement after changes in U.S. tariff policy disrupted a framework negotiated earlier this year. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met United States Trade Representative Jamison Greer and U.S. Ambassador to India.

अभी आपने सुना केके को फिल्म राज द मिस्ट्री कंटिन्यू है। बोलिए जी, आप सुनिए जोनीता गांधी और आईपी सिंह की आवाजों में एक गीत, फिल्म है जवानी तो इश्क होना है मैं।

अभी आपने सुना कनिका कपूर, आई पी सिंह और बादशाह की आवाजों में फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी का गीत, और अब सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म डंकी का गीत।

अभी आपने सुखविंदर सिंह और रेखा भारद्वाज को सुना फिल्म ओ रोमियो में, और लीजिए अब सुनिए आशीष कौर और कीर्ति राघव की आवाज़ों में एक गीत, फिल्म है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:15 होने को हैं। कुछ ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए श्रावस्ती और सीतापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं श्रावस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अम्मार रिजवी का।
1: श्रावस्ती जिला 12वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर पूरी तरह योगामय नजर आया। करो योग रहो निरोग के संकल्प के साथ जिले भर में योग की बयार बही। सुबह से ही विभिन्न स्थानों पर उत्साह का माहौल देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का मुख्य आयोजन जिला मुख्यालय पर हुआ, जहां जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग और जिला पंचायत अध्यक्ष ददन मिश्रा की अगुवाई में भारी संख्या में लोगों ने एक साथ सामूहिक योग किया। सुबह की पहली किरण के साथ ही पंडाल में मौजूद हर शख्स योग के रंग में रंगा नजर आया। योग का ये उत्सव सिर्फ जिला मुख्यालय तक ही सीमित नहीं रहा। इकौना के स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारियों, भारी संख्या में आम जनता ने एक साथ योगासन किया। इस मौके पर सभी ने एक सुर में समाज को स्वस्थ और जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। जिले के तमाम सरकारी कार्यालयों, परिषद विद्यालयों, महाविद्यालयों, सामाजिक संगठनों द्वारा भी अलग अलग स्थानों पर योगा शिविर का भव्य आयोजन किया गया। इस शिविरों में योग प्रशिक्षणों की मौजूदगी में विभिन्न योगासन, प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। साथ ही योग से होने वाले शारीरिक और मानसिक लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई। विभिन्न कार्यक्रमों में वक्ताओं ने योग को आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बेहद जरूरी बताया। मुहर्रम के मौके पर श्रावस्ती में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले शरारती तत्वों को प्रशासन का साफ और कड़ा संदेश है। पुलिस लगातार संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च, रूट मार्च कर रही है। जिले के अति संवेदनशील क्षेत्र नासिरगंज, इकौना, पिरवितनी में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जहां पुलिस खुद ड्रोन कैमरों की मदद से चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। वहीं पीस कमेटी की बैठक के दौरान एसडीएम संजय राय ने नासिरगंज के स्थानीय लोगों से बेहद भावुक और तार्किक अपील की। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, इमाम हुसैन की शहादत पर गम मनाया जाता है, किसी की शहादत पर डीजे बजाना बिल्कुल जायज नहीं है, इसलिए सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करें। इसके साथ ही प्रशासन ने साफ कर दिया कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भड़काऊ या विवादित पोस्ट करने वालों के खिलाफ सीधे जेल की कार्रवाई होगी।
2: प्रशासन द्वारा जो भी निर्देश दिए गए मुहर्रम त्यौहार मनाने के लिए, इसको सभी लोगों को अवगत कराएंगे तथा सबको विश्वास दिलाएंगे कि पुलिस और प्रशासन त्यौहार को सकुशल मनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और प्रशासन के द्वारा अभी रूट मार्च भी किया गया है, ड्रोन से निगरानी की गई, शांति व्यवस्था कायम है तथा त्यौहार को बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाएगा।
1: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विकास, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षक के महापर्व का आगाज हो चुका। जिले के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान भारी लौ लश्कर और गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ श्रावस्ती पहुंचे। भिंगा में जनप्रतिनिधियों, आला अधिकारियों ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने जिले को एक बड़ी सौगात देते हुए सामाजिक जन कल्याण एवं जन जागरूक अभियान का भावी शुभारंभ किया। श्रावस्ती में शुरू हुए एक बड़े बदलाव को लेकर प्रभारी मंत्री ने तारीफ की। सूबे के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने इसको लेकर बड़ी खुशी जताई। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर विकास, स्वच्छता और पर्यावरण को एक नई दिशा देने के लिए मंत्री जी खुद जमीन पर उतरे। मौका विश्व पर्यावरण दिवस का था, लिहाजा प्रभारी मंत्री ने सीधे एक्शन का रुख लिया। उन्होंने ऐतिहासिक रानी तालाब पहुंचकर खुद हाथों में झाड़ू थामी और श्रमदान किया। इसके साथ ही देशव्यापी मुहिम एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षक का संदेश दिया।
3: मुझे महसूस हुआ कि गांव का जो गरीब है, जो पैसे के अभाव में जिसका परिवार तबाह बर्बाद हो जाता है, आयुष्मान कार्ड देने की योजना में 60 करोड़ लोगों को उन्होंने हेल्थ कार्ड दिया, आज हर गरीब आदमी।
1: श्रावस्ती में प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग के निर्देशानुसार जनपद के कलेक्ट्रेट स्थित तथागत सभागार में प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्ष जिला पंचायत ददन मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने गोष्ठी में लगे स्टालों का निरीक्षण किया तथा किसानों को प्राकृतिक खेती करने की नसीहत दी। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला पंचायत ने कहा कि आजकल किसान रासायनिक खेती के दौर से अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग करता है, जिसका प्रभाव उन पर और उनकी आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ता है। इसलिए कृषकों को से अपील है कि वो रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती को अपनाएं, ताकि उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे।
0: श्रावस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सीतापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दीपक श्रीवास्तव का।
4: 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2026 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ओपन हॉल पुलिस लाइन सीतापुर में हर्षोल्लास एवं सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, सदस्य विधान परिषद पवन सिंह चौहान, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सीतापुर नेहा अवस्थी, जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा सम्मिलित रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने योग की महत्ता के बारे में बताते हुए सभी को प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा योग व्यायाम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, इससे हम सभी का शरीर स्वस्थ रहता है और मन को शांति मिलती है। साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी योग के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उत्साहपूर्वक मनाने का आह्वान किया। आयुष विभाग द्वारा जनपद के सभी ब्लॉकों एवं तहसीलों में भी योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मानसून का सीजन शुरू होने के साथ ही सीतापुर में जिला प्रशासन ने लोगों को बाढ़ आपदा से बचाव के हेतु व्यापक प्रबंध शुरू कर दिए हैं। ज्ञातव्य है कि सीतापुर जनपद की 3 तहसीलें क्रमशः बिस्वा, लहरपुर और महमूदाबाद बाढ़ से प्रतिवर्ष प्रभावित होती हैं। यहां प्रतिवर्ष बाढ़ के पानी से एक बड़ी आबादी प्रभावित होती है। नागरिकों को बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन ने आपदा प्रबंधन समिति के साथ संयुक्त रूप से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसके तहत मुख्य कार्यक्रम बिस्वा तहसील अंतर्गत चहलारी घाट पर किया गया, जिसमें बाढ़ के पानी में डूब रहे लोगों को आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा नाव और स्टीमर की मदद से बचाया गया। सीतापुर में टाउन हॉल स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय को सोमवार सुबह 5 बजे ध्वस्त कर दिया गया। नजूल की भूमि पर बने कार्यालय को हटाने के लिए प्रशासन द्वारा पूर्व में नोटिस दी गई थी, जिसके बाद कार्यवाही को अंजाम दिया गया।
5: अवैध कब्जा था इनका और ये हमारी सरकारी प्रयोजन के लिए जमीन सुरक्षित कर ली गई थी राजकीय महाविद्यालय के लिए, जहाँ भी हमारी नजूल की भूमि है नोटिस दे जहाँ जहाँ दिया गया उसको हम सब खाली करवाएंगे।
4: पौराणिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में सोमवती अमावस्या पर भक्ति और आस्था का सैलाब उमड़ा। अधिक मास में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इसी महत्व के चलते नैमिष क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने पूरे भक्तिभाव के साथ आदिगंगा गोमती में स्नान के उपरांत पूजन अर्चन और दान दिया। केंद्र सरकार के सेवा संस्कार सुशासन एवं सम्मान के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकास भवन सभागार में आयोजित भव्य चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर, गुरु एवं जिला अध्यक्ष भाजपा राजेश शुक्ल ने फीता काटकर किया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं, उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी वृहद इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के विकास, सुदृढ़ आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था तथा विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के विजन को आकर्षक चित्रों एवं प्रदर्शन सामग्रियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, नीतियों एवं उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कारागारी राज्य मंत्री सुरेश राही ने कहा कि वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन है। पूर्व में विभाग तो थे, किंतु योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक अपेक्षित रूप से नहीं पहुंच पाता था। आज केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के कारण गांव गांव तक विकास कार्य पहुंच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, आवास, शौचालय, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार तेजी से हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने अधिकारियों को पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन के साथ कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की है, जिससे योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों तक पहुंच रहा है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास के अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। गांव को पैतृक सड़कों से जोड़ा गया है। किसान के हित में अनेक योजनाएं लागू की गई हैं तथा उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य गांव, गरीब, किसान एवं युवा के सर्वांगीण विकास के माध्यम से विकसित भारत एवं विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भाजपा राजेश शुक्ला ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीक्षा जोशी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, लाभार्थी तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। सीतापुर पुलिस द्वारा एक अंतर जनपदीय गिरोह को गिरफ्तार कर कई बड़ी घटनाओं को पर्दाफाश किए जाने का दावा किया गया है। इस कार्यवाही में पुलिस को 50 लाख से अधिक की नकदी समेत जेवरात और लग्जरी वाहन के साथ चोरी के एटीएम कार्ड सहित असलाह बरामद किए हैं।
0: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
6: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 9:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग।
7: बैरकपुर सेना में गूंजा मंगल पांडे का आक्रोश, कारतूस गौसू कर चर्बी, धर्म रहित खींचे मधोश, धर्महीन दुष्कृत्य बताकर विप्लव सेना बरपाते हैं, अपने जीवन की ज्योति जला जीवन ज्योतित कर जाते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी योद्धा मंगल पांडे ने आज़ादी की अलग जगाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था। अपने देश के लिए सभी संबंधों से ऊपर उठकर सार्वभौमिक संबंध को अपनाया। वे दुनिया के नवयुवकों के समक्ष कर्तव्य निष्ठा की कसौटी बन गए। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में हुआ था। 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में आप भर्ती हो गए। बंगाल छावनी की तैनाती में बैरकपुर में सूकर और गाय की चर्बी लगे कारतूस दांतों से काटकर खोलने के आदेश को स्पष्ट मना कर देने पर पलटन के हथियार ले लिए गए और सेवाएं समाप्त कर दी गईं। तब मंगल पांडे क्रांति का ध्वज लेकर आगे बढ़े। मेजर ह्यूसन ने पकड़ने का साहस किया तो मंगल पांडे ने गोली मारकर उसे वहीं ढेर कर दिया। बैरकपुर की ये आग 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नाम से चर्चित हुई। मंगल पांडे ने देश पर मर मिटने की उत्कृष्ट इच्छा उत्पन्न की जिसका लोगों ने अनुसरण किया। भारतीयों के लिए मंगल पांडे महान आदर्श के रूप में सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग।
8: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
9: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
8: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
9: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
8: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
9: 8700001-4242।
6: हम आपको याद दिला दें, आज सवेरे 10:05 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। सवेरे 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनहरा दौर, जिसमें आज आप सुनेंगे 80 के दशक के सदाबहार फिल्मी गीत। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग आप सुन सकेंगे आज दिन में 2:30 पर। गीत आपके नाम कार्यक्रम होगा दिन में 12:10 पर।
10: ये है आकाशवाणी रामपुर, जिसे सुन रहे हैं आप मीडियम वेव 336.7 यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 MHz पर।

विरासत हुसैन की, मेराजे जिंदगी है शहादत हुसैन की, दोषे रसूले पाक पे बैठे थे बिल यकीन, बेहद बेगुमा है फजीलत हुसैन की, गिरिया कुना है आज भी वो गर्ज़े करबला, देखी है जिसने प्यास की शिद्दत हुसैन की, डूबी हों खूने दिल में तुम्हारी योंगलियां, लिखो सुखन वरो यूं हिकायत हुसैन की। करबला कत्ल गहे अहले तमन्ना है, करबला मजलूमियत का इस्तियारा है, करबला सब्र इस्तकलाल का मीनारा है, करबला वो मुकाम है जहां से इंसानियत सुरखरू होकर निकलती है, बंदे हक के लिए मैदान करबला में लश्कर आदा की चमकती हुई शमशीरें नजारे ईद से कम ना थीं। दुनिया की कोई भी तहजीब, दुनिया की कोई भी तारीख मैदान करबला जैसा कोई एक सानहा पेश करने से कासिर है। तारीख दे रही है ये आवाज़ दम बदम, दश्ते सबातो अज़्म है दश्ते बलाओ गम, सब्रे मसीहो जुर्रते सुकरात की कसम, इस राह में है सिर्फ एक इंसान का कदम, जिसकी रगों में आतिशे बद्रो हुनैन है, उस सूरमा का इसमें गरामी हुसैन है। मदीना मुनव्वरा से निकला हुआ पाक नफूस का एक काफिला जिसमें नवासे रसूल, अहले बैत और चंद रफीकाने सफर थे, मक्का को अलविदा कहा और ये काफिला सुए करबला रवाना हुआ। अंदाजा था इस बात का आगाज़े सफर से, अशकों की तरह आले नबी निकले थे घर से, दश्ते बला में असगरो अकबर हुसैन हैं, जो गौर से देखो तो 72 हुसैन हैं। करबला ना तो जंग थी न मुकाबला और न ही कोई मारका आराई, क्योंकि यहाँ ना दौलत हशमत की तलाश थी न ही शहनशाहियत की जस्तजू, बल्कि एक तरीक़ा मज़ाहमत था एक ऐसे ज़ालिम जाबिर हुक्मरान के खिलाफ जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम करदा दीन को मस्क कर रहा था। यजीद के तख्त नशीन होते ही हलाल व हराम का फर्क मिटने लगा। हुसैन इब्ने अली के सामने एक बड़ा सवाल ये था कि शरीयत फरमाने शाही के ताबे हो या हाकिम वक्त शरीयत का पाबंद हो। इमाम हुसैन का मुख्तसर सा काफिला सन 2 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को सरजमीन करबला पर वारिद हुआ। इमाम हुसैन मदीना मुनव्वरा से जंग के इरादे से रवाना नहीं हुए थे और न ही आपने सहाबा इकराम और ताबईन को अपने साथ महाज पर चलने की दावत दी थी। जब करबला में दाखले शाहे दी हुआ, दश्ते बला नमूने खुल्दे बरी हुआ, पाया फरोगे नैयरे दी के जहूर से, जंगल को चांद लग गया जहरा के नूर से, उतरो मुसाफिरों के सफर हो चुका तमाम, कूच अपना होगा हश्र तक है यही मकाम, मक्तल यही जमी है यही मशहद इमाम, ऊंटों से बार उतार के बर्पा करो खयाम, बिस्तर लगाओ शौक से इस अर्ज़े पाक पर, छिड़का हुआ है आबे बका यहाँ की खाक पर। काफिले हुसैनी के हर फर्द के दिल में शौक़े शहादत का जज्बा मौज़न था। हर एक का मकसद साफ था कि किस तरह दीन मोहम्मदी के गर्दालूद चेहरे को अपने खून से धोया जाए। 5 मुहर्रमुल हराम तक मैदान करबला जालिम यजीद की फौजों से भर गया।
امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، ساتویں محرم سے دریائے فرات پر پہرہ بٹھا دیا گیا۔ کس کے لیے لگائے ہیں پہرے فرات پر، موجیں سر پٹخ رہی ہیں نہر فرات پر، پانی تڑپ رہا تھا نگاہ حسین کو، وہ ایک نظر ہی ڈال دیں لہر فرات پر۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین پر بیعت کے لیے دباؤ بڑھنے لگا، لیکن لب پہ جو انکار پہلے تھا وہ اب بھی تھا۔ مشکلات اور شورشوں کا دور تیز ہو گیا، لیکن رضائے حق کے متوالوں کے دل جذبہ ایمانی سے پرنور، روشن اور تابناک تھے۔

एक एक करके गुलशने जहरा के फूल मैदाने कारजार में काम आते गए। अब तन्हा इमाम हुसैन हैं और हजारों का लश्कर आदा। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है, शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को जिब्रील लरसते हैं समेटे हुए पर को। तन्हा हुसैन हैं और हजारों का लश्कर, इब्ने हैदर की तलवार हजारों पर भारी थी, जिधर का रुख किया सफ की सफ तहे तेक कर दिया। दुश्मनों ने कई सिम से एक साथ तीरों की बौछार कर दी, तन्हा जिसमें नाजनी और हजारों तीर, जख्मों की ताब ना लाकर इमाम हुसैन ने मैदान-ए-करबला में आखिरी सजदा अदा किया।

अभी आपने सुना राग रामकली में श्यामलाल से शहनाई वादन, तबले पर इनका साथ दे रहे थे ठाकुर प्रसाद मिश्रा। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 10:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

आपके अनुरोध पर कार्यक्रम में आप सभी को अखिलेश सक्सेना का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आशा भोंसले और भूपेंद्र सिंह की आवाजों में, गीत लिखा है हसन कमाल ने, संगीत दिया है बप्पी लहरी ने और फिल्म है एतवार। इसको पसंद किया है आप सभी ने। वैष्णव कॉलोनी सनावस से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयाधन गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़ और उनके सभी साथी। नलेश्वर नगर नरवेल से पीएस नहाकर और विशाल नहावकर। पटियाला से मुकेश भत्ता, नीलम, नितिन, पलक, कर्ण, गीतू, निहारिका और वंश भत्ता। डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा। बस्तौर मुरादाबाद से अतर सिंह सैनी, मुन्नी, पवित्रा, अजय, आंचल, आकांक्षा, आकाश, विक्की, दक्ष, छवि, रुद्र, आयुषी, खमानी सिंह। मजोली से हीरावती देवी और उनके परिवार के लोग। बोरखेड़ा उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मुड़त। आजादनगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राइयो, मेराज जहां। मोहल्ला हलवाइयान शीरकोट बिजनौर से मोहम्मद बकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदरानी, हिना कौसर। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रेहान और माहिरा नूर। भटिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान, रूमा खान, बॉबी खान, शमा खान, मिक्की खान, बुशरा खान और आसिम खान। जिला अस्पताल के पास रामपुर से गजन खां, शमा परवीन, शमसद अली आजम, गुलफशाह, शहनाज, बाबू अंसारी, रजिया गफार और हबीब अहमद इदरीसी। महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोड़के, नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के और उत्तम जमदाड़े। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म एतवार का ये गीत।

आप सुन रहे कार्यक्रम आपके अनुरोध पर अखिलेश सक्सेना के साथ। अगला गीत सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में, फिल्म है अर्थ। गीत लिखा है कैफी आजमी ने, संगीत दिया है कुलदीप सिंह ने। पसंद है आप सभी की। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष्ण श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता, सुरुचि, दिशा और लवी श्रीवास्तव। महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। परिमल काजगंज से आवाद खान, नवील खान, आरफा खान, निलमा खान, आफरीन खान और जमीर खान। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शवाना नाज, रजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शवाना आलम और चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से हिना कैसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज प्रवीण। ग्राम उलहारी खंडवा मध्य प्रदेश से राजेश कुमार धनजय, राहुल, विशाल, शीला और गायत्री धनजय। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी, महिमा और नीतू वैद। बीजनी मुरादाबाद से राजबीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, वंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान। लदावली मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक कसाना। राजद्वारा मीठा कुमार रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि, अर्पित, अभय, रिया और आरुष रस्तोगी। जननीमोला इस्लामनगर से मुजफ्फर अली खान, मतीन खान, अल्फिया खान और ईशा खान। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राय अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा। कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू इदरीसी और मोहम्मद फरहान इदरीसी। पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म अर्थ का ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए जगजीत सिंह की ही आवाज में फिल्म साथ साथ का गीत। इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप और अनिल शर्मा। कालका से शिवचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा, सालिया शुएब खान, सायमा खान, मुस्ताबा खान, अफिया खान, रऊफ और शहीद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विर्क, जयतेक विर्क और मीका विर्क। अफजलपुर पट्टी तहसील सदर रामपुर से राहुल गौतम, दिलीप सिंह, विशाल, चमनलाल, रूमा, मंजू, प्रियंका, शीतल, पूजा, कविता और अंशु गौतम। बड़ी मस्जिद के पास मिलक भूजपुर आशा मुरादाबाद से रजा हुसैन, शाहिद हुसैन, आदिल हुसैन, शहजाद हुसैन, शहनाज भी और आसिया भी। बीरगंज से कल्लू मिस्त्री। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर पीलीभीत से बिमल वर्मा, विनय वर्मा और उनके मम्मी पापा। ग्राम उड़ैला पोस्ट लपरी जौनपुर से कुमारी चंदा, चांदनी कुमारी, आकाश कुमार, कन्हैया लाल और रीता देवी। करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान और नावेद खान। सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी। पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोई और स्वाति मौर्य। पंडित नगला बाईपास मुरादाबाद से डॉक्टर अख्तर हुसैन, बहारुल निशा, असलम हुसैन और डॉक्टर महमूद हसन। बीबीपुर से मकसूद हुसैन और नाजिम अली। मोरीगेट दिल्ली से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी और साइमा नदीम। जिला लातूर हुन से उस्मान शेख, सायरा बानो, दस्तगीर, फैज नबी, शाकिर, इस्लाम नबी, बाबा शेख, करिश्मा शेख, सिमर, सानिया, शाकिल, बिस्मिलावी, गदर शेख, आनी लोफर शेख और इनके सभी साथी। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म साथ साथ का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज इस कार्यक्रम में सुनिए 80 के दशक के सदाबहार फिल्मी गीत।

अभी आपने सुना मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौड़वाल को फिल्म नगीना में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं 80 के दशक के सदाबहार फिल्मी गीत। अब सुनिए अगला गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने, और फिल्म है कयामत से कयामत तक।

एक दूजे के लिए। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की आवाजों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लाती है जो सरहदी पठान अपने साथ रोहिलखंड में लाए थे और फन बेमिसाल है। चार बैत के सफर पर आधारित आज सुनते हैं इस धारावाहिक की 11वीं कड़ी। धारावाहिक के लेखक हैं नफीस सिद्दीकी, प्रस्तुतकर्ता मनदीप कौर।

मुसलमानों में गाने बजाने की कोई रिवायत नहीं थी। शादी ब्याह में ढोलक गीत भी हिंदुस्तान में सीखे और नीरस शादियों में सुरों का रस खोल दिया। जब मर्दों को सावनी मनाने बागों में जाकर झूला झूलते और मल्हारे गाते देखा तो उनके दिल में भी झूला झूलने, बरसातियां गाने, मेहंदी लगाने, चुनरिया रंगने और हरी लाल चूड़ियां पहनने की उमंग जागी। मल्हारों के बोल भी उनके दिली जज्बात की तर्जुमानी करते थे। फिर क्या था, घर के आंगन के पेड़ों और दालानों में झूले पड़ गए। रिश्तेदार और पास पड़ोस की औरतें जमा हो गईं और घर घर से बरसातियों की सुरीली आवाजें आने लगी।

0: जानी।
1: नवाब गलबेली खां और नवाब रजाली खां ने चार बैतों की सरपरस्ती की। खास तौर से नवाब रजा अली खां ने चार बैतों के गाने के ढंग को संगीत से रूबरू कराने में बड़ा योगदान दिया है। वो चार बैतें लिखते भी थे और उनकी कंपोजिशन भी खुद ही राग और ताल में किया करते थे। चार बैत के जल से कोठी बेनजीर, कोठी खुसरोबाग, कोठी शाहबाद और खासबाग में होते थे, जहां मल्हारें गाई जाती थीं। इन जलसों को सावनी का जलसा कहा जाता था, जिनमें शहर के मौजिज लोग, नवाब और राजा, बेगमात और अहले खानदान शामिल होते थे। नवाब रजा अली खां की ये चार बैत मौसम बरसात में चार बैत के जलसों में सामाईन की फरमाइश पर गाई जाती थी, लेकिन जब नवाब रजा अली खां ने इसे सुर और ताल में बांधा तो इसमें चार चांद लग गए।

नवाब रजा अली खां की ये चार बैत पश्तो और हिंद को चार बैता की याद दिलाती है, जिनमें रबाब, सुन्ना, झांझ, दफ, मजीरा, छड़े जैसे साजों का संगत में होना लाजमी था।

0: लेकिन रोहिलखंड विशेषकर रामपुर में ऐसा नहीं हो सका। शायद इसकी वजह ये रही होगी कि डाकों से आए थे वो सिर्फ फौजी थे।
1: चार बैत रामपुर या रोहिलखंड में जब आई तो इसे पढ़े लिखे लोगों का कोई जरिया नहीं मिला था जिनके जरिए आए, बल्कि जो रोहेले वहाँ पर जंगों में मसरूफ रहते थे, घरों से दूर रहते थे, उन अरबैत की इब्तदा चूँकि पश्तों से हुई थी, इसलिए एक अलग तबका बनता चला गया जिसने चार बैत को अपनाया। और वही तबका जब यहाँ पे आया तो उसमें पढ़े लिखे लोग शामिल नहीं थे, बल्कि मामूली पश्तो जानने वाले जो यहाँ आने के बाद उर्दू से वाकिफ़ हुए, और उर्दू से वाकिफ़ होने के बाद उन्होंने उर्दू की उर्दू ज़ुबान में, या यूं कहिए कि मकामी तलमीहात और मकामी वाक़यात के तहत उन्होंने चार बैतें कही।
0: मल्हारों की ख़ास बात यह है कि बिरहे की आग में जलती तड़पती और रातों को जागती औरत किसी की बीवी है, और जिसके मिलन की प्रतीक्षा कर रही है वो उसका शौहर है। महबूब और महबूबा से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि रोहेलों के कबाइली समाजी निज़ाम शादी से पहले इश्क करने की कोई सोच भी नहीं सकता था। रजा हमदानी लिखते हैं,
2: इस चार बैत की शक्ल फारसी उर्दू के मुस्तजाद से मिलती जुलती है, मगर इसमें जो आहंग की बुलंदी यानी लय का बुलंद होना और जोशो वलवले की रौ है वो इसे पश्तो चार बैता के मिजाज के करीब कर देती है।

और फन बेमिसाल है। आपने चार बैत की सफर पर आधारित इस धारावाहिक की 11वीं कड़ी सुनी। धारावाहिक के लेखक हैं नफीस सिद्दीकी। भाग लेने वाले कलाकार थे सैयद मोहम्मद आदिल, जुबैर शाह खां और शाहिद महमूद। गायन स्वर उसामा खान, मुसर्रत और सखियों के थे। सहायक प्रस्तुतकर्ता थे सुरेंद्र राजेश्वरी।

मन भवन कार्यक्रम में एक ही संगीतकार के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं संगीतकार राजेश रोशन के संगीतबद्ध कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में, फिल्म का नाम है काम चोर।

मन भवन कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं संगीतकार राजेश रोशन के संगीतबद्ध कुछ फिल्मी गीत। आइए अब सुनते हैं ये गीत उदित नारायण की आवाज में। फिल्म का नाम है पापा कहते हैं।

ये गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और चित्रा की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था कोई मिल गया। आइए अब सुनते हैं ये गीत उदित नारायण और अलका।

क्रिश। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। मन भवन कार्यक्रम में आज आपने सुने संगीतकार राजेश रोशन के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12 बजने वाले कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सह अध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ।

0: वो आ रहे हैं और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी ये उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेस ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एक नया परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। यह दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण

0: फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है।

अब सुनिए सूचना गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में। उपनिरीक्षक थानागंज जनपद रामपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार मोहम्मद हारिस पुत्र इस्माइल विगत 16 जून से लापता है। हारिस की आयु 19 वर्ष, कद 5 फीट, शरीर पतला दुबला, रंग गेहुआ और बाल काले हैं। ये पीले रंग की टी शर्ट और ग्रे रंग का लोअर और पैरों में हवाई चप्पल पहने हैं। हारिस बोल सुन नहीं सकते और इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हारिस के विषय में सूचना देने के लिए संपर्क करें, दूरभाष संख्या है 7906664231। एक अन्य दूरभाष संख्या है 7983701819।

0: हमने अपनाई है एक नई संस्कृति, उपयोग करो और फेंक दो।
1: सामने है इस संस्कृति के विनाशकारी परिणाम, प्लास्टिक कचरे और पॉलीथीन के बड़े बड़े ढेर।
2: रेलवे लाइन हो या सड़क का किनारा, हर जगह प्लास्टिक कचरे का नजारा।
1: ये प्लास्टिक कचरा खासकर पॉलीथीन पैदा करता है नालियों और डिस्पोजल पाइपों में अवरोध।
0: और हमें अब भी नहीं हो रहा आने वाले संकट का बोध।
1: जागिए और जगाइए,
2: पहले तो कभी न नष्ट होने वाली प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से हटाइए
0: और फिर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की समुचित तकनीक अपनाइए।
1: हर परिवार को लेना होगा संकल्प, पॉलीथीन का छोड़ना होगा विकल्प।
3: से नो टू प्लास्टिक।
4: जल के बिना तो जल जाओगे, पानी की एक बूंद बिना तुम कैसे प्यास बुझाओगे।
5: कीमत समझो पानी की अब, वरना फिर पछताओगे।
6: रिश्ते नाते पीछे होंगे जब जल की होगी मारा मारी, रुपयों से भी जल न मिलेगा, जल की होगी पहरेदारी।
5: जल है तो कल है,
6: यही चिंतन पल पल है।
5: पानी को बचा कर रखिए, इसका सदुपयोग कीजिए।

आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर। 12:10 हुए हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम है गीत आपके नाम।

गीत आपके नाम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रेणु तिवारी का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, मेरे हुजूर फिल्म का ये गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन गौड़, कविता गौड़, कर्ण, रिया, जया और दर्शन भाई, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार, गाड़के नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता लोखंडे, शिवरामनगर बसमत रोड परमणि महाराष्ट्र से रणजीत कारेगांवकर, कंचन, सृष्टि और समरजीत कारेगांवकर, कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, बीरमगांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश कुमार, राकेश कुमार भावसार और जैमिन भावसार, राजकोट से जैमिन कुमार जैन, हेतल जैन, कृष्णा जैन और राकेश जैन, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता और दीपा रिमझिम गुप्ता, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनबाला सुरलकर, वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रियान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शेयब खान, जेल रोड जालंधर से अमरजीत, सोनम, परमजीत और धर्मजीत, रेलवे कॉलोनी कानपुर से आफ्ताब उल्ला, इलाहाबाद से रेशमा, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निकहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरबान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। ये श्रोता हैं गांधी मार्ग दिल्ली मोती नगर से मानसी, अनिल, गौरव, कविता, अरोरा, मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और जेवीएम जैन, आप सभी के नाम ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है मेरे हुजूर।

मेरे हुजूर, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत आपके नाम कार्यक्रम का अगला गीत नई रोशनी फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत है। और ये गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम ग्राम महेशपुर खेम ज़िला मुरादाबाद से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमज़ा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा। जालंधर से रोशन जहां, मनत जहां, सौराष्ट्र राजकोट से जगदीश गुजराती और परवीन गुजराती, उमरखेड़ से सिराज खान और आमिर खान। ये श्रोता हैं मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, साथ हैं जगमोहन प्रजापति, किरण जाखोर, शशि बाला, किरण गुप्ता। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। बोड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से शहबाजपुर कला, पाकबड़ा जिला मुरादाबाद से मजाहिर हुसैन अंसारी, बेगम रईसा नाज, मुजक्किर बाबू, रईसा मजाहिर, मजहर आसिम और सुमैया महक। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर। नरहन स्टेट समस्तीपुर बिहार से विनय कुमार मिश्रा, विनीता मिश्रा, गुंजन छोटू और लल्लन मिश्रा। बटिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी, लवली अरोड़ा और आरती अरोड़ा। सनावत से शेख मूसा मोहसिन। वर्ली मुंबई से नवाब खान, इसरत जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिदान खुराना। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, तोबिया निवादा। गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। महोबा बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्र पाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव। मुंदीचक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी। ग्राम पजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया। खैलबाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा और जी एस रामगढ़िया। आप सभी के नाम ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है नई रोशनी।

0: नई रोशनी। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत आपके नाम कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम, गांव गोरावा पोस्ट किल्लौद एमपी से नंदलाल राजपूत, राजू राजपूत, मनुका बाई, नंदिनी बाई, रुद्र राजपूत, ये श्रोता हैं जलालाबाद बेस से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित, मोहनलाल वयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सजदारानी और हिना कौसर, अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, मुरली खूबचंद वर्मा, ग्राम दूलापुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून और मोहम्मद इसरार, व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल, बुल्डाना वनशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभताई मानकर, दीपाली श्लोक कुमार, बुल्डाना इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेध कुमार, ये श्रोता हैं गांव वडागर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर, मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, चुलबुल रानी, ताजपुर मोरबा से कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, गामवाली भूलिया गुप्ता, कड़िया नाग गुप्ता, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल, ये श्रोता हैं सक्षम श्रणिक चौहान, लता राजाराम चौहान, ज्योति, अजीत चौहान, चांदनी चौक सांगली महाराष्ट्र से, वटिंगखेड़ा करणवीर हाउस भूचो कैचिया से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, करण, दपिंदर, कुलदीप, सिंधु, एकम, दमन और अभिजोत, जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, आप सभी के नाम ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है सच्चा झूठा।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

सच्चा झूठा। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। ये गीत हमने किया है अपने इन सभी श्रोताओं के नाम, विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, वसुधा वज्रसेन और आदेश कुमार काले, हनुमानगढ़ राजस्थान से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जीशान खान, कर्मचारी नगर बरेली से सुमित सक्सेना, विभा सक्सेना, पुलकित सक्सेना और मुद्रिका सक्सेना, उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका और भानु प्रकाश, नई बस्ती गंजवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजिया बेगम, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी, मीठा कुआं रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी, अर्पित, अभय, रिया और आरुष, साथ है फिरासत, गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण वर्मा, प्रवीण शर्मा, बालकृष्ण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा, बीड़ शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महेत्रे, अंजलि करवा, बाबा साहेब करवा, खनिया गेट कॉलोनी जिला रामपुर से अमरजीत, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, शशिपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश, रेलवे रोड गंजनवारा से मोहम्मद कलीम, भुवन प्रकाश, गौतम, दबीरुल हसन, शबनम अनवार, नजमा बेगम और सरिता गौतम, इंदिरा विहार दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर, अकरम आसमा फकीर, गांव हंडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा, ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शारनूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान, दीदार रेडियो श्रोता संघ बलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जैबुनिशा बेगम, सद्दाम सैफी और सोनी सैफी, मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद अब्बासी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी, सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन, कुड़ी सेक्टर 5 सूरी नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित, बीबी करवी और हिमाक्ष, आप सभी के नाम ये गीत मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है बेटा बेटी।

बेटा बेटी, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में। उलझन फिल्म का ये गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। सब्जी मंडी बुलडाणा से शबीर हुसैन, शहजाद हुसैन, बुज्जू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन। कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, ऋषिकेश, जीविका और सानिका दले। पुनावले पुणे से अजय सोनबने, करिश्मा, अविका और विशाखा सोनबड़े। जेल रोड रामगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव और कशिश जाटव। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक।

दीपिका मल्होत्रा, गव्य मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक, साथ हैं जयपाल यादव। रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। गांव पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, सुमन वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। ये श्रोता है बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन्निशा सबिस्ता, मोहम्मद नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर, खुश नसीब अब्दुल हक डाबर, जियाउलक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। गंज टुनवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अंडर मास्टर लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। ये श्रोता हैं मोहल्ला मजाद चांद शर्मिया, रामपुर से मोहम्मद रमजान साहेब, अदनान अली मंसूरी, अरमान अली मंसूरी, रायना अनम तरामीन और आशु भाई मंसूरी। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, संचित पायल, प्रथमेश देशमुख, सर्वत देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी देशमुख और कल्पना देशमुख। बरवट बक्काल बुढ़नाड़ा से नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या हागे और जय हागे। नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी। गंडनवारा उत्तर प्रदेश से साथ हैं खिल्लू परवेज, इमराना नाज। सहारनपुर से राधा नामदेव। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, जयदेव तामुरिया, तुषारदेव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर। आप सभी के नाम ये गीत किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है उलझन।

ये गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। ये बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। नर्मदा श्रोता परिवार शिवकोठी ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश से राकेश, पप्पू सेन, निशा सेन, ओम सेन, कुमारी सपना सेन, धर्मेंद्र, राकेश, मुकेश सेन और द्वारिका बाई सेन और मनीषा बाई चौधरी। नाला सोपारा मुंबई से मोहम्मद आसिफ शेख, बेगम रूमा, माहिरा शेख, नुमान शेख, सुलेमान शेख और शेख मोहम्मद कलीम। गंगा सिंह रावत रामपुर रोड हल्द्वानी उत्तराखंड से। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना। लदावली जिला मुरादाबाद से। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिना नूर। रायपुर से नीलू मेघ, वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। कासगंज से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक, सुरेश चौरसिया। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े। पटियाली रोड गंजनवारा से आमिर हुसैन, तैयबा शेख, फौजिया शेख, अहेल हुसैन, अरहान हुसैन और परिवार के सभी सदस्य। कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी अच्छे लाल, बुल्की वाली और फलना झा। दूल्हापुर जिला मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंह गढ़कर, दिशांत कुमार और अर्पिता जी। मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। ग्राम दूल्हापुर से अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक, समर और वेदिका फूलमाली। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानंद येले, नवदीप, विश्वदीप येले और अवंतिका येले। मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति, उमेश, निशा कठेरिया, प्रज्ञा, प्रतिमा, वेद बाबू और समस्त कठेरिया परिवार। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत, कौशिकी, दीपाली, युवान और आर के राजा। नेहरू चौक पैठण से सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा, प्रसाद, सोनल, बेबी सिया जाधव और समस्त जाधव परिवार। राम चबूतरा कालपी जौलौन से मोहम्मद इब्तिशाम मंसूरी, मोहम्मद अनीस मंसूरी, अमन मंसूरी, अयान मंसूरी, आफरीन, अलिजबा और जाकिर बुंदेलखंडी। दंतरेगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा। एटा रोड गंजनवारा से बीपी गौतम, सरिता गौतम, कलीम शेख और डीएच बच्चन। आप सभी के नाम ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है प्रेम कहानी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत आपके नाम। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दिन का 1 बजने वाला है। कुछ ही देर में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि साध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने साध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी तथा सतर्कता बरतने और स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। 4 महीने से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान

0: होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आजमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशंस हैं।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 603 अंक के उछाल के साथ 76,804 पर, जबकि निफ्टी 154 अंक बढ़कर 23,978 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है।
3: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। एक बजकर 15 मिनट पर धरती गति है कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे उभय भारती। कुमकुम ये कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा 1:30 पर। इसमें आज आप सुनेंगे चर्चा, सॉफ्ट पावर और महिला नेतृत्व। इसी कार्यक्रम में शशि भाटिया की वार्ता का विषय होगा दिखावा और बजट। कार्यक्रम में आज टीन एज बच्चों की देखभाल से जुड़े टिप्स भी आपको दिए जाएंगे। दो बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

हमारी दूसरी सभा सार आरंभ होगी शाम 5 बजे आज शाम के साथ। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी 5:15 पर। 6:20 पर कृषि जगत का प्रसारण होगा। इसमें आज चर्चा का विषय होगा ज्वार बाजरा की बुवाई। साथ ही किसान साथी सुनेंगे कृषि पत्रिका खेत खलिहान। शाम 7 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है। प्रायोजक होंगे फोकस नेत्रालय बरेली। सुगम संगीत में 7:31 पर सुनिएगा तहरीम निषाद की आवाज में गजलें। 8 बजे कार्यक्रम होगा गीत गाता चल।

चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम प्रसारित होगा दिल्ली केंद्र से रात 9:30 पर और 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल ढूंढता है। प्रस्तुति होगी असीम सक्सेना की। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। 1:10 हुआ चाहते हैं। इलाकाई खबरें थोड़ी ही देर में लखनऊ से रिले होंगी।

0: शामिल है। इस दौरान एक खसूसी तहकीकाती टीम ने कल लखनऊ में जाए वकूअ का दौरा किया और जख्मियों से मुलाकात की। लखनऊ में आग लगने के बाद मकामी हुकाम ने कल रियासत के तमाम अजला में कोचिंग सेंटरों का फायर सेफ्टी मुआयना शुरू किया। वाराणसी के दुर्गा कुंड इलाके में वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पुलिस और फायर सर्विस की मुश्तरका टीम ने मुआयने के दौरान कोताहियों का पता लगाने के बाद एक कोचिंग सेंटर को सील कर दिया। इस दौरान गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, प्रयागराज, जौनपुर, सहारनपुर, बस्ती, उन्नाव, अमरोहा, अम्बेडकर नगर, फरुखाबाद, आगरा और दीगर इजला में जांच मुहिम चलाई गई और कवायद पर अमल करने की हिदायत दी गई। मुआयना आज भी जारी रहेगा। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत अलनीनो की वजह से मानसून के मुमकिन मनफी असरात से निपटने के लिए किसानों की मदद के लिए पेश की तैयारी कर रही है। कल नई दिल्ली में साफियों से बातचीत करते हुए जनाब चौहान ने कहा,
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: जनाब चौहान ने कहा कि रियासतों को मशवरा दिया गया है कि वो दालों, मोटे अनाज और तेल के बीजों जैसी फसलों को फरोग दें। इन फसलों को कम पानी की जरूरत होती है और ये मुश्किल हालात में भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत आज बेंगलुरु में एक सरमायाकार रोड शो का अहतमाम करेगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ तकरीब की सदारत करेंगे। रोड शो में मुल्क भर से मारूफ सनतकार और सरमायाकार शिरकत करेंगे। प्रोग्राम में बुनियादी ढांचे, ITA ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक मौजूआत पर तबादले ख्याल किया जाएगा। इस तकरीब में उत्तर प्रदेश में सरमायाकारी और कारोबारी मौके की नुमाइश की जाएगी और सरमायाकारों को रियासत में दस्तयाब मौके के बारे में आगाह किया जाएगा। यूपीटेट 2026 का इम्तिहान अगले माह 2 और 4 जुलाई के दरमियान मुनक़िद होगा। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि ये इम्तिहान रियासत भर के 60 अजला के 955 मराकज़ पर मुनक़िद किया जाएगा। एडमिट कार्ड 30 जून से कमीशन की वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए दस्तियाब होंगे। और महकमा मौसमियात ने पेश कयासी की है कि मशरकी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। सीनियर माहिर मौसमियात अतुल कुमार सिंह ने कहा है कि मौसम का कोई फाल निज़ाम न होने की वजह से मगरबी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मशरकी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीट वेव की सूरत हाल पैदा हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मशरकी उत्तर प्रदेश में 28 जून से बारिश का नया सिलसिला शुरू होगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 401.4।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 1:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती गाती है। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं उभय भारती।

उमय भारती के स्वर में अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। धरती गाती है कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कुमकुम।

नमस्कार सखियों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कुमकुम के इस अंक में। और मैं दीपशिखा आ गई हूँ जानकारियों और मनोरंजन का पिटारा लेकर। तो आइए खोलते हैं बातों का पिटारा और निकालते हैं इसमें से हमारी आज की चर्चा का विषय। आज की चर्चा का विषय है सॉफ्ट पावर और महिला नेतृत्व। सखियों, आज के दिन इस विषय को चुनने का एक विशेष कारण है, और वह कारण है कि आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस, जो हर साल 24 जून को मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में कूटनीति और निर्णय लेने के क्षेत्र में प्रेरणादायक महिलाओं का जश्न मनाता है। कूटनीति का एक प्रभावशाली साधन है सॉफ्ट पावर। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि आखिर ये सॉफ्ट पावर होती क्या है। तो सखियों, पावर यानी शक्ति की बात जब भी देश के संदर्भ में होती है तो सबसे पहले मन में चित्र आता है सेना, हथियार जैसी चीजों का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी व्यक्ति या देश

का सम्मान उसकी संस्कृति, उसके व्यवहार और उसके मूल्यों के कारण भी बढ़ सकता है। जिस प्रकार एक परिवार में प्यार, समझदारी और संवाद से रिश्ते मजबूत होते हैं, ठीक उसी तरह देशों के बीच अच्छे संबंध केवल ताकत से नहीं बल्कि विश्वास और सहयोग से बनते हैं। और प्रेम, विश्वास, संस्कृति और संवाद के माध्यम से लोगों के दिलों में स्थान बनाने वाली इस शक्ति को सॉफ्ट पावर कहते हैं। सखियों, कूटनीति का अर्थ केवल समझौते करना नहीं है बल्कि इसका अर्थ संबंध बनाना, विश्वास कायम करना और मतभेदों को संवाद के माध्यम से दूर करना है। और ये गुण महिलाओं के व्यक्तित्व में स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है। घर हो या ऑफिस, हम महिलाएं सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती हैं। यही गुण राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। इसलिए आज विश्व भर में ये माना जा रहा है कि शांति और विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। बहुत समय तक राजनीति को पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था, लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। गांव की महिला प्रधान से लेकर संसद तक महिलाएं अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हैं। सखियों, जब भारतीय महिला कूटनीति की बात होती है तो सबसे पहले याद आती हैं श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिनकी कार्यशैली में आत्मविश्वास, गरिमा और संवाद की शक्ति साफ दिखाई देती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि उन्होंने ऐसे समय में भारत का नेतृत्व किया जब दुनिया में महिला नेतृत्व बहुत कम दिखाई देता था। साथ ही वे संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला भी थी। विदेश नीति और वैश्विक मामलों में एक महिला कितनी प्रभावी नेतृत्व प्रदान कर सकती है, ये सिद्ध किया चोकिला अय्यर ने, जिन्होंने भारत की पहली महिला विदेश सचिव बनकर इतिहास रच दिया। और ये सिलसिला अब भी कायम है। वर्तमान की बात करें तो हाल के वर्षों में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रही रुचिरा कंबोज ने विश्व मंच पर भारत के विचारों को प्रभावशाली ढंग से रखा। भारत की संस्कृति, लोकतंत्र और विकास की सोच उनके हर संबोधन में स्पष्ट रूप से झलकती है। ऐसी अनेक महिला अधिकारी हैं जो अलग अलग देशों में भारत और उन देशों के बीच मित्रता और सहयोग के नए अध्याय लिख रही हैं। आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, असमानता और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कर रही है तो ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है कि बहुत संवेदनशील और समावेशी नेतृत्व रखा जाए और हम महिलाओं की भागीदारी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। सखियों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस पर हमें ये याद करने की ज़रूरत है कि शांति, सहयोग और विकास की यात्रा आधी आबादी कही जाने वाली महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना अधूरी है। तो आइए अपने अस्तित्व के इस महत्व को सजाते हैं इस गीत के साथ।

0: सखियों, हमारा कहना तो ये है कि एक महिला को थोड़ा सहना भी चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए, ताकि परिवार और समाज दोनों का संतुलन बना रहे। वैसे जीवन में संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता। कई बार अनदेखे सामाजिक दबाव इस संतुलन को हिला कर रख देते हैं। जैसे आप अपनी किचन साफ करने के लिए पुराने कपड़े का इस्तेमाल करती थी, अब छुट्टियों में घर पर एक रिश्तेदार आए, उन्होंने जब कपड़े से किचन साफ होते हुए देखी तो बोली, अरे आप कौन कपड़े से साफ करता है, आजकल तो रीयूजेबल किचन टॉवल रोल वाइप्स आते हैं, और पोछे के लिए भी तुम पुराना कपड़ा इस्तेमाल करती हो, कम से कम इसके लिए तो रेडीमेड कपड़ा वाला पोछा खरीद लो। बस फिर क्या था, हम महीने के खर्च में ये दो खर्चे और जोड़ लेते हैं, और ऐसे ही दिखावे के चक्कर में हमारा बजट बिगड़ जाता है। तो इस दिखावे के बीच बजट का संतुलन कैसे बैठाएं, आइए जानते हैं श्रीमती शशि भाटिया से एक वार्ता के माध्यम से। विषय है दिखावा और बजट।
1: पैसे सात कमाए कर खर्च करेगा पांच, सदा सुरक्षित वह रहे कभी ना आवे आँच। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमें किसी भी तरह के दिखावे से बचना चाहिए, और जो भी हमारी आय है उस आय में से हम घर का अपना बजट बनाकर जीवन यापन करते हैं तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा और जीवन भी सदैव सुखी रहेगा, क्योंकि भविष्य को सुरक्षित और सुखमय बनाने के लिए बजट की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम पारिभाषिक शब्दों में कहें कि बजट एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है एक बैग अथवा एक झोला। प्राचीन समय में गॉल लोग व्यापार, वाणिज्य और अन्य कारोबार के लिए लंबी यात्राओं पर जाते समय अपने झोले कंधों पर रखकर ले जाया करते थे। वापसी पर वे लाभ हानि का लेखा जोखा तैयार करते थे, और यहीं से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ है आय और व्यय का वार्षिक विवरण। इसी तरह से घर के आय व्यय की जानकारी का अर्थ है खर्चों को इस तरह से मैनेज किया जाए कि परिवार की जरूरतें पूरी हों और महीने के आखिरी दिनों में पैसों की तंगी का भी एहसास ना हो। साथ ही जरूरत भर बजट भी होती चले। वास्तव में यही बजट बनाने की कला कि परिवार की जरूरतों के लिए प्राथमिकता के आधार पर खर्च हो, इसके अलावा कुछ सहजता और समझदारी भरत कर खर्चों को कंट्रोल करके सेविंग की आदत डाली जाए तो अचानक होने वाले खर्चे जैसे दुर्घटना, किसी के यहाँ शादी, घर में अचानक आए मेहमान की वजह से भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। नारी गृहस्थ जीवन की पतवार है। गृहस्थी की देखभाल, सुख, शांति, आनंद तथा उत्थान नारी पर ही आधारित है। इसलिए घर का बजट बनाते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान प्रत्येक नारी को रखना चाहिए। आमदनी के हिसाब से खर्च करें, दूसरों की देखा देखी ना करें। सबसे पहले जरूरी खर्चों की लिस्ट तैयार कर लें, जैसे मकान का किराया, टेलीफोन, बिजली का बिल, दूध, सब्जी, अखबार व किचन के दूसरे खर्चे आदि। किसी को गिफ्ट आदि दें तो निश्चित कर लें कि कितने तक का देना है। यदि महीने में त्योहार हो तो बजट बनाते समय त्योहार पर होने वाला खर्चा भी शामिल करें। बाहर कहीं घूमने जाना है तो कोशिश करें कि बाकी मनोरंजन के खर्चों को कम किया जाए, ताकि घूमने के लिए ज़्यादा पैसों की व्यवस्था हो सके। आकस्मिक खर्चों के लिए पहले से ही अपने को तैयार करके चलें। फैमिली में फंक्शन जैसे बर्थडे, शादी, सेरेमनी आदि पर कितना खर्च करना है बजट बनाते समय ही तय कर लें। इनकम में से सेविंग करने वाला पैसा अलग निकाल कर ही बजट बनाएं। कपड़ों आदि की शॉपिंग अगर जरूरी है तो बजट में ही शामिल करें, नहीं तो गुंजाइश के हिसाब से भी शॉपिंग कर सकते हैं। जिस महीने खर्चा ज़्यादा हो और बजट कम तो बाकी खर्चों से कटौती भी कर सकते हैं, जैसे बाहर जाकर खाना ना खाना, छोटे बच्चों को ट्यूटर ना लगाकर खुद ही पढ़ाना, पुराने कपड़ों की सिलाई आदि। यदि आमदनी निश्चित ना हो तो बजट बनाने में दिक्कत आती है। जब बजट बनाएं तो परिवार के बड़ों व अन्य सदस्यों की सलाह लेना ना भूलें। बड़े परिवार में बजट बनाते समय सबकी सुविधाओं का ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि इसी पर परिवार की खुशहाली निर्भर करती है। आय और खर्च का लेखा जोखा रखने के लिए हमेशा एक डायरी रखें। हर दिन होने वाले खर्च का ब्यौरा इसमें लिखें। इसके लिए आप दूध, सब्जी, ग्रॉसरी आदि के अलग अलग कॉलम भी बना सकती हैं। इसके साथ आपको पता रहेगा हर महीने आप किस मद में कितना खर्च कर रही हैं। इससे यह पता भी लगेगा कि कहां कहां आपने फिजूल खर्ची की है, जिसे भविष्य में सुधारा जा सके। मानव जीवन उतार चढ़ाव से भरा पड़ा है। जीवन के किस मोड़ पर ना जाने कब धन की अकस्मात आवश्यकता पड़ जाए, कोई नहीं जानता। आज आप हष्टपुष्ट स्वस्थ हैं और जो कुछ कमाते हैं उसे दिखावे के चक्कर में पूरा पूरा खर्च कर देते हैं। आप के कल के लिए कुछ भी नहीं रहता, तो आप संकट पड़ने पर दूसरों की सहायता के लिए मुंह ताकते रहते हैं। और फिर ये आवश्यक नहीं कि आपको उचित समय पर सहायता मिल ही जाए। नारी अपनी बुद्धि, योग्यता तथा आत्मविश्वास से घर और बाहर में सामंजस्य बिठा सकती है। उसका कार्य गृह की व्यवस्था, बजट बनाकर सुख शांति परिवार को प्रदान करना है। इसमें तमाम जिम्मेदारियों के बीच सबसे महत्वपूर्ण होती है आर्थिक जिम्मेदारियां। ये एक ऐसी जमीनी सच्चाई है जिसमें घर की जरूरतें पूरी करने के लिए आय के नियमित स्रोत की आवश्यकता होती है, जैसे मकान का किराया या मकान यदि लोन पर लिया है तो उसकी किश्त चुकाना, रसोई चलती रहे, परिवार की सेहत बनी रहे, बच्चों की शिक्षा में कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए परिवार में आर्थिक सुरक्षा का वातावरण बनाना बहुत ज़रूरी होता है। एक शिक्षित, आत्मविश्वासी और स्वतंत्र महिला घर का प्रबंध कुशलता से कर सकती है। इसके लिए उसे घर और बाहर दोनों ही दुनियाओं को समझना जरूरी है। घर के बजट को देखते हुए खर्च और बचत को संतुलित करें। लेकिन प्रायः देखने में आता है कि वर्तमान समय में ऐसा नहीं हो पा रहा है। यदि किसी एक परिवार का बच्चा अच्छे पब्लिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहा है और साथ ही घर में ट्यूटर भी आ रहा है, तो दूसरे परिवार की महिलाएं चाहती हैं कि हमारा बच्चा भी ऐसे ही अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करे। लेकिन दिखावे के चक्कर में वह एडमिशन तो करा देती हैं, पर भूल जाती हैं कि उनकी आय इतनी नहीं है। इससे उनके घर का बजट गड़बड़ा जाता है। इसी तरह घर के सामान के दिखावे में भी यही बात आती है। यदि पड़ोसी या रिश्तेदार के घर में कार, एसी जैसी महंगी चीज़ें आती हैं, तो वह भी चाहती है कि ऐसी चीज़ मेरे घर में भी हो। इसके लिए वह लोन लेकर वह चीज़ खरीदना चाहती है, जिससे लोन की किस्तें ना चुका पाने से वह परेशानी में पड़ जाती है। जैसे आजकल शहरों में शॉपिंग मॉल खुल गए हैं, हालांकि वह खरीदने ज़रूरत का सामान ही खरीदने जाती है, लेकिन आधुनिकता की चकाचौंध में वह बिना आवश्यकता के भी सामान खरीद लाती हैं, जिसके कारण उनको महीने के अंत में परेशानी का सामना करना पड़ता है। आजकल महिलाएं ज़्यादा सुंदर दिखने के चक्कर में महंगे से महंगे ब्यूटी पार्लर में जाना पसंद करती हैं, जबकि रसोई घर में उपलब्ध ये सामग्री को इस्तेमाल करके वे अपने को स्वस्थ सुंदर दिखा सकती हैं। इस तरह से यह कुछ बातें हैं जो दिखावे के चक्कर में आम आदमी के बजट को बिगाड़ देती हैं। अतः आय कम हो या ज़्यादा, बचत के लिए बजट की जरूरत पड़ती है। ये बजट ही है जो निरंतर आर्थिक सुरक्षा का एहसास कराता है और संकट के समय में सहारा भी बनता है। दिखावे से बचने के लिए गृहिणी को बाजार के बारे में सतर्क रहना भी जरूरी है, क्योंकि शॉपिंग भी एक कला है। इसके लिए अनुभव की भी आवश्यकता है। आज के भौतिकवादी अर्थ प्रदान समय में दिखावे से बचने के लिए बजट का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आने वाली कल की आवश्यकताओं के चक्कर में हम दूसरों के दिखावे में नहीं पड़ना चाहिए। जिस तरह सरकार बजट बनाकर देश के सभी खर्चों को सुचारू रूप से चलाती है, उसी तरह सुखमय जीवन के लिए दिखावा उतना आवश्यक नहीं है जितना कि बजट को बनाकर एक परिवार अपने भावी जीवन को सुखमय बना सकता है। अंत में मैं यह कहना चाहूँगी कि दिखावे से बचने के लिए अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के अंतर को पहचानें, और यदि ये अंतर आप कर पाएं और उस पर अमल करें तो यकीन मानिए पर्स कभी खाली नहीं होगा और पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। थोड़ी सी समझदारी से आप न केवल अपना आज सुधार सकती हैं बल्कि भविष्य को भी खुशहाल बना सकती हैं।
0: सखियों, अभी आपने सुनी दिखावा और बजट विषय पर वार्ता। वार्ताकार थीं श्रीमती शशि भाटिया। देखिए, हम चाहे कितना भी कह लें कि दिखावे पर पैसा खर्च करना नहीं चाहिए, लेकिन सबके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि छोटा सा बंगला भी होना चाहिए, उसमें गाड़ी भी होनी चाहिए। और अगर मैं आपको ये एक गीत के माध्यम से समझाऊं तो ये गीत कुछ ये होगा।
2: बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो, गाड़ी में मेरे संग

ज़रूरी है जिससे उनकी आने वाली ज़िंदगी खुशहाल और सफल हो। तो सबसे पहली आदत हेल्दी ईटिंग रूटीन, मतलब स्वस्थ भोजन रोज़ एक ही समय पर एकांत में बैठकर शांति से खाना। आजकल के बच्चे पहले तो पौष्टिक खाना खाना ही नहीं चाहते, अगर खाते भी हैं तो बेतरतीब तरीके से। इसलिए खाने को समय पर और सही जगह पर बैठकर खाना बहुत ज़रूरी है। कई बार घंटों ऑनलाइन समय बिताने वाले किशोर किशोरियों को इंटरनेट की लत लग जाती है। इसलिए आप स्पष्ट नियम बनाइए पढ़ाई, खेलकूद और इंटरनेट इस्तेमाल करने के समय को लेकर। साथ ही बच्चों को किसी नई गतिविधि को सीखने के लिए प्रेरित करें, जैसे संगीत सीखना, पेंटिंग करना, कुकिंग सीखना आदि। किशोर बच्चों को पर्सनल हाइजीन के बारे में भी जागरूक करें। बच्चों को बताइए कि पसीना आना, मुहासों या बालों का बढ़ना किशोर अवस्था का सामान्य हिस्सा है। स्वच्छता का उद्देश्य केवल अच्छा दिखना नहीं बल्कि स्वस्थ रहना भी है, और इसके लिए रोज़ नहाना, रात को सोने से पहले ब्रश करना, नाखून समय समय पर काटना जैसे छोटे छोटे काम बहुत ज़रूरी हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आज की आपको ये टिप्स और कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो इन्हीं टिप्स के साथ अपनी सखी दीपशिखा को दीजिए अनुमति, अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से

0: आवास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं +989128101915। दूसरा नंबर है +989128101909। तीसरा नंबर +989128101902। और चौथा नंबर है +989932179359। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
2: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही। हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गयी। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा

0: कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज भूमि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कम्प्लीट हो जाएगी, उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशन्स हैं।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
2: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले 1 से 2 दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदिम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में

जाम्बिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक की उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी

0: आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 MHz पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 2:30 हुए। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओ जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओं कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टानें चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओं इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया, अद्भुत है ना। जी किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं जहां से निरंतर

लगातार पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहाँ के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहाँ के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है? ना ये बड़ी अजीब बात। जी हाँ श्रोताओ, वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुंब स्तर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुंब सर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
2: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
4: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
2: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
4: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर आश्चर्य बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में

0: सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
1: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
0: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
0: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
0: जी अवश्य।
1: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
4: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
0: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
4: जी
1: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
2: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
1: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुलके ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
0: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
5: आइए आइए फादर बुलके। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
0: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
5: जी जी,
0: मैं चाहता हूं कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
5: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
0: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
5: जी,
0: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
5: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुल्के।
0: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
5: जी,
1: तो फिर क्या था, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
2: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है,
0: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
1: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
2: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
1: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
0: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
1: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
2: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
1: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
0: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन तीन तत्वों में कोई विरोध नहीं है, बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
1: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते।
0: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: 17 अगस्त 1982 को

0: पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्म भूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
1: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
2: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग
4: NCERT उमंग। अभी आपने सुना ये प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर अपराह्न के 3 बजे हैं। अभी तक आप सुन रहे थे हमारी पहली सभा के प्रसारण। इन्हीं मीटर्स पर शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। अब से लेकर शाम 5 बजे तक FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर विविध भारती के प्रसारण उपलब्ध रहेंगे। मीडियम वेव पर हमें यह सभा संपन्न करने की आज्ञा दीजिए।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
2: सोनाली पाठक। तो आप सभी को सोनाली पाठक का
1: और मंदाकिनी जोशी का
2: नमस्कार।
1: क्या कर रही हो सोनाली?
2: बैठी हुई हूं आपके सामने बैठी
1: भाई मेरे सामने तो बैठी हो, इन दिनों क्या कर रही हो? मैंने ये जानना चाहा क्योंकि बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है।
2: बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है और बहुत खूबसूरती के साथ आप सामने बैठी हुई हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है, एक सुखद अनुभूति मिल रही है।
1: अरे वाह, यही तो होना चाहिए कि जब दो दिल मिलते हैं, दो इंसान मिलते हैं, दो दिमाग मिलते हैं तो सुखद अनुभव होना चाहिए। और ये हमारी जिंदगी में होता भी है सोनाली। हमारे श्रोता भी इस बात को कहते हैं, जब हम अपने श्रोताओं के लिए आते हैं, उनसे कार्यक्रम के जरिए मिलते हैं, तो कितना सुखद एहसास होता है।
2: और हम है ना कल्पनाओं के माध्यम से

0: महसूस भी करते हैं ना मंदाकिनी जी,
1: हाँ?
0: कि हमारे बहुत सारी सखियां बैठी हुई होगी, श्रोतागण बैठे हुए होंगे, और वो क्या कर रहे होंगे,
1: हमें
0: कोई
1: सुन रहे होंगे,
0: हमें सुन रहे हैं कुछ,
1: आचार भी डाल रहे हैं।
0: हाँ हमारी कुछ सखियां जो है अचार भी डाल रही होगी, कि चलिए इधर रेडियो भी ऑन है किचन में और इधर अचार बन रहा है, क्योंकि इन दिनों तो घर में अचार और मुरब्बे बनते ही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत जरूरी भी होता है घर के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं या हमारे घर की जो महिलाएं हैं, पुरुष भी जब ऑफिस जाते हैं, तो आचार और परौठा एक ऐसा भोजन है जो लगभग हर लोग लेके जाते ही हैं अपने
0: और
1: टिफिन
0: कभी
1: में।
0: कभी ऐसा होता है ना कि सब्जी थोड़ी सी फीकी बन गई है, तो उसमें जो अचार है ना वो उसका स्वाद बहुत बढ़ा देता है खाने का,
1: हाँ,
0: है
1: और
0: ना।
1: कई बार ये भी होता है कि जब घर की गृहिणियां सब्जी बनाने में थोड़ी सी आलस बरत लेती है ना, तो दाल और अचार से काम हमारे घर के पुरुष चला लेते हैं, पता
0: या फिर
1: है।
0: कभी सब्जी कम पड़ गई
1: हाँ
0: तब भी अचार से काम चला सकते हैं।
1: और यार प्याज का सलाद खाना हो ना, तो
0: हाँ
1: उसमें भी अचार डालकर,
0: खा
1: आहा,
0: सकते हैं।
1: मस्त।
0: और साथ में मुरब्बे, वो मीठे मीठे मुरब्बे तो बहुत है ना, उसमें आम का मुरब्बा बनता है, फिर करौंदे का मुरब्बा बनता है, आंवले का मुरब्बा बनता है, अलग अलग तरह के मुरब्बे बनते हैं जो भी हर घर की शान होती है।
1: शान होते। तो अभी थोड़ी देर बाद जब हम व्यंजनों पर आएंगे ना, तो हमारे श्रोता या हमारी सखियां और सखा तब तक आचार और मुरब्बे पर अपनी जो है रेसिपी लिखकर भेज चुके
0: कि
1: होंगे।
0: आपके घर में किस तरह का मुरब्बा या किस तरह का अचार बनता है, कोई मीठा अचार बनाते हैं, कोई तीखा बनाते हैं, कोई कद्दूकस करके अचार बनाते हैं, तो कौन से तरह का अचार आपके घर में पसंद किया जाता है, उस पर हमें लिखकर भेजिए।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे क्या और विषय हैं आज के?
0: शब्द हमारा, विचार आपके, इसमें विषय है संयम,
1: संयम,
0: जिसे
1: क्या
0: कहना
1: बात
0: बहुत
1: है।
0: आसान है और उसे अपनाना बहुत ही मुश्किल काम।
1: बहुत मुश्किल है, और वैसे हमारे श्रोताओं ने संयम पर बहुत कुछ लिखकर भेजा भी है, लेकिन हम तो ये जानना चाहते हैं सोनाली, हमारी सखाओं से, हमारी सखियों से, कि जब आपके जीवन में संयम बरतने की बारी आई, तो आपने कहाँ कहाँ संयम खो दिया था।
0: या फिर झुंझला उठे।
1: वही बात कि मसलन आपको बाजार जाना है, किसी पार्टी में जाना है, और आपकी धर्मपत्नी ने तैयार होने में थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया और आप
0: बस
1: झुंझला गए।
0: संयम टूट
1: बिल्कुल।
0: गया।
1: या फिर
0: और
1: ट्रैफिक में जब आप
0: फंस गए हो और सामने वाली, आपको पता ही नहीं है कि सामने की यानी दो गाड़ियां छोड़ के उसके आगे की गाड़ी बंद पड़ गई है, और आप जोर जोर से हॉर्न देते जा रहे हैं कि ये क्यों नहीं चला रहा है, क्यों नहीं चला रहा है, भाई क्या हो रहा है।
1: और दुनिया भर की बातें हमारे मन से निकलती हैं उस वक्त, है ना, जब हम फंस जाते हैं, तो हम धैर्य खो देते हैं, संयम खो देते हैं ना। और भी बहुत से ऐसे विषय हैं जहां हम अपना आपा खो देते हैं, तो हमारे श्रोताओं से हम चाहते हैं वो लिखें। संयम
0: अपने
1: क्या
0: उदाहरण
1: है?
0: लिखें
1: हाँ, संयम तो सबको पता है क्या
0: जी।
1: है, लेकिन संयम की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, हमें ये बताना है कि हमने जिंदगी में कब कब संयम रखा और ये कितना काम आया।
0: और कब कब खो दिया
1: वो
0: संयम।
1: तो बताना ही है, क्योंकि इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों
0: दोनों भी
1: है
0: है
1: ना।
0: जी। और साड़ियों का संसार, इसमें हम इलकल साड़ी कर्नाटक के बारे में जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे कुछ श्रोताओं ने लिखकर भी भेजी है इस बारे में
1: बहुत अच्छी
0: जानकारी।
1: साड़ी होती है इलकल
0: हाँ
1: साड़ी
0: बहुत
1: कर्नाटक
0: नरम
1: की।
0: मुलायम,
1: हाँ,
0: बहुत सुंदर
1: तो
0: साड़ी।
1: सोनाली इस बार हम जब बाजार जाएंगे ना, तो ये साड़ी खरीद कर लाएंगे,
0: बिल्कुल खरीदेंगे, और
1: है ना।
0: इतने सुंदर कलर होते हैं इसके, इलकल साड़ी के।
1: क्या बात है। तो और देखिए, सोशल मीडिया पर वाद विवाद और समय की बर्बादी हम बहुत करते हैं।
0: बहुत ही ज्यादा, यानी हमने सोशल मीडिया ऐप खोले कि उसमें कोई एक विषय पे या कोई एक रील पे इतने लोग लिखते हैं, और उसमें घंटों बाद, और फिर लोग वो मैसेज भी पढ़ते हैं, किसने क्या लिखा, किसने क्या लिखा,
1: सही
0: उस पे
1: बात
0: भी
1: है।
0: 250 300 हजारों के लाइक्स होते हैं, तो
1: हाँ
0: ये समय की बर्बादी ही है।
1: बिल्कुल, मिलता कुछ नहीं है, है ना, लेकिन हम अपने विचार वहां थोप देते हैं।
0: हाँ
1: और अनावश्यक कई बार क्या होता है, साधारण सी न्यूज होती है, उसको हम बहुत बड़ी बना देते हैं और बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं, या फिर कोई बहुत बहुत ही सेंसिटिव घटना हो गई है किसी की जिंदगी में, उस पर हम अपने विचार अनाप शनाप थोप देते हैं।
0: और कभी कभी ऐसा होता है मंदाकिनी जी, आपस में लड़ाई भी हो जाती है लोगों की, अरे तुमने ऐसे क्यों लिखा, तुमने ऐसे क्यों बोला, ये तो ऐसा है वैसा है, और उसमें हमारा बहुत सारा वक्त
1: समय, और
0: बर्बाद हो।
1: सोचिए दिमागी हालत कैसी हो जाती है
0: हाँ
1: उसके बाद।
0: अगर हमें क्रोध आ गया
1: हाँ
0: तो हम खुद का बहुत नुकसान कर लेते हैं।
1: बिल्कुल। तो सोशल मीडिया पे लिखते हैं वक्त, पहले तो हमें खुद ही सोच लेना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं, फिर ये भी उम्मीद कर लेनी चाहिए कि किस तरह के विचार आने वाले हैं। इन सब में अपना समय बर्बाद करने की बजाय हम कुछ क्रिएटिव लिखें। हाँ, कुछ मुद्दों पर आप आवाज उठाएं, लेकिन उस आवाज का असर दूर तक होना चाहिए।
0: और बस मैसेज किया और छोड़ दिया, उसके लिए पूरा दिन बर्बाद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है
1: कि
0: ना।
1: किसने क्या लिखा और किसने लाइक किया किसने नहीं किया, हम नाराज हो जाते हैं।
0: हाँ
1: पर अब हमारे श्रोता नाराज होने वाले हैं अगर हमने गाना नहीं
0: तो
1: सुनाया तो।
0: सुनवा देते हैं गीत।

0: तो चलिए दरिया में फेंक दी हमने चाबी, पर हमने अपनी अलमारी की चाबी संभाल के रखना है जिसमें बहुत सारी साड़ियां होती हैं।
1: हाँ वही तो मैं कहने वाली थी कि दरिया में चाबी फेंक दोगे तो हम अपनी साड़ियां और अपने कपड़े कैसे निकालेंगे
0: भाई
1: भाई।
0: हमारी जो अलमारी होती है उसमें अलग अलग तरह की अलग अलग प्रांत की साड़ियां होती है। तो कर्नाटक की साड़ी इलकल अगर आपने नहीं खरीदी है तो आपको जरूर खरीदना
1: खरीदनी
0: है,
1: पड़ेगी है
0: बहुत
1: ना।
0: सुंदर साड़ियां होती है। और भारत की संस्कृति में साड़ियों का वैसे विशेष स्थान होता है, हर प्रदेश की साड़ी अपने रंग बुनाई और परंपरा के कारण अपनी अलग पहचान रखती है, और इन्हीं में से एक है इलकल साड़ी जो कर्नाटक राज्य की प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा साड़ी है। ये साड़ी अपनी सुंदर बनावट, पारंपरिक रंगों और अनोखी बुनाई के लिए जानी जाती है।
1: हाँ बिल्कुल सोनाली, और इलकल साड़ी का जो संबंध है वो कर्नाटक के बागलकोट जिले के इलकल नगर से है, और इसी स्थान के नाम पर इसका नाम इलकल साड़ी पड़ा। और ये कर्नाटक की ग्रामीण संस्कृति और हथकरघा परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: और इलकल में साड़ी बुनने की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। स्थानीय बुनकर परिवारों ने इस कला को वर्षों की मेहनत और अनुभव से जीवित रखा है। पहले ये साड़ियां विशेष रूप से महिलाओं के पारंपरिक पहनावे का हिस्सा थी, लेकिन आज देश विदेश में भी इनकी मांग
1: मांग
0: है।
1: हो गई है, बिल्कुल सही कहा। और इलकल साड़ी की सबसे बड़ी पहचान है इसकी अनोखी बुनाई तकनीक। इसमें साड़ी के जो मुख्य भाग है बॉर्डर है और पल्लू को एक विशेष तरीके से तैयार किया जाता है, और पारंपरिक रूप से इसमें टोपे तेनी तकनीक का उपयोग किया जाता है जो इसे अन्य साड़ियों से अलग
0: अलग
1: बनाती
0: बनाती
1: है।
0: है। और पारंपरिक इलकल साड़ियों में सूती और रेशमी धागों का सुंदर मेल देखने को मिलता है। साड़ी का मुख्य भाग अक्सर सूती धागों से और पल्लू और बॉर्डर रेशमी धागों से बनाया जाता है, और इसकी हल्की और आरामदायक बनावट इसे रोजमर्रा के पहनावे के लिए भी उपयुक्त बनाती है।
1: हाँ बिल्कुल, और इलकल साड़ियों में लाल रंग मिलता है, हरा है, नीला है, बैंगनी है और मरून जैसे पारंपरिक रंग जो हैं बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। और इसके पल्लू पर सुंदर धारियां और पारंपरिक आकृतियां भी बनाई जाती हैं, बॉर्डर पर विशेष डिजाइन इसकी पहचान बनाते हैं, और कई साड़ियों में मंदिर कला या ज्यामितीय पैटर्न की झलक भी देखने को मिलती है।
0: और एक इलकल साड़ी केवल एक कपड़ा नहीं है मंदाकिनी जी, बल्कि बुनकरों की कला, धैर्य और मेहनत का परिणाम होती है। हथकरघे पर बैठकर बुनकर धागों को जोड़कर एक सुंदर कलाकृति तैयार करते हैं, और इस काम में अनेक बुनकर परिवारों की आजीविका भी जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और इलकल साड़ी जो है कर्नाटक की एक पहचान है और उसकी परंपरा का प्रतीक है। विवाह के अवसर हो, त्योहार हो या विशेष अवसर हो, इसमें पहनने की परंपरा रही है, और ये साड़ी जो है भारतीय हस्तशिल्प की सुंदरता और सादगी को भी दर्शाती है।
0: और आज इलकल साड़ी पारंपरिक रूप से कई नए डिजाइनों में भी उपलब्ध है। आधुनिक रंगों और नए पैटर्न के कारण युवा पीढ़ी में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, और ये भारतीय हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है ताकि जो हमारे ग्रामीण
0: बुनकर
1: तबके के लोग हैं उन्हें उनकी जो है
0: घर चल सके।
1: घर चल सके, उनको एक आजीविका का
0: जी
1: साधन मिल सके। और इलकल साड़ी केवल पहनने का वस्त्र नहीं, जैसा भी आपने कहा था, ये कर्नाटक की मिट्टी, वहां की संस्कृति और बुनकरों के कौशल की कहानी मानी जाती है। और इसके हर धागे में सोनाली परंपरा की गर्माहट है और कलाकारों के हाथों की मेहनत छिपी होती है, और ये भारतीय हथकरघा विरासत का एक सुंदर उदाहरण है जिसे सहेजना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है।
0: ये बिल्कुल हमें जिम्मेदारी हम महिलाओं को उठाना चाहिए कि जब भी कभी कर्नाटक घूमने गए आप, तो आपको इलकल साड़ी जरूर खरीदना चाहिए। और क्या होता है ना मंदाकिनी जी, हम साड़ियां तो खरीद ले आते हैं लेकिन उसे पहनते नहीं है, तो साड़ियों
1: हाँ
0: को पहनना भी उतना ही
1: जरूरी
0: जरूरी है
1: है
0: कि
1: बिल्कुल।
0: कोई भी त्योहार हो, उत्सव हो या फिर कोई पार्टी हो, तो साड़ियां जरूर महिलाओं को पहनना चाहिए। अब क्या होता है कि महिलाओं को ऐसा लगता है कि भाई वक्त बहुत ज्यादा
1: ज्यादा
0: है।
1: लगता है।
0: पर थोड़ी तैयारी हमने थोड़े 1-2 घंटे पहले तैयारी करके रख ली, कि पहले से हमने साड़ी अच्छे से प्रेस कर ली, ब्लाउज प्रेस कर लिया, उसके जो उसमें पहनने वाले जो गहने वहने सब निकाल के रखे, तो हम आराम से पहन
1: तैयार।
0: के जा
1: और जिनको
0: सकते।
1: साड़ी पहनने का अभ्यास है तो वो बहुत जल्दी पहन लेते हैं, कुछ बहनों को अभ्यास कम होता है तो सीखा भी जा सकता
0: और
1: है।
0: आजकल तो सिलवा भी सकते हैं हम साड़ियां,
1: हाँ
0: यानी आप उसमें बिल्कुल सिर्फ
1: प्लेट्स जो
0: एक
1: है,
0: एक
1: हाँ
0: हुक लगाना है, और पल्लू भी उसमें सिला हुआ ही होता है, तो बिल्कुल जितना समय हमें सूट पहनने में लगता है उतने
1: उतना ही
0: ही समय
1: समय
0: में
1: लगता
0: साड़ियां भी
1: है, वो
0: पहन
1: उसी
0: सकते
1: तरह से
0: हैं।
1: पहना भी जाता है। लेकिन वो खुद जब पहना जाता है ना सोनाली,
0: हाँ
1: जब खुद प्लीट्स लगाई जाती है और पल्लू को सजाया जाता है ना, उसका मजा कुछ
0: उसकी
1: और
0: बात
1: होता
0: कुछ और होती है ना।
1: है ना। चलिए तो गीत सुन ले।
0: सुनते हैं गीत।

0: हाँ तो सोनाली, हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर हम इतने बिजी हो जाते हैं कि दैनिक जीवन में क्या कुछ करना है इस पर ध्यान हमारा थोड़ा कम हो जाता है और हम सोशल मीडिया की बहसों में उलझे रहते हैं।
1: और हमारी जो सखी है, हमने पूछा था ना कि क्या कर रहे हैं मंदाकिनी जी, तो हमारी एक सखी ने कहा कि हम अचार नहीं बना रहे हैं, हम प्रेस करते हुए प्रोग्राम सुन रहे हैं। और एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद हमें पसंद नहीं, हम तो विविध भारती के पेज पर श्रोताओं के अच्छे विचारों को पढ़ते हैं, जिससे जानकारी भी मिलती है और आनंद भी आता
0: क्या
1: है।
0: बात है, क्या बात है, छा गया, बहुत अच्छी बात आपने कही, सही बात है
1: तो ऐसी
0: कि
1: जब
0: बेतुकी बहसों में पढ़ने से अच्छा है
1: हाँ
0: कि हम कुछ सार्थक सुने। और विविध भारती एक ऐसा उनके लिए प्लेटफॉर्म है जहां पर सब कुछ सार्थक होता है, कोई वाद विवाद नहीं।
1: और मनोरंजन के साथ में ज्ञानवर्धन भी होता
0: बिल्कुल, एक पन दो कार, है ना। तो
1: है।
0: आज हम सोशल मीडिया के वाद विवाद पर, समय की बर्बादी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जो है सोनाली, हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। और इसके माध्यम से हम दुनिया भर की जानकारी है, समाचार और विचारों को तुरंत जान भी लेते हैं, जुड़ भी जाते हैं, जरूरी भी है, और लोगों को अपनी प्रतिभा को और विचार को व्यक्त करने का ये अवसर भी देता है, मौका भी देता है।
1: मंदाकिनी जी, ऐसा होता है कि विचारों में अंतर होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और दृष्टिकोण अलग-अलग होता है। अलग-अलग विचार समाज की सुंदरता है, लेकिन उन्हें सम्मान के साथ स्वीकारना उतना ही आवश्यक है।
0: एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। कोई किस विचारधारा का हो सकता है, कोई किसी विचारधारा का, हम अपनी विचारधारा उस पर थोपे नहीं। और विचारों में आपने कहा अंतर होना स्वाभाविक है, लेकिन छोटी छोटी बातों से जो बड़े विवाद होते हैं उनसे भी हमें बचना चाहिए। कई बार क्या होता है, किसी पोस्ट पर, किसी फोटो पर, वीडियो पर या समाचार पर एक छोटी सी टिप्पणी से बहस शुरू हो जाती है और वो बहस इतनी लंबी हो जाती है कि व्यक्तिगत हो जाती है ये चीजें, और एक दूसरे को हम भला बुरा कहने लग जाते हैं, आरोप देने लग जाते हैं।
1: और एक बात है ना मंदाकिनी जी, कि जो शब्द होते हैं ना उसमें भावनाएं नहीं होती है। अब जैसे मैंने आपको ऐसे ही कोई बात हंसते हंसते बोल दी तो आपको बुरा नहीं लगेगा, पर वही बात जब मैं मैसेज के रूप से मैं आपको लिखूंगी तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लग सकता है कि
0: बिल्कुल,
1: इन्होंने ऐसे कैसे लिख दिया हमें।
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: लिखना नहीं, अगर आपको बोलना भी है तो कोई बात आप बोल कर लिखिए, ना कर लिखिए। और जब हम ये लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा समय की भी बर्बादी होती है।
0: हाँ हाँ
1: तो हम ये समय जो होता है ना, बहुत अनमोल होता है। तो सोशल मीडिया पर बेवजह बहस करते करते लोगों को पता ही नहीं चलता कि कितना समय व्यर्थ हो गया। समय है जो परिवार, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और स्वयं के विकास में जो लगाया जा सकता है, वो हम बिल्कुल पूरे टाइम बर्बाद करते हैं।
0: बर्बाद कर देती है। और इससे क्या होता है सोनाली, हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती
1: बहुत
0: है।
1: ज्यादा बिगड़ती है।
0: हमें शांति चाहिए, मानसिक शांति की जरूरत है ना आजकल, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम मानसिक रूप से बीमार से हो जाते हैं, क्योंकि लगातार जो है हम इतनी नकारात्मक चीजें पढ़ते हैं, चर्चाएं पढ़ते हैं, इतना विवाद उसमें देखते हैं, तो मन में तनाव और बेचैनी तो आएगी ही। और हम भी अपनी बात लिखते हैं, कई बार हमें भी गुस्सा आ जाता है, हम भी उसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लग जाते हैं। तो सोचिए, हमें लगता है अच्छा मुझे हरा दिया, ये बात लो मैं ये लिख देती हूँ, है
1: चलिए,
0: ना।
1: ये तो मेरी बात मैं लिख कर ही रहूंगा या रहूंगी,
0: हाँ,
1: है ना।
0: तो ये जब चीजें आती हैं तो आप अच्छी सोच और सकारात्मक ऊर्जा की जगह क्रोध और निराशा से घिरने लगते हैं।
1: और रिश्तों में दूरी आ जाती है। जहां
0: ओहो।
1: गुस्सा है तो वहां पर रिश्तों में दूरी बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। और यह ऑनलाइन विचारों का मतभेद व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रभावित कर देता है। हमें याद रखना चाहिए कि रिश्ते बहस जीतने से नहीं, बल्कि समझ और सम्मान से मजबूत होते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा। और एक बात और है कि हम हर विषय पर अपनी टिप्पणी पर अपनी बात कहना बहुत जरूरी समझते हैं या अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं तुरंत, ये बहुत गलत आदत है। आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना
1: थोड़ा
0: चाहिए।
1: सोचे समझे, संयम से काम लें।
0: हाँ, वो संयम यहाँ काम आता है कि हमें क्या कहना है, और समझदारी इसी में होती है सोनाली, कि कौन सी बात महत्वपूर्ण है जिस पर हम अपनी राय दें, या समय की बर्बादी तो नहीं है, हम किससे बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं, ये सब भी हमें समझना होगा।
1: और मंदाकिनी जी, एक और बात है, इतने ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल होता है कि यानी घृणा मन में उत्पन्न होने लगती है। बहुत कड़वे, बहुत गंदे, बहुत भद्दे, अभद्र भाषा का बहुत
0: इस्तेमाल होने लगा
1: इस्तेमाल होने
0: है।
1: लगता है, तो वो एक गलत है। वो क्या है, एक को देख के दूसरा भी उसी तरह की
0: जी,
1: भाषा
0: उससे
1: का।
0: आप देखिए ना, समाज में कितना गलत संदेश जाता है। हमारे बच्चे जब इसे पढ़ते हैं तो वो भी यही भाषा सीख रहे हैं, उनके मन में भी वो सम्मान और आदर नहीं होता। कई बार स्त्रियों की फोटो होती है, लोग उस पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे होते हैं, तो जो बच्चा है वो भी यही देख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, उसे भी लगता है कि ये सब आम बात है और ऐसा कर देना चाहिए। बड़ा होकर वो भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है।
1: ये सोशल मीडिया के इतने फायदे हैं कि उसका उपयोग हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए, अच्छे विचार फैलाने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए और समाज में जागरूकता लाने के लिए किया जा सकता है, पर हो रहा है उल्टा।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये विवाद का मंच नहीं है, संवाद का माध्यम है। आप संवाद करिए, समय का मूल्य समझिए, समय जीवन की जैसा कि सबसे कीमती कीमती संपत्ति है, इसको आप
1: जी
0: जाने, और जो समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता, ये हम सभी जानते हैं। तो आप सोशल मीडिया में लिखिए, आप लोग लिखते हैं लगातार, लेखक हैं, बहुत अच्छी बातें लिखते हैं, इतनी अच्छी जानकारियां देते हैं लोग, और आप अपनी बनाइए एक ऐसी जहां पर आप अपनी बात कह रहे हैं, अपनी मन की बात, और फिर लोगों के विचार आमंत्रित करें, तो अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाएं जो आपके जीवन को, आपकी भावनाओं को, आपके दिमाग को बेहतर बनाती है।
1: यानी सोशल मीडिया स्वयं अच्छा या बुरा नहीं, उसका उपयोग हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि हम हर छोटी बात को विवाद बनाने के बजाय समझदारी और संयम से काम ले, तो यही माध्यम ज्ञान, जुड़ाव और सकारात्मक बदलाव का साधन भी बन सकता है।
0: बिल्कुल, बहुत ज्ञान है। आप जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो नई नई जानकारियां, हमें अच्छी अच्छी जानकारियां भी मिलती हैं। हम उस पर अगर अपना ध्यान लगाते हैं तो यकीनन आपको बहुत सारी जानकारी पढ़ने को मिलती है, बहुत ज्यादा ज्ञान आपको मिलता
1: यानी
0: है।
1: पुराना जमाना याद कीजिए ना, जब सोशल मीडिया नहीं था तो हमें कितनी सारी किताबों को रेफर करना पड़ता था कि
0: अरे
1: इस किताब में इस लेखक ने इतनी अच्छी बात लिखी, उस किताब में
0: लाइब्रेरी
1: उसने।
0: में जाना होता था, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़नी पड़ती थी
1: और
0: किताबें,
1: आज तो एक क्लिक पर इतनी सारी यानी ज्ञान का भंडार
0: सब
1: खुला
0: कुछ
1: है।
0: बैठे हुए मिल जाता है। और मुझे तो ये भी याद है सोनाली कि कई बार हमें ऐसे टॉपिक्स पर संवाद लिखने होते थे स्कूल कॉलेज में, कि हमें अपने पास या अपने माता पिता के साथ साथ पड़ोसी लोगों के पास भी जाकर कई बार विचार जानने पड़ते थे कि अंकल
1: हाँ
0: आप इस
1: इसका
0: विषय के हैं, हमें क्या इस पर कुछ लिखा पाएंगे, है ना। तो ये सब बातें भी हमारे जीवन में हुआ करती थी जब सोशल मीडिया नहीं था। आज
1: हाँ
0: तो सब कुछ आपके पास है, तो
1: सब
0: उसका सदुपयोग करना
1: उसका हमें
0: चाहिए।
1: सदुपयोग करना चाहिए कि भाई जो अच्छा है वो अच्छा अच्छा यानी जो जो अथाह महासागर है इसमें के हीरे मोती हमें चुनना है, ना कि उसकी जो गंदी चीजें या गलत बातें उसे हमें
0: हाँ,
1: अनदेखा करना है।
0: इसका मतलब ये नहीं हुआ सोनाली कि हम वाद विवाद से बचें, लेकिन अच्छी बातों पर वाद विवाद हो, सार्थक, उसका अंत सार्थक होना चाहिए,
1: और
0: लगना
1: उसमें बहुत
0: चाहिए,
1: ज्यादा समय की बर्बादी ना
0: नहीं
1: हो।
0: करनी चाहिए, है ना, इसलिए इससे जुड़े लेकिन सार्थक कामों के लिए। और अब हम एक छोटा सा
1: ब्रेक
0: अंतराल।
1: लेते हैं।
0: हाँ।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली, और मंदाकिनी जी गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को, उसके
1: बिल्कुल
0: बाद में फिर हम श्रोताओं के कमेंट्स भी लेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली, पहले सुन लेते हैं ये गीत।

0: सोना मेरे सामने भी सोना ही बैठी है सोनाली के रूप में।
1: चलिए हमारे एक साथी लिखते हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग बेहुदा चीजों के लिए ज्यादा हो रहा है, मसलन हास्य व्यंग्य के फूहड़ वीडियो बनाना, फेक न्यूज को वायरल करना, बेसिर पैर की ब्लॉगिंग करना वगैरह। आज के समय की सोशल मीडिया ऐसी बीमारी बन गया है जिससे युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा ग्रस्त है। सिर्फ वाद विवाद ही नहीं, सोशल मीडिया के यूज ने हमारे बहुमूल्य समय को भी नष्ट कर दिया है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद करना समय की पूरी बर्बादी है, क्योंकि ये एल्गोरिदम पर आधारित होते हैं जहां लोग केवल भावनाओं को भड़काने और मानसिक तनाव का काम करते हैं। इससे उत्पादक चर्चा के बजाय केवल नकारात्मकता और अलगाव ही पैदा होता है। वाद विवाद के नुकसान, ऊर्जा और समय की हानि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जाने वाली बहसें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती जिससे आपका कीमती समय और मानसिक ऊर्जा व्यर्थ होती है। और इसके अलावा मानसिक तनाव, क्रोध अलग होता है, इन्होंने इसको साइंटिफिक तरीके से लिखा है। और इसके साथ ही जो है इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया कितना हानिकारक है, हमारे विशेषज्ञ इस पर अपनी राय देते हैं। गलत सूचनाओं का प्रसार होता है, ऑनलाइन बहसों में अक्सर बिना पुष्टि किए तथ्य साझा किए जाते हैं जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। और समाज में सोशल मीडिया के प्रभाव के लाभ और हानियां भी बहुत हैं। आप उसका उपयोग करें, सीमित करें, और सबसे अधिक किस एप्स पर आप समय बिताते हैं ये भी आपको जानना होगा। और इस पर वो बहुत सारी बातें लिखते हैं।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, आए दिन सोशल मीडिया झगड़े का अखाड़ा बन चुका है, किसी बात को लेकर दो गुटों के बीच झगड़ा होता है। साथी एक लिखते हैं, सोशल मीडिया पर वाद विवाद करके खुद के दिमाग खराब करने बराबर होता है, क्योंकि इस मंच पर विभिन्न देश या प्रदेश से अलग अलग दिमाग वाले लोग जुड़े मिलेंगे जिससे हम कभी जानते ही नहीं, तो उनसे ऐसे बेकार में वाद विवाद हमें क्यों उलझना चाहिए। आप उनकी पोस्ट ध्यान से पढ़ ले, अगर वो व्यक्ति और उसके प्रश्न जवाब देने लायक है तो उनसे जुड़े, वरना दूर ही रहे, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, नौबत भी आ सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद में उलझना अधिकतर समय की बर्बादी है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सार्थक चर्चा के बजाय गुस्से और प्रतिक्रियाओं से उलझने उन्हें बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ बहस करने से मानसिक तनाव बढ़ता है और आप का समय जो है व्यर्थ होता है, मानसिक तनाव और ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑनलाइन बहस में अक्सर लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, कटु शब्दों और आलोचनाओं को पढ़ने से मानसिक शांति हमारी भंग होती है, नकारात्मकता हावी हो जाती है और सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट के जवाब में तर्क वितर्क करने में घंटों निकल जाते हैं। इस समय का उपयोग किसी रचनात्मक कार्य में, पढ़ाई में, कौशल सुधार में किया जा सकता है। बहुत बार लोग जानबूझकर कुछ ऐसी बातें डाल देते हैं जिसे लोग और उत्तेजना में आकर लिखते हैं और धीरे धीरे उस जगह से फिर हट जाते हैं।
1: वहीं एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया आज के दौर में संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी का कारण बन सकता है। लोग घंटों तक बिना किसी उद्देश्य के वीडियो देखते, पोस्ट स्क्रॉल करते और अनावश्यक चर्चाओं में लगे रहते हैं। इससे पढ़ाई, काम और परिवार के लिए समय कम बचता है। कई बार सोशल मीडिया की लत व्यक्ति की एकाग्रता और उत्पादकता को भी प्रभावित करती है, इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग सीमित और सार्थक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए ताकि समय का सदुपयोग हो सके, जीवन में संतुलन बना रहे।
0: बिल्कुल, एक श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया एक मंच है, यहाँ सोच समझकर ही अपने विचार रखें, अंधाधुंध कुछ भी बोलते रहते हैं लोग, कभी कभी घातक सिद्ध हो जाता है। लोग बदले की भावना रखते हैं और परिणाम स्वरूप कई बुरे काम भी हो जाते हैं।
1: वहीं एक साथी लिखते हैं कि इन मंचों पर लोग विचार खुलकर व्यक्त करते हैं, लेकिन इन मंचों पर होने वाले वाद विवाद अक्सर ऐसी दिशा में ले जाते हैं जहां सार्थक चर्चा की बजाय समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। लोग अपनी बात को सही साबित करने के लिए घंटों तक तर्क वितर्क करते रहते हैं और अंत में चर्चा किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के बजाय आरोप प्रत्यारोप और कटुता में बदल जाती है, और ऐसे वाद विवाद हमारा मानसिक तनाव भी बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा सोनाली इन्होंने। और एक बात हम भी कहेंगे कि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं सोनाली जो व्यक्तिगत द्वेष को भी उस पर निकाल लेते हैं। मसलन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें कुछ कहना है तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लग गए हैं आजकल, और उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां, अभद्र बातें करने लग गए हैं। तो इस तरह से कितना बुरा लगता है, आप सोचिए कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष को लेकर भी टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं और अपना मन का विकार इस रूप में निकालते हैं, इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती है।
1: और क्या होता है ना कि ये जो समय इतना मूल्यवान है कि जिस उम्र में हमें अपना करियर बनाना है, कुछ अच्छा पढ़ना है, अच्छे संस्कार हमें अपने अंदर समाहित करना है, उस वक्त हम इन सब बिना काम की चीजों में उलझे हुए हैं, फिर ये समय तो फिर नहीं आएगा ना।
0: बिल्कुल, कभी समय लौट कर नहीं आता, बल्कि आप ही बाद में जो है एक तरह से दुख करते हैं कि हम धोखा खा गए, समय निकल गया और अब पछताई होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर ये बात आती है जो हमने आज का विषय रखा है ना, संयम, वो यहाँ काम आता है, है ना, कि जीवन में संयम का कितना ज्यादा स्थान है और किस तरह से हमें हर विचार को एकदम तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके लिए वो संयम रखना चाहिए। तो हमारे श्रोता लिख भी रहे हैं कि भाव, विचार, वाणी और व्यवहार ये संयम के चार स्तंभ हैं। संयम का सही अर्थ है आत्मनियंत्रण, धैर्य और संतुलन। ये किसी भी परिस्थिति में विशेषकर उकसावे, गुस्से या लालच के क्षणों में अपनी भावनाओं, इंद्रियों और इच्छाओं को काबू में रखने की एक मानसिक क्षमता है।
1: एक साथ ही लिखते कि मन, वचन, इंद्रियों और वाणियों पर आत्मनियंत्रण ही संयम है। भगवद गीता में कहा है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन मित्र है, और जिसने ऐसा नहीं किया उसका मन शत्रु है। तो भैया अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है।
0: वही एक श्रोता ने लिखा है कि संयम मतलब मन, वाणी और कर्म पर स्वयं का नियंत्रण। मन जब कुछ गलत चाहे, जुबान कुछ गलत बोलना चाहे या शरीर कुछ अनर्थ करने की कोशिश करे, तब खुद को रोक लेना ही संयम है। संयम हार नहीं, ठहराव है। बहुत अच्छा लिखा है। देखिए, गुस्से में बोला गया एक भी गलत शब्द जीवन भर के रिश्ते को खत्म कर देता है, और संयम से बोली गई बात रिश्तों की मिठास को कायम रखती है। जिसने संयम साध लिया मतलब उसने खुद को जीत लिया।
1: क्या बात है। एक साथ ही लिखते हैं, संयम वो खामोशी है जिसमें जल्दबाजी नहीं होती लेकिन समझदारी की आवाज साफ सुनाई देती है। हर ताकत दिखाई नहीं देती, कुछ ताकतें संयम बनकर भीतर रहती है, सही समय पर अपना प्रभाव दिखाती है। संयम का फल सिर्फ सफलता नहीं मन की शांति भी होता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों, भावनाओं और निर्णयों को संतुलन रखता है उसके व्यक्तित्व में अलग ही गरिमा दिखाई देती है। संयम जीवन की पतंगी की वो डोर है जो उसे ऊंचाइयों तक भी ले जाती है और बिखरने से भी बचाती है। नदी की गहराई और इंसान का संयम दोनों शोर नहीं करते लेकिन उनकी शक्ति बहुत दूर तक महसूस होती
0: क्या
1: है।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखती है कि संयम वो शक्ति है जो मनुष्य को परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी बनाती है। आज की तेज रफ्तार जीवन में हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है। ऐसे समय में संयम हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्य धैर्य, मेहनत और प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। एक बीज भी जब वृक्ष बनने में समय लेता है, उसी प्रकार जीवन में उपलब्धियां भी समय और निरंतर प्रयास मांगती है। बिल्कुल, हम कई बार अपना आपा खो देते हैं, मेहनत करते हैं और हमें फल नहीं मिलता ना, तो हम अपना संयम खो देते हैं।
1: एक साथी ने लिखा है कि कई बाधाएं, कई कठिनाइयां, कई कांटे मुझे मिले जीवन के पथ पर, परंतु मैंने संयम रखा, हिम्मत न हारी और माता रानी पर अटूट विश्वास रखा, और आज इस मुकाम पर पहुंच गए हूं कि शादी के बाद मेरे संयम को कायम रखने में मेरी धर्म पत्नी ने बहुत सहयोग दिया। मेरा सभी सखियों सखाओं से यही कहना चाहूंगा कि अपने इष्ट पर विश्वास रखे और संयम रखते हुए कठिनाइयों का सामना करें, सफलता जरूर मिलेगी।
0: बिल्कुल सही कहा, और संयम का तो बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए जीवन में। आपने देखा होगा सोनाली, अभी कई बार हम पढ़ते हैं, जिसका जिक्र हम कई बार करते हैं कि एग्जाम नहीं हुए, एग्जाम में कोई दिक्कत हो गई, हम पास नहीं हुए, उतने नंबर नहीं मिले, तो बच्चे जो है सुसाइड कर ले रहे हैं, आत्महत्या की ओर चले जा रहे हैं। तो ये वही है कि वो संयम जो आपा खो रहे हैं, धैर्य खो दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें संयम से काम लेना चाहिए। आज
1: इस
0: नहीं,
1: साल
0: तो
1: नहीं तो अगले साल आपको परीक्षा में सफलता मिल ही जाएगी,
0: जिंदगी
1: और इतना सुंदर जीवन है मिला
0: उसको
1: है,
0: हम खत्म कर देते
1: जी। तो बच्चों को ये हमें कि, और क्या होता है ना, इसमें हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं कि बच्चों ने किसी चीज की जिद की तो हम तुरंत उन्हें ले देते हैं। उन्हें संयम अंदर से सीखने की चीज है कि वे बोला कि आज ही चाहिए ये डिश, आज ही बनना चाहिए, तो तुरंत मम्मियों का प्यार उमड़ पड़ता है कि नहीं आज मांगा है तो आज ही दे देना है, आज उन्होंने कोई खिलौना मांगा है तो आज लाकर देना, आज उन्होंने कोई कपड़े की जिद की है तो वही हम लाकर देते हैं। तो हमें भी उन्हें थोड़ा सा संयम से काम लेने के लिए कहें कि ठीक है आज टाइम नहीं है तो हम कल जरूर लाकर देंगे या दो चार दिन बाद लाकर देंगे।
0: बिल्कुल,
1: तो बचपन से ही उन्हें इस
0: ये
1: तरह
0: संयम सिखाया जाए। दूसरा वही कि परीक्षा में अंक लाना महत्वपूर्ण है लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं है, उनको संयम में रहना सिखाए। कोई बात नहीं बेटा, इस बार आपके नंबर कम आ गए, आप उतने नंबर नहीं ले पाए, अगली बार मेहनत करिए ना, कि आप अपने जीवन को ही समाप्त कर ले, है ना। तो ये संयम हर जगह जरूरी है, और अब हमें संयम हमें भी रखना चाहिए बोलने का।
1: कि एक गाना
0: सुनाना चाहिए।
1: सुना

0: मंदाकिनी जी, हमारे
1: जी
0: बहुत सारे साथियों ने, हमारे सखियों ने जो ना अचार और मुरब्बे की बहुत सारी रेसिपीज लिखकर भेजी है। तो आम का मुरब्बा, कच्चे आम इन्होंने लिखा है, कैरी 1 किलो कतलों में कटे हुए, गुड़ 800 ग्राम से 1 किलो बारीक कुटा हुआ, सौंफ 1 छोटा चम्मच, हल्की दरदरी और कलौंजी आधा छोटा चम्मच, इलायची एक छोटा, एक पाउडर छोटा चम्मच, उसके अंदर भुना जीरा 1 छोटा चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच। बनाने की विधि है कि आम के कतलों को उबाल ले, अब एक कढ़ाई में बारीक कुटा हुआ गुड़ और आधा कप पानी डाले और पकने दे। गुड़ की चाशनी बनाने पर इसमें उबले हुए आम के कतले डाल दे, इसे मध्यम आंच पर पकने दे। आम के टुकड़े गुड़ की चाशनी को सोख कर एकदम रसीले और पारदर्शी हो जाएंगे। इसी समय इसमें सौंफ, कलौंजी, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर भी मिला दे। जब चाशनी शहद की तरह गाढ़ी और एक तार की हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर मिला ले। आम का गुड़ वाला मुरब्बा तैयार है। ठंडा होने पर कांच की बर्नी में रखे, इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ खाया जा
1: खा
0: सकता
1: सकती हैं। इसका मतलब हमारी सभी बहनें प्रेस करने में नहीं लगी है
0: कुछ मुरब्बे
1: ना।
0: और
1: हाँ, ये
0: अचार
1: भी
0: बन
1: बना रही है। मुझे तो डर था कि आज हमें अचार और मुरब्बा खाने को मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि एक सखी ने लिख दिया था कि वो तो प्रेस कर
0: रही
1: रही
0: है,
1: है
0: और
1: ना,
0: एक सखी कह रही है कि हम बैठ के सुन रहे
1: सुन रहे हैं, तो फिर
0: हैं।
1: हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे ये अचार और मुरब्बे। तो इसका मतलब हमारी सखियां जो है हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ी हुई है और लगातार जो है मुरब्बा और अचार बनाने की तैयारी भी कर रही है ना। तो मैं पहले एक संदेश सुना दूं, उसके
0: हाँ
1: बाद फिर हम आगे बात करते हैं।
0: जी।
2: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था, और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
1: तो सोनाली, हमारे सभी सखी और सखा जान गए होंगे कि आज के मेहमान कार्यक्रम में 4 बजे ये बातचीत वो सुन सकते हैं।
0: हम भी सुनेंगे उनके साथ में।
1: बिल्कुल, हम तो सुनेंगे ही
0: जी।
1: और साथ में कैरी का अचार या मुरब्बा भी खाते जाएंगे। ठीक है, तो वही एक सखी लिखती है कि गुड़ और कैरी का गुजराती स्टाइल का अचार है। इसमें कच्ची कैरी है यानी कच्चा आम, 1 किलो गुड़, 1 किलो छोटे टुकड़ों में कटा हुआ होना चाहिए गुड़, चीनी 1 कप गुड़ के साथ मिलाने से अचार का टेक्सचर अच्छा होता है। अचार का मसाला 200 से 250 ग्राम, राई की दाल, मेथी की दाल, सौंफ, दरदरी, कुटी धनिया का मिश्रण, कश्मीरी लाल मिर्च, 2-3 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर, 3-4 छोटे चम्मच नमक स्वादानुसार, चम्मच आपको हींग लेनी है, तेल लेना है मूंगफली का या राई का, 1 कप गर्म करके ठंडा किया हुआ, लौंग और काली मिर्च भी आपको लेनी है साथ में 10-12। ठीक है, आम को तैयार करना है। कच्चे आम को धोकर अच्छी तरह सुखा लेना है। इसके बाद इसे छील कर मध्यम आकार के टुकड़ों में काट ले, क्यूब्स जैसे बना ले। आम के टुकड़ों में 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डालकर अच्छी तरह से इसे मिला लें और इसे ढककर 5-6 घंटे या रात भर के लिए आप छोड़ दें। अगले दिन क्या होगा कि आम के टुकड़ों को छानकर हमें अलग कर लेना है और जो पानी उन्होंने छोड़ा है वो हटा देना है। आम के टुकड़ों को सूती साफ कपड़े पर फैलाकर 3 से 4 घंटे के लिए पंखे की हवा देनी है ताकि उनके अंदर जो नमी होती है ना वो खत्म हो जाए। फिर मसाला तैयार कर लें। एक बर्तन में अचार का मसाला डालें, हल्दी, हींग भी डाल लें, इसके ऊपर हल्का गरम किया हुआ तेल डाल दें और ढककर कुछ देर के लिए छोड़ दें। मसाले को पूरी तरह ठंडा होने दें। अब इसमें भुना हुआ नमक डालें, कश्मीरी लाल मिर्च डालें, लौंग डालें, काली मिर्च डालें, इन सबको मिलाना है। फिर अचार को कैसे मिलाना है, एक बड़े और सूखे कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में जो सूखे हुए आम के टुकड़े हैं और तैयार मसाला है उनको डालकर अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें गुड़ और चीनी डाल दें। सभी सामग्रियों को साफ हाथों से या सूखी चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। बर्तन को सूती कपड़े से बांधकर 2-3 दिन तक धूप या छाया में रखें और दिन में 3-4 बार अचार को चम्मच से ऊपर नीचे या हिला लें। 3-4 दिनों में गुड़ और चीनी पिघल कर चाशनी बन जाएगी और आम के टुकड़ों के साथ मिलकर गाढ़ा रसा तैयार हो जाएगा और आप एक गुजराती जो है ये गुड़ कैरी का अचार खा सकते
0: हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ गया, थेपले के साथ में कितना अच्छा लगेगा ना
1: क्या
0: अचार।
1: बात है, तुम्हें तो थेपले की भी याद दिला दी है।
0: अब मुरब्बा बनाने की सरल विधि है, तो इन्होंने कहा है कि 1 किलो फल जैसे आंवला है या फिर कोई भी फल ले सकते हैं, और 1.25 किलो चीनी है, 4 से 5 कप पानी है, 4-5 इलायची है। फलों को अच्छी तरह से धो ले और फलों को कांटे से गोन ले ताकि चाशनी अंदर जा सके। हल्का सा उबाल ले उन फलों को और फिर बर्तन में चीनी और पानी मिलाकर एक तार की गाढ़ी चाशनी तैयार करें। चाशनी में फल डालकर धीमे आंच पर पकाएं। जब फल पारदर्शी दिखने लगे और चाशनी गाढ़ी हो जाए तब इलायची पाउडर डालें। ठंडा होने पर साफ सूखे कांच के बर्तन में भरें। मुरब्बा जितना पुराना होगा

0: उतना स्वाद और उतना ही अच्छा होगा।
1: हाँ वही एक सखी ने लिखा है कि हम जो सिंपल सा अचार बनाते हैं वो बता देते हैं। बिल्कुल सिंपल सा अचार भी बहुत अच्छा लगता है। अभी आम का अचार डालने का सही समय है, वो कह रही है। हम नाप तोल कर नहीं बनाते, बस सबसे पहले कैरी को धोकर सुखा लेते हैं, उसमें थोड़ा नमक हल्दी डालकर उसको रख देते हैं। दूसरे दिन उसका पानी हटाकर थोड़ा सुखा लेते हैं। बस फिर कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म कर लेते हैं, जब थोड़ा ठंडा हो जाए उसमें अचार मसाला डालकर मिला लें और उसमें इन कैरियों को डालकर मिला लें और साफ सूखी कांच की भरनी में डाल दें। कुछ दिनों तक उसे रोज बार बार हिलाएं, तेल ऊपर तक होना चाहिए ताकि अचार जो है खराब नहीं होगा। अगर तेल ज्यादा नहीं डालना हो तो मसाले थोड़ा ज्यादा डाल दें और कैरी को अच्छे से सुखा कर उसमें डालना है और लगभग हिलाते रहना है जब तक कैरी पक नहीं जाती है।
0: और अब क्या करना है?
1: अब तो हमें बहुत अचार खिला दिया है श्रोताओं को हमने।
0: अचार और मुरब्बा खा लिए तो मीठा मीठा गीत सुन लेते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: सुन लेते हैं।

0: हमारी एक साथी लिखते हैं कि ये एकदम गलत बात है, ये गीत आप ऐसे वक्त सुनाते हो जब जाने का समय हो जाता है, अभी न जाओ छोड़कर। एक सखी ने लिखा, अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, काम करते करते अब संयम खो दिया और फोन लेकर बैठ गई।
1: लेकिन आपने सही कहा, हमें तो जाना होगा, इसलिए हम

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के मेहमान में मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसे कलाकार को, एक ऐसे आर्टिस्ट को बुलाया है जो कला में माहिर है, जो रंग भरते हैं, जो अपनी पेंटिंग में रंग भरते हैं, जिंदगी में रंग भरते हैं। अखिलेश जी की पेंटिंग्स आधुनिक अमूर्त कला और लोक संवेदनाओं का अनूठा संगम है। उनकी कृतियों में रंग केवल सजावट नहीं होते बल्कि वे भावनाओं की भाषा बन जाते हैं। वे कैनवास पर ऐसी आकृतियां और रेखाएं रचते हैं जो पहली नजर में थोड़ी रहस्यमय लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे दर्शक को अपने भीतर के अनुभवों और स्मृतियों से जोड़ देती हैं। बहुत सारी बातें अखिलेश जी के बारे में हम आपको बताते रहेंगे इस कार्यक्रम में आज के मेहमान में। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला और अपने देश के जाने माने पेंटर अखिलेश जी का विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। अखिलेश जी नमस्कार, स्वागत है
2: जी। नमस्कार,
1: कैसा लग रहा है आपको विविध भारती के स्टूडियो में आकर?
2: विविध भारती एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से आपकी स्मृति में है और हम लोग बहुत जब छोटे थे जब से विविध भारती सुनते आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे हमारे पिता वो शास्त्रीय संगीत का जो कार्यक्रम आता था
1: संगीत सरिता
2: अभी भी आता है। उसमें हाँ उसको हम लोग बहुत सुना करते थे, और वो समय कुछ ऐसा था कि आप उस वक्त अपने आप रेडियो के पास होते थे और संगीत सरिता का वो कार्यक्रम सुनते थे। तो हमारे यहाँ वो एक ज्वाइंट फैमिली होने से 10 बच्चे थे, तो सभी के भीतर विविध भारती के साथ एक गहरा संबंध बहुत शुरू से अनजाने ही बना।
1: जी जी, और पिता का जिक्र किया, आपके पिता खुद ड्राइंग शिक्षक थे, मेरे ख्याल से पहले स्वर्ण पदक विजेता, तो आपने क्या चित्रकला की जो पहली तालीम होती है उन्हीं से ली?
2: ऐसा कहा जा सकता है कि मैं जब छोटा था तो हमारे घर में पिता के कारण सारे जो बच्चे थे सभी लोग पेंटिंग करते थे, तो उस दौरान मेरे को पेंटिंग करने में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि सब लोग एक ही काम कर रहे हैं।
1: अच्छा।
2: तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं करता था। और मैंने फिर 11th क्लास में पेंटिंग सब्जेक्ट लिया और उसके साथ मैंने अपना जीवन शुरू किया, और फिर अगले साल मैंने कॉलेज में फाइन आर्ट्स कॉलेज इंदौर का जो बड़ा प्रसिद्ध फाइन आर्ट्स कॉलेज है वहाँ एडमिशन लिया और विधिवत कला शिक्षा प्राप्त करना शुरू करी। तो वहाँ हमारे प्रिंसिपल होते थे चंद्रेश सक्सेना, हमारे टीचर होते थे रामनारायण दुबे, इन लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा और इन लोगों ने एक्चुअली आंखें खोलने का काम किया कि चित्रकला क्या है। हमारे पिता जो थे वो मिनिएचर के मास्टर थे, मतलब मिनिएचर की उनकी बड़ी गहरी समझ थी और वो उसके बारे में बताया करते थे, और हमें अजंता एलोरा ले जाना, खजुराहो ले जाना, इस तरह के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जो बड़े मंदिर हैं, वहाँ ले जाया करते थे और उन सब की शिक्षा वो दिया करते थे, उनके बारे में बता

0: कार्यक्रम में आज के मेहमान में। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला और अपने देश के जाने माने पेंटर अखिलेश जी का विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। अखिलेश जी नमस्कार, स्वागत है।
1: जी नमस्कार।
0: कैसा लग रहा है आपको विविध भारती के स्टूडियो में आकर?
1: विविध भारती एक ऐसी चीज है जो बचपन से आपकी स्मृति में है, और हम लोग बहुत जब छोटे थे जब से विविध भारती सुनते आ रहे हैं, और खास तौर पे हमारे पिता वो शास्त्रीय संगीत का जो कार्यक्रम आता था,
0: संगीत
1: वो
0: सरिता
1: संगीत
0: अभी
1: सरिता,
0: भी आता है
1: उसमें हाँ
0: जी।
1: उसको हम लोग बहुत सुना करते थे। और वो समय कुछ ऐसा था कि आप उस वक्त अपने आप रेडियो के पास होते थे और संगीत सरिता का वो कार्यक्रम सुनते थे। तो हमारे यहाँ वो एक ज्वाइंट फैमिली होने से 10 बच्चे थे, तो सभी के भीतर विविध भारती के साथ एक गहरा संबंध
0: जुड़ाव
1: बहुत शुरू से अनजाने ही बना।
0: जी। और पिता का जिक्र किया, आपके पिता खुद ड्राइंग शिक्षक थे, मेरे ख्याल से पहले स्वर्ण पदक विजेता, तो आपने क्या चित्रकला की जो पहली तालीम होती है उन्हीं से ली?
1: ऐसा कहा जा सकता है कि मैं जब छोटा था तो हमारे घर में पिता के कारण सारे जो बच्चे थे सभी लोग पेंटिंग करते थे। तो उस दौरान मेरे को पेंटिंग करने में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि सब लोग एक ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं
0: अच्छा
1: बिल्कुल नहीं करता था। और मैंने फिर 11th क्लास में पेंटिंग सब्जेक्ट लिया, और उसके साथ मैंने अपना जीवन शुरू किया। और फिर अगले साल मैंने कॉलेज में, फाइन आर्ट्स कॉलेज इंदौर का जो बड़ा प्रसिद्ध फाइन आर्ट्स कॉलेज है, वहाँ एडमिशन लिया और विधिवत कला शिक्षा प्राप्त करना शुरू करी। तो वहाँ हमारे प्रिंसिपल होते थे चंद्रेश सक्सेना, हमारे टीचर होते थे राम नारायण दुबे। इन लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा, और इन लोगों ने एक्चुअली आंखें खोलने का काम किया कि
0: जी
1: चित्रकला क्या है। हमारे पिता जो थे वो मिनिएचर के मास्टर थे, मतलब मिनिएचर की उनकी बड़ी गहरी समझ थी, और वो उसके बारे में बताया करते थे। और हमें अजंता एलोरा ले जाना, खजुराहो ले जाना, इस तरह के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जो बड़े मंदिर हैं, वहाँ ले जाया करते थे, और उन सब की शिक्षा वो दिया करते थे, उनके बारे में बताने जा रही है। तो जो नायिकाओं के भेद है उसमें अभिसारिका वो नायिका है जो खुद अपने प्रेमी से मिलने जाती है। तो जंगल में शेर चीते और जंगली जानवर और सब चारों तरफ खड़े हैं, भूत प्रेत और चुड़ैल भी हैं, मगर इन सब से निडर निर्भीक, इन सब की तरफ कोई ध्यान न देते हुए वो अपने चली जा रही है। तो मैंने सोचा कि इतने गहरे अंधकार में वो अपना रास्ता कैसे देख रही है। तो वो उसके हाथ में न कोई प्रकाश का स्रोत है, न कोई लालटेन है, न कोई दिया है, और वो चली जा रही है। तो फिर ध्यान गया मेरा ऊपर, बादलों में बिजली कड़क रही है, तो
0: वाह
1: बिजली की रोशनी में वो अपना रास्ता देख रही है। तो जब मैंने बिजली की तरफ देखा तो वो बिजली भी बिजली नहीं थी, दो लहराते हुए सांप बने हुए थे
0: गजब।
1: सुनहरे रंग के, मतलब बिजली भी नहीं कड़क रही थी, तो वो अपने कामना के प्रकाश में अपना रास्ता देख रही थी। तो
0: वाह,
1: ये जो एब्स्ट्रैक्शन था ये मेरे लिए बहुत ही दिमाग
0: मंथन
1: को
0: करने
1: हिला
0: वाला है
1: देने वाला
0: वो।
1: था, और मेरा ध्यान फिर चित्रकला में अमूर्तन की तरफ गया कि भई हमें अमूर्तन की तरफ ही जाना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने को बरतना चाहिए। तो इस तरह से मैंने 5th ईयर से अमूर्तन में काम करना शुरू किया, जो फाइनल ईयर होता था हमारा। और उसमें फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं होती थी उसमें एक विषय दिया जाता था, उसको आपको बनाना होता था। तो हम लोगों को विषय था पनिहारिन, और वो पनिहारिन जो है वो उसमें 5 फिगर बनानी होती थी, और वो कुआं और ये सब जो पानी भर रही है, इस तरह का कुछ मैंने उस वक्त फिर बनाया। जो चित्र था एब्स्ट्रैक्ट बनाया कंप्लीटली, और मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फेल करेंगे और क्या होगा। किंतु मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी, मैं अकेला सारे छात्रों में, हमारे उस वक्त हमारे इंदौर ग्वालियर जबलपुर सबकी एग्जाम एक जगह होती थी, तो हम लोगों की एग्जाम ग्वालियर में हुई थी, तो मैं अकेला 1st डिवीजन पास हुआ था, बाकी सारे लोग 2nd डिवीजन में थे।
0: क्या बात है
1: तो
0: बढ़िया
1: मुझे भी आश्चर्य हुआ कि मेरे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में मुझे नंबर मिले,
0: जी।
1: और हमारे जो भी देखने वाले थे, जांचने वाले थे, उन्होंने ये ख्याल रखा कि मैं क्या करना चाहता हूं। तो वो एक शुरुआत थी मेरी अमूर्तन की तरफ जाने की।
0: अखिलेश जी, आप जब ये बता रहे थे कि ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में ये सारे चित्र उकेरते हैं कि जंगल है और वहां पर जंगल में वन प्राणी है और ये सब, तो मेरी आंखों के सामने वो दृश्य पैदा हो रहा है। ये शब्दों के माध्यम से दृश्य पैदा करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन पेंटिंग में किस तरह की चुनौती होती है? ये सारे दृश्य आप बता

0: है तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन एक पेंटिंग को एक आम दर्शक देखता है तो कैसे इनको ग्रहण करता है? तो आपके लिए बहुत सारी चुनौतियां होती होंगी, किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किस तरह की कोशिश आप करनी पड़ती
1: मैं
0: है?
1: तो इस तरह की कोई कोशिश नहीं करता हूं कि लोगों को ये समझ में आए, मगर जब हम चित्र देखते हैं तो हम लोग दरअसल पहले से जो हमारे पूर्वग्रह हैं उनसे संचालित होकर के चित्र देख रहे होते हैं। चित्र देखने का एकमात्र ढंग जो है वो समर्पण भाव से देखना है। अगर आप उसको पूरी तरह से अपनी जो भी समझ है उसको छोड़ करके एक मनुष्य की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जो आंख मुझे मिली है वही आंख एक दर्शक के पास भी है, और जितना मैं देखता हूं उतना वो भी देखता है, तो मैं उनके देखने पे संदेह नहीं करता हूं, और मैं चाहता हूं कि उनका देखना जागृत हो। और उसमें जो चुनौतियां होती हैं चित्र बनाते वक्त, वो चुनौतियां दूसरी तरह की होती हैं, जिसमें रंग एक चुनौती है अपने आप में,
0: जी
1: फॉर्म एक चुनौती है अपने आप में, और रेखा एक चुनौती है कि आप इनका कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, आप किस रंग के साथ कौन सा रंग लगाएं कि दोनों रंग जो हैं आपस में संवाद करते दिखें। तो ये जो चीजें होती हैं वो दूसरी तरह की चुनौतियां हैं, जो चित्रात्मक चुनौतियां हैं कायदे से देखा जाए तो। और ये जो सामाजिक चुनौतियां हैं देखने की और समझने की, इसके लिए एक पूरा अलग व्यापार है जो उसको फॉलो करना चाहिए देखने वाले को, या
0: जी
1: उसको। मैं तो देखता हूं कि जो हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासी कलाकार हैं, जब वो भारत भवन आते हैं और भारत भवन की आधुनिक कला दीर्घा में वो प्रवेश करते हैं, और तो मैं देखता हूँ कि वो लोग तो सारे चित्रों को खुशी से एंजॉय करते हैं।
0: क्या बात है।
1: तो उनके पास ऐसा कुछ पहले से प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं है चित्र का, तो जो चित्र देख रहे हैं उसके साथ वो एकाकार हो जाते हैं तत्काल ही, जैसे कि वो प्रकृति के साथ एकाकार रहते हैं।
0: जी
1: तो ये जो उनका एक समर्पण भाव है जिसमें वो अपने देखने को पूरी तरह से बरतते हैं, तो मुझे लगता है कि हर मनुष्य ये कर सकता है कि वो अपने देखने को जागृत करके अपना देखना वैसा ही निर्दोष रखे जैसा कि होता है।
0: जी चित्रकला और संगीत का बड़ा गहरा संबंध है। हमने कई पेंटर्स के बारे में सुना है कि वो साथ में रेडियो लगा देते हैं, रेडियो बजता रहता है और चित्रकारी करते हैं। बहुत बड़े बड़े पेंटर्स ने खास तौर से विविध भारती के लिए कहा है, आपने भी इसका जिक्र किया। अभी इस वक्त कौन सा गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं?
1: मैं सुनाना चाहूंगा किशोर कुमार का एक गाना है, वो शाम कुछ अजीब थी।
0: इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है क्या आपकी?
1: इस गाने से जुड़ी हुई नहीं, ये गाना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। किशोर कुमार की जो आवाज है उसमें जो कशिश है
0: जी
1: वो एक इस गाने को खास बनाती है, और उसमें एक विचित्र किस्म की उदासी फैलती है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है।
0: जी और किशोर कुमार हमने सुना है कि आपके घर भी आया करते थे
1: किशोर कुमार
0: पिताजी।
1: मेरे पिता के साथ पढ़ते थे और क्रिश्चियन कॉलेज में वो लोग पढ़ाई करा करते थे, तो जब वो पहली बार हमारे घर आए तो मेरे दादाजी का एक पायदानी हारमोनियम था घर में, तो उसको देख के किशोर कुमार बहुत ही खुश हुए, और फिर एक नियमित वो हो गया कि वो अपना कॉलेज खत्म करके हमारे घर आ जाते थे, फिर देर रात को ही जाया करते थे, वो सिर्फ गाना गाते थे। और उस वक्त वो इतना शर्माया करते थे, ऐसे हमारे पिता बताते हैं, कि वो कोई अगर बाहरी व्यक्ति आ जाए तो गाना बंद कर देते थे।
0: क्या बात है। तो ऐसी तमाम यादें होती हैं, हमें लगता है कि जब आप रंग भरते होंगे तो इन यादों को का भी समावेश करते होंगे। फिलहाल हम ये गाना सुनते हैं।
1: जी।
2: वो शाम कुछ

0: गाने के बाद हम आते हैं उस मुद्दे पर। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग में, आपकी चित्रकारी में मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति, लोक जीवन और बहुत कुछ देखने को मिलता है, एक पूरी परंपरा देखने को मिलती है मध्य प्रदेश की। तो ये बताइए हमें कि ये आपकी खुद की कल्पनाशीलता है या फिर आप जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उन आदिवासी लोगों से मिले, उनकी संस्कृति को जाना, खंगाला, बताइए विस्तार से।
1: हाँ, ये हुआ मेरे साथ जब मैंने भारत भवन में ज्वाइन किया और वहाँ पर हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने एक नया देखना इंट्रोड्यूस किया था जिसमें उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और वो साथ साथ एग्जिबिट थे एक ही छत के नीचे। तो उस तरह से मेरा भी संपर्क जो है आदिवासी कला से वहाँ से शुरू होता है और उसके बाद उन सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर उन के गांव जाना, उनके गांव में जा करके उनके साथ काम करते हुए समय बिताना, ये सारा चीज़ जो है उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में। तो वो उनका जो देखना है वो इतना निर्दोष है और उनका जो देखना है उतना गहरी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, वो मुझे लगता है कि एक शहरी कलाकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो अपनी इस आस्था को कहाँ से अपने चित्रों में प्रकट करें। तो ये जो देखना था और ये मेरा जो उनके साथ संपर्क था, उनके साथ का एक बिताया हुआ समय था, उन सब ने मुझे प्रेरित किया अपनी
0: चित्र
1: सीधी
0: लाने में
1: साधी अप्रोच की तरफ।
0: क्या
1: तो
0: बात है।
1: उसका एक प्रभाव पड़ता ही है। और फिर हम देखते हैं कि अगर पॉल क्ले के चित्र देखें या पिकासो के आखिरी चित्र देखें तो वो लोग भी इसी सिंप्लिसिटी की तरफ आखिर में जाते हैं। जो हुसैन हो चाहे वो चाहे रजा हो, वो अपने मनुष्य होने का एहसास धीरे धीरे जब उन्हें होता है तो वो उसी ही सादगी, उसी आस्था और उसी मूल जो हमारी भावनाएं हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके रियलाइजेशन आपको पेंटिंग करने के दौरान ही होता है।
0: मिलता है कोई यादगार घटना या कोई यादगार बात आपके जहन में आ रही है इस समय कि आप कहीं गए हों और किसी विशेष घटना से प्रभावित होकर कोई विशेष पेंटिंग बनाई हो?
1: वैसे तो मैं घटना से प्रभावित होकर के या प्रेरित होकर के चित्र
0: नहीं।
1: नहीं बनाता हूँ क्योंकि ये प्रेरणा के जो स्रोत हैं वो बदलते रहते हैं और बदलते रहे हैं।
0: जी
1: और अब मेरे लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, इसके पहले तक ये था कि मेरा पिछला चित्र ही मेरे प्रेरणा का स्रोत होता था।
0: जी
1: अब मेरे लिए जो रंग हैं वो प्रेरणा के स्रोत हैं। वो बहुत ही बड़ी चुनौती भी है। मैं देखता हूँ कि हर रंग अपने में एक प्रश्न है जिसको रिजॉल्व करना के लिए पूरा एक जीवन चाहिए है। मतलब आप रंग के स्वभाव को जब जानना शुरू करते हैं तो वो खुद आपको चमत्कृत करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। उदाहरण के लिए जैसे मैंने एक कैनवस पे रंग लगाया मेटेलिक ऑरेंज, जो कि बहुत ही ब्राइट और बहुत ही चमकता हुआ ऑरेंज था और वो इतना ज़्यादा चमकीला और इतना ज़्यादा ब्राइट था कि मैं खुद 3 दिन तक उस पर कुछ काम नहीं कर पाया और रोज सिर्फ बैठ करके उसको देखा करता था कि अब इसके साथ ऐसा कौन सा रंग लगाया जाए जो उसकी मदद करे, उसको आगे बढ़ने में, चित्र को आगे बढ़ने मेरी सहायता करे। और 3-4 दिन के बाद मैंने उसके ऊपर एक फ्लोरोसेंट कलर ऑरेंज का डॉट लगाया और मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा चमत्कार जैसा था कि वो जो पिछला पूरा मेटेलिक ऑरेंज था वो ब्राउन कलर में बदल गया।
0: गजब।
1: और तब मुझे एहसास हुआ कि इसके अंदर एक ब्राउन कलर भी छिपा हुआ था जो एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से प्रकट हो गया। तो ये जो रंग अपने भेद खोलते हैं किसी एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से, ये मेरे लिए सच में बहुत ही एक आश्चर्य की बात होती है और मेरे लिए चमत्कार। आप खुद ही चमत्कृत हो जाते हैं कि ये क्या है। तो इसने मुझे दिशा में डाला कि मैं रंगों के स्वभाव को समझने के लिए उनके साथ लगातार एक प्रयोगात्मक अप्रोच रखूं।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक चित्रकार रंगों से कैसे प्रयोग करता है, कैसे खेलता है। हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता भी हैं जो चित्रकला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन बारीकियों के बारे में बताइए कि जो रंगों की बात की तो आप रंग और रेखा के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं, किन रंगों का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं और किन रंगों को मिलाकर कौन सा रंग पैदा होता है, आपके पसंदीदा रंग कौन से हैं?
1: हाँ, मेरी पहले तो मेरे पसंदीदा रंग की बात करें तो शुरुआती तौर पे मेरे को लाल रंग बहुत ही पसंद था, और
0: क्या
1: वो
0: बात
1: एक
0: है,
1: बहुत बड़ी चुनौती भी था। किंतु अब मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे हर ही रंग एक बड़ी चुनौती है। पीला
0: ओ
1: रंग लगाना
0: हम
1: सबसे मुश्किल काम है।
0: अपने श्रोताओं को यहां बताना चाहेंगे हरा रंग आपको पसंद है और अखिलेश जी हरे रंग की शर्ट पहन के आए हैं, एकदम डार्क हरा, तोता हरा, और बहुत खिल रहा है इन पर ये रंग। जी आगे
1: हाँ, तो
0: बताएं।
1: मुझे मतलब फिर रंग बरतते वक्त कैनवास पे मुझे ये भी लगा कि मुझे उसे अपने जीवन में भी बरतना चाहिए, तो फिर मैं अपने कपड़ों में भी उनको ले आया। और उस तरह से बहुत ही रंगों से जो डरते हुए लोग हैं, मतलब मैं उस तरह से डर के निसंकोच उनका प्रयोग करने लगा। तो ये जो रंग से आपको प्रेरणा मिलती है, ये मेरे ख्याल से सभी दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण है कि आप रंग को जब देखते हैं तो ध्यान से देखें, तो आपको उसके अंदर और भी चीज़ें नज़र आने लगती हैं, कई रूप भी नज़र आने लगते हैं, कई रेखाएं भी नज़र आने लगती हैं। किंतु हम अपने देखने पे हमेशा इतना संदेह करते हैं कि हम उसको समझना चाहते हैं, जो कि एक गलत रास्ता भी हो सकता है।
0: जी
1: किसी चित्र को समझने की ज़रूरत नहीं है, उसे देखने की ज़रूरत है। तो जब आप देखना शुरू करते हैं तो वो आपके साथ उसका एक संवाद शुरू होता है, और वो चित्र खुलना शुरू हो जाता है आपके साथ धीरे धीरे। आप अपने घर में लाके उसको लगाते हैं तो आप उसको रोज अगर देखते हैं तो रोज आपको एक नए कुछ उसमें चीजें नजर आने लगती हैं। तो वो एक तरह से ग्रो भी होता है आपके साथ रहते रहते, जैसे हम लोग भी ग्रो होते हैं वैसे चित्र भी विकसित होता रहता है
0: जी
1: लगातार। तो ये जो चीजें हैं हर दर्शक को ख्याल रखनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल, यहाँ पर हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना आना है, तो कौन सा गाना सुनाएं?
1: मैं चाहूंगा कि भूपेन का एक गाना, दिल ढूंढता है फिर वही
0: फुर्सत
1: फुर्सत
0: की
1: के रात
0: रातें,
1: दिन।
0: मौसम फिल्म का गाना है,
1: जी हाँ,
0: सुनते हैं यही गाना।
1: दिल

0: गाने से पहले बात चल रही थी रंगों की, रंगों की बहुत सारी बातें आपने बताई, और एक बात आपने और कहा कि भारत भवन ज्वाइन किया, इंदौर में आपने शिक्षा ली, तो इंदौर से भोपाल की यात्रा के बारे में संक्षेप में बताइए।
1: इंदौर से भोपाल में सीधे नहीं आया था, मैंने दो इंटरव्यूज दिए थे, एक बेंगलोर में दिया था, एक भोपाल में दिया था, और संयोग से दोनों जगह मेरा अपॉइंटमेंट मतलब हो गया था। भारत भवन में अपॉइंटमेंट करने में थोड़ा सा टाइम था, तो उन्होंने कहा कि फिर 3-4 महीने लगेंगे, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं 3-4 महीने बेंगलोर चला जाता हूँ। तो फिर मैं बेंगलोर चला गया था और वहाँ से फिर मैं भोपाल आया। तो 82 में जब भारत भवन की शुरुआत हुई उसी वक्त फिर मेरा भोपाल आना हुआ, और फिर मैंने लगभग 22 साल भारत भवन में काम किया और प्रदर्शनी लगाना, कलाकारों से मिलना, बात करना, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा वो था। और वहाँ के जो निदेशक थे जगदीश स्वामीनाथन, जो हिंदुस्तान के बड़े चित्रकार हैं और बड़े विचारक भी हैं, जिन्होंने चित्रकला के लिए अपना जीवन भी बिताया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो उनके सानिध्य में रह करके भी चित्रकला का संसार प्रकट हुआ
0: जी। और एक हमने घटना सुनी है कि आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी थी और कोई अमेरिकन व्यक्ति आया और उन्होंने आपकी सारी पेंटिंग खरीद ली थी, वो क्या घटना है जरा बताइए।
1: वो मेरा पहला वनमेन शो था बम्बई में जहांगीर आर्ट गैलरी में, और ओपनिंग में चेस्टर हविस करके एक अमेरिकन कलेक्टर थे जो कि सालों से हिंदुस्तान आते थे और हिंदुस्तानी कलाकारों की चित्र खरीदा करते थे, तो वो संयोग से मेरे एग्जीबिशन में आ गए थे। और मैं चूंकि अमूर्त चित्र बनाता हूं, तो उन्होंने मेरे एग्जीबिशन से 4-5 चित्र खरीद लिए, जिसको देख करके मतलब जाहिर है एक अलग तरह का वो फैला, और वो पूरा एग्जीबिशन जो है मेरा आधे घंटे में सेल आउट हो गया था। तो ये मेरे लिए भी एक बड़ी चमत्कार की बात थी। और फिर दूसरे दिन चेस्टर हविज आए, उन्होंने फिर अपने को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि भाई मैं हूँ मेरे कलेक्टर और मैं ये काम करता रहता हूँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। वो और उनकी पत्नी डेविडा दोनों थे, और फिर उन्होंने हमसे बात बात करी, तो काफ़ी रुचि पूर्वक उनसे बात हुई। फिर मुझे बाद में पता चला कि वो हिंदुस्तान के जितने भी खास कलाकार थे उन सब के चित्र जो है वो खरीदा करते हैं, और उनका एक बड़ा कलेक्शन उनके पास था।
0: तो हम सब के लिए कितनी गौरव की बात है, हम सब हिंदुस्तानियों के लिए, कि विदेश से एक बंदा आकर अपने देश की चित्र को, अपने देश की कला को ले जाते हैं, तो हम सब के लिए फख्र की बात है और बहुत अच्छा लगा ये जानकर। मकबूल फिदा हुसैन से आपका नाता रहा है, और तो इनके बारे में बताइए, इनसे कुछ खास बारीकियाँ सीखने को मिली या आपने पिताजी से ही सब कुछ सीखा आपने?
1: हाँ नहीं, हुसैन साहब से तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला, और हुसैन साहब के साथ एक ऐसा संबंध बना बाद में जा करके कि उनकी मैंने जीवनी भी लिखी, और उनकी जीवनी जब पढ़ी उन्होंने और लंदन में मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो बोले यार हमारी ऑटोबायोग्राफी से आपकी बायोग्राफी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, क्योंकि उसका 6 महीने में दूसरा एडिशन छपा था, तो इतनी ज़्यादा वो बिकी थी। तो हुसैन साहब इस बात से बहुत ही खुश हुए थे, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद कराओ तो अपन लंदन में रिलीज करेंगे। और फिर वो अनुवाद इतने धीमी गति से हुआ, बाय द टाइम जब तक वो अनुवाद पूरा हुआ हुसैन साहब दुनिया में नहीं रहे, तो वो उनकी ख्वाहिश अधूरी रही। एक उनकी दूसरी भी ख्वाहिश थी, उनका 1956 में पहला वन मैन शो हुआ था प्राग में, और वहाँ पर उनके साथ उनकी जो इंटरप्रिटेटर थी मारिया, उनके साथ उनका प्रेम शुरू हुआ, और फिर बाद में उनसे वो शादी भी करना चाह रहे थे तो वो हो नहीं सकी, और मारिया ने जब ये शादी करने के लिए गए उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप दूसरी संस्कृति से आते हैं, मैं दूसरी संस्कृति को बिलोंग करती हूँ, तो शायद ठीक से नहीं होगा। तो हुसैन साहब ने उस दौरान उन 4-5 सालों में 3 वन मैन शो किए थे प्राग में, और तीनों उनको डोनेट कर दिए थे, गिफ्ट कर दिए थे। तो कई साल बाद 2002 में मैं जब दुबई गया, तो हुसैन साहब ने मुझे बताया कि मारिया आजकल ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और एक बड़े फोटोग्राफर से शादी कर ली है उन्होंने, और मैं अभी उनसे मिलने गया था, तो उन्होंने मेरे 80 चित्र वो जो उनको मैंने भेंट करे थे वापस लौटा दिए, और वो उन्होंने 80 चित्र जो हैं अपने घर के कमरे में पूरे डिस्प्ले कर रखे थे, और वो बहुत महत्वपूर्ण चित्र इसलिए भी थे कि वो सारे चित्र 1956 के पहले के थे,
0: जी जी
1: और
0: जी
1: हुसैन साहब का हुसैन बनना 1956 में बिटवीन स्पाइडर एंड द लैम्प नाम की पेंटिंग से होता है,
0: जी
1: उसके बाद हुसैन हुसैन बनते हैं। मगर ये सारे काम जो हैं 50 से लेके 55-56 तक के सारे काम थे, और बड़े खूबसूरत काम थे। ये उस जर्नी को दिखा रहे थे जो हुसैन साहब ने तय की थी अपने को पाने तक की। वो चाहते थे कि मैं हुसैन और मारिया के प्रेम प्रसंग पर एक नॉवेल लिखूं।
0: तो आपने
1: तो मैंने कहा कि भाई उसके लिए मेरे को प्राग जाना होगा और आपके साथ ही जाना होगा। तो हुसैन साहब बोले कि हाँ ठीक है, तो तुम अक्सर अक्टूबर नवंबर में आते हो, अगले साल तुम जून में आना, तो मैं जून में फ्री रहता हूँ, तो अपन दोनों चले चलेंगे प्राग,
0: जी
1: और फिर मैं आपको उन सारी जगहों को ले जाऊंगा जहाँ हम लोग मिले थे और जो हुआ था। मगर नेक्स्ट ईयर जून 10 को उनकी डेथ हो गई, तो वो हो नहीं
0: वो
1: पाया।
0: ख्वाहिश अधूरी रह गई।
1: तो
0: तो
1: उन्होंने जितना मुझे बताया था उसके आधार पर मैंने एक नॉवेल की शुरुआत का अंश लिखा हुआ है जिसका नाम है हुसैन और हसीना।
0: जी, तो हम शुभकामना करते हैं कि वो उपन्यास पूरा हो, क्योंकि अब हमारी भी दिलचस्पी बढ़ गई है कि हम पढ़ना चाहेंगे। लेकिन जब आप ये बता रहे थे कि उन्होंने सारी पेंटिंग वापस कर दी।

0: यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी भी आपने लिखी है, अब लेखन की बात चली है तो आपके लेखन के पक्ष को भी हम उजागर करना चाहते हैं। अपने श्रोताओं को बता दें कि अखिलेश जी बहुत बढ़िया, और इनके भी तो सुंदर कलम की ताकत है, बहुत बढ़िया लेखक भी हैं। तो आप इसके बारे में बताइए, कैसे बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी लिखने की बात मन में आई, प्रेरणा मिली आपको?
1: हाँ, मैंने है ना ऑटोबायोग्राफी लिखी है हुसैन साहब की और रजा साहब की और जगदीश स्वामीनाथन की, और जो बीवी कारंत थे उनकी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने अपने जब आखिरी दिन थे, बीमारी के दिन थे, उस दौरान कन्नड़ की एक प्रसिद्ध राइटर हैं वैदेही, उन को बोल करके अपनी ऑटोग्राफी लिखवाई थी कन्नड़ में। और उसमें ये हुआ कि उसका एक अंग्रेजी अनुवाद हुआ, और अंग्रेजी अनुवाद तो बाबा कारंत जो है भारत भवन में थे, और हम लोगों की बड़ी अच्छी उनके साथ दोस्ती थी और उनके साथ काफ़ी गहरे संबंध भी थे। तो मैंने कहा कि भाई उन्होंने जीवन भर काम जो किया है, ज़्यादातर काम जो है हिंदी नाटकों में किया है, हिंदी भाषा में किया है, और स्कंद गुप्त जैसा नाटक किया है, चंद्रगुप्त जैसा नाटक किया है, ये जयशंकर प्रसाद के इतने कठिन नाटक हैं कि जिसको करने के लिए किसी भी डायरेक्टर की हिम्मत नहीं हुई थी, मगर बाबा कारंत एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति थे कि उन्होंने स्कंद गुप्त में से स्कंद गुप्त नाटक क्या है वो ढूंढ निकाला। और अगर आप पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का ये नाटक, तो शायद आप, मैं भी नहीं समझ पाया कि इसमें नाटक कहाँ है। ही वॉज ए ब्रिलियंट माइंड एक्चुअली। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का मैंने हिंदी में अनुवाद किया और वो अभी छपने के प्रोसेस में है
0: जी,
1: तो वो इस वर्ष आ जाएगा। ऐसे ही एक मार्क शागाल बड़े पेंटर हुए हैं रशिया के, जो पेरिस चले गए थे, और फिर बहुत ही जो तीन बड़े चित्रकार हैं जिन्होंने काफ़ी बड़े बदलाव लेके आए चित्रकला के संसार में, उसमें मार्क शागाल, पिकासो और मातिस का नाम लिया जाता है। तो उनकी भी जो ऑटोबायोग्राफी थी लावी, मतलब द लाइफ, उसका मैंने अनुवाद किया है आप बीती नाम से।
0: जी जी
1: और ये तो आप बीती सबको पढ़नी चाहिए, इसलिए भी कि मार्क शागाल ने अपने को इतने ऊपर से देखा है, इतना ऑब्जेक्टिवली देखा है कि आपको भरोसा नहीं होता ऐसा कि कोई व्यक्ति अपने से बाहर रह करके अपने बारे में इस कदर लिख सकता है। वो यहूदी थे तो यहूदियों पर उस वक्त रूस में जो जुल्म हो रहे थे उन सबका उन्होंने वर्णन किया, उनके परिवार पे जो संकट आते थे यहूदी होने के नाते, यहूदी होने के नाते उनको कई चीज़ों से वंचित रहना पड़ता था, मास्को में नहीं जा सकते थे यहूदी लोग बगैर परमिशन के, और अगर जाएंगे तो उनके पास एक नौकर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैं नौकर हूँ। ये सारा उन्होंने भुगता, मगर पूरी किताब में शिकायत का एक स्वर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी उसको पढ़ते वक्त। वो एक सीधे कविता की तरह उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जो कि बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि वो हर किसी को पढ़ना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपने को अपने से बाहर रह करके कैसे देख सकता है इतने ऑब्जेक्टिवली।
0: ये बहुत बड़ी बात है और एक वैचारिक समृद्धि भी मिलती है इस तरह की किताबें पढ़कर।
1: हाँ।
0: तो हम सबको पढ़नी है ये किताब। और आपका जो लेखन पक्ष है उसमें और भी बहुत कुछ है, अचंभे का रोना और दरस पोथी और शीर्षक नहीं, इन किताबों में क्या दर्ज है हमारे श्रोताओं को?
1: ये जो मेरी किताबें हैं, इन सारी किताबों में मैंने चित्रकला पे और चित्रकारों पे जो बातचीत करी है वो है इन सारी जगह में, और उसमें कई चीजें ऐसी भी हैं जो मतलब पहली बार किसी ने चित्रकला में उसको छुआ है और उस पर बात करी है। तो ये सारे निबंध हैं जो अलग अलग समय पे अलग अलग चित्रकारों के ऊपर भी हैं और चित्रकला के प्रश्नों पर भी हैं। तो ये मेरे निबंधों की किताब है एक तरह से, जो 5-7 है, एक उनके बारे में भी है, शीर्षक नहीं, दरस पोथी और अचंभे के रोने के अलावा। तो इस तरह से मतलब काफी लिखने का मेरा कोई पैशन नहीं है, मतलब मैंने जितना भी लिखा है हमेशा किसी के कहने पे लिखा है।
0: जी,
1: जैसे हुसैन साहब की बायोग्राफी भी उनके कहने पे मैंने लिखी
0: जी।
1: वैसे ही मतलब कभी किसी ने कहा कि स्वामीनाथन पे लिख दो, तो फिर स्वामीनाथन की बायोग्राफी मैंने उन पे लिखी। तो ये सारे जो आर्टिकल्स या जितना भी मेरा लेखन का पक्ष है वो मतलब किसी के आमंत्रण पे है वो।
0: जी जी, तो दोनों में से कौन सा आपका पसंदीदा शौक है, पेंटिंग या लेखन? दोनों
1: मेरे लिए तो पेंटिंग ही है, मतलब लिखना
0: जी
1: तो कभी कभार है,
0: कभी
1: मतलब
0: कभार
1: मैंने,
0: ही है।
1: हाँ ऐसा कुछ खास नहीं। अभी इन दिनों में एक किताब लिख रहा हूँ स्वामीनाथन के साथ, मेरे जो पर्सनल संबंध थे इतने साल, 9-10 साल मैंने उनके साथ काम किया भारत भवन में, उसके बाद 14-15 साल उनके साथ संपर्क रहा, तो एक लंबा संपर्क था। और मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात थी स्वामी से मिलना और स्वामी जी को जानना, क्योंकि जब हम लोग 74 में पहली बार दिल्ली गए थे तो वहाँ पर ट्रिनाल देखने गए थे हम लोग, इंटरनेशनल एग्जीबिशन थी और बहुत एक्साइटेड थे। जब रात को लौट रहे तो वहाँ कैनॉट प्लेस पे एक हमने बैनर देखा, सिक्स हु डिक्लाइन ट्रिनाले, तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी 6 लोग हैं, 6 कलाकार हैं जिन्होंने ट्रिनाल को जो है
0: जी
1: कैंसल आउट किया। तो धूमिमल आर्ट गैलरी में वो एग्जीबिशन थी, तो हम लोग धक्का मुक्की करके जैसे तैसे अंदर घुसे तो हमें स्वामीनाथन ही दिखे एक चित्रकार की तरह। तो उनसे मतलब ऑटोग्राफ लेने के लिए हमारे सीनियर लोग जो थे, तो मैं तो उस वक्त सेकेंड ईयर में ही था, तो मैं तो सबसे जूनियर था,
0: जी जी
1: तो सबसे पीछे ही था, तो मैंने भी अपनी स्केचबुक आगे जब बढ़ाई तो स्वामी जी ने एक ऐसे पलट के देखा, मेरे ख्याल से फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड हमारी नजरें मिली होंगी, उन्होंने ऑटोग्राफ करके लौटा दिया और फिर हम लोग चले भी आए।
0: जी
1: फिर जब 81 में मैं इंटरव्यू दे रहा था, इंटरव्यू देने के लिए बैठा था, तो स्वामी जी मेरे पास सीधे आए और बोले हम लोग पहले मिल चुके हैं।
0: क्या बात
1: तो
0: है,
1: मेरे लिए तो एकदम से मतलब
0: आश्चर्य हुआ
1: बहुत ही
0: होगा
1: आश्चर्य था,
0: जैसे।
1: क्योंकि
0: हाँ
1: मुझे तो याद रहना चाहिए था कि मैं स्वामीनाथन से मिला हूँ, पर स्वामी जी को वो इतनी सी झलक उन्होंने देखी, ठीक से देखा भी नहीं होगा शायद, इतनी
0: जी
1: भीड़ थी,
0: जी
1: इतना सारा क्राउड था, बस उन्होंने वो स्केचबुक लौटाते वक्त एक जो होता है देखना
0: बिल्कुल
1: उड़ती सी नज़र, बट ही रिमेम्बर्ड वेरी
0: जी
1: क्लियरली कि हम लोग पहले मिल चुके
0: जी
1: हैं।
0: यहाँ पर याद कीजिए कोई गाना, कौन सा गाना सुनवाया?
1: मैं यहाँ पर मोहम्मद रफ़ी का एक गाना, फिर मिलोगे कभी
0: इस
1: इस
0: बात का
1: बात का
0: वादा
1: वादा
0: कर
1: कर
0: लो,
1: लूँ
0: सुनते हैं ये
1: जी
0: गाना।
1: हाँ।

0: गाने से पहले आपके लेखन पक्ष की बात हो रही थी, कुछ अनुवाद भी आपने किए हैं बहुत सारे, तो उन अनुवाद की किताबों के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: तो एक तो मैं बता चुका हूँ मार्क शागाल की, मैंने ऑटोबायोग्राफी का अनुवाद किया। दूसरा एक बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कथा की एक छोटी सी किताब है, तो उसका मैंने एक अनुवाद किया था। एक स्वीडन के नॉवेलिस्ट हैं अग्नेता प्लायल, उनका एक नॉवेल है डॉग स्टार, वो बहुत ही बढ़िया नॉवेल है। और उसमें भी वही बात है कि वो सारी झंझटों तकलीफों और मुसीबतों के जिक्र के बावजूद भी उसमें शिकायत का कोई स्वर नजर नहीं आता है, उसकी जो नायिका है उसका। तो एक मैंने उसका अनुवाद किया, और ये जो बाबा कारंत के ऑटोबायोग्राफी है उसका अनुवाद। तो इस तरह से अनुवाद का कर्म जो है, मैं मतलब अपने पढ़ने के ही एक ढंग को विकसित करने का तरीका है
0: जी
1: वो।
0: जी बिल्कुल। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग्स बहुत सारे बड़े बड़े संस्थानों में संग्रहित हैं, देश में, विदेश में, यहाँ तक कि फ्रांस, ललित कला अकादमी, महात्मा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वर्धा और भारत भवन में तो है ही। तो ये जो इतनी सारी पेंटिंग्स का संग्रह है आपके पास, हमारे श्रोताओं को बताइए तकरीबन कितना बड़ा संग्रह है और कैसे किया ये सब मुमकिन? एक आम जिंदगी में, एक आम चित्रकार के खाते में नहीं आता है।
1: नहीं, मेरे ख्याल से सभी चित्रकारों के खाते में आता है, और वो बस ये है कि उनको अपने काम पर भरोसा होना चाहिए और उसको लगातार दिखाते रहना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे अच्छे चित्रकार मेरे दोस्त हैं और अभी भी इंदौर में रहते हैं, बढ़िया काम करते हैं, और सच में वो इतना अच्छा काम करते हैं कि मेरे को उनके काम को देख करके रश्क होता है कि काश मैं भी ऐसा कर सकता था, मगर वो लोग कभी दिखाते नहीं हैं। तो ये जो एक दिखाना है, प्रदर्शन करना है, ये एक बहुत ज़रूरी पक्ष है। अदरवाइज कुछ ऐसा हो जाएगा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मतलब
0: देखा,
1: हमें ये तो देखना ही चाहिए कि भाई हम जो काम कर रहे हैं तो लोगों तक पहुँचे कैसे। तो वो जो पहुंचना है उसी का एक रास्ता है जिसमें इन सारे संग्रह में वो कलाकृतियां जा पाती हैं, या उसमें लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तभी वो आपके चित्र को खरीदना चाहते हैं। तो इस तरह का अनुभव भी मेरा रहा है कि जब भी मैंने कहीं शो किया है तो लोगों ने उसको पसंद किया है, और उसमें से कई चित्र जो है ऐसे महत्वपूर्ण कलेक्शन में गए हैं।
0: और ये लोगों के लिए सीखने के लिए भी एक प्रेरणा
1: जरूरी
0: के
1: है
0: रूप
1: कि
0: में
1: हम
0: है।
1: जो भी काम कर रहे हैं तो उसको हम अगर दिखाएंगे नहीं तब उसके बारे में हम कैसे कुछ
0: हाँ,
1: तय कर
0: जान
1: सकते हैं।
0: पाएंगे,
1: हाँ, मतलब
0: बिल्कुल
1: वो
0: वाकिफ होना जरूरी है,
1: दर्शकों की प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अपना बनाना।
0: बिल्कुल
1: तो वो
0: सही
1: जो
0: कहा।
1: बनाना है, खाली वहीं पर चित्र खत्म नहीं होता है, चित्र पूरा होता है जब एक दर्शक उसे देखता है।
0: सही बात है। तो भारतीय संस्कृति और कला का बड़ा ही गहरा संबंध है, और आप अपनी पेंटिंग में भारतीय संस्कृति को और परंपराओं को भी उकेरते हैं, तो ये कैसे होता है उन तमाम श्रोताओं के लिए बताइए जो सीख रहे हैं।
1: हाँ, मुझे ये लगता है कि ये जो कुछ भी हमारी चित्रों में आता है या हमारे स्वभाव में या हमारी बातचीत में या हमारे लिखने में, वो आपके उसी अनुभव से पैदा होता है जो आपने यहाँ रह करके उसको जाना, समझा और भोगा है। तो ये जो संबंध आपका जो बना है अपनी परंपरा से और जो अपनी सामाजिक परिस्थितियों से और जो अपने दृश्य से, जो अपने रंगों से, वो ही आपकी एक स्थायी स्मृति में अनकॉन्शियसली चित्र बनाते वक्त काम करते हैं।
0: जी
1: तो मुझे हमेशा ये लगता है कि भाई हमें बहुत जागरूक करके, एक अच्छा चित्रकार जो है वो बहुत कीन ऑब्जर्वर भी होता है, बहुत ध्यान से देखने वाला, वो एक एक चीज़ समझने वाला, मतलब अपनी तरह से उसको एब्जॉर्ब करने वाला होता है, और वो सारी चीज़ें अनकॉन्शियसली बाद में आपके काम में दिखाई देती हैं। तो मुझे ये बहुत ही आश्चर्य हुआ था, मेरे जो प्रदर्शनियाँ हुई वो जापान से लेकर के कैलिफोर्निया तक, मतलब मेरे ख्याल से तमाम देशों में भी, और उसमें ऐसे भी हुआ कि जर्मनी में शो हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया, और जब फ्रांस में हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया, और जब लंदन में हुआ तो, मगर ये तीनों देश ऐसे हैं कि अगर एक तरह के चित्र एक देश में पसंद है तो दूसरे देश में नहीं हो सकते हो।
0: जी जी जी।
1: क्योंकि उन लोगों के बीच में अपनी एक जो देखने समझने की फांक है वो बहुत बड़ी है। तो ये नहीं हो सकता कि जो जर्मनी में पसंद किया जा रहा है वो फ्रांस और लंदन में भी पसंद हो, या जो लंदन में पसंद किया जा रहा है वो जर्मन लोग भी पसंद करें। तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जी,
1: क्योंकि
0: जी।
1: जर्मन आदमी भी मनुष्य हैं और बाकी लोग भी जो देख रहे हैं वो सारे मनुष्य हैं, क्योंकि मेरे चित्र कोई गाय बैल जानवर तो देखते नहीं है। तो फिर धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा कोई फॉर्म नहीं है मेरे इसमें जो कॉमन फॉर्म है, ऐसे कोई लाइन नहीं है जो कॉमन लाइन है, मगर रंग एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। तो वो शायद रंग ही हैं जो मनुष्य को संबोधित हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही एनलाइटनिंग चीज थी कि मैं उसके साथ अपने चित्रों को भी समझ पाया कि मेरे चित्र में ऐसी कोई ये बात है जो एक मनुष्य को संबोधित है, चाहे वो जापानीज हो, चाहे वो मतलब जो चित्र न्यूयॉर्क में पसंद किए जाते हैं वो कैलिफोर्निया में बिल्कुल नहीं होते हैं।
0: जी, जी,
1: और मेरे साथ ऐसा हुआ कि न्यूयॉर्क में भी उतना ही पसंद किया गया जितना कैलिफोर्निया में। तो ये जो चीजें होती हैं, मतलब इसी ने मुझे बाध्य करा कि मैं अपने चित्रों में उस एलिमेंट को समझने की कोशिश करूं जो एक अलग अलग संस्कृति और अलग अलग विचार और अलग अलग जीवन शैली को जीने वाले लोग पसंद कर रहे हैं।
0: जी जी। यहाँ पर आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
1: मेरे ख्याल से हमें वो है जरा खफा खफा।
0: जी सुनते
1: ये
0: हैं
1: वाला सुनता
0: है।

0: इस गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपके लिए माना जाता है कि आपने पेंटिंग की एक नई परिभाषा गढ़ी है, एक परंपरा को नए सिरे से परिभाषित किया है, तो ये किस तरह से किया है, क्या प्रयोग किए हैं आपने?
1: हम मेरे ख्याल से जो कलाएं हैं, सभी कलाएं जो हैं भविष्योन्मुखी हैं, और वो अपनी परंपरा से कुछ लेती हैं और उसको पुनर्परिभाषित कर देती हैं। तो ये जो एक सतत उसका अपना स्वभाव है जो चलता रहता है, हमारी कलाएं जो हैं अतीत में नहीं झांकती हैं, वो अतीत से जो कुछ भी लेना होता है वो ले लेती हैं और अपने भविष्य में अपने विचरण जारी रखती हैं। तो ये जो उनका स्वभाव है कलाओं का, वो अपने आप ही इसको इस तरह का बना देता है जिसमें आप अपनी परंपराओं से बहुत सारी चीज़ें सीखते, समझते और बरतते हैं, और उनका एक नया रूप सामने आता है, ये वो पुनर्परिभाषित होकर के नए ढंग से आपके सामने आती हैं। तो ये एक संबंध जो है उसका अटूट संबंध है, और इसीलिए कलाएं जो है हमेशा नई और आकर्षित करने वाली होती हैं।
0: जी, और हमारे उन श्रोताओं के लिए बताइए कि जो सीख रहे हैं, जो पेंटिंग की आपकी बारीकियां हैं, किन बारीकियों का ध्यान रखते हैं? जैसे बहुत सारी बातें हैं जो सीखते हैं, तो किस तरह का पेपर, ब्रश और रंग का मिलान कैसे करें वो सब?
1: ये जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें तकनीकी रूप से भी ऑपरेट होती हैं, और मेरे ख्याल से कोई भी चित्रकार अगर एक अच्छा चित्रकार है तो वो पहले तकनीक को अच्छे से जानता समझता है और फिर उसको बरतता है। तकनीक का गुलाम नहीं होता है, तकनीक उसकी गुलाम होती है।
0: जी,
1: तो चाहे हम वाटर कलर करें, चाहे हम पेस्टल कलर करें, चाहे एक्रेलिक, चाहे ऑयल, इन
0: हाँ,
1: सब के करने का जो ढंग है वो अलग होगा। तो उसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से हर युवा चित्रकार के लिए ये जो पीरियड होता है अपना कॉलेज का समय, उसका 4 साल का, 5 साल का, वो इन सब तकनीकों को सिखाने के लिए एक लंबा समय होता है, और वो उस वक्त उसको पूरे तन मन धन से ये काम करना चाहिए कि वो अपने को एक विद्यार्थी की तरह बरते। अभी मैं देखता हूँ कि विद्यालय में जाते से ही वो अपने को आर्टिस्ट की तरह बरतने लगते हैं, जो कि एक गलत रास्ता है। आप हमेशा विद्यार्थी रहेंगे तो आप ज़्यादा सीख सकेंगे, और मुझे ये भी लगता है कि एक चित्रकार जीवन भर एक विद्यार्थी ही बना रहता है, वो लगातार सीखता ही रहता है, दूसरों के चित्रों से भी सीखता है, अपने चित्रों से भी सीखता है।
0: जी, ये कहा जाता है कि एक चित्रकार के लिए ये जरूरी है जानना कि कौन कौन से रंग को मिलाएं तो अगला रंग बनता है, जैसे आपने बातचीत के दौरान बताया है,
1: हाँ,
0: ये भी थोड़ा सा
1: ये
0: बताइए।
1: बहुत ही ज़रूरी होता है कि है ना, आप रंगों के मेल मिलाप से भी एक नया रंग बनाना सीखते हैं, और आप रंगों को पास पास रख कर के भी एक नया रंग का अनुभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको लगातार काम करने से ही आती हैं। रजा साहब अच्छी बात कहते थे कि चित्रकला वो मुश्किल प्रेमिका है, वो उसके पास चली जाएगी, अगर आप 4 घंटे दे रहे हैं तो 6 घंटे वाले के पास चली जाएगी। तो जितना ज़्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज़्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं, और फिर उसने अपने अनुभव से उसको बरत सकते हैं।
0: एक चित्र को बनाने में कितना वक्त लगता है, ये बताएंगे?
1: इसमें दोनों तरह की चीज़ होती हैं। कई बार चित्र जो हैं खुद भी इतने जिद्दी होते हैं कि वो पूरा होने में 3 महीने 4 महीने लगा सकते हैं, और कई बार काम शुरू होते से ही आप उसमें इतना रम जाते हैं कि उसी दिन वो चित्र पूरा होता है। ये एक तरह की परिस्थिति पे भी निर्भर
0: निर्भर
1: करता
0: करता
1: है
0: है।
1: कि कब आप किस मूड में किस तरह से उस काम को शुरू किए हैं, और फिर इसमें यात्राएं भी बीच बीच में बहुत सारे व्यवधान पैदा करती है। तो एक चित्र आपने बनाया, तो चित्र बनाना हमेशा स्थगन का काम है, आप हमेशा अपने विचारों को रोक देते हैं वहां जहां आपने चित्र छोड़ा है। विचार बहुत तेजी से भागते हैं, तो आप अगर उनका पीछा करने लगते हैं तो शायद चित्र बिगड़ सकता है, मगर आप रोक कर रखते हैं अपने को, अगले दिन आते हैं फिर वहीं से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन आते हैं तब भी वहीं से शुरू करते हैं जहाँ छोड़ा था। तो ये जो एक मुश्किल प्रक्रिया भी है कि
0: जी
1: जिसमें आप अपने को रोके रखते हैं, भले ही विचार आपके उससे आगे जा रहे हों, मगर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
0: और वापस उस चित्र में, उस यात्रा में वापस लौटना भी
1: हाँ,
0: मुश्किल होता
1: मुश्किल
0: है
1: होता है वो।
0: जी। इस पूरी बातचीत में अखिलेश जी आपने बड़ी ही काम की बातें और बड़ी ही प्रयोगशील बातें बताई हैं, और इतनी सारी जानकारी के लिए, इतनी दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। इसके अंतर्गत हमने सुनी मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे।

मीडिया वेव पर अभी तक आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई की प्रसारण संध्या के 5 बजे हमारी आज की दूसरी सभा मीडियम वेव और FM पर एक साथ आरंभ हो रही है।

भाषा में आपकी रेडियो दोस्त जवेरिया काकी जी को बोल नमस्कार। श्रोताओं, तकनीक ने दुनिया को एक धागे में पिरो दिया है, दूरियों को मिटाकर रिश्तों को जोड़ दिया है, लेकिन यही तकनीक कभी कभी ऐसी दीवार भी बन जाती है जो इंसान को अपनों से दूर ले जाती है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, यानी सोशल मीडिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप और कई अन्य प्लेटफॉर्म आज हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। अब सवाल यह है कि सोशल मीडिया वरदान है या अभिशाप? सोशल मीडिया, जो कि एक इंटरनेट आधारित माध्यम है, इसके द्वारा लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, विचार साझा करते हैं, फोटोग्राफिक और वीडियो का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज करते हैं। करोड़ों लोग आज सोशल मीडिया से जुड़े हैं, जहां पहले एक दूसरे से मिलना, बात करना, सालों तक एक दूसरे को देखना बहुत मुश्किल होता था। सालों के इंतज़ार के बाद कोई किसी को देख पाता था, मिल पाता था, लेकिन आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस युग ने दूरियों को पल भर में नज़दीकियों में बदल दिया है। दूर बैठे व्यक्ति से कुछ ही पलों में ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल के द्वारा बात हो जाती है और एक दूसरे का हालचाल मालूम हो जाता है। जहां एक और इस तकनीक ने एक दूसरे की दूरियों को मिटाकर नज़दीकियों में बदल दिया है, वहीं दूसरी ओर ये शिक्षा का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। YouTube पर लाखों शैक्षणिक वीडियो उपलब्ध हैं, स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, नई भाषाएं सीख सकते हैं और विभिन्न विषयों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर व्यापार को बढ़ाने में भी शक्तिशाली माध्यम भी बन चुका है सोशल मीडिया। इसी के साथ समाज में विभिन्न विषयों पर जागरूकता फैलाने, जैसे पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्तदान जैसे विषयों पर भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता आ रहा है हमारा सोशल मीडिया। प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं या संकट के समय भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमें समाज में होने वाली अन्य घटनाएँ, दुर्घटनाएँ सभी का ज्ञान और सूचनाएं इसके माध्यम से हम तक पहुंच पाती हैं।

श्रोताओं, जहाँ एक ओर सोशल मीडिया के फायदे हैं, वहीं दूसरी ओर इसके कुछ नुकसान भी हैं। इसका अत्यधिक प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, जिससे तनाव, चिंता, आंखों की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ ये सूचनाओं से अपडेट कराने में सक्षम तो है, लेकिन कई बार फेक न्यूज़ और अफवाहें भी सोशल मीडिया के थ्रू तेज़ी से फैलती हैं। बिना किसी सत्यापन के लोग किसी भी समाचार को साझा कर देते हैं। सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर क्राइम भी बढ़ रहे हैं, जैसे फर्जी अकाउंट, ऑनलाइन ठगी, डेटा चोरी और साइबर बुलिंग जैसी समस्याएं आज गंभीर चुनौती बन चुकी हैं। कन्फ्यूजन ये है कि जो माध्यम लोगों को जोड़ने के लिए बना था, वही कई बार वास्तविक रिश्तों में दूरियाँ पैदा कर देता है। लोग ऑनलाइन रिश्तों के साथ अधिक समय बिताते हैं और परिवार के साथ कम। सोशल मीडिया ने आज के युग में लोगों के बीच अपनेपन को गवाकर सिर्फ डिजिटल माध्यम से जुड़े रहने का एक पागलपंती अपने ऊपर सवार कर लिया है। तकनीक का उपयोग करना चाहिए, मगर तकनीक को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। आजकल युवा और बच्चे ज़्यादातर तकनीक का उपयोग करने के बजाय उसको खुद पर हावी कर रहे हैं।

मोबाइल का उपयोग कम करें, बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, सोशल मीडिया के सिर्फ फायदे ही लें, ना कि उसके नकारात्मकता की ओर खींचें। सोशल मीडिया से खुद को इस कदर नहीं जोड़ें कि वो एक लत लग जाए। इसी के साथ आज शाम से अपने रेडियो दोस्त जवेरिया को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कंपेयर्ड प्रोग्राम आज शाम। ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 5:15 हुए। अब प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं आपके युवा साथी फरीन समद और हर्ष।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आज के प्रोग्राम में मैं हूं आपका रेडियो साथी हर्ष,
1: और मैं हूं आपकी आज की रेडियो मेज़बान फरहीन समद। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खुश होंगे और सुन रहे होंगे हमारा प्रोग्राम युववाणी। आइए साथियों, बिना देर की शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम आज के सवाल के साथ। तो दोस्तों, हमारा आज का सवाल है, भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था?
0: दोस्तों, सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। आज का हमारा सवाल है, भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको जाना होगा हमारे आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पेज पर, और आज की अपडेटेड पोस्ट के कमेंट सेक्शन में टाइप कर देने होंगे अपने अपने सही जवाब। सवाल का सही जवाब और जवाब देने वाले सभी श्रोता साथियों के नाम हम बताएंगे आपको प्रोग्राम के एंड में। आज हम मना रहे हैं बेहद खास दिन, क्योंकि आज है कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
1: बिल्कुल हर्ष। दोस्तों, किसी देश द्वारा बातचीत, समझौते और सहयोग के माध्यम से अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने और अपनी बात मनवाने की कला को कूटनीति कहते हैं।
0: फरीन, कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आखिर ये मनाया क्यों जाता है?
1: संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, शांति स्थापना और विदेश नीति के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना और उनके योगदान को सम्मान देना है।
0: यानी यह दिन उन महिलाओं को समर्पित है जो देश के बीच बेहतर संबंध बनाने और वैश्विक समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
1: आज महिलाएं केवल शिक्षा, विज्ञान या खेलों में ही नहीं, बल्कि कूटनीति जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। वह विभिन्न देशों में राजदूत, विदेश नीति विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रमुख के रूप में कार्य कर रही हैं।
0: लेकिन एक समय ऐसा भी था जब कूटनीति को मुख्य रूप से पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था, महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में अवसर सीमित थे।
1: बिल्कुल, हालांकि समय के साथ परिस्थितियां बदली हैं। आज दुनिया के कई देशों में महिलाएं विदेश मंत्रालयों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में नेतृत्व की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं।
0: पर इनका महिलाओं की उपस्थिति कूटनीति को किसी विशेष तरीके से प्रभावित करती है?
1: निश्चित रूप से, महिलाओं को अक्सर संवाद, सहयोग, सहानुभूति की दृष्टि से मजबूत माना जाता है। वह विभिन्न पक्षों के बीच बातचीत और समझौते को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यही कारण है कि शांति वार्ताओं और वैश्विक सहयोग में उनकी भागीदारी को बहुत महत्वपूर्ण माना है।
0: भारत की बात करें तो हमारे देश की महिलाओं ने भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। भारतीय महिला राजनयिकों ने विश्व स्तर पर भारत की छवि को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: बिल्कुल हर्ष, यह दिन हमें संदेश देता है कि प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता का कोई लिंग नहीं होता। यदि अवसर और समर्थन मिले तो महिलाएं हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं। और साथियों, आइए बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के उस पार बहुत कुछ कर रहा है आपका इंतजार।

0: दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं हम लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आइए बढ़ते हैं आज के पहले सेगमेंट की ओर, यानी कुछ खास है आज की ओर।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।
0: साथियों कुछ खास है आज में, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के उस महान साधक की जिनकी आवाज में केवल सुर ही नहीं बल्कि भावनाओं का अथाह सागर भी बहता था। हम बात कर रहे हैं महान संगीतज्ञ पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी की, जिनकी जयंती हर वर्ष संगीत प्रेमियों के लिए प्रेरणा का अवसर बनकर आती है।
3: दोस्तों पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी का जन्म 24 जून यानी आज ही के दिन 1897 को गुजरात के भरूच जिले में हुआ था। उनका बचपन आर्थिक कठिनाइयों से बीता, लेकिन संगीत के प्रति उनका प्रेम और समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने हर चुनौतियों को पार कर लिया।
0: उनकी प्रतिभा को सही दिशा मिली जब वे प्रसिद्ध संगीताचार्य पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के सानिध्य में पहुंचे। पलुस्कर जी के मार्गदर्शन में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहन शिक्षा प्राप्त की। गुरु शिष्य परंपरा के आदर्श उदाहरण के रूप में उन्होंने संगीत को केवल कला नहीं बल्कि साधना माना।
3: दोस्तों पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी की गायकी की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी भावपूर्ण प्रस्तुति। वे जब कोई राग गाते थे तो श्रोता केवल संगीत नहीं सुनते थे बल्कि उस राग के भावों को महसूस भी करते थे। उनकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि वह सीधे दिल तक पहुंच जाती थी। कहा जाता है कि वे मंच पर जब प्रस्तुति देते थे तो पूरा वातावरण संगीत की दिव्यता से भर जाता था।
0: साथियों पंडित जी केवल एक महान गायक ही नहीं थे बल्कि एक उत्कृष्ट शिक्षक और संगीत चिंतक भी थे। उन्होंने भारतीय संगीत को जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे मानते थे कि संगीत आत्मा की भाषा है और यह मनुष्य को जोड़ने की शक्ति रखता है। उन्होंने देश विदेश में भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
3: उनकी देशभक्ति भी अद्भुत थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में उन्होंने अपने संगीत के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत किया। उनके द्वारा गाए गए देशभक्ति गीत लोगों के मन में नई ऊर्जा और उत्साह भर देते थे।
0: साथियों पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना भी की और संगीत शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिए। उन्होंने संगीत के वैज्ञानिक और भावनात्मक दोनों पहलुओं को समझाने का प्रयास किया।
3: उनके योगदान को देखते हुए उनको अनेक सम्मानों और पुरस्कार प्राप्त हुए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने लाखों लोगों के दिलों में संगीत के प्रति प्रेम और सम्मान पैदा किया।
0: साथियों पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियां कभी भी सफलता के राह में स्थायी बाधा नहीं बन सकती। यदि लगन, मेहनत और समर्पण हो तो व्यक्ति अपने क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर सकता है।
3: दोस्तों सेगमेंट कुछ खास है आज में, आज बस इतना ही।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।
0: साथियों बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की ओर, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट व्यक्तित्व विकास की ओर और जानते हैं उसमें पहले सब सेगमेंट गुण के बारे में। दोस्तों सेगमेंट व्यक्तित्व विकास के जरूरी गुण में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गुण की जो किसी भी व्यक्ति को सामान्य से असाधारण बना सकता है। इस गुण का नाम है दूरदर्शिता।
1: साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों के लिए पहले से ही क्यों तैयार रहते हैं? कुछ लोग सही समय पर सही निर्णय लेकर सफलता हासिल कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है उनकी दूरदर्शिता।
0: दोस्तों दूरदर्शिता का अर्थ है आने वाले समय के बारे में सोचने और उसके अनुसार योजना बनाने की क्षमता, यानी केवल आज को ही नहीं बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लेना। दूरदर्शी व्यक्ति वर्तमान परिस्थितियों को समझते हुए भविष्य की संभावनाओं का अनुमान लगाता है और उसी के अनुसार अपने कदम बढ़ाता है।
1: यह गुण हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है, चाहे आप विद्यार्थी हों, नौकरी पेशा हों, किसान हों या व्यवसायी। दूरदर्शिता आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है।
0: दोस्तों एक विद्यार्थी की बात करें तो यदि वह केवल परीक्षा के एक दिन पहले पढ़ाई करता है तो उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो विद्यार्थी पूरे वर्ष नियमित अध्ययन करता है और अपनी तैयारी पहले से करता है वह बेहतर परिणाम प्राप्त करता है। यही दूरदर्शिता का एक सरल उदाहरण है।
1: दोस्तों दूरदर्शी व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते, वे किसी भी कार्य के लाभ और हानि दोनों पक्षों पर विचार करते हैं। वे ये सोचते हैं कि आज लिया गया निर्णय भविष्य में क्या प्रभाव डालेगा। यही सोच उन्हें गलतियों से बचाती है और सफलता के करीब ले जाती है।
0: दोस्तों अब सवाल आता है कि दूरदर्शिता का गुण विकसित कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले अपने जीवन के स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरा अपने अनुभवों से सीखें, अपनी गलतियों का विश्लेषण करें और समझें कि भविष्य में उन्हें कैसे रोका जा सकता है। तीसरा अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें और सफल लोगों के जीवन से प्रेरणा लें। नेक्स्ट निर्णय लेने से पहले उसको संभावित परिणामों पर विचार करें।
1: स्वयं से पूछें, आज मैं जो भी कर रहा हूं उसका मेरे भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और अंत में धैर्य रखें। दूरदर्शिता का संबंध केवल सोचने से नहीं बल्कि उस सोच को सही दिशा में कार्यान्वित करने से भी है।
0: दोस्तों आज के तेजी से बदलते समय में दूरदर्शिता एक अमूल्य गुण है। यह हमें केवल वर्तमान की समस्याओं का समाधान ही नहीं बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार करता है।
1: और साथियों हमारे आज के स्पेशल सेगमेंट व्यक्तित्व विकास के जरूरी गुण में आज बस इतना ही।
0: दोस्तों अब कार्यक्रम में बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों अब बढ़ते हैं हम आगे और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट कौशल विकास की।
1: साथियों आज की स्पेशल सेगमेंट कौशल विकास में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे तकनीकी कौशल की जिसकी मांग आधुनिक उद्योगों में तेजी से बढ़ रही है और इस कौशल का नाम है CNC प्रोग्रामिंग।
2: जी हाँ दोस्तों, आज का युग तकनीक और ऑटोमेशन का युग है। बड़े बड़े कारखानों और उद्योगों में मशीनों की मदद से बहुत ही सटीक और तेजी से काम किए जाते हैं। इन मशीनों को चलाने और नियंत्रित करने के लिए जिस विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है उसे CNC प्रोग्रामिंग कहा जाता है।
1: तो सबसे पहले जानते हैं कि CNC का पूरा नाम क्या है। CNC का अर्थ है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, यानी ऐसी मशीनें जिन्हें कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर नियंत्रित किया जाता है।
2: अब बात करते हैं CNC प्रोग्रामिंग की। CNC मशीनें स्वयं निर्णय नहीं लेती, उन्हें यह बताना पड़ता है कि कौन सा कार्य कैसे करना है। इसके लिए विशेष कोड लिखे जाते हैं जिन्हें G कोड और M कोड कहा जाता है। CNC प्रोग्रामर इन कोड्स की सहायता से मशीन को निर्देश देता है और उसे किस दिशा में चलना है, कितनी गति से कार्य करना है और किस प्रकार का उत्पाद तैयार करना है निर्देश देता है।
1: CNC प्रोग्रामिंग सीखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्किल्स की आवश्यकता होती है। सबसे पहले ड्राइंग और डिजाइन को समझने की क्षमता होनी चाहिए। इसके साथ साथ गणित की बुनियादी जानकारी, मापतोल की समझ और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान भी उपयोगी होता है।
2: दोस्तों आज कई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलिटेक्निक कॉलेज और कौशल विकास केंद्र CNC प्रोग्राम के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों में छात्रों को मशीन संचालन, CAD, CAM, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग कोड और उत्पादन क्रियाओं की जानकारी दी जाती है।
1: साथियों CNC प्रोग्रामिंग एक ऐसा कौशल है जो रोजगार के अनेक अवसर प्रदान करता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आप CNC ऑपरेटर, CNC प्रोग्रामर, मशीन सेटर, CAD, CAM इंजीनियर या उत्पादन तकनीशियन के रूप में कार्य कर सकते हैं। अनुभव बढ़ने के साथ साथ वेतन और जिम्मेदारियां भी जरूर बढ़ती हैं।
2: दोस्तों भारत में मेक इन इंडिया और विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार के कारण कुशल CNC पेशेवरों की मांग लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि कौशल युवाओं के लिए एक बेहतर करियर विकल्प बनता जा रहा है।
1: यदि आप तकनीक में रुचि रखते हैं, मशीनों के साथ काम करना आपको पसंद है और कुछ नया सीखने का उत्साह रखते हैं तो CNC प्रोग्रामिंग आपके लिए एक शानदार अवसर हो सकता है।
2: दोस्तों सेगमेंट कौशल विकास में बस इतना ही।
1: साथियों अभी आपने सुना हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट कौशल विकास, जिसके अंतर्गत आज हमने आपको जानकारी दी CNC प्रोग्रामिंग के बारे में। बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की ओर इस प्यारे से गीत को सुनते।

0: आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले सेगमेंट की ओर। और आज हमारा अगला सेगमेंट है द वेलनेस जर्नी, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं सर्वाइकल के बारे में।
1: साथियों, हमारे सेगमेंट वेलनेस जर्नी में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो आजकल युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में तेजी से बढ़ रही है। ये समस्या है सर्वाइकल दर्द की, जिसमें आम भाषा में गर्दन का दर्द भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिर सर्वाइकल होता क्या है।
0: साथियों, हमारी गर्दन में रीढ़ की हड्डी का ऊपरी भाग होता है, जिसे सर्वाइकल स्पाइन कहा जाता है। इसमें सात कशेरुकाएं होती हैं जो सिर को सहारा देती हैं और उसे घुमाने फिराने में मदद करती हैं। जब इन हड्डियों, डिस्क और आसपास की मांसपेशियों में दबाव, सूजन या क्षति होती है तो गर्दन में दर्द और अकड़न महसूस होने लगता है। इसी स्थिति को सामान्यतः सर्वाइकल समस्या कहा जाता है। आई साथियों बात करते हैं कि सर्वाइकल होने के मुख्य कारण क्या हैं।
1: तो दोस्तों, लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर का उपयोग करना, गलत मुद्रा या पोस्चर में बैठना या सोना, शारीरिक गतिविधियों में कमी, बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों का घिसना, गर्दन में चोट लगना और तनाव और मानसिक दबाव, ये सब सर्वाइकल की परेशानी के शुरू होने के आम कारण हैं। अब जानते हैं कि सर्वाइकल के लक्षण क्या होते हैं।
0: गर्दन में लगातार दर्द या अकड़न, सिर दर्द, विशेषकर सिर के पीछे के हिस्से में कंधों और बाजुओं में दर्द रहना, हाथों में झनझनाहट या सुन्नपन रहना, गर्दन घुमाने में कठिनाई होना, चक्कर आना, कमजोरी या थकान महसूस होना, ये सभी लक्षण सर्वाइकल के प्रमुख लक्षण हैं।
1: दोस्तों, बात करें अगर इसके इलाज की, तो सर्वाइकल का इलाज उसकी गंभीरता पर निर्भर करता है। सामान्य मामलों में जीवन शैली में बदलाव कर, कुछ सावधानियां बरतकर हम इससे राहत पा सकते हैं। जैसे सही पोस्चर को अपनाकर, सही तकिए का उपयोग करके, नियमित व्यायाम करके, गर्म सिकाई करके, पर्याप्त आराम लेकर, भारी वजन उठाते समय सावधानी बरतकर, मोबाइल और लैपटॉप का उपयोग सीमित करके और अपने वजन को नियंत्रित रख के, इन सब चीजों का उपयोग करके हम सर्वाइकल में राहत पा सकते हैं।
0: साथियों, सर्वाइकल कोई असाध्य बीमारी नहीं है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। सही जीवन शैली, नियमित व्यायाम और उचित बैठने उठने की आदतों से इस समस्या से काफी हद तक बचा जा सकता है।
1: दोस्तों, सेगमेंट वेलनेस जर्नी में बस इतना ही।
2: दोस्तों, प्रोग्राम में बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट शैक्षणिक संस्थान की ओर। सेगमेंट शैक्षणिक संस्थान में आज हम बात करने जा रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की। ये भारत का एक प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय है जो कृषि शिक्षा अनुसंधान और किसानों के विकास के लिए कार्य करता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं कि आखिर रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है क्या।
1: रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष 2014 में हुई थी। इसका मुख्य परिसर झांसी में स्थित है। विश्वविद्यालय का नाम वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के सम्मान में रखा गया है।
0: इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना, नई कृषि तकनीकों का विकास करना तथा किसानों तक वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाना है। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र की कृषि समस्याओं के समाधान पर भी कार्य करता है।
1: साथियों अगर हम बात करें विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को कृषि और उससे जुड़े विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती है। यहाँ पढ़ाए जाने वाले प्रमुख पाठ्यक्रम हैं बीएससी ऑनर्स कृषि, बीटेक कृषि अभियांत्रिकी, एमएससी कृषि और पीएचडी कार्यक्रम।
0: दोस्तों कृषि विस्तार एवं ग्रामीण विकास से जुड़े पाठ्यक्रम में केवल किताबों की ही पढ़ाई नहीं कराई जाती है बल्कि विद्यार्थियों को खेतों में जाकर व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। छात्र फसल उत्पादन, मृदा विज्ञान, बागवानी, कृषि अर्थशास्त्र, पशुपालन, कृषि मशीनरी और आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में भी सीखते हैं।
1: विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया गया है कि छात्र पढ़ाई पूरी करने के बाद कृषि वैज्ञानिक, कृषि अधिकारी, शोधकर्ता, उद्यमी या कृषि सलाहकार के रूप में अपना करियर बना सकें।
0: दोस्तों बात करें यहाँ पर मिलने वाली फैसिलिटीज की तो आधुनिक प्रयोगशालाएं हैं, विशाल पुस्तकालय है, स्मार्ट कक्षाएं हैं, अनुसंधान फार्म्स हैं, छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है और खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां भी कराई जाती हैं।
1: और इसके साथ साथ ही इंटरनेट और कंप्यूटर सुविधा भी यहां उपलब्ध है।
0: दोस्तों इस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी कृषि विभाग, बैंकिंग क्षेत्र, कृषि अनुसंधान संस्थानों, कृषि उद्योगों और निजी कंपनियों में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा और अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ का आधुनिक पाठ्यक्रम, व्यवहारिक प्रशिक्षण और उत्कृष्ट सुविधाएं विद्यार्थियों को सफल कृषि पेशेवर बनने में मदद करती हैं।
0: यदि किसी छात्र की रुचि कृषि विज्ञान और ग्रामीण विकास में है तो यह विश्वविद्यालय उसके लिए एक उत्कृष्ट विकल्प साबित हो सकता है।
1: और साथियों हमारे सेगमेंट शैक्षणिक संस्थान में बस इतना ही।
0: तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सेगमेंट। अब वक्त हो गया है कार्यक्रम के स्टार्टिंग में पूछे गए सवाल के जवाब को जानने का। तो आज का हमारा सवाल था, भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इस सवाल का सही जवाब है 1975।
1: और हमारे आज के सवाल के सही जवाब देने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों के नाम हैं मोहम्मद फैजान, मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, हीरामणि वर्मा, नजमुल हुदा जावेद, लाल बाबू दीवाना, अजीत कैसाना, उत्तम सिंह जंधेल, सुदर्शन शाह, सुरेश राठौड़, दिनेश वर्मा, बबलू ठेकेदार, नानक वर्मा, चौधरी राजवीर सिंह, बी आई धाकड़, मोहम्मद आमिर अंसारी, श्री कृष्ण भाटे, उत्तम कुमार भगत, संजय ढींगिया, किशन सपकाल, सोहन जोशी, धर्मेंद्र छिपा, आजन कुमार, अल्ताफ हुजरे, राम कुमार रेवार, नबी हसन अब्बासी, सिद्धार्थ गोंडानी, बलवंत कुमार वर्मा, जाकिर मंसूरी, वलीउल्लाह अंसारी, राजू मिगलानी, निसार सलमानी, राधेश्याम पांडे, कैलाश फूलमाली, फागुराम यादव, दिग्दर्शन गौड़, प्रवीण चौहान, मसरूर हसन, बी कमाल, विठल सरोज, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, इरशाद अहमद, सुरेश ककनेजा, दिलशाद हुसैन, मोहम्मद दानी सिद्दीकी, नारायण प्रधान, लाल गिरी गोस्वामी, हल्के राजपाल यादव, देवशंकर तमूरिया, एस के अल्लाह बख्श, विनोद मूनत, शमसुल कमर राही, अशोक ढाले, विजय सुरलकर, एमडी यासीन अनजान, मुजफ्फर अली खान, एम अफसल ताज, आकाश रस्तोगी, बीपी गौतम,
0: शाहजी बोटके, पुंजा जी नावकर, भाई रफत साहब, गंगा सिंह रावत, शेख मूसा, फजान अली, आमिर हुसैन, मिसबा शमशी, रवि रस्तोगी, रियासत हुसैन सिद्दीकी, मोहम्मद जैद अली, धीरज भाई रवारी, अक्स सक्सेना, मोहम्मद सईद अब्बासी, लाल मोहम्मद अंसारी, गजानन येले, सतेन चंसोलिया पजोनिया, शाहरून नूर अंसारी, रवि कुमार, लाडला जी, मुकेश कश्यप, अशोक दले, योगेश, दुर्गाराम साहू, आप सभी को इस सवाल का सही जवाब देने के लिए बहुत बहुत बधाई। चलिए सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: तो दोस्तों अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा बताना ना भूलें हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी आई है युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन संख्या है 244901।
1: और हमारे जो श्रोता साथी हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना फीडबैक भेजना चाहते हैं वे हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें। हमारा नंबर है 9410087876।
0: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.gmail.com।
1: और दोस्तों कल फिर मिलेंगे नई उमंग, नए विषय और नई आवाज़ के साथ। तब तक के लिए आप अपने रेडियो साथी फरहीन समद
0: और हर्ष को दीजिए इजाज़त।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: है।
1: It has always been, is and will remain so.
2: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का एसएसकेएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडिया वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर संध्या के 6:05 हुए। आप सुन रहे हैं इस समय हमारी दूसरी सभा के प्रसारण। अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं।

कुमारी शिवानी, पुत्नी पुत्री श्री रामबत, मोहल्ला शाहजीपुरा सरापत्रीन। विगत 28 अप्रैल

0: 2026 से लापता है। शिवानी की कद 5'2", रंग गोरा, चेहरा साफ, शलवार सूट पहने हुए है। यदि इनके बारे में किसी को कोई सूचना मिले अथवा जानकारी प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। थाना जनपद संबल या इस नंबर पर भी सूचित कर सकते हैं 8650582308। सूचना समाप्त हुई। एक अन्य सूचना खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में, जनपद संभल हमें सूचित करते हैं कि कुमारी मुस्कान, पुत्री श्री धर्मवीर 13 मई 2026 से लापता है। मुस्कान की उम्र 14 वर्ष, कद 5 फुट, शरीर की बनावट सामान्य है, चेहरा लंबा है व आंखों की रंग काला है। जीन्स व शर्ट पहने हुए है। यदि इनके संबंध में किसी को कोई सूचना मिले अथवा जानकारी प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। थाना बनियाटेर, जनपद संभल या इस नंबर पर भी सूचित कर सकते हैं 8586868866। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।
1: गीत सुनवाने के लिए ख्वाहिशों का पैगाम,
2: अब आएगा खतों के साथ साथ ईमेल और व्हाट्सएप का भी दामन थाम।
1: सोमवार से शनिवार दिन में 12:10 पर हम करेंगे कुछ गीत आपके नाम।
2: जी हाँ, गीत आपके नाम।
1: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876।
2: आप हमें अपनी फरमाइश ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है
3: गीत आपके नाम aarrampur@gmail.com। इसे एक बार फिर से सुन लीजिए gettapkenaamaarrampur@gmail.com। गीत आपके नाम सुनिए सोमवार से शनिवार दिन में 12:10 पर आकाशवाणी रामपुर के मीडियम वेव 336.7 मीटर और 102.9 FM पर।
0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 MHz पर आप सुन रहे हैं इस समय हमारी दूसरी सभा के प्रसारण। संध्या के 6:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में, फिल्म का नाम है राजा।

अभी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक को, फिल्म का नाम था राजा। कार्यक्रम का अगला गीत कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में, संगीत है नुसरत फतेह अली खान का और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। फिल्म का नाम है कच्चे धागे।

फिल्म कच्चे धागे के गायक कुमार सानू और अलका याग्निक के इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है।

अभी आपने सुना चित्रपट संगीत। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडिया वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं इस समय हमारी दूसरी सभा के प्रसारण। संध्या के 6:20 होने को है। अब सुनिए किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान साथियों को आपके अपने भैया दीपक
1: और आपकी बहन ममता की
0: राम राम।
1: और दीपक भैया कैसे हाल चाल हैं?
0: ममता बहन हमारे तो हालचाल ठीक ठाक हैं और हमारे जो किसान साथी हैं हमें उम्मीद है उनको हालचाल ठीक ठाक होंगे और अपनों जो पशु हैं या खेतीबाड़ी के काम हैं वे अपने समय रहत कर रहे होंगे।
1: हाँ दीपक भैया, क्योंकि काम करने भी जरूरी हैं और अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान रखने हैं।
0: बिल्कुल।
1: और गर्मी तो देखो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतनी है। अपने खान पान को ध्यान रखने है, पानी है उसकी जो पीने की क्षमता है उसको भी ध्यान रखने हैं और खेत के तो काम करने ही हैं। इस समय हमारे भैया बहन की जो पौध है धान की वो तो पड़ी चुकी है।
0: हाँ।
1: और कुछ भैया बहन हमारे बाजरा और खरीफ की जो फसल है ज्वार, इनकी भी बुवाई करने की तैयारी कर रहे हैं।
0: देखो बरसात की जब शुरुआत ही जाती है, जब मानसून आ जाता है तो इनकी बुवाई सुनिश्चित ही जाती है कर लो, तो इस समय इसकी बुवाई पहली बारिश के बाद में कर सकते हैं। और अगर हम ज्वार की बात करें ना जैसे, तो हम बाको खेत तैयार करके उसकी बुवाई समय से कर दें।
1: बिल्कुल दीपक भैया, क्योंकि जो जून को अंतिम सप्ताह है और जुलाई को पहलो पखवाड़ा है तो मानसून की पहली बारिश होने की संभावना है भी और आ चुका है मानसून भी, तो बीज जो है इसको हमारे किसान भैया ध्यान रखें, उपचारित जरूर कर लें।
0: हाँ।
1: और खेत की जो जुताई है ना उसको खूब अच्छी तरह से करें और खेत जहाँ तक है वो समतल करें, जिससे कहा होएगो दीपक भैया कि हमारा जल भराव ना होएगो।
0: देखो जल भराव बिल्कुल जो है हमारी फसल बिल्कुल बेकार हो जाती है। और जहाँ पे भैया जल निकासी की व्यवस्था अवश्य देख लें, वहाँ पे ही बुवाई करें जाके।
1: और खेत की एक बार मिट्टी पलटन वाले हर से दो तीन बार देसी या कल्टीवेटर से जुताई करके उसमें अच्छी तरह से पाटा लगा दें।
0: हाँ।
1: और खेत को जो बात है वो समतल, वो उसको पूरा पूरा ध्यान रखें और खेत की जो मिट्टी है ना वो भुरभुरी होनी चाहिए, तभी उसमें अच्छी उपज मिलता है।
0: और देसी गोबर की खाद, सड़ी खाद उसमें मिला दें और अच्छे से मिला के जो है उसकी बुवाई कर दें।
1: और बात करें जो बीज की उपचारित करने की, तो इसको अपने भैया बहन उसे जरूर उपचारित करें, उससे जो भी कीटनाशी है या रोग लगन वाले हैं उनकी संभावना कम रहेगी। और फबूद नाशक जैसे जो है उससे जरूर उपचारित करें, क्योंकि इससे भैया अंकुरण अच्छा होता है और रोग से बची रहता है।
0: हाँ। और देखो प्रमाणित बीज को ही चयन करें, जिससे जो है देखो जैसे हाइब्रिड बीज वगैरह आ रहे हैं, जिससे जो हमारा उत्पादन जो है अच्छा होगा तो हमें अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा।
1: और बात करें मात्रा की बीज की, तो ज्वार की जो बीज की मात्रा है वो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और दाने और चारा जो है उसके दोनों के लिए उपयुक्त है। और बाजरा की जो मात्रा है बीज की वो 1.5 किलो से 2 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी पर्याप्त मात्रा है।
0: हाँ। और अगर हम इसकी दूरी की बात करें तो ज्वार जो है कतार से कतार 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की 15 से 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए। और अगर हम बाजरा की बात करें तो कतार से कतार 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 10 से 15 सेंटीमीटर रख सकते हैं।
1: हाँ दीपक भैया, और कतार से जो कतार की बात कही है वो तो है ही, इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है।
0: बिल्कुल।
1: वो है गहराई की।
0: हाँ।
1: कि बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर से अधिक गहरो ना बोए।
0: हाँ।
1: और इसके साथ ही बात आती है जब हमारी बुवाई हो जाती है।
0: हाँ,
1: उसके बाद उर्वरक की।
0: हाँ, तो उर्वरक की हम बात करें तो 80 से 100 किलोग्राम हम नाइट्रोजन दे सकते हैं और 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस। और मिट्टी को जो है परीक्षण जरूर करवा लें, मिट्टी की जांच कराने के बाद ही खाद को दें।
1: बिल्कुल दीपक भैया, जब परीक्षण वाली मिट्टी की जांच वाली बात कही है तो वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम मिट्टी की जांच करा लेते हैं तो हम अपनी खेती में जो भी उर्वरक हैं, रसायन हैं, जो भी चीज़ डालते हैं तो उनकी ज़्यादा मात्रा ना डालने पड़ता है।
0: हाँ।
1: क्योंकि मिट्टी की जांच से हमें पता चल जाता है कि हमारी मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी है और फिर उन्हीं के हिसाब से हम उनकी पूर्ति करते हैं तो कम लागत में अधिक आय की भी प्राप्ति होती है।
0: और हम जैसे इसमें सिंचाई की बात करें तो जब वर्षा पर आधारित फसल होती है कम पानी की आवश्यकता होती है और इसमें जो है सूखे की स्थिति में जो है फूल आन पर और दाना भरने के समय पर सिंचाई बहुत आवश्यक है।
1: बिल्कुल। और ध्यान रखने हैं सिंचाई करते समय ज़्यादा जलभराव ना हो, यानी नमी बनी रहा है, इस बात को ध्यान रखने हैं। ज़्यादा जलभराव होने से हमारे जो फसल है वो खराब होने की संभावना बनी रहती है।
0: और जैसे इसमें खरपतवार उगे आते हैं जैसे फसल के बाद में, तो 20 से 25 दिन के बाद में उसकी निराई गुड़ाई करा दें और अगर आवश्यकता हो रही है तो खरपतवार नाशी को प्रयोग कर सकते हैं, ना तो जहाँ तक होवे तो वहाँ तक जो है निराई गुड़ाई करें।
1: हाँ तो दीपक भैया, ये तो ही हमारे ज्वार और बाजरा की बुवाई की संबंध में कुछ बातें, और हमारी जो भी जानकारी वो हमारे भैया बहनों को जरूर पसंद आई होगी। और हमारे बहुत से ऐसे भैया हैं जो तरह तरह से अपनी खेती में उनको बातों को ध्यान रखते हैं, नई नई जानकारियाँ जुटाते हैं, और ऐसे ही आज हमारे कार्यक्रम में सफल कृषि स्टार्टअप में भेंटवार्ता है, प्रगतिशील कृषक से बातचीत की है हमारे विनय वर्मा जो सर हैं, भैया जी हैं उन्होंने, तो जो आज ही सफल कृषक हैं हमारी भेंटवार्ता में, श्री गुरु मंगत सिंह जी। तो सुन लेते हैं जा भेंटवार्ता प्रगतिशील कृषक से, काका बात की है, काका जानकारी जुटाई है हमारे डॉक्टर विनय वर्मा जी ने।
2: मंगत सिंह चीमा जी हैं जो कि एक बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित खेती करते हैं, प्रगतिशील किसान हैं, ग्राम सिमरिया ताल के महाराजपुर पूरनपुर से आए हुए हैं, हम उनका कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। गुरु मंगत सिंह जी, आप खेती कर रहे हैं और बहुत सारे किसान

0: खेती से परेशान होकर के वो कहते हैं कि अब इसमें फायदा नहीं है। आप पहले तो ये बताएं कि कौन कौन सी फसलें अपने खेतों पर उगाते हैं और किन तरीकों से उगाते हैं ताकि आपको अच्छा फायदा होता है।
1: डॉक्टर साहब, खेती बहुत दिल से करते हैं और हमारा ये पुश्तैनी काम है। हम लगभग 6 से 7 फसलें साल में लेते हैं, जिसमें से हमारी मुख्य रूप से जो फसलें हैं गन्ना, गेहूं, धान, इसके अलावा मटर, आलू और तिलहन में लाही की, और इसके अलावा हम लोग 2 साल से तरबूज और खरबूज की भी खेती इसमें जोड़ दी है।
0: अच्छा।
1: तो ये सारी खेती हम करते हैं और इसको करने का हमें ये लाभ है कि किसान जो साल में 12 महीने होते हैं, जो ज़्यादातर किसान है 6 महीने के बाद उसको पैसा मिलता है,
0: हाँ
1: चूंकि हम 6 से 7 फसलें करते हैं तो 2 महीने बाद हमारी फसल का पैसा हमें मिल जाता
0: मिल
1: है।
0: जाता है। आपने गन्ना के साथ तरबूज और खरबूज की बात की है, तो ये कब बुआई करते हैं और कैसे सहफसली खेती करते हैं?
1: जो गन्ने में हम लोग सारा गन्ना बोते हैं, ट्रेंच मेथड से गन्ना बोते हैं,
0: हाँ
1: और ये जो गन्ना फरवरी में बोते हैं, इसमें हम लोगों ने तरबूज और खरबूज की खेती करी थी, तो जिसमें खरबूज का हमें अच्छा लाभ मिला,
0: ठीक है।
1: और ये सारा गन्ना फरवरी में बोया जाता है। और जो अक्टूबर में गन्ना बोते हैं, अक्टूबर वाले गन्ने में हम गन्ने के अंदर मटर की खेती करते हैं, जिसका हमें लाभ अच्छा मिलता है।
0: अच्छा।
1: और खाली खेतों में, जो हमारे खेत खाली जिसमें पूरी मटर की ही खेती करते हैं, तो उसमें मटर लगाते हैं, आधे क्षेत्रफल में आलू लगाते हैं। लगातार एक खेत में एक फसल लगाने से उतना लाभ नहीं मिलता। आलू वाले खेतों में गन्ने की फसल बहुत अच्छी होती है, और मटर वाले खेतों में हम लोग पिपरामेंट मेंथे की खेती करते हैं,
0: अच्छा।
1: उसका हम लोगों को अच्छा उसका उत्पादन हमें मिलता है।
0: इसका मतलब है कि समय समय पर आप फसलें भी खेत में बदल देते हैं।
1: हम कभी भी एक खेत में एक फसल नहीं रखते। जिस खेत में इस साल गन्ना लगा है, उसमें नेक्स्ट ईयर पेड़ी लेने के बाद दूसरी फसल बोते हैं।
0: अच्छा। और बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि गन्ने की फसल लेते हैं, उसमें कोई सहफसली खेती नहीं लेते हैं। क्या लगता है उनको कि उससे नुकसान होता है, या उन्हें जानकारी नहीं है, या वो सही तरीके से कर नहीं पाते हैं?
1: एक्चुअली ऐसा है कि आज भी हमारे गांव में जो गन्ने की बुआई है वो पुरानी पद्धति से हो रही है। आज भी साधारण रेजर से किसान बहुत ही घना गन्ना बो रहा है,
0: हाँ
1: और वो जल्दी वहां पर, वो प्रचार प्रसार के अभाव से उनकी
0: हाँ
1: सोच एक ये बनी हुई है कि जितना गन्ना घना बोएंगे, जितना ज्यादा बीज डालेंगे, उतना
0: हाँ
1: ज्यादा हमारे खेत में
0: पैदा
1: फसल
0: होगा।
1: पैदावार होगी। परंतु ये बिल्कुल निरर्थक है, ये गलत है। आपको सही डिस्टेंस पर, सही दूरी पर आप फसल बोएंगे, तभी आपको लाभ मिलता है, और इसी कारण वो सहफसली से दूर रहते हैं। जब हम लोग गन्ने को बोते हैं, तो गन्ने में हमारा डिस्टेंस 3.5 फुट जो बीच की जगह होती है, तो उस जगह का भी हम उपयोग कर लेते हैं। जब उसके अंदर मटर बोते हैं, तो हमारा खरपतवार, क्योंकि खरपतवार को भी तो जगह चाहिए, गन्ने वाली जगह पर हमारा गन्ना है और खरपतवार वाली जगह पर हमारी सहफसली है, तो हमें इससे दोहरा लाभ होता है। एक तो हमें फसल एक्स्ट्रा मिलती है, दूसरा हमें खरपतवार से हमें लाभ मिलता है।
0: अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और सॉयल टेस्टिंग यानी जो मिट्टी की जांच की बात की जाती है, वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि भाई हर साल कम से कम एक बार आप मिट्टी की जांच जरूर करा ले। आप भी करवाते हैं अपने खेतों पर?
1: सर, मैं मिट्टी की जांच समय समय पर करवाता हूं, और ईश्वर की कृपा से हमारे सभी खेतों में कभी भी किसी भी तत्व की कमी नहीं होती।
0: अच्छा।
1: और हम लोग एक चीज को देखते हैं कि धरती हमारी माँ है, तो अपनी माँ को कैसे हम अपना मजबूत बना सकें, तो जितना उसमें हम अपना कृषि अवशिष्ट पदार्थ उसमें गलाएंगे, सड़ाएंगे, उतना ही जमीन मजबूत बनती है, हमारी अगली फसलों में उसका हमें लाभ मिलता है।
0: आपने बताया है कि जमीन में सड़ी गली चीजों से उसमें पोषक तत्व मिलते हैं। पहले के समय में गोबर खाद अच्छी हो जाती थी क्योंकि पशु पाले जाते थे, खेती उनसे होती थी।
1: जी
0: अब पशुओं की कमी भी हो गई है, खाद की कमी हो गई है, कंपोस्ट की कमी हो गई है। कैसे पूर्ति करते हैं आप अपने खेतों में इसकी?
1: सर, क्रोपको ने कंपोस्ट खाद बनाना शुरू कर दिया है, हम लोग बल्क में उनसे लेते हैं। चीनी मिल में प्रेस मड, हमारे यहाँ चीनी मिल का क्षेत्र है, चीनी मिल में बहुत ज्यादा प्रेस मड होती है, तो हम लोग स्पेशल वहां से उनसे खरीद के प्रेस मड अपने खेतों के लिए रखते हैं। जितना ऑर्गेनिक मैटर हमें जहां से भी मिलता है, चाहे सड़ा हुआ आलू मिल जाए, तो हम कोल्ड स्टोर से वो भी उठाकर खेतों में डलवा देते हैं, और जितना ये चीजें हैं, इन चीजों को हम लोग यूज करते हैं।
0: जैविक खेती की बात की जाती है क्योंकि अब देखा गया है कि फसलों में उर्वरक से लेकर के इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो भी दवाइयां इनका प्रयोग हो रहा है, तो इसकी तरफ आपने रुझान किया है, क्या सोचना है इसके बारे में?
1: सर बिल्कुल, हम लोग जो समय के हिसाब से नहीं चलता वो बहुत पीछे रह जाता है। आज के समय में तीन तरह की दवाइयां आती हैं, रेड लेबल, येलो लेबल एंड ग्रीन लेबल। तो हमारे फार्म पर, पूरे फार्म पर कभी भी रेड लेबल की दवाई का तो बिल्कुल यूज करते ही नहीं है। मोस्टली हम लोग ग्रीन लेबल पर ही काम करते हैं, ग्रीन लेबल की जो दवाइयां आती हैं। समय के हिसाब से हमें अपनी फसलों को अच्छा उत्पादन को ज्यादा लेने के लिए टेक्नोलॉजी का जरूर यूज करना पड़ता है, वो थोड़ा महंगा पड़ता है हम लोगों को, लेकिन हम लोग हमेशा ग्रीन लेबल की दवाइयों को ही यूज करते हैं और अपने खेतों में बिना जरूरत के कोई भी अनावश्यक रूप से हम लोग वो चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं। जिस चीज की जरूरत होती है हम उसी चीज का प्रयोग करते हैं। चूंकि हम खेती में फसलें बदल बदल के लगाते हैं, हमारे खेत की सॉयल कंडीशन, हमारे खेत की ताकत ज्यादा है। और दूसरा जो बीज है, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों से, खेती के लिए दो ही चीजें सबसे अच्छी होती हैं, पहले धरती, दूसरा बीज। आज किसान अभाव के कारण बीज को ना उपयोग करके अनाज का ही उपयोग खेतों में कर रहा है। मैं अपने हमेशा बीज जो है हमेशा शोध केंद्र से जुड़ा हूँ, गेहूं का बीज ब्रीडर सीड थोड़ी मात्रा में लाकर अपने खेतों में बोता हूँ, उससे मैं अपना बीज तैयार करता हूँ। आलू का बीज मेरठ यूनिवर्सिटी से थोड़ा लेके आता हूँ, वो अपने खेतों में तैयार करता हूँ। गन्ने का बीज शोध केंद्र से थोड़ी मात्रा में लेके आता हूँ, अपना बीज तैयार करता हूँ। इतने सालों में अधिकतर मैं अपने खेतों का ही बीज यूज करता हूँ। अभी मटर है, मटर में भी अगर हम बोते हैं तो उसमें से अपना आधा एकड़ पका लेते हैं। जब किसान के पास अपना बीज होगा, और सबसे ज्यादा आज एक्चुअली लागत किसान की बीज पर आती है, मटर का बीज 14,000-15,000 रुपए क्विंटल बिक रहा है, जब किसान का अपना तैयार होता है तो वो 3,000 रुपए क्विंटल होता है। लेकिन थोड़ी सी लापरवाही या कहिए कि संसाधनों की कमी के कारण वो अपना बीज नहीं रख पाता। अगर वो अपना बीज रख ले तो उसकी काफी समस्याओं का हल हो सकता है, और किसान को अच्छा बीज मिले और जमीन की हमारी सॉयल कंडीशन अच्छी हो तो हमारा आधा काम तो हो जाता।
0: जहाँ पर आप इस तरीके की वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित खेती करते हैं तो सामान्य रूप से और भी किसान देखते होंगे आपकी खेती को, कुछ उनके अंदर सोच और इस बदलाव का तरीका अपनाने का कुछ आया है?
1: सर मैंने सबसे पहले अपने गांव में आलू की खेती शुरू करी। और मैं एक चीज कहता हूँ, जब आप सब फसल लगाते हैं, आप कोई भी खेती को करो उसको एक बार एकदम बढ़ा मत दो और तुरंत छोड़ मत दो, आप उसको उस लिमिट में हमेशा करते रहिए। तो जब मैंने शुरुआत करी तो मैंने 10 एकड़ में अपना आलू और मटर करता था। मैं आज भी 10 एकड़ में लगाता हूँ, ना 1 एकड़ ज्यादा ना कम। अभी उन्होंने गांव में मुझे देख देख के, हमारे गांव गांव में 150 एकड़ में आलू लगा है और वो मटर की खेती भी चालू हो गई है। आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद करके दिखाने की जरूरत है। जब आप करके खुद दिखाते हैं तो वो जो बंदा अच्छी चीज होती है वो खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब आपका गन्ना 600 क्विंटल पर एकड़ का क्विंटल निकल रहा है तो किसान खुद ही देखता है कि भैया कुछ तो अच्छा है। तो वो उसको धीरे धीरे जागरूकता फैल रही है हमारे तरफ, और आज मेरे गांव में काफी हद तक ट्रंच मेथड से लगाने लगे हैं, मटर की खेती करने लगे हैं, आलू की खेती करने लगे हैं और मेंथे की भी खेती करने लगे हैं। देख रहे
0: आलू की खेती में क्या खास बात आप अपनाते हैं, बुआई कैसे करते हैं, खुदाई कैसे करते हैं, इस कुछ तरीका बताएं।
1: सर हम लोग आलू का काम हमारा सामूहिक रूप से होता है। हमारे एक कृषक हैं बलकार सिंह जी, तो वो आलू की बुआई की मशीन है, वो हमारे गांव में 150 एकड़ में वो अकेले ही किराए पर बुआई करते हैं। हम लोगों का काम इतना होता है कि लेबर से, आज के समय में लेबर की बहुत बड़ी दिक्कत है, तो वो बलकार सिंह जी आ जाते, हमें एक लेबर देनी पड़ती, आलू का बीज देना पड़ता है। वो मशीन से हमारे खेतों में आलू की बुआई करके चले जाते हैं। उसके बाद में हम लोगों को उसमें आलू में पानी और उसकी देखरेख के लिए 2-3 स्प्रे करनी पड़ती है। जब खुदाई का समय आता है तो वो खुद ही बलकार सिंह जी आ जाते हैं, वो आकर आलू खोद जाते हैं, तो हम लोगों को इतना करता है कि आलू को इकट्ठा करके कट्टे में डालना पड़ता है। तो वो एक मैनेजमेंट है, एक हमारा सहयोग है पूरे गांव का। तो वो पूरे गांव में वो खुद ही लगाते हैं। अच्छा, दूसरा उनके पास जमीन का एंड होल्डिंग कम है तो उनका भी एक रोजगार बन गया कि भाई हम कम से कम 150 एकड़ में बुआई करते हैं, खुदाई करते हैं, तो उसका किराया उनको मिल जाता है। तो हम लोग ऐसे सहयोग से ऐसे काम करते हैं।
0: बीज कौन सा प्रयोग करते हैं आलू में, क्योंकि आलू की बहुत वैरायटी है और अलग अलग उनकी क्वालिटी है?
1: सर आलू में जो हमारे यहाँ प्रचलित है पुखराज और ख्याति आलू।
0: अच्छा,
1: ये दो आलू हम लोग लगाते। इसका फायदा ये है, अगर इसको आप कच्चे में में भी खोदना चाहते हैं तो कच्चे में भी ये कम दिन की वैरायटी है, कच्चे में भी हो जाता है, और अगर आप इसको पकाकर भी खोदना चाहते हैं तो ये आराम से हो जाता है। और हमारे यहाँ ये दो ही वैरायटी ज्यादा प्रचलित है।
0: और कुछ बताएं कि किस तरीके से आज का किसान सही तरीके से समृद्ध हो सकता है, क्योंकि चाहे वैज्ञानिक की बात करें, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, रेडियो के माध्यम से हो, सभी लोग कहते हैं कि भाई वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित किसान अपनाए, खेती करे और अच्छा लाभ उठाए, फिर भी अभी पूरी जानकारी किसानों तक नहीं पहुंची है और ना वो इसे अपना पा रहे हैं।
1: सर, अपना काम खुद ही संवारना पड़ेगा, अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। नई सोच, नई तकनीक से हमें काम करना पड़ेगा। हमें खेती वही करनी है, लेकिन तरीका बदलना है।
0: ये तरीका बदलने का ज्ञान आपको कहाँ से मिला है और कहाँ से किसान ले?
1: सर, ज्ञान तो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। मैं सिख धर्म से जुड़े हैं तो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें ज्ञान है। जपजी साहब का पाठ करते उसमें एक बात आती है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत्व। तो धरती हमारी माँ है, तो अब माँ की जितनी सेवा करिए,
0: बिल्कुल,
1: और जितना आप टेक्नोलॉजी को आप यूज कीजिए। हमारे पास आज क्या है, गूगल है। मैं इसराइल की खेती देखता हूँ, मैं कनाडा की खेती देखता हूँ, मैं अमेरिका की खेती देखता हूँ। फिर दूसरा, हमें ये नहीं पद्धति नहीं हो, ये नहीं होना चाहिए कि हमने खाली अनाज उगाना है। हमने ये देखना है कि हमारी इस थाली के अंदर क्या क्या चीजें मुझे पसंद है, हमें वो पसंद की चीजें उगानी है। हम लोगों ने इस बार तरबूज उगाया, शुगर केन बेबी तरबूज उगाया। हमने देखना है कि आज दुबई की मार्केट में कौन सा तरबूज अच्छा चल रहा है। जिस दिन ये चीजें हम लोगों के सहयोग, सरकार हमें सहयोग देगी। अभी आज का समय क्या है कि किसान के ऊपर ही सारी बात रखती जाती है, खेत की जुताई से लेकर बीज को लाने और मंडीकरण करने का सारा काम किसान का जिम्मा हो गया। हमारी जो संस्थाएं वो अपना अपना काम करें और हम लोग मिलजुल कर अगर काम करें तो हम आज अपने देश को समृद्ध बना सकते हैं, हम अपने किसान को भी समृद्ध बना सकते हैं।
0: बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो जागरूक हैं और अपना उत्पादन करते हैं और वो दूर की मंडी में अपना अनाज या अपना उत्पाद भेजते हैं। आपने भी लोकल मार्केट के अलावा कोई ऐसा उत्पाद बाहर भेजने का, बाहर का मतलब जो है दिल्ली है या दूर की मंडी में भेजने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ कभी कभी अच्छा मूल्य मिल जाता है?
1: सर, मैंने ब्लैक गेहूं बोया पिछले साल, और वो ब्लैक गेहूं की इस बार इतनी डिमांड थी तो मैंने वो सारा, जहां भी मुझे डिमांड मिली, पहली बात तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे क्षेत्र में ही वो चीज रहे,
0: बिल्कुल
1: अच्छी चीज पहले तो वहीं पे रखा, और उसके बाद में वो जो ब्लैक गेहूं था वो शुगर फ्री है, शुगर के मरीजों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मेरा जितना था वो 4,000 रुपए क्विंटल हाथों हाथ सारा बिक गया।
0: अच्छा।
1: और इसके अलावा मैं गन्ने की खेती करता हूँ, लगभग 5,000 क्विंटल गन्ने का बीज मेरा जो है वो आपके मेरठ, मुरादाबाद, किच्छा और मझोला और मेरे आसपास
0: जी
1: वो सारा मेरा बीज चला जाता है। और जल्दी जल्दी मैं सरकारी सहायता के ऊपर नहीं बैठता, अपना काम खुद अपना तैयार करना, अपना प्रोडक्ट तैयार करना। मेरे पास जब भी किसान आ जाता है, क्योंकि मैं उत्पादन बहुत अच्छा लेता हूँ, और ये भी मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं कभी भी किसी भी चीज का मूल्य ज्यादा नहीं लेता। मैं अपना मूल्य उस हिसाब से लेता हूँ जिस हिसाब से मार्केट है, किसान को इजी हो। मटर का बीज मेरे पास इस बार 60 क्विंटल था, तो मैंने मटर का बीज का जो है मैंने 8,000 रुपए क्विंटल बेचा, वही बीज मार्केट में 14,000 रुपए क्विंटल पैक करके आ गया।
0: अच्छा।
1: लेकिन मैंने 8,000 रुपए क्विंटल बेच के भी मैं खुश हूँ। वजह क्या है कि मैं साल में 6-7 फसलें ले लेता हूँ और मैं अच्छा उत्पादन ले लेता हूँ, तो इसलिए मैं खुद समृद्ध हो रहा हूँ। और साथ में जो हमारे साथ जुड़े हैं, जब पड़ोस का किसान जो है अच्छा बीज अब उसको मिलेगा, अच्छी उसको टेक्नोलॉजी मिलेगी, तो उसको भी लाभ मिलता है।
0: बिल्कुल, लाभ मिलेगा। और किसी भी फसल के बीज के बारे में तो विश्वसनीयता बहुत महत्व रखती है, और वास्तव में लोगों ने आप पर विश्वास किया है कि आपसे जो बीज मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, जिसकी वजह से दूर दराज इलाकों में आपका बीज पहुंचा है और आपको भी फायदा हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। गुरु मंगत सिंह चीमा जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और अपनी खेती करने के तरीके के बारे में बताया कि किस प्रकार से किसान यदि सही तरीके से और जागरूक होकर ज्ञान के साथ वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित खेती करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम आने के लिए।
1: धन्यवाद डॉक्टर साहब।
2: अभी हमारे किसान साथियों ने सुनी भेंटवार्ता, जिसको विषय हो प्रगतिशील कृषक से भेंट। श्री गुरु मंगत सिंह से जानकारी दिलवा रहे डॉक्टर विनय वर्मा। हमें उम्मीद है हमारे किसान साथी सुनकर जानकारी बिल्कुल लाभ उठाएंगे। और अब ममता बहन,
3: हाँ दीपक भैया, अब हम अपने बात तो करिए अभी ज्वार बाजरा के बारे में करिए, अपने भैया बहन से जानकारी दी और प्रगतिशील कृषक से भी बातचीत जो करी वो सुनवाई।
2: हाँ।
3: लेकिन अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और करते हैं मनोरंजन।
2: हाँ।
3: लोकगीत है केला रे तेरो हरो रंग, इसको अपने मधुर स्वर से सजाओ है बीना ने, तो सुन लेते हैं जो लोकगीत।

0: भैया बहनों, आपने जो लोकगीत के माध्यम से अपना मनोरंजन करो। और दीपक भैया, आप फिर से बात करते हैं अपनी खेती बाड़ी से संबंधित,
1: हाँ बिल्कुल
0: जो है वो है पशु।
1: जी
0: पशु भी हमारे आय को बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया है, और पशुपालन से हमारे जो रोज़मर्रा के खर्चा हैं वे पूरे होते रहते हैं। लेकिन
1: हाँ
0: एक बात है दीपक भैया, उसमें कहीं ना कहीं बीमारियां हैं, कुछ ना
1: हाँ
0: कुछ परेशानियां हैं, दूध की
1: इस
0: उत्पादन क्षमता है, ये सब दिक्कतें होती रहती हैं।
1: देखो, इस समय जो है मौसम जो है बरसात को आने वाला है,
0: हाँ भैया,
1: तो अपने
0: तो
1: पशुओं की देखभाल के लिए और रोग बीमारी से बचान के लिए हमारे किसान साथियों को कोई ना कोई जानकारी होना बहुत जरूरी
0: हाँ
1: है।
0: तो भैया, आज हमने क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में जानकारी जुटाई है, पशुओं में टीकाकरण कराना कितनों जरूरी है, इस विषय पर तो सुन लेते हैं जा क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता।
2: आपका परिचय जानना चाहेंगे।
3: मैं डॉक्टर नौशाद मलिक, पशु चिकित्सा अधिकारी पनबड़िया रामपुर हूँ, ब्लॉक हमारा चमरौआ है।
2: जी नमस्कार डॉक्टर साहब।
3: नमस्कार।
2: डॉक्टर साहब, हमारे पशु जो हैं वो खेती बाड़ी का दूसरा हाथ है, और
3: जी
2: उनसे अधिक आय मिले, जो हमारा आमदनी का जो जरिया है हमारे किसान भाइयों के लिए बना रहे। और इस समय जो हमारा
3: जी
2: बरसात का मौसम आने वाला है, दस्तक भी दे चुको है धीरे धीरे, तो उससे पहले
3: जी
2: हमारे पशुओं को कौन कौन सी ऐसी जो बीमारियां आने वाली हैं उनसे बचाव के लिए क्या उपाय हैं?
3: पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बरसात से पहले कुछ महत्वपूर्ण टीकाकरण किए जाते हैं, जो
2: जी
3: सभी किसान भाइयों को मैं सादर अनुरोध करूंगा कि वो इस समय पर गलाघोटू, जिसको HS हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, उसको गांव में गलाघोटू कहते हैं, टीकाकरण अभियान स्टार्ट हो चुका है जो 15 जुलाई तक चलेगा। मैं समस्त किसान भाइयों से कहूंगा अपने सभी पशुओं को ये

0: व्याकरण कराएं। इसमें बस जो 7 माह से ऊपर के गाभिन और 4 माह से नीचे के बच्चे उनको छोड़कर बाकी समस्त पशुओं को अपने टीकाकरण कराएं। और बरसात से पहले इस चीज का भी ध्यान रखें कि बरसात आने वाली है, जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हैं, जहां जहां बाढ़ आने की संभावना रहती है, नदी के किनारे के जो गांव हैं
1: जी,
0: वो लोग गांव के प्रधान से संपर्क करके एक ऊंचा ठेरा गांव में ऐसा जरूर बनाएं, जिससे कि अगर कभी ऐसी समस्या आती है तो अपने समस्त पशुओं को लेकर के उस पे इकट्ठा कर लें, जिससे कि पशु जो है वो पानी में बहे ना।
1: डॉक्टर साहब, जो आपने बरसात की बात की है कि बरसात से बचाव रखना है, अगर बरसात में हमारे पशु भीग जाते हैं तब भी उनमें बीमारियां फैलती हैं?
0: हाँ, होता क्या है कि बरसात के समय पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया और वायरस ये दोनों जो हैं वो बहुत तेजी से जो है पशुओं पे जो है वो आक्रमण कर देते हैं। और उस समय पर चलने वाली समस्त बीमारियां, जैसे चाहे वो खुरपका मुंहपका हो, चाहे वो गलाघोटू हो, या चाहे वो निमोनिया हो, समस्त तरीके की इस तरीके की बीमारियां जो हैं वो आने की संभावना रहती है। तो मैं इसीलिए अपने समस्त पशुपालक भाइयों से और किसान भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि एक तो जो टीकाकरण अभियान चल रहा है उसमें टीकाकरण कराएं, बीमारियों से बचने के लिए साफ सफाई रखें, और बरसात के समय पर कीचड़ जहाँ पर पानी भर जाता है वहां पर वो पशुओं को बांधे रहते हैं, और उनके पैर जो हैं आपने देखा होगा बहुत सारे पशुओं के पैर जो है वो पानी में भीगे रहते हैं। लंबे समय तक अगर वो भीगे रहेंगे तो उनमें जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए उनको जो है साफ सुथरी जगह पर और अच्छी तरीके से पैरों को साफ करके धो करके वहां पर पशुओं को रखें, जिससे कि उनमें ये बीमारियां ना हों।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की टीकाकरण की, तो जो हमारे दुधारू पशु हैं उनके लिए टीकाकरण पर कोई असर तो ना होता है?
0: नहीं, कोई असर नहीं होता है, क्योंकि जिस दिन टीका लगाया जाता है कुछ पशुओं में उसमें हल्का सा बुखार रहता है, तो उसके लिए पशुपालक भाई हमारे परेशान ना हो। और बहुत ज्यादा अगर करना चाहते हैं तो कम से कम 1 से 2 बखत का दूध जो है वो अपने यूज में ना लें, उसको घर में जैसे पिए ना जब वो टीका लगाया जाता है। हालांकि ये जो वैक्सीन है उस वैक्सीन से कोई उसका इफेक्ट नहीं आता है, फिर भी कम से कम बच्चों को बचा के रखें कि बच्चों को अगर घर में जो दूध पी रहे हैं उनको बस ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 या 2 समय का दूध जो है उन बच्चों को ना पिलाएं, बाकी और कोई समस्या इससे नहीं रहती है।
1: जी, अच्छा, उत्पादन जो क्षमता है दूध की उस पर कोई असर दिखाई पड़ता है?
0: कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना खाने पे कोई फर्क पड़ता है, बस समय नहीं होता है ऐसा। कुछ जानवरों में हल्का सा बुखार आता है और वो थोड़े समय के बाद ठीक, जैसे आपने देखा होगा कोरोना वैक्सीन जब इंसानों में लगाई जा रही थी
1: जी,
0: तो उसमें भी आपने देखा होगा कुछ लोगों को बुखार आ रहा था, कुछ को नहीं आ रहा था।
1: जी जी,
0: ऐसे ही पशुओं में होता है, जिसकी इम्यूनिटी अंदर से लड़ने की जो क्षमता है शरीर के, तो वो कुछ पशुओं की मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से उन्हें बुखार नहीं आता है, जिसकी कमजोर होती है तो उसमें आ जाता है। तो उसके लिए परेशान ना हो, बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, कभी ऐसा होता भी तो फिर 24 घंटे में ठीक हो जाता है पशु।
1: जी डॉक्टर साहब, एक बात और हम जानना चाहेंगे, अगर हमारा कोई पशु मुंहपका या खुरपका से ग्रसित है तो उस समय टीकाकरण करा सकते हैं क्या?
0: बिल्कुल नहीं, मैं समस्त किसान भाइयों से ये अनुरोध करूंगा, जब भी आपके यहाँ कोई भी बीमारी, चाहे वो आपके यहाँ गलाघोटू हो या चाहे आपके यहाँ खुरपका मुंहपका हो या कोई भी बीमारी, जो भी बीमारी अगर आपके यहाँ फैल रही है और वो मांस में फैल रही है, तो उस जगह पर टीका ना लगाएं, ना लगवाएं, क्योंकि देखिए वो भी एक वायरस ही तो है। जो वैक्सीन या टीकाकरण में जो इंजेक्ट किया जाता है वो भी एक वायरस है, बस इस वायरस के क्या है कि जो हार्म करने के इसकी कैपेबिलिटी है, यानी क्षमता है, उसकी हार्म करने की क्षमता को कम कर दिया जाता है कि किसी वजह से ये हार्म ना पहुंचा सके, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन जाती है, यानी लड़ने की एक फौज तैयार हो जाती है। जब भी हार्म पहुंचाने वाला वायरस या बैक्टीरिया जब बॉडी के अंदर आता है तो ये जो फौज तैयार हुई होती है पहले से, ये लड़ना शुरू कर देती है। लेकिन जहां पर भी आप देखेंगे कि ये बीमारी फैल रही है और वहां अगर आपने टीका लगा दिया तो ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ जाती है, फिर बहुत तेजी से फैलती है, तो इसलिए वहां टीका नहीं लगवाएं।
1: डॉक्टर साहब, ये तो थी टीकाकरण की बात और आपने साफ सफाई के बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दे दी है। जो किसान भाई और बहने हैं जो हमारा पशुओं से संबंधित है, टीकाकरण के महत्व के बारे में, जो हमारे किसान भाई अगर किसी कारणवश नहीं लगा पा रहे हैं, उनको टीकाकरण नहीं करवा पा रहे हैं, तो वो कब तक कराएं और कब तक करा सकते हैं, कितना जरूरी है ये भी बता दीजिए।
0: ये रामपुर में 21 पशु चिकित्सालय हैं
1: जी।
0: उन पशु चिकित्सालय के संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी से, जिस क्षेत्र के हमारे पशुपालक भाई हैं, वहां उनसे संपर्क कर सकते हैं। और उनके गांव का एक माइक्रो प्लान बन के गया है, उनके माइक्रो प्लान के हिसाब से ही टीकाकरण कार्य किया जाता है। ये परेशान ना हो, 15 जुलाई तक समस्त ग्रामों को कार्य करना है, तो इसलिए अगर किसी के यहाँ नहीं भी हो पाता है या किसी वजह से कोई दिक्कत आ जाती है, तो वो संबंधित से संपर्क पशु चिकित्सालय पे जाके कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई है टीकाकरण की, फिर उसके बाद में अभी संभवतः अगली डेट आने जा रही है खुरपका मुंहपका की, तो हो सकता है अभी वो संभावित है 22 जुलाई से हम खुरपका मुंहपका भी स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए जो भी टीकाकरण कार्य किया जाए उसको संपूर्ण तरीके से कराएं।
1: जी डॉक्टर साहब, आज हमारे किसान भाइयों के लिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है और अपना समय दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे किसान साथियों ने सुनी क्षेत्र संकलित कार्यक्रम पर आधारित जानकारी, जिसको विषय हो पशुओं में टीकाकरण कितना जरूरी, जिस पर जानकारी ले रही हमारी ममता बहन और जो जानकारी दे रहे डॉक्टर नौशाद मलिक, जो पशु चिकित्सा अधिकारी पनवड़िया ब्लॉक चमरौआ जिला रामपुर के थे। जानकारी सुनकर हमारे किसान साथी पूरा लाभ उठाएंगे।
3: और दीपक भैया, हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से बताई है कि टीकाकरण बहुत जरूरी है कराना, तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें हमारे भैया बहन।
2: हाँ?
3: और टीकाकरण कराने से हमारे भैया बहन जो हैं वे अपने पशु के स्वास्थ्य के प्रति पूरे पूरे
2: देखो समय
3: स्वस्थ रहेंगे, उनके स्वस्थ और अच्छे से उनसे आय की भी प्राप्ति करेंगे।
2: बिल्कुल, तो अब कार्यक्रम में कृषि संकेत को समय हो चलू है।
3: हाँ भैया, आज कृषि संकेत में बात करते हैं अधिक लाभ हेतु फूलों की खेती।
2: हाँ।
3: फूलों की खेती फ्लोरी कल्चर एक अत्यधिक लाभदायक व्यवसाय है कही जाए तो।
2: हाँ।
3: किसान पारंपरिक फसलों के मुकाबले फूलों की खेती से कई गुना अधिक आय की प्राप्ति कर सकते हैं।
2: हाँ।
3: और इसके अलावा एक बात और है दीपक भैया की, इनकी बाजार में हमेशा उच्च मांग रहता है और इनकी पैदावार कम समय में तैयार हो जाता है और कम लागत आता है। और एक खास बात और जा है कि जो हमारे इस तरह से खेती की जो उपजाऊ क्षमता है वो भी बनी रहता है, क्योंकि जो हमारे फसल चक्र होते हैं ना उसमें काफ़ी फायदा करता है हमारी खेती के लिए, तो इससे हमारी जो उत्पादन क्षमता है वो भी बरकरार रहता है और फूल से अधिक आय की भी प्राप्ति होता है।
2: और देखो अधिक कमाई की बात करें तो इससे जो है अगर थोड़ी सी जगह में हम लगाएंगे तो गेहूं धान की फसल के मुकाबले अधिक लाभ प्राप्त हो गए। बात करें जैसे गेंदा है।
3: हाँ
2: हाँ, तो गेंदा जैसे त्यौहार में जो है इसे शामिल कर सकते हैं, सजावट है और सबसे ज़्यादा जो है उपज मिलती है और इसकी खेती कम लागत में अधिक मुनाफा मिलता है।
3: इसी तरह से दीपक भैया गुलाब की बात करें तो ये वैलेंटाइन डे है, शादी है और गुलदस्ता के लिए सबसे ज़्यादा मांग इसकी रहता है, जैविक खेती बहुत अच्छी है।
2: हाँ।
3: और इसी तरह से ये ग्लेडियोलस है, यही एक बेहतरीन कट फ्लावर है जो बाजार में बहुत महंगे दाम पर बिकता है
2: और इसकी सजावट जो है के काम में आता है। और एक फूल और होता है रजनीगंधा, इसकी जो महक है बहुत महक और सुंदरता के लिए कारण जो है बाजार में जो है इसकी मांग बनी रहती है।
3: तो दीपक भैया हम अपने भैया बहन को बता दें इसकी जो पौधा है फूल के, तो इनकी खेती करने के जो तरीका है उसके दो मुख्य तरीका है।
2: हाँ।
3: पहले तो आप खुले खेत में खेती कर सकते हैं, गेंदा और गुलाब जैसी जो सामान्य किस्में हैं इन्हें खुले खेत में आसानी से उगाई जा सकती हैं।
2: और दूसरा तरीका है हमारा पॉली हाउस।
3: हाँ भैया,
2: अगर पॉली हाउस लगा कर हम जैसे बेमौसम होता है जैसे, तो उसमें जो है फूल को लगा सकते हैं और जिससे जो है हम 3 से 4 गुना मुनाफा ले सकते हैं।
3: तो हमारे जो कृषि विभाग है इनके द्वारा किसानों को पॉली हाउस में लगाउन के लिए बीज खरीदन और खेती के प्रशिक्षण के लिए भारी सब्सिडी को अनुदान भी दिया जा रहा है।
2: हाँ।
3: तो इस योजना को हमारे भैया बहन लाभ उठा सकते हैं और फूलों की खेती से अधिक आय की प्राप्ति कर सकते हैं।
2: और अधिक जानकारी के लिए हमारे जो किसान साथी हैं जिला उद्यान अधिकारी होते हैं जिला में, उनसे जानकारी ले सकते हैं और अपना पॉली हाउस बनाकर फूलों की खेती कर सकते हैं। और हमारे ये किसान साथी अगर फूलन की खेती करेंगे तो जैसे गेहूं जो धान है और फसलें हैं उनके मुकाबले जो है अधिक लाभ ले सकेंगे। और देखो और खेती तो हम करते ही हैं।
3: हाँ,
2: उसके साथ साथ में ज़्यादा बीच में ना करके थोड़ी सी बीच में करें तो बस हमारे रोजमर्रा को जो खर्चा होता है वो चलता रहता है।
3: बिल्कुल दीपक भैया, क्योंकि फूलन की मांग हमेशा बरकरार रहता है, चाहे कोई सो मौसम हो, सर्दी हाँ, बरसात गर्मी सब हाँ, में मांग रहता
2: है। अब तो बारह मास जो है हर समय पूरी वर्ष में जो है मांगी मांग रहती है,
3: चाहे त्योहार हो, चाहे शादी हो, चाहे पूजा पाठ हो, सर सब में जरूरत रहते है।
2: हाँ
3: तो दीपक भैया ये तो ही अधिक लाभ हेतु फूलों की खेती, और अब हमारे जो कार्यक्रम में बदलाव हुए हैं उसके बारे में अपने किसान भैया को बता दो
2: जी। अगर महीने को पहलो बुधवार है तो सफल कृषक, और महीने को दूसरो बुधवार है तो सफल महिला कृषक, अगर महीने का तीसरा बुधवार है तो मासिक कृषि गोष्ठी, और महीने का चौथा बुधवार है तो सफल कृषि स्टार्टअप, अगर महीने को पांचवा बुधवार पड़ जाए तो सफल कृषक सुनवाई जाएगी।
3: हाँ दीपक भैया, इसी तरह से महीना के पहले गुरुवार को आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष कार्यक्रम सुन सकेंगे, और दूसरे गुरुवार को कृषि पत्रिका खेत खलियान सुनेंगे हमारे भैया बहन, और तीसरे गुरुवार में सुनेंगे आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष, इसी तरह से चौथे गुरुवार में सुनेंगे कृषि पत्रिका खेत खलियान, और अगर महीना में पाँचवा गुरुवार पड़ जाता है तो आकाशवाणी गाँव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष कार्यक्रम सुन सकेंगे।
2: अगर महीने को पहले शुक्रवार है तो लोक मंजरी फार्मेसी लोकगीत पर आधारित प्रोग्राम, और महीने को दूसरा शुक्रवार है तो कृषि संघ का समाधान, समस्याएं व उनसे जुड़े समाधान, और महीने को तीसरा शुक्रवार है तो लोक मंजरी फार्मेसी लोकगीत पर आधारित प्रोग्राम, और महीने को चौथो शुक्रवार है तो कृषि संघ का समाधान, अगर महीने को पाँचवा शुक्रवार पड़ जाए तो लोक मंजरी फार्मेसी लोकगीत पर आधारित प्रोग्राम सुनवाया जाएगा।
3: तो भैया इसके लिए आप हमारा मोबाइल नंबर लिख लें 0595-2324-326 पर आप फ़ोन करके हमें अपनी प्रतिक्रिया भी लिख के भेज सकते हैं, कोई कृषि बाड़ी से जुड़ी हुई समस्या है उसको समाधान पा सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर है SMS करने के 9410087876।
2: और ईमेल एड्रेस की बात करें तो हमारा है पत्र मिला aairrampur@gmail.com, और सोशल मीडिया पेज की बात करें तो हमारो फेसबुक है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब है आकाशवाणी रामपुर से।
3: इसी तरह से आप पत्र के माध्यम से भी हमें अपनी फरमाइश और समस्या को समाधान पा सकते हैं। पत्राचार हेतु हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन है 244901।
2: हाँ जी, तो रहो हमारो कार्यक्रम को पतो। अब बता दें कल के कार्यक्रम की जानकारी। कल चर्चा को विषय पशुओं में हरे चारे का महत्व, उसी में है कृषि पत्रिका खेत खलियान और कृषि समाचार, और लोकगीत सुनवाया जाएगा, और विशेषज्ञ की राय, बाजार भाव और संभावित मौसम को हाल, जिस पर चर्चा करेंगे हमारे अनिल किशोर और दीपा बहन।
3: हाँ तो दीपक भैया ये तो ही कल के जो कार्यक्रम है उसकी संक्षिप्त जानकारी, और चलते चलते अपने भैया बहन को बता दें कल के मौसम को हाल। कल अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने को अनुमान है। आर्द्रता 41% और हवा 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। आंशिक रूप से बादल छाए रहने की भी संभावना जताई जा रही है। तो भैया बहनों ये तो ही कल के मौसम की जानकारी। हाँ। और दीपक भैया अब हमारे कार्यक्रम में बिल्कुल समय ना है जो अपने भैया बहन से और बातचीत करी जाए, लेकिन इसी वादे के साथ कि अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात करेंगे, और अब अपनी बहन ममता
2: और दीपक को दो अनुमति।
3: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडिया वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे इस समय आकाशवाणी रामपुर की दूसरी सभा के प्रसारण। संध्या के 7 बजे अब प्रस्तुत है फोकस नेत्रालय बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है।

फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फेको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध। पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के

0: आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, मैंने आज अनुमान लगा लिया है कि आज जो विषय है नेत्रदान के बारे में है।
1: आज आपको एक किस्से के साथ में इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ समय पहले एक व्यक्ति आए मेरे पास में, बिल्कुल भी आंखों से दिखाई नहीं देता था। जब मैंने उनकी जांच करी तो मैंने पाया कि उनकी आंख की काली पुतली सफ़ेद हो गई है, बाकी पीछे का लेंस, आंख में जेल होता है जिसको विट्रियस कहते हैं, वो आंख का पर्दा जिसको रेटिना कहते हैं, वो सब लगभग मोटे तौर से सही था। लेकिन उनकी सिर्फ और सिर्फ आंख की काली पुतली ख़राब हो गई थी चोट लगने की वजह से बहुत समय पहले, और उसकी वजह से जब काली पुतली सफ़ेद हो गई थी तो वो देख नहीं पा रहे थे। तो ये इस स्थिति के बाद मैंने सोचा कि हमारे आसपास कोई भी आई बैंक नहीं है और एक आई बैंक की शुरुआत किया जाए। तो आज की चर्चा हम आई बैंक के ऊपर करेंगे कि आई बैंक क्या है और उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो आई बैंक क्या है? जैसे कि आप सबको पता है, बैंक में क्या करते हैं, बैंक में हम अपने पैसे जो हैं वो जोड़ कर रखते हैं, उनको संभाल कर रखा जाता है, उससे जो है हम लोन ले सकते हैं, उससे हम जोड़ते हैं, उसको आगे चल के किसी कामों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आई बैंक होता है। तो आई बैंक में करते क्या हैं हम? आई बैंक में आँख को प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि हम उन लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकें जिन लोगों की आँख की पुतली ख़राब हो गई है। आप लोगों ने इस बारे में सुना होगा कि किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, इस बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि लेंस का ट्रांसप्लांट, जो आँख में पड़ने वाला लेंस है उसका भी, वो भी बदला जाता है। इसी तरीके से आँख का एक और अंग जिसको हम बदल सकते हैं वो है कॉर्निया। कॉर्निया मतलब जब आप आँख को देखेंगे तो दो हिस्से होते हैं, एक सफ़ेद हिस्सा होता है, एक काला हिस्सा होता है। इस काले हिस्से को कहते हैं कॉर्निया, और कॉर्निया की सफ़ेदी की वजह से रोशनी ना आना हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा कारण है। और इस कॉर्निया का इलाज, सफ़ेदी का इलाज कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया ट्रांसप्लांट है, यानी कि कॉर्निया का प्रत्यारोपण, यानी कॉर्निया को बदलना।
0: डॉक्टर साहब, हमारे जहन में एक सवाल उठता है, हमारे श्रोता भी आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो कॉर्निया ब्लाइंडनेस है तो इससे हिंदुस्तान में कितने लोग पीड़ित हैं, ये हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं।
1: हिंदुस्तान में लगभग 4.8 मिलियन लोग को अंधापन है जो कि प्रिवेंटेबल है, यानी कि बचाया जा सकता है, जिसका मुख्य कारण मोतियाबिंद है। उसके बाद इस 4.8 मिलियन लोगों में से 1.3 मिलियन यानी लगभग 1.25 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित है। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस मतलब पुतली के खराब होने की वजह से आँख में रोशनी कम होना। ये रोशनी कम होने का कारण ये जो है ये प्रिवेंटेबल नहीं है, यानी कि ये किसी भी दवाई से, किसी भी और उपचार से सही नहीं हो सकता है, तो इसका प्रत्यारोपण ही किया जाता है। तो ऐसे हमारे देश में लगभग 1.25 मिलियन लोग इफेक्टेड है, और आँख में ट्रांसप्लांट अपने देश में मात्र 50 से 60 हज़ार हो पा रहे हैं साल में। वो इसलिए हो पा रहे हैं इतने क्योंकि लोग अपने देहांत के उपरांत अपनी आंखें डोनेट करने में झिझकते हैं। वो ये सोचते हैं कि आंख की, शरीर की बनावट खराब होगी। बहुत सारे लोग जो चाहते भी हैं वो जागरूक नहीं हैं ये समझने के लिए कि हमारा आंख को दे सकते हैं, आंख किसी और के, हमारी आंख, हमारी कॉर्निया किसी और की कॉर्निया में लगाई जा सकती है और वो इंसान आपकी आंखों से अपनी दुनिया संवार सकता है। आपके जाने के बाद भी आपकी आंखें जीवित रहेंगी और वो आपकी आंखों से दूसरा व्यक्ति देख पाएगा। तो कॉर्निया बैंक जो है वो देहांत के बाद जो लोग अपनी कॉर्निया को डोनेट कर देते हैं उनको संभाल के रखता है, फिर उन लोगों को बुलाता है जिनको कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, और सही सारी जांचें सही होने के बाद कॉर्नियल प्रत्यारोपण होता है।
0: डॉक्टर साहब, आंखें दान करने के लिए क्या कोई उम्र होती है? परिवार के लोग दान कर सकते हैं, स्त्री या पुरुष? जी, इस बारे में जरूर बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: किसी भी उम्र में और किसी भी लिंग में, मतलब चाहे बच्चा हो चाहे 100 वर्ष का बुजुर्ग हो, अगर उसकी आंख स्वस्थ है तो वो नेत्रदान कर सकता है। चाहे उसको चश्मा लगा हो, चाहे उसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका हो, चाहे उसको मधुमेह यानी डायबिटीज़ की बीमारी हो, चाहे उसे हाइपरटेंशन हो या उसको हार्ट का कोई बीमारी से पीड़ित हो,

0: तो भी वो अपनी आंखों को दान कर सकता है। पहले सर्जरी हो चुकी हो चाहे आंखों की, चाहे वो मोतियाबिंद की सर्जरी हो चुकी हो, चाहे वो लेसिक सर्जरी हो चुकी हो, तो भी वो नेत्रदान कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति का रेटिना या ऑप्टिक नर्व की समस्या है जिसकी वजह से उसकी आंख में रोशनी नहीं है लेकिन उसकी कॉर्निया स्वस्थ है, तो भी वे व्यक्ति आंख को दान कर सकता है, कॉर्निया दान कर सकता है।
1: डॉक्टर साहब, ऐसी कौन कौन सी बीमारी हैं जो होने पर आंख काम नहीं करती है, वो आंखें बेकार हो जाती हैं?
0: कौन दान नहीं कर सकता? कभी कभी कुछ कुछ ऐसे शरीर के रोग होते हैं जिनकी वजह से नेत्रदान स्वीकार नहीं किया जा सकता है, और इस तरीके के रोग हैं जैसे कि HIV एड्स या फिर हेपेटाइटिस बी या सी, रेबीज, सेप्टिसीमिया, ल्यूकीमिया या फिर मेनिनजाइटिस, दिमागी रूप से क्या कहते हैं जो व्यक्ति ठीक नहीं होते हैं और जिनको ICU में बहुत लंबे समय तक जो रहते हैं, उन लोगों का नेत्रदान नहीं हो सकता है। तो ऐसे कुछ ही लोग हैं जिनका नेत्रदान नहीं हो सकता है, लेकिन ज्यादातर सारे लोग।
1: डॉक्टर कनुप्रिया जी, आंख कौन कौन दान कर सकता है? बच्चे, बूढ़े या कोई खास उम्र होती है, या स्त्री या पुरुष? जी,
0: किसी भी उम्र में, किसी भी, कोई भी लिंग हो, चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, वो नेत्रदान कर सकता है।
1: डॉक्टर साहब, एक्सीडेंट में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या उसकी आंख किसी के काम आ सकती है?
0: आपने सही सवाल किया रविंद्र जी। चाहे एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु हुई हो या क्या कहते हैं कोई और कारण की वजह से मृत्यु हुई हो जिसमें आंख की बनावट सही है और कॉर्निया सही है, तो हमारा नेत्रदान हो सकता है।
1: डॉक्टर साहब, समाज में कुछ रीति रिवाज भी होते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगी?
0: कुछ रीति रिवाजों में बहुत अजीब अजीब सी भ्रांतियां हैं, जैसे कि अगले जन्म में आंख नहीं मिलेगी, या फिर क्या कहते हैं शरीर की बनावट खराब हो जाती है तो शरीर पूरा होना चाहिए क्रिया करने के लिए। तो इस तरीके की भ्रांतियों से दूर रहें। आपका आंख किसी और की आंखों को रोशनी दिखा सकता है, इससे बड़ा दान और कोई नहीं हो सकता है। तो आप अपनी आंखों को क्या कहते हैं उन लोगों के लिए दान जरूर करें जो कि क्या कहते हैं जिनको आंखों की या कॉर्निया की प्रॉब्लम्स हैं और वो नहीं देख पा।
1: डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, नेत्र बैंक की क्या सुविधा आपके नेत्रालय में है? जी, ये जरूर हमारे श्रोताओं को बताइए, इससे हमारे श्रोता अवगत होना चाहेंगे।
0: ये सुविधा फोकस नेत्रालय में जल्दी ही शुरू हो जाएगी और आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। वो लोग भी रजिस्टर करा सकते हैं जो कि प्लेज लेते हैं, यानी कि वो सोचते हैं कि हम आंख को दान करेंगे। वो अपने साथ में अपने रिश्तेदारों को लाकर अपनी आंख की डोनेशन का प्लेज कर सकते हैं, और वो लोग जिनकी आंखों को कॉर्निया ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, वो लोग भी आके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं ताकि जब हमारे पास में पुतली हो तो हम उन लोगों की आंख में ट्रांसप्लांट कर सकें।
1: बहनों भाइयों, आप सोच रहे होंगे कि दान कैसे होता है, भाई दान करते हैं कपड़े का, दान करते हैं अन्न का, दान करते हैं, तो ये आंख का दान कैसे होता है?
0: बहुत लोग ये पूछते हैं कि आई डोनेशन होता कैसे है। तो जब किसी व्यक्ति का देहांत होता है तो परिवार आई बैंक को इन्फॉर्म करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन फौरन ही होना चाहिए क्योंकि आई डोनेशन जो है या पूरे प्रोसेस जो है वो देहांत के बाद 6 घंटे के भीतर भीतर हो जाना चाहिए, तभी आंख प्रिजर्व होके दूसरी जगह ट्रांसप्लांट होनी चाहिए। अस्पताल से एक ट्रेंड टीम आपके घर पे पहुंचती है जो कि बहुत ही कायदे से और स्टेराइल तरीके से लगभग 15 से 20 मिनट में आपकी आंख में जो काली पुतली जिसको कॉर्निया कहते हैं उसको निकाल लेती है। हम समझते हैं कि ये समय बहुत ही मुश्किल होता है हर परिवार के लिए, लेकिन और उस समय माहौल नहीं होता है कई बारी, लेकिन ये भी समझना आपको ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी में अगर हम किसी के लिए कुछ छोड़कर जाते हैं तो उससे बड़ा और कोई चीज़ नहीं होती है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में दान करते हैं, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में यादें छोड़ते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रोशनी को छोड़कर जाते हैं। सोचिए, आप जिस दुनिया में हैं आपके बाद भी आपकी आँखों से अगर कोई माँ अपने बच्चे को देख पाती है या कोई बुजुर्ग अपने परिवार को देख पाता है सिर्फ आपकी वजह से, तो इससे बड़ा दान कोई भी नहीं हो सकता है। तो मैं आप सब श्रोताओं से निवेदन करूंगी कि आई डोनेशन के बारे में जानें, आई बैंकिंग के बारे में जानें, अपने परिवार से बात करें, अपनी इच्छा उनके साथ रखें, उनकी इच्छाओं को जानें, क्योंकि जब कभी परिवार में कुछ ऐसा होता है तो हम एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा कर पाएं, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होती है।
1: डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के अंत में आप क्या कहें?

0: चाहेंगी हमारे श्रोताओं से।
1: एक लाइन से मैं इस बात को खत्म करना चाहूंगी, आंखें बंद होने के बाद भी किसी की दुनिया रोशन की जा सकती है। आई डोनेशन करें, अवेयरनेस बढ़ाएं और किसी की जिंदगी में रोशनी बनकर वापस आएं।
0: श्रोताओं, कुछ याद आ गया। आंख से देखोगे तो खुश पाओगे, दिल से पूछोगे तो दर्द का सैलाब हूं मैं, अगर रख सको तो एक निशानी हूं मैं, खो दो तो सिर्फ एक कहानी हूं मैं, अगर आंख दान दोगे तो किसी के लिए उजाला है जीवन में।

0: और अब आज का ये कार्यक्रम जान है तो जहान है समाप्त करने के लिए रविंद्र मिश्र को दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार। फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फेको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध। पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 9068805050।
1: जान है तो जहान है। अभी आपने सुना फोकस नेत्रालय बरेली द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
3: 8700001424।

फिल्मी गीत सुनना हुआ अब और भी आसान, ईमेल के साथ साथ व्हाट्सएप के भी संग। हर रोज शामिल हो जाइए अपने नाम और एड्रेस के साथ दिन में 12:10 पर। हम करेंगे गीत आपके नाम।

0: देश के हो आप किसी भी शहर, गांव या इलाके से, झट उठाइए अपना मोबाइल और टाइप कीजिए अपना नाम और शहर, भेज दीजिए हमारे मेल एड्रेस पर गीत आपके नाम aarrampur@gmail.com और व्हाट्सएप वही आपका जाना पहचाना नंबर 9410087876। याद रखिए, दिन में 12:10 पर गीत आपके नाम।
1: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ अग्निकांड में एलडीए ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित। तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में मिशन मोड पर फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का दिया निर्देश। विशेष टीमों ने जनपदों में निरीक्षण कर कई कोचिंग सेंटरों को किया सील। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में आज उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल और भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून ज़ादा ने आज रामपुर की रजा लाइब्रेरी का किया दौरा। कहा, दोनों देशों की साझा संस्कृतियों को सहेजी है ये पुस्तकालय। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में एलडीए ने विभागीय जांच कर दोषियों को चिन्हित कर लिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आग की चपेट में आई इमारत का नक्शा 2014 में पास किया गया था, जिसके बाद 2016 में एलडीए ने मानकों का पालन न करने पर इमारत को गिराने का नोटिस जारी किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। विभागीय जांच में तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस स्तर के अधिकारियों की लापरवाही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है।
1: तो इसमें जो दोषी लोग हैं, हम लोगों ने अपनी आंतरिक जांच कर ली है। जो दोषी लोग हैं उस समय जो तैनात प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी रहे हैं उनके विरुद्ध, और साथ ही साथ निर्माण करने में जिन लोग का निश्चित रूप से सहयोग रहा होगा 16-17 में तैनात जो अधिकारीगण थे उनके विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई के लिए शासन भेज दिया है। और हम लोग शासन से अनुरोध भी कर रहे हैं कि सख्त से सख्त इन लोगों पर कार्रवाई की जाए।
0: इस बीच आज एलडीए ने आग की चपेट में आई बिल्डिंग पर नोटिस लगाने की कार्रवाई की। इस नोटिस के जरिए एलडीए ने बिल्डिंग मालिकों से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। अगर एलडीए को संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो बुलडोजर का इस्तेमाल करके इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। वहीं आग की घटना में घायल हुए 7 लोगों को इलाज के बाद केजीएमयू से डिस्चार्ज कर दिया गया है। केजीएमयू के प्रवक्ता के सिंह ने बताया कि एक गंभीर रूप से घायल युवक की हालत भी अब स्थिर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में मिशन मोड में व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी जनपदों में अस्पतालों, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, सरकारी भवनों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच कर आवश्यक सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कल बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जनपद में विशेष टीम गठित कर फायर ऑडिट अभियान संचालित किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न होने पाए। इसी क्रम में आज प्रदेश भर में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने कोचिंग संस्थानों में चेकिंग अभियान चलाया। गौतमबुद्ध नगर में सिटी मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश पांडे ने बताया कि जांच के दौरान 2 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया है, वहीं कई अन्य के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या में सीएफओ महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अयोध्या प्रशासन ने कोचिंग सेंटरों की जांच के लिए 2 टीमें बनाई हैं, जो फायर सेफ्टी की जांच के साथ लोगों को जागरूक भी कर रही हैं।
2: जो दुखद घटना हुई है लखनऊ में, उसके क्रम में हमारे जिले में 36 हम लोगों ने कोचिंग को रजिस्टर किया हुआ है फायर सर्विस में। उन सभी को हम एक अभियान के तहत 2 टीमें हम लोगों ने बनाई हुई है। एक चेकिंग ड्राइव शुरू किया हुआ है, सुबह से हम इसी में लगे हुए हैं। छोटी मोटी कमी मिल रही है तो उसको इमीडिएट रेक्टिफिकेशन के लिए कह रहे हैं। अगर कहीं कोई बड़ी कमी मिलती है तो निश्चित रूप से फिर उस पर कार्रवाई की जाए।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत इन्वेस्टर्स रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो के माध्यम से प्रदेश के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सेक्टोरल पॉलिसीज, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी आदि की प्रगति से अवगत कराते हुए निवेशकों को आमंत्रित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश की जानी मानी कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की और कई निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर बेहद सकारात्मक माहौल बना है।
3: आज उत्तर प्रदेश भारत के 3S का एक मॉडल बना है, जहां सेफ्टी है, जहां पर स्टेबिलिटी है और स्पीड है। एक मजबूत रूल ऑफ लॉ के स्टेट के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी यूपी के अंदर आपको मिलेगा, एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस यूपी के अंदर आपको मिलेगी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज नाबार्ड लखनऊ में एफपीओ राज्य स्तरीय कृषि चुनौतियों पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसान उत्पादक संगठनों के समक्ष आने वाली विभिन्न कृषि संबंधी चुनौतियां तथा उनके समाधान के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की भूमिका पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मौसम की अनिश्चितता और वर्षा के बदलते स्वरूप को देखते हुए प्रदेश को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। कल कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के अंतर्गत आने वाले विभागों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पहले से तैयारी रखने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर पेयजल स्रोतों के संरक्षण, हैंडपंपों के अनुरक्षण, तालाबों के पुनर्जीवन और जन जागरूकता कार्यक्रमों को अभियान के रूप में संचालित करने के निर्देश भी दिए। भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून ज़ादा ने आज रामपुर स्थित रजा लाइब्रेरी और संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियां भारत और तजाकिस्तान की साझा सांस्कृतिक विरासत को समझने में बहुत महत्वपूर्ण हैं। रजा लाइब्रेरी के निदेशक पुष्कर ने बताया कि तजाकिस्तान और भारत के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एक समझौता भी किया जाएगा।
4: तजाकिस्तान और भारत के बीच में सांस्कृतिक और अकादमिक सहयोग किस प्रकार का हो सकता है, उस दिशा में हमने बातचीत भी की और आने वाले समय में हम वहां के संस्थानों और रामपुर रजा पुस्तकालय के बीच में समझौता ज्ञापन करेंगे। एक विशेष बात ये आई कि कुछ ग्रंथ यहाँ पर तजाकिस्तान से सीधा संबंध रख और वो उस स्क्रिप्ट को और उस भाषा के अध्ययन के लिए मुझे हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर साहब ने कहा है कि वो वहां से स्कॉलर्स हमारे यहाँ भेजेंगे जो उसका अध्ययन कर सकें। और
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर हरिद्वार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के लिए DPR तैयार करने को सहमति प्रदान कर दी है। प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि मुजफ्फरनगर हरिद्वार RRTS कॉरिडोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति देने वाला दूरगामी कदम सिद्ध होगा
5: और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि RRTS को मुजफ्फरनगर होते हुए हरिद्वार तक ले जाने के लिए DPR तैयार करने का निर्देश दिया है। उस DPR के लिए 6.43 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान की होती है। शासन से इसके लिए पत्र जारी हो गया है। मंडलायुक्त मेरठ को इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और जो DPR इसकी तैयार होनी है, जितना हिस्सा मेरठ के अंदर आएगा उसका पैसा मेरठ का प्राधिकरण और जितना हिस्सा मुजफ्फरनगर जनपद में आएगा उसका पैसा मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण खर्च करेगा।
0: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर श्रद्धालु सुबह से ही पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। बदायूं के कछला गंगा घाट पर पवित्र स्नान और पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अमरोहा के ब्रजघाट और तिगरी गंगा धाम में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए प्रशासन ने नेशनल हाईवे 9 पर रूट डायवर्जन प्लान लागू किया है। बीते 24 घंटों में राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक कल भी राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि आगामी सप्ताह में मानसूनी गतिविधियां तेज होने के साथ प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ अग्निकांड में LDA ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित। तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 PCS अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में मिशन मोड पर फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का दिया निर्देश। विशेष टीमों ने जनपदों में निरीक्षण कर कई कोचिंग सेंटरों को किया सील। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में आज उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल और भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून ज़ादा ने आज रामपुर की रजा लाइब्रेरी का किया दौरा। कहा, दोनों देशों की साझा संस्कृतियों को सहेजी है ये पुस्तकालय। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
7: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडिया वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं इस समय हमारी दूसरी सभा के प्रसारण। संध्या के 7:31 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे कुछ गजलें। कलाकार हैं तहरीन निषाद।

आप सुन रहे इस समय आकाशवाणी रामपुर से सुगम संगीत के अंतर्गत तहरीम निषाद के स्वर में कुछ गजलें।

आप सुन रहे इस समय आकाशवाणी रामपुर से कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत गजलें। कलाकार हैं तहरीम निषाद।

अभी आपने सुनी तहरीम निषाद के स्वर में कुछ गजलें। कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं इस समय हमारी दूसरी सभा के प्रसारण। रात्रि के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का प्रोग्राम गीत गाता चल।

गीत गाता चल के सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त जवेरिया इशत का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत सुनना चाहा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झलवाड़ा राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी श्रीमती मनोहर बाई बागरी प्रभुलाल बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से मनभावन शोभा कपिल नैना सत्यनारायण मेहरनगर उमरखेड़ महाराज से अभिजीत खवड़कर राही श्रीमती सरिता गवड़कर प्रिंस एकांश गवड़कर बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवड़कर सिद्धार्थ गवड़कर टुक टुक आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवड़कर सुमित गवड़कर।

चौधरी, अवना कंचव। जेल रोड नजीमाबाद से राधिका जाटव और पिरभरानी जंटोलिया, चंद्रनगर दिल्ली से मनमोहन चुक मीठी युग और खट्टी चुक, डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, राज अंसारी और फातमा नाज अंसारी। सिंधोली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करुला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शुएब खान। जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी और फातमा नास, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा, डूंडी लोहारा बलोच से पिरभरानी बेलदार। इंदिरा विहार दिल्ली से बेबी अंसारी, डब्लू अंसारी और दानिश अंसारी। जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र यादव, महेंद्र यादव और जानवी यादव। बक्सर बिहार से राज डी एस अंसारी और फातमा राज अंसारी। सरगुजा मेन पार्ट से प्रभा डोमिन, प्रमिला डोमिन, आशा डोमिन, निशा डोमिन और पूरा डोमिन परिवार। तखतपुर छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार साहू, पूजा देवी, प्रभा देवी और मिश्री देवी साहू। आप सभी ने सुनना चाहा है किशोर कुमार को। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत है एस डी बर्मन का। फिल्म का नाम है आराधना।

आप सुन रहे हैं समय आकाशवाणी रामपुर से कार्यक्रम गीत गाता चल। आप भी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। उठाइए अपना मोबाइल और टाइप कीजिए अपना नाम और अपने शहर का नाम और लिख भेजिए हमारे इस नंबर पर 9410087876। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं हमारे ये सभी श्रोता। ग्राम ढकिया कैसरपुर पीलीभीत से एके राजपूत, अनिल कुमार राजपूत, भगवान दास राजपूत, मदन लाल राजपूत, रवि कुमार, नवनीत, किरण, खुशी, संतोषी, प्रिया और चंचल कुमारी। कबीर रेडियो लिसनर क्लब लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनेरी और प्रकाश वीर राजपूत। टोंडी लोहारी बालोद से कमलेश जंजोरिया, शनि चौक खंडवा से पिंकी मिंकी शिंकी और रिंकी, जेल रोड रायगढ़ से लालचंद्र मिश्रा, रमेश चंद और कुमकुम मिश्रा। सरगुजा मेन पार्ट से विनोद थापा, पूजा रानी और अजय देव थापा। छत्तीसगढ़ से जानवी, ग्राम हंतण कंगले कोल्हापुर से अतुल गौतमी, धमदीना अरुण, नेहरू चौक पेंट से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव। जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव और संगीत जाधव। साथ ही हैं संगीता जाधव। पकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु अरणव, आनंद सत्यमानंद। बोड़ा गांची पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। मेन बाजार कुलवाड़ी महाराज से गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर और प्रदीप यमेकर। जातू का किशनपुर से आलम दिल का शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम और चांदी नाज। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमशुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन, तूबा आफरीन और शमीम अख्तर अंसारी। भाटापारा दतरेंगी छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया नोएडा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला जीरा गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शायना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम, सद्दाम और अदीप। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बल्लू निषाद, तरुण यादव, श्रीनिका और श्रीनिजा। मौलाना अलवाया शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। परी महल कासगंज से अबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, हम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली। मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान। आप सभी ने सुनना चाहा है किशोर कुमार को। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत है आर डी बर्मन का। फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। आप सभी की पसंद का गीत आपके रेडियो साइट पर आपकी नज़र।

आप सुन रहे इस समय आकाशवाणी रामपुर से कार्यक्रम गीत गाता चल और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त जवेरिया इज्जत। कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में, फिल्म का नाम है आरजू। फरमाइश करता हमारे आप सभी श्रोता, गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, शहनाज बाबू अंसारी, हबीब अहमद इदरीसी और इरफान खान। जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, रोतिक और बलवीर सिंह। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गोड़, सईद भाई सुफियान, अनस, आयजा, अल्फिया और सदफ हसनैन। लादावली जिला उत्तर प्रदेश से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्य मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। विश्राम कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गोण और मोहम्मद शादाब खत्री। जामा मस्जिद रोड गोंगावा से हाजी इसाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी। गांव लोकन ठाकुरवाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, शुभदीप सिंह, गुरनाल सिंह और अविराज सिंह। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराज से सिद्धार्थ गोडाने, अर्चना गोडाने, प्रेरणा प्रसिद्धि और हीरामण शेंडे। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खां। चांदनी चौक सांगली से सक्षम श्रेणी चवाण, ज्योति अजीत चवाण और लता राजा राम चौहान। करणवीर हाउस बुचेचा कौंचिया बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जींदा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू, एकम दमन और अभिजीत। राज पैलेस मौनाथ भजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई सवड़कर, पिंकी सवड़कर, आर्यन कृष्ण और पीहू सवड़कर। बठेनापाटन जिला दुर्गा छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा पार्थव, कश्यप, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा। गांव नंथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, श्री डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार सचित वायल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार

किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, आप सभी की पसंद पर किशोर मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म आरजू का ये गीत आपकी रेडियो सेट पर।

करता हमारे ये सभी श्रोता, जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानी सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा। भाटापारा दतरेंगी छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसा, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर और मोहम्मद अल्ताफ साथी, नीलोफर फातिमा। गिराव पाठर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनश्री बुरांडे। पोफाली जिला यमतवाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी। नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, प्रिंस बेगम, इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिस वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा। कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन। नूर महल मैसूर सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहां, तलत जहां नास, फरत जहां नास, रिफत जहां नास, नुसत जहां नास, शाजिया शाहीन नास और नाजिया नूरी नास। गांव चोहल्दा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया। ग्राम फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन और सुरेखा सेन। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डांगला, हैप्पी डांगला, जेएस नायक, शोभा नायक साथी, समस्त डांगला परिवार। गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से पूजा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, कुमारी वंदना मराठा, देविका चौधरी। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, शुएब खान, साहिमा खान, पोत्रा मुस्तफ़ा खान, असफिया खान और शाहिद भाई साथी, राहुल भाई। बंटिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेदी शर्मा, सौरव शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। डूंडी लोहारा बलोच छत्तीसगढ़ से देवशंकर तमूरिया, अजय देव तमूरिया, तुषार देव तमूरिया, डोली बेबी पूजा तमूरिया, राधिका और प्रभा देवी तमूरिया। आप सभी ने सुनना चाहा है किशोर कुमार और लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है कभी कभी।

0: कभी कभी। अभी आपने सुना इस फिल्म में किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले और शशि कपूर के स्वर में। फिल्म का नाम है सुहाग। फरमाइश करता हमारे आप सभी श्रोता, अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्रणी केवट, कृष्णा केवट, चंचल केवट, सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी। इंदिरा कॉटेज तल्लीताल नैनीताल से मोहन सिंह रावत, ममता रावत और वानिया। मुतीचक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी। ग्राम पीपल लोअर सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। मेन रोड तिलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, कुमारी सुजाता पोहरकार। बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, पिरखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। बिहार रेडियो लिसनर क्लब से सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा शर्मा, सोनाली शर्मा और अनामिका शर्मा। आप सभी के अनुरोध पर फिल्म सुहाग का गीत। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: कहाँ ले जाऊं, कहाँ जाना है, अरे कुछ अता बता, कोई ठिकाना है।

0: कार्यक्रम का अगला व अंतिम गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। फरमाइश करता हमारे ये सभी श्रोता, बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह चोटा, मंजीप कौर चौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू दमन अभिजीत, हिंगोली महाराज से शाहजी बोटके, श्रीमती नंदा बोटके, हनुमान बोटके, अंबेडकर चौक वाकोंडी से उत्तम जमदांडे और सौरव जमदांडे, जिला अमरोहा नई बस्ती पति खालसा से बहादुर हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, बिटिया अलीशा और नाविया सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान, सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से दीपक डींगरा, विजय और अनुश्री डींगरा, बिलाईगढ़ से देव टुंकर, तुषार और अजय देव टुंकर, विरमगाम सिटी से अजीत मेहरा और सुनीता मेहरा, रवि रेजिडेंसी राजकोट से हेमा जाटव, सुधा कुमारी, संध्या कुमारी, बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग, आप सभी की पसंद पर फिल्म चरस का गीत।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।

0: फिल्म चरस के इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत गाता चल संपन्न करने की चवेरिया को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: मैं तो नहीं सोई, आधी रात होई, आपको हुआ क्या, खास वजह कोई?

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गाता चल। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के

0: अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
4: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
5: We had 26 delegates from
6: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
7: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज एसएसके अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान

0: पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अम्बरीश सक्सेना।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, हर साल देश में कुछ ऐसी प्रतिभाओं और ऐसे प्रेरणादायी बच्चों को आप राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करते हुए देख पाते हैं, जिन्होंने देश में अपनी वीरता से, अपने समाज सेवा से और तमाम क्षेत्रों में अपने प्रेरणादायी कामों से देश को प्रेरित किया है। तो इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के महत्व, इसकी नामांकन की प्रक्रिया पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और बातचीत करेंगे, और साथ ही हम पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और जो नामांकित होकर जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था उन बच्चों से भी उनकी कहानियां सुनेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा कार्यक्रम में। हम सबसे पहले तो स्वागत करेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
3: सबसे पहले मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी प्रेरणादायक पहल के बारे में बात करने के लिए यहाँ मेरा आना अत्यंत में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
2: जी, इस बार का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा हमारे जो देश भर के सुनने वाले परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको जानकारी दें और बताएं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मकसद क्या है, किस तरह से इस बार का ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो पूरी प्रक्रिया है ये इस बार भी विशेष है।
3: जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMRBP भी बोल सकते हैं, 5 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इस आयु के, उनके लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दी जाती हैं। ये श्रेणियां हैं बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इन 6 श्रेणियों में जो बच्चे उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उनको हम लोग इस पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित करते हैं। और यह पुरस्कार हमारे युवा नागरिकों के साहस, प्रतिभा और योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है।
2: जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार की जो प्रक्रिया है नामांकन की वो किस तरह से, हमारे आप सुनने वालों को बताना चाहेंगे उसके बारे में, और क्या क्या योग्यताएं या क्या क्राइटेरिया है पूरा।
3: जो हमने आपको पूर्व में बताया कि 6 श्रेणियां आइडेंटिफाई की गई हैं, तो इसमें जो एक्सीलेंट अचीवमेंट्स होते हैं इन 6 फील्ड्स में से कोई भी फील्ड में अगर किसी बच्चे का एक अत्यंत ही मतलब उत्कृष्ट उन्होंने अगर कोई कार्य किया हो, काम किया हो, तो वो उसको दर्शाते हुए हमारी जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
2: जी, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ये 6 श्रेणियां रखी गई हैं, इन श्रेणियों को हमने देखा है कि जो अब इन श्रेणियों के होने से एक विविध तरह के प्रतिभाएं हमारे सामने पेश होती हैं हर साल। तो इन श्रेणियों को जिस तरह से अब 6 किया गया है और अलग अलग श्रेणियां हैं, तो उनके बारे में भी हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि कौन कौन सी श्रेणी है और किस तरह से इन श्रेणियों से अलग अलग प्रतिभाओं के जो बच्चे हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो पाते हैं।
3: देखिए, जैसे पहली जो श्रेणी है बहादुरी, बहादुरी का मतलब अंग्रेजी में ब्रेवरी शब्द यूज करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों को बचाते हैं। ऐसे हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं और पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से भी कई ऐसे उदाहरण आए थे जिसमें 2 बच्चे तो पोस्टह्यूमस मतलब जिनका देहांत हो गया था और उनको मरणोपरांत ये मतलब अवार्ड दिया गया था, तो उन बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों को बचाया था। एक यूपी का बच्चा था जिसने जो है उसके पिताजी को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, वो एक पानी के स्रोत में अपने पिताजी को उन्होंने जो है बचाया था। ये तो मैंने बहादुरी की बात की। सामाजिक सेवा की बात करें तो पिछले वर्ष एक केस आया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमारा बच्चा वो हमारे जवानों को अपनी सेवाएं दे रहा था, तो सामाजिक सेवा का ये बहुत ही अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी लोगों ने कई सारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं और आज आपने जिन बच्चों को शामिल किया है वो भी इसके बारे में और आपको उदाहरण स्वरूप बताएंगे। खेल की अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा
2: जी जी।
3: और वो नित्य नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था। पांचवी जो कैटेगरी है कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी पूर्व के वर्षों में हम लोग कई बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं और इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो सकती है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इसी प्रकार जो लास्ट कैटेगरी होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जाके काम कर रहे हैं, इवन AI से रिलेटेड और इस प्रकार की भी एंट्रीज आ रही हैं। तो कुल मिला के इन छह एंट्रीज में छह जो मतलब श्रेणियां रखी गई हैं इसमें काफी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के बच्चे आ रहे हैं और उनकी हमारे पास नॉमिनेशंस आ रही हैं।
2: जी, आपसे सर हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये भी एक बड़ा फोकस रहता है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो देश के कोने कोने से आए, दूर दराज गांवों से आए और ऐसे वर्गों से आए जो वंचित है, हाशिए पर है, दिव्यांग है, तो इस बार भी क्या इन्हीं बातों पर फोकस होगा नॉमिनेशन के वक्त कि देश के अलग अलग कोनों से, दूर दराज के इलाकों से भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए?
3: अवश्य, देखिए हम लोगों का एक प्रयास ये भी रहता है कि हम भारत के हर कोने से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारे रीजन से हम लोगों का तो ये भी प्रयास रहता है कि यथासंभव मतलब हर जोन और हर राज्य से भी हम बच्चों को शामिल कर सकें। हम लोग हर साल 20 से 25 बच्चों को सम्मानित करते हैं। तो प्रयास यही रहता है कि एक तो भारत के हरेक कोने से बच्चे आए, दूसरा ये भी है कि जो बच्चे आर्थिक परिस्थितियों से, जिनके पेरेंट्स उतने वेल टू डू नहीं है, मतलब जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो प्रयास ये रहता है कि हर प्रकार के, हर वर्ग के और विशेषकर वैसे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं उनके योगदान को हम लोग जो है उनको सराहा जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी संख्या में सम्मानित किया जाए।
2: बिल्कुल, और हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे परिवार वालों और बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा कि जब बच्चे नॉमिनेशन के लिए खुद का आवेदन करेंगे तो इसमें हम देख रहे थे कि दो प्रक्रिया है कि एक थर्ड पार्टी नॉमिनेशन और सेल्फ नॉमिनेशन, तो इसके बारे में भी आप कुछ हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं को रखने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें ये भी है कि बच्चा खुद से भी आवेदन कर सकता है या किसी संस्था या परिवार या कहीं और से भी उसकी प्रतिभा का आवेदन किया जा सकता है।
3: जी, नॉमिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि नॉमिनेशन ऑलरेडी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और 31 जुलाई तक नॉमिनेशंस होंगे और इसके लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in
2: जी,
3: इसके माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

0: और यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। जो आपने मूल प्रश्न पूछा था कि कैसे नामांकन किया जा सकता है, कैसे नॉमिनेशंस किए जा सकते हैं, तो बच्चा स्वयं भी अपना नामांकन कर सकता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे होती है कि बच्चे को उतनी जानकारी नहीं होती, तो कोई संस्था भी उनके बिहाफ पे, उनके पेरेंट्स या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी संस्था उनके बिहाफ पे भी नॉमिनेशंस कर सकती हैं।
1: जी, जो ये प्रतिभावान बच्चे हैं, इनकी निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाओं को हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जरिए समझ पाते हैं। तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, जब उनका चयन हो जाता है इस पुरस्कार के लिए, उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में भी आप अगर हमारे सुनने वालों को बता सकें।
0: देखिए, जब बच्चे का चयन हो जाता है तो एक बात ये रहती है कि थोड़ी सी गोपनीयता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम
1: बिल्कुल
0: किसी बच्चे को जिस दिन पुरस्कार देने का दिवस होता है उससे पहले ही उनके नाम सार्वजनिक ना हो जाएं, तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना होता है। तो जिन बच्चों का चयन होता है 2 से 3 दिन या 4 दिन पूर्व हम संबंधित जिले के कलेक्टर साहब को बताते हैं, और वहां के जो कंसर्न कलेक्टर साहब होते हैं वो फिर उस बच्चे से, उस बच्चे के परिवार से संपर्क करते हैं, और उन बच्चों को वो जहां भी हो, देश के जिस भी कोने में हो, उनको हम बकायदा हवाई जहाज के माध्यम से, या आसपास के बच्चे हों
1: जी
0: तो मतलब बाय रोड भी वो आ सकते हैं, तो उनके आने, उनके लाने, ले जाने, ठहराने, वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं, और उनके साथ उनके पेरेंट्स या परिवार का कोई एक सदस्य भी आ सकता है। तो उनको बकायदा हम जहां भी पुरस्कार दिया जाता है, मोस्टली दिल्ली में ही होता है, तो हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो उनका चयन होने के पश्चात उनको इन्फॉर्म करने, उनको कम्युनिकेट करने के साथ साथ उनको उस स्थान से दिल्ली लाने और दिल्ली से वापस छोड़ने और यहाँ पे ठहरने, और कार्यक्रम जहां भी हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो या विज्ञान भवन में हो या अन्य किसी स्थल पे हो, हम पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो और वो उस पुरस्कार को ग्रहण कर सके।
1: बिल्कुल सर, क्योंकि इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में हम सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, स्कूलों, संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने आसपास असाधारण बच्चों को तलाश सकते हैं। तो अंत में हम आपसे उन स्कूलों, अध्यापकों और जो शिक्षक हैं या परिवार हैं, अभिभावक हैं या पूरा समाज है, उसके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने आसपास किस तरह से बच्चों को तलाश सकते हैं और उसके लिए नामांकन कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले, जैसे कि ऐसे बच्चे जो असाधारण हैं, जिन 6 श्रेणियों की हमने बात की, उन 6 श्रेणियों में अगर किसी भी तरह की उनमें ऐसी असाधारण प्रतिभा दिखाई देती है जो इस पुरस्कार के लिए बहुत जरूरी है या इस पुरस्कार के लिए खरी उतरती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ आप बताना चाहेंगे अंत में?
0: देखिए, इस पुरस्कार के बारे में इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, इसके अलावा रेलवेज पे भी हमारी एक पट्टी चलती है ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। इस बार भारतवर्ष के समस्त कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मैंने स्वयं डीओ लेटर लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जो भी बच्चे उनके जिले में हों, आसपास में हों, उनके बारे में नॉमिनेशंस भेजें। इसी के साथ साथ हमने ऑनरेबल गवर्नर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इसके अलावा माननीय जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो महिला एवं बाल विकास की संस्थाएं हैं जैसे आंगनबाड़ी हैं और अन्य संस्थाएं हैं, सारे स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सारे स्कूल्स में, और अन्य सारे विभाग जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां से हमें एंट्रीज प्राप्त हो सकती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय संगठन हो, समिति हो, तो हमने इस बार प्रयास ये किया है कि हमारी इस योजना या इस पुरस्कार के बारे में पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार हो ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज आ सकें। तो मैं समस्त भारतवर्ष के समस्त नागरिकों से और बच्चों के अभिभावकों से, उनके जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन सबसे यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपको कोई भी बच्चा ऐसा अगर आपके ध्यान में आता है, आपके संपर्क में आता है जिसमें प्रतिभा है, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि भारतवर्ष में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उस प्रतिभा को तराशने की जरूरत है, तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आपको कोई भी ऐसा बच्चा जो उत्कृष्ट कार्य करता हुआ दिखे, मिले या आपके संपर्क में आए, उनके जो नॉमिनेशंस हैं आप जरूर उनके नॉमिनेशंस करें ताकि ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे पास नॉमिनेशंस आए ताकि हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर सके।
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर, आपके जो भी बातें हैं निश्चित रूप से हमारे देश भर के विभिन्न श्रोताओं तक पहुंची होंगी और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे परिवार या बच्चे जरूर आगे आएंगे जो नामांकन करना चाहते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के इस संस्करण के लिए। आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी आगे आने वाले अवसरों पर जरूर बातचीत करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे विभिन्न गतिविधियों पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू सो मच।
1: अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में उन प्रेरणादायी कहानियों को सुनते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाया है, देश के लिए बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया है, समाज को अपने कारनामों से प्रेरित किया है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी है शिवानी हसुरु जो एक 17 वर्षीय एक पैरा एथलीट है और दिव्यांग होना उनके लिए कोई बाधा नहीं है। जैवलिन, शॉर्टफुट थ्रो, इन सभी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो शिवानी बताएं अपनी कहानी हमारे सुनने वालों को, आप कहां से आती हैं और किस तरह से आपने अपनी छोटी सी आयु में पैरा एथलीट होने का इतना बड़ा गौरव हासिल किया है।
2: मेरा नाम शिवानी है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ
1: जी
2: और मैं पैरा एथलीट हूँ, शॉर्ट पुट जैवलिन करती हूँ। तो मेरे को पहले बचपन से मेरा हाथ नहीं है
1: जी,
2: तो पहले बचपन में बहुत फील होती थी लाइक मेरे को हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अभी मैं नवोदय स्कूल में पढ़ती थी 6th से लेकर 12th तक। बचपन में बहुत लोग बहुत कुछ बोला है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, तेरे को हाथ नहीं है वैसा। तो मम्मी पापा ने एक ही बात बोला है कि हम तो बड़े करेंगे, तुम कुछ भी मत बोलो, हम है इसके साथ, ऐसा बोल के मेरे को साथ दिया है। ऐसे मेरे को बचपन से हॉस्टल में भेजा है कि मेरे को लाइक आदत पढ़ने के लिए, विदाउट हैंड करने के लिए जो भी। फिर मैं नवोदय स्कूल में गई हूँ 6th से लेकर 12th तक
1: जी।
2: फिर एक हैदराबाद में आदित्य मेहता फाउंडेशन है जिसमें ओनली पैरा एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं, उसमें मेरा डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में मेरा बेस्ट लिया था। तो मेरा शॉट पुट जैवलिन में अच्छा था तो मेरे को ट्रेनिंग देते हैं, साथ में कॉम्पिटिशन भी देते हैं। ऐसे में शॉट पुट जैवलिन में स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक गई हूँ, इंडिया के लिए 4 गोल्ड मेडल लाई हूँ। और ऐसे मेरे पास अभी तक 19 मेडल था, उसमें से 16 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है। और मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ आगे।
1: बिल्कुल, हमारी बहुत शुभकामनाएं शिवानी आपके साथ। जिस तरह से आपने अपनी छोटी सी उम्र में पैरा एथलीट होने का एक बड़ा अवसर हासिल किया और साथ में आपने बहुत सारे मेडल्स जीते, तो ये मेडल्स की झड़ी आपके लिए लगातार बनी रहे। और आपसे बस ये भी मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कैसा मन में उत्साह था, इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: कभी भी मैं टीवी में देखती थी नरेंद्र मोदी जी को और द्रौपदी मुर्मू मैम को, मैं सोचती थी इतना बड़े लोगों से मैं कब मिलूंगी, ऐसा सोचती थी। फिर सोचा भी है कि मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी, ऐसा सोची थी। पर मैं लाइक बहुत खुश हूँ ये अवार्ड मिला है, उधर जाके सर से, पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ मेरे को सपना जैसा लगा, पर वो सच था, बहुत अच्छा लगा
1: जी। बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके फ्यूचर के लिए, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अब हम जुड़ रहे हैं एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से और हम सभी जानते हैं कि ये सभी बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आयशी प्रिशा बोरा, इन्होंने छोटी सी 14 साल की उम्र में एक यंग इनोवेटर होने का गौरव हासिल किया, साइंस और इनोवेशन की कैटेगरी में इन्हें ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान मिला और इन्होंने खासतौर पर सस्टेनेबल फार्मिंग और वेस्ट रिसाइकलिंग के नए नए तरीके खोजे हैं। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि कैसे ये एक यंग इनोवेटर होते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग और जो रिसाइकलिंग है और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको लेकर काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है आयशी आपका।
3: नमस्कार सर, थैंक यू सर
1: जी। तो बताएं अपने बारे में, आपको सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफाइल से ही लग रहा है कि एनवायरमेंट से बहुत प्यार है और हम सभी को होना भी चाहिए, तो बताएं कि किस तरह से आपके मन में इस तरह की बातें आती हैं। जैसा कि हम आपने सुनने वालों को बता भी रहे थे कि जो सस्टेनेबल खेती है या जो वेस्ट रिसाइकलिंग है, ऐसे इन सब चीजों पर काम करने को लेकर कैसे प्रेरणा आती है?
3: मेरा मेन मोटिव यही होता है कि मैं जितना हो सके उतना अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकूं। सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से एक जरूरत बन चुकी है आज के समय में, सो दैट्स व्हाई आई वर्क ऑन दीज स्टफ एंड या आई वांट टू वर्क फर्दर ऑन इट, मेकिंग मोर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स एंड व्हाटएवर आई कैन डू।
1: जी, तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके इनोवेशन है आयशी। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे कोई ऐसा आपका कोई सपना है कि अपना स्टार्टअप हो, आगे आपकी कोई कंपनी हो, आपके प्रोडक्ट्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट्स हैं वो बिके, तो कुछ ऐसा सोचा है आपने?
3: राइट नाउ आई विल बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, आई डोंट नो अबाउट स्टार्टअप्स एंड ऑल, बट एज ऑफ टुडे व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन इज टू कम अप विद द मोस्ट सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू ऑल द सोसाइटल प्रॉब्लम्स. And if future I get the chance to implement them in real life, definitely I am very eager to do that. But right now I am just focusing on building the solutions. And as of now, I am trying to focus on my studies also, as I am a 10th grader this year.
1: साथ में आपसे भी वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, क्या आपके मन में एक्साइटमेंट था, उसके बारे में भी आप बताएं।
3: It was something that I never dreamt of. And even today, आज भी मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। बहुत अच्छा लगा, लाइक इट्स समथिंग द लिटिल आयशी इनसाइड मी वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर, एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू बी ऑनेस्ट।
1: थैंक यू सो मच आयशी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने एक्सपीरियंस, अपने इनोवेशंस के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत डिटेल में बताया। थैंक यू सो मच।
3: थैंक यू सर।
1: अब हमारे साथ एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, एक और हमारे साथ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता पिछले साल के जुड़ रहे हैं, वंश तयाल। वंश तयाल ने अपने जीवन में किसी भी तरह के मिसिंग को, किसी भी तरह के लॉस को लॉस नहीं समझा और आज वो एक बहुत बड़े यूथ लीडर है और एक केयर गिवर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्हें सराहना मिली है, तो वंश को हम जोड़ना चाहेंगे। वंश, अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने जीवन में किसी भी तरह की रुकावट को महसूस नहीं किया और आज आपने इस लॉस को उबारते हुए एक बहुत बड़े यूथ लीडर के तौर पर उभरकर सामने आने का खुद को मौका दिया। बताएं अपने बारे में कुछ।
4: तो ये मौका मिले बहुत एक कठिन समय रहा, जब तक मेरे माता पिता नहीं थे, लेकिन बहुत रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं था, बहुत कठिन समय रहा मेरे लिए, बहुत ही आगे मूव ऑन कैसे करना है, कैसे खड़ा होना अपने पैरों पर, बहुत मुश्किल था लाइफ में, है ना, कि अब तो हिम्मत हार गई थी कि क्या ही करेंगे, कहाँ जाएंगे, अकेला हूँ, क्या करूंगा, ऐसी रह जाऊंगा। बहुत मुझे रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी, कुछ नहीं बना। फिर थोड़ा होप हुई एक, फिर होम में आया मैं, चिल्ड्रन होम में आया चंडीगढ़ में, फिर देखा वहाँ पर एनवायरमेंट, देखा लगा ना कुछ 4-5 महीने लगे, हुआ थोड़ा सा बैकअप आया, धीरे धीरे सपोर्ट आया, वहाँ के स्टाफ ने काफी सपोर्ट किया मुझे इस बात के लिए। उसके बाद फिर एक छोटा सा बच्चा आया, मतलब बहुत छोटा बच्चा था, स्पेशल बच्चा, लाइक साइबर पॉलिसी थी उसको, मतलब वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, तो उससे काफी इंस्पायर हुआ, काफी मोटिवेट हुआ उस बच्चे से मैं कि हाँ चलो बहुत छोटा है और उसको बच्चे को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया, उसको भी हाँ उसकी हालत ऐसी है, तो मैं तो फिर भी मैं रिलायबल हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ कि कुछ भी कर सकता हूँ। तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम कि हाँ ही कैन डू, वाले ही कैन सर्वाइव, तो मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो फिर भी अपने काफी बड़ा हूँ, 12-13 साल का था उस टाइम, तो काफी अच्छा मौका था, इसलिए मैंने फिर काफी इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि इसको वॉलंटियर सर्विस दूंगा। और काफी जिस होम में मैं रहता था तो काफी स्पेशल बच्चे भी रहते थे वहाँ पे, तो उन सब की हेल्प करना, हेल्प आउट करके, मतलब उन सबकी मदद करके, और उस बच्चे को मैंने काफी नाइक टूडे की वो चल भी सकता है, खा भी सकता है, बोल भी पा रहा है आराम से, तो काफी था ये समय। फिर धीरे धीरे नॉमिनेशन का पता लगा कि हाँ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का भी नॉमिनेशन हो जाता सोशल वर्क में, तो मेरे सुपरिटेंडेंट सर थे मिस्टर ललित अरोड़ा, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया, काउंसलर मिस्टर प्रदीप ठाकुर थे, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया कि हाँ करो करो, तो फिर उन्होंने दोनों ने इकट्ठे मिलकर फॉर्म वगैरह भरा मेरा।
1: बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने जीवन के अनुभव से जो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, ये बहुत सच में सराहनीय बात है। हम आपसे और जानना चाहेंगे कि फ्यूचर में जिस तरह से हमने हम भी जानते हैं कि देश भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परिवार नहीं है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, क्या आपने सोचा है फ्यूचर में कि आप कैसे अपने इस समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे?
4: जैसे कि मेरा एक स्कोप है इन फ्यूचर में कि मैं एक अच्छा पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट बनूं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और जितनी करीबी से मैंने मुसीबतों को देखा है वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग ना देख पाए, कि वो युवा पीढ़ी ना देख पाए, जो बच्चे हैं वो ना देख पाए, उनका साथ ही अपनी सोशल सर्विस कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और सबकी हेल्प आउट करना चाहता हूँ जितनी मेरे से हो सके, मतलब सेल्फ होके उन्हें हेल्प करना चाहूंगा उनकी।
1: बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं वंश आपके लिए हमारी कि आप इस तरह से अपने समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जुड़ते हैं सुमन सरकार से। सुमन सरकार एक तबला वादक हैं, छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारे मंचों पर अपने तबला वादन का परफॉर्मेंस दिया है, और साथ में इनका एक और काम है कि ये जो ऐसे बच्चे जो म्यूजिक के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग, उनको फ्री ट्रेनिंग की भी इन्होंने कोशिश की है, तो ऐसे भी समाज सेवा का ये काम कर रही है। बहुत स्वागत है सुमन आपका।
5: सर आपको बहुत धन्यवाद।
1: तो सुमन बताएं कि कैसे आपके मन में म्यूजिक को लेकर ये इंटरेस्ट आया था, क्योंकि आपको कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप अपनी प्रतिभा के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं।
5: तो सर देखिए, मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था 3 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था, जब मैं एकदम छोटा था, तो तभी मैं ये तबला को मतलब आसपास के जब कुछ चीजों को बजाने की कोशिश करता था। मेरे फादर का जो बहुत सपना था वो थोड़े शास्त्रीय संगीत का चर्चा करेंगे, मेरे परदादा जो थे वो श्रीखोल बजाते थे, तो मेरे फादर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरे अंदर ये सपना देखना शुरू किया। तो जब मैं 3 साल का उम्र का था तभी मेरे पापा ने ये नोटिस किया कि बच्चे के अंदर ताल का कुछ ज्ञान है, तो मेरे फादर ने शिक्षा चालू कर दिया था मेरे गाँव में। मेरे प्रथम गुरु का नाम है श्री पबीर कुमार सरकार, उनसे मैं सीखना चालू किया, तो वहां से जानने शुरू हुआ। तो फिर चलते चलते जब मेरा उम्र 7 साल का हुआ तो मेरा फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम था, कंपटीशन था, तो मैं बहुत डरता था तब स्टेज पे सबके सामने बजाने के टाइम। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, गुरु का आशीर्वाद तो रहता ही है।
1: बिल्कुल,
5: तो इसी हिसाब से लाइफ में फर्स्ट जब कंपटीशन दिया तो उसमें मैं फर्स्ट हुआ। मेरा उम्र तब 7 साल का था, मैं तब फर्स्ट हुआ। तो जो जजमेंट में था उन्होंने बोला कि मेरे फादर को उन्होंने एडवाइस दिया कि बच्चे को और ऊपर ले जाओ और अच्छे गुरु के पास ले जाओ, तभी से मैं कोलकाता के गुरु से सीखने लगा, श्री उज्जवल भारती से। तभी से मेरा जर्नी, ये जो शास्त्रीय संगीत का जर्नी है, तभी शुरू हुआ। धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, मैंने रियाज करता, हमारा तो पूरा ही रियाज पे चलता है ये शास्त्रीय संगीत, मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये शास्त्रीय संगीत जी, का जो प्यार मेरे अंदर बढ़ता रहा
1: जी। और ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, जो आपकी कोशिश है कि आप फ्री ट्रेनिंग दें जो संगीत सीखने वाले बच्चे हैं उनको, उसके बारे में भी बताएं किस तरह का ये आप काम कर रहे हैं।
5: आज के जो जनरेशन है वो सिर्फ एडुकेशन पे भागता है, तो मेरा एक ही कहना है कि एडुकेशन के साथ साथ ये जो शास्त्रीय संगीत व हमारा कला संस्कृति जो है इसमें भी बहुत बड़े बड़े सम्मान पा सकते हैं, यही मेरा वार्ता रहेगा समाज के अंदर। जो पद्मश्री पद्मभूषण बड़े बड़े जो सम्मान है वो शास्त्रीय संगीत में भी मिल सकते हैं।
1: बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि पिछले साल आपने जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये सम्मान हासिल किया। थैंक यू सो मच सुमन।
5: थैंक यू सर।
1: अब हम जुड़ रहे हैं अर्णव अनुप्रिया महर्षि से। इनका जो एक AI पावर्ड रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन है दिव्यांग लोगों के लिए वो बहुत चर्चा में है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्निशन हासिल की है, तो आइए उनके इस सॉल्यूशन के बारे में उनसे जानते हैं, और साथ में जो पिछले साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो सम्मान मिला है उसके बारे में भी उससे हम बातचीत करते हैं। अर्णव बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले अपनी इनोवेशन के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने AI के जरिए एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की।
6: मेरा जो एक AI सॉल्यूशन है उसका नाम फेयर चांस है, जिसका फुल फॉर्म है फाइन मोटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिहैबिलिटेशन चांस। ये उन दिव्यांग लोगों के लिए बना है जिनके उंगलियों की जो ताकत रहती है वो बहुत कमजोर रहती है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए बना है, जैसे पैरालिसिस पेशेंट्स, सेरिब्रल पॉल्सी पेशेंट्स। ये जो AI इनोवेशन है ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कोई भी साधारण लैपटॉप या स्मार्टफोन पे चल जाता है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको एक लाइव असेसमेंट मिलता है, एक लाइव आउटपुट मिलता है कि आप कितना अच्छा आपके उंगलियों के मूवमेंट्स कर रहे हो।
1: आपसे आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान है उसको हासिल करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मन में था, उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस बताएं।
6: यही पुरस्कार के माध्यम से मेरे जो ये काम है इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली है कि सचमुच का ये असली, मतलब सचमुच का काम कर रहा हूँ जो एक्चुअली दूसरे दिव्यांग लोग और दूसरे पेशेंट्स के काम में आ सकता है।
1: जी, आपके लिए बधाइयां भी इस पुरस्कार के लिए। धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजित कुमार जी से चर्चा की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, हमारे श्रोताओं को बहुत सी जानकारियां नामांकन से लेकर इस पुरस्कार के मकसद के बारे में जरूर हासिल हुई होंगी। और साथ में कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हमने पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कुछ प्रेरणादायी बच्चों से बात की, तो उनके अलग अलग कहानियों को सुनकर भी बहुत सारे सुनने वाले जो बच्चे हैं, परिवार है, वो प्रेरित हुए होंगे कि जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक इस साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अगर किसी श्रेणी में उन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया है, कोई छुपी हुई प्रतिभा है, तो जरूर वो सामने आएंगे और नामांकन करेंगे। आप सभी का कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
7: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
8: चर्चा का विषय है ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडिया वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे इस समय हमारी दूसरी सभा के प्रसारण, रात्रि के 10 बजे। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल ढूंढता है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं असीम सक्सेना।

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत आपका आपके अपने ही कार्यक्रम में, जिसे हमने और आपने बड़े प्यार से नाम दिया था, दिल ढूंढता है। रात का सन्नाटा, खामोश सी फिजाएं, दिल में किसी खास से मुलाकात की ख्वाहिश। कुछ बातें हैं जो बरसों से दिल के किसी कोने में ठहरी हुई हैं और जिन्हें सिर्फ उस शख्स से बांटना है जिसे अपनेपन का एहसास हो। आज दुआ जैसे कबूल हो गई हो वो सामने जिन्हें कब से दिल ढूंढ रहा था। आप हमारे श्रोता जो दिन रात हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं, सुख दुख के साझीदार हैं हम। लव्स कम पड़ जाते हैं लेकिन दिल की धड़कनें सारी बातें कह जाती हैं। रात की खामोशी में एक अरमान संवरता था, तुम मिले तो लगा दिल जिसे ढूंढता था वही तेरा चेहरा था। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने कार्यक्रम में। आज खुशी की बात यह है कि बहुत सारी खत हमें इस कार्यक्रम के लिए मिले हैं। शुरुआत करते हैं उस दौर को याद करते हुए इस खत से, जो ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से आया है। लिखने वाले हैं शाहरुन नूर अंसारी। लिखते हैं, उस दौर में गांव की अपनी एक अलग ही पहचान थी। शाम होती आकाश का रंग केसरिया हो जाता, पेड़ों की डालियों पर पंछियों का शोर जब कम होने लगता, घर घर से चूल्हे का धुआं उठता जिसकी सौंधी सौंधी महक पूरी हवा में घुल जाती। लोग खेतों का काम निपटाकर थके हारे अपने अपने

का दिल बार बार ढूंढता है। मनोरंजन का साधन भी बड़ा निराला था। रेडियो की खड़खड़ाहट के बीच जब विविध भारती पर हेलो फरमाइश जैसा कार्यक्रम शुरू होता था तो लगता था जैसे घर में अपना ही कोई मेहमान आया हो। लोग रेडियो के पास कान लगाकर बैठ जाते, नाम पुकारे जाने का इंतजार करते। वो छोटा सा प्लास्टिक का रेडियो उस समय के लिए पूरी दुनिया को समेटे हुए था। आज उस रेडियो को शाहरुन का दिल बार बार ढूंढता है और ढूंढता रहेगा। शाहरुन भाई, रेडियो आज भी आपका अपना हम सफर है। हाँ, रूप बदल गया है, रेडियो, ट्रांजिस्टर और अब मोबाइल सेट। हम आपकी मुट्ठी में हैं और हमेशा से आपके दिल के करीब रहेंगे। वो दौर अब हमारे ऊपर है कि हम उस दौर को कितना लौटा पाते हैं। उस दौर की बातें याद दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक खत जो बड़े दिल से लिखा गया है और थोड़ा सा तबील भी है। मोहन सिंह रावत साहब हैं इंदिरा कॉटेज तल्लीताल नैनीताल के। आपने भी ऐसी ही कुछ पुरानी यादों को साझा किया है और कुछ आज के दौर की बात भी है। मोहन सिंह जी, खत लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कोशिश करते हैं आपका खत शब्दशः पढ़ा जाए, लेकिन थोड़ी सी वक्त की नज़ाकत को भी हमें समझना होगा। इन दिनों सूरज अपनी तपिश से हम सभी को झुलसा रहा है। जाड़े के दिनों में जिस सूरज की गर्मी ठंड से राहत देती थी, वही अब आग उगल रहा है। हालांकि बीच बीच में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ ने गर्मी से कुछ राहत जरूर पहुंचाई है। और ताज्जुब की बात यह कि अप्रैल के महीने में दुनिया के 100 सर्वाधिक गर्म शहरों की सूची में 95 शहर भारत के थे। बांदा, प्रयागराज, आगरा, जैसलमेर, चुरू, ऐसे अनेक शहर हैं जहां का तापमान लगातार 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। ये कीर्तिमान जीव जगत के लिए एक चेतावनी भी है। हम मनुष्यों की त्वचा 43 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को बिना किसी गंभीर क्षति के 8 घंटे तक सह सकती है, और जब ये तापमान ऊपर जाता है दर्द महसूस होने लगता है। 48 डिग्री सेल्सियस उससे ज्यादा तापमान पर त्वचा के ऊतक यानी कि टिश्यूज बहुत तेजी से जलते हैं। बांदा में दर्ज किया गया देश का सर्वाधिक तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस हम सबके लिए गंभीर खतरे की चेतावनी है। जिस प्रकार प्रतिवर्ष पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ रहा है, उसी से सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ ही वर्षों में ये तापमान और भी बढ़ सकता है। 48 डिग्री और फिर 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। अंदाजा लगा सकते हैं आप कि इतने अधिक तापमान पर अगर जीवन यापन करना पड़े तो कितना ज्यादा मुश्किल होगा। संपन्न लोग तो फिर भी सुविधाएं जुटाकर कुछ समय के लिए गर्मी से राहत पा सकते हैं, लेकिन सड़क पर रेहड़ी लगाने वाले, रिक्शा चलाकर गुजर बसर करने वाले गरीब लोगों के लिए जीवन यापन कर पाना कितना मुश्किल होगा, बस कल्पना ही कर सकते हैं। ये बढ़ता तापमान जीव जगत के लिए नहीं, बल्कि हमें राहत पहुंचाने वाले उपकरणों, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, सरीखों साधनों के लिए बड़ा खतरा है। इतनी गर्मी ये साजो सामान भी सहन नहीं कर सकते। इनके खराब होने पर गर्मी में हमारी क्या स्थिति होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी हम पता नहीं क्यों नहीं चेतते। प्रकृति ने तो हमें सब कुछ संतुलित रूप में दिया था। हम मनुष्यों की महत्वाकांक्षा की बलिवेदी इस संतुलन को पूरी तरह से गड़बड़ा गई, जिसका खामियाजा कुछ हद तक हमें और बहुत हद तक हमारी आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। जंगलों को काट दिया, सीमेंट कंक्रीट के जंगल खड़े कर रहे हैं। सड़क के किनारे बड़े बड़े पेड़ों को काटकर हम 6 लेन, 4 लेन, 8 लेन का हाईवे बना रहे हैं। जिन पहाड़ों में अभी ट्रेन की कोई आवश्यकता नहीं, हम बड़े बड़े ब्लास्ट करके सुरंगें खोदकर ट्रेन की पटरियां बैठा रहे हैं। आखिर किस शर्त पर? ऐसे विनाश का क्या लाभ जो निरंतर विनाश को दावत दे रहा है? ऐसा विकास निरर्थक है। हमारी जरूरतें भले ही सीमित हों, लेकिन सकारात्मक अच्छे विचार की बजाय जब बड़ी गाड़ी और बड़ा घर स्टेटस सिंबल बन जाए, तो कीमत प्रकृति को ही चुकानी पड़ती है।
गर्मियों में आग

उगता सूरज, जाड़ों में अत्यधिक बर्फबारी, बरसात में बाढ़ और भूस्खलन जैसे प्रकृति के चीत्कार पता नहीं क्यों हमें सुनाई नहीं पड़ते। हमने तो प्रकृति से बहुत कुछ पा लिया है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या कुछ छोड़ के जाएंगे, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। प्रकृति के अंधाधुंध दोहन के मौजूदा निराशाजनक दौर में कुछ ऐसे वास्तविक किस्से कहानियां हैं जो उम्मीद जगाते हैं। आज दिल ढूंढता है हमें दो अनजान लोगों के ऐसे प्रेरणादायक किस्से जिनके संघर्ष की कहानी अंधेरे में दीपक की रोशनी की तरह है। पहले बात जाधव नाम के उस शख्स की, जो 10वीं की परीक्षा देने के बाद अपने गांव में ब्रह्मपुत्र नदी के बारिश से भीगे रेतीले किनारे पर घूम रहा था। बाढ़ का पानी कम हो गया था, तभी उसकी नजर करीब 100 मरे हुए सांपों के एक विशाल झुंड पर पड़ी। इसके बाद उसने आगे बढ़कर देखा कि नदी का पूरा किनारा मरे हुए जानवरों से भरा हुआ था। सब एक शमशान जैसा लग रहा था। मृत प्राणियों के शवों के कारण खड़े होने की जगह भी नहीं थी। इसने किशोर जाधव के मन को झकझोर दिया। कई रातों तक सोने नहीं दिया। एक चर्चा के दौरान गांव के एक शख्स ने व्याकुल जाधव से कहा कि अब पेड़ पौधे नहीं उग रहे हैं तो बाढ़ से बचने के लिए नदी के रेतीले किनारों में जानवरों को शरण कहां मिलेगी, जंगल के बिना उन्हें भोजन कैसे मिलेगा। ये बात उसके दिल को छू गई और उसने जानवरों को बचाने के लिए पेड़ लगाने की कसम खाई। 16 साल के जाधव 50 बीज और 25 बांस लेकर नदी के रेतीले किनारे पर पेड़ लगाने पहुंचे। ये घटना 35 साल पुरानी है। वो दिन था और आज का दिन हम कल्पना कर सकते हैं। इन 35 वर्षों में जाधव ने बिना किसी सरकारी मदद के 1360 एकड़ भूमि पर घना जंगल बना दिया। 5 बंगाल टाइगर, 100 से ज्यादा हिरन, जंगली सुअर, 150 जंगली हाथियों का झुंड, कई जानवर इस जंगल में विचरण कर रहे हैं, जिसे इस कर्मयोगी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत के बूते बन पाया है। कटहल, गुलमोहर, अनानास, बांस, सागौन, आम, बरगद, जाने कितने औषधीय पौधे हैं उनके लगाए गए इस जंगल में। कोई नहीं जानता था जाधव के बारे में। वो जंगल में बनाए गए अपने इस हरे भरे वन से पौधों से भरा बैग लेकर साइकिल पर असम के जंगल में अकेले अपनी धुन पर काम करते हैं। वो पहली बार 2010 में देश की नजरों में तब आए जब एक वाइल्ड फोटोग्राफर जीतू कलिता ने उन पर एक वृत्त चित्र दमोलाई फॉरकास्ट बनाई। दमोलाई फॉरेस्ट, इस फिल्म को देश के नामी विश्वविद्यालयों में दिखाया गया। दूसरी फिल्म आरती श्रीवास्तव की फॉरेस्टिंग लाइव थी। उनके जीवन के अछूते पहलू और समस्याएं दिखाई गईं। एक अकेले इंसान ने पर्यावरण की रक्षा के लिए वन विभाग और बिना किसी वित्तीय सहायता के सब कुछ किया। उनके काम का सम्मान हुआ, उनके नाम पर इस जंगल का नाम रखा गया। जाधव असम की मिशिंग जनजाति से हैं, इसलिए इसे मिशिंग जंगल कहा जाता था। जाधव को एक साल पहले देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आज भी वो एक कमरे में बांस की झोपड़ी में रहते हैं और पौधों से भरे बैग और कुदाल के साथ जंगल की पगडंडियों पर साइकिल चलाकर एक निस्वार्थ उपासक के रूप में अपनी साधना में लीन है। बात करें झारखंड की जमुना टूटू की। 25 मई 2006 को भारत सरकार के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित हस्तियों में जमुना टूडू शामिल थी। लेडी टार्जन के नाम से इन्हें जाता है। जंगल बचाने के लिए पत्थर खाए, अपमान सहा, धमकियां झेली, लेकिन पेड़ों पर आंच नहीं आने दी। महिलाओं को संगठित किया, जंगल और वन्य जीवों की रक्षा कर एक ऐसी मिसाल बनाई जिसकी गूंज पूरे देश ने सुनी। अपने गांवों में पेड़ों की अवैध कटाई को रोका। खुशकिस्मत हैं हम कि पृथ्वी के उस हिस्से में रहते हैं जहां गर्मी, बरसात, जाड़ा अपनी संपूर्णता में हमें आह्लादित करती है। सूर्योदय और सूर्यास्त का मनोरम दृश्य किसे अपने मोहपाश में नहीं बांध लेता। ये प्रकृति तो हम हैं। प्रकृति साधनों का उपयोग कितना किया जाना चाहिए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। दुरुपयोग रुकना चाहिए। हम जितना सम्मान करेंगे प्रकृति का, वो हमारे प्रति उतनी ही विनम्र होगी।

हर कोई तो हमें कुछ ना कुछ देता है। पंछी ऊंचाई तक पहुंचने का संदेश देते हैं और हमें आगे बढ़ने का हौसला इन्हीं से मिलता है। प्रकृति भी हमें कितना कुछ देती है और फिर अपने घर परिवार से हमें कितना कुछ मिलता है। हमारे साथी हैं कुंज निवास राधा कुंज इज्जत नगर बरेली के वीके जौहरी, विनोद, अर्पित जौहरी, शीला ठाकुर और शायना भी। लिखते हैं, न जीने का हक न मरने का इख्तियार, हकीकत में इन्हीं मजबूरियों का नाम है इंसान। लेकिन कुछ तो ऐसा भी है जिंदगी में जिसे बनाने और बिगाड़ने में इंसान का पूरा हक होता है। पुरुष के तन पर जब चोट लगती है तो वो सह लेता है, लेकिन जब मन पे चोट लगती है टूट जाता है वो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिश्ते ही हमारे जी का जंजाल बन जाते हैं और जब ये टूटते हैं जिंदगी भर की टीस दे जाते हैं। हाँ, इन्हें समझदारी से खत्म करें तो दर्द कुछ कम जरूर होता है। शादीशुदा जिंदगी फूलों की सेज पर नहीं, इसमें टकराव के कांटे भी होते हैं। इन कांटों से संभल कर निकल पाते हैं जो उन्हीं जोड़ों की गाड़ी हंसी खुशी मंजिल तक पहुंच पाती है। विवाह दो शरीरों और आत्माओं का मिलन है। विवाह एक स्वर्गिक उपहार है। रिश्ता चाहे पति पत्नी को हो, दोस्ती का या प्यार का, प्यार और आपसी समझ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब इसकी कमी होने लगती है झगड़ों की शुरुआत हो जाती है, रिश्तों में खटास आ जाती है, कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। लेकिन एक बार कोशिश तो की जा सकती है। वैवाहिक जीवन की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है तरह तरह की रुकावटें आती हैं, एक दूसरे में कमियां नजर आने लगती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो कितना भी प्यार करने वाले पति पत्नी हो विचलित होकर लड़ पड़ते हैं। कई बार ऐसे मुद्दे भी सामने आते हैं जो शांत जीवन में झंझावात उत्पन्न कर देते हैं। झगड़ा और आवेश इतना बढ़ जाता है कि जब किसी बात पर वो खुद को विस्तृत महसूस करता है तो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लेता है। कुछ मनोदशा ही इंसान की इस तरह हो चुकी है कि वो अपने आप को किसी से छोटा नहीं देखना चाहता। ये रिश्ता तभी स्थायी रह सकता है जब धैर्य हो, निष्ठा हो, मैत्रीपूर्ण स्पर्श हो। आज दिल ढूंढता है ऐसे लोगों को जो किसी बात पर विचलित होकर आपस में लड़ते नहीं, अगर लड़ते भी हैं तो उस लड़ाई को लंबा खींचते नहीं।

और अब हाथ में है वो चिट्ठी जिसका इंतजार आप सबके साथ हमें भी बड़ी बेसब्री के साथ रहता है। अंजुम भाई, आज भी आपकी तहरीर बहेड़ी से आई है। श्रोताओं बताएं कि शब्द तो कागज पर लिखे हुए हैं लेकिन उनमें अंजुम भाई की हिम्मत, धैर्य और जज्बा साफ साफ झलक रहा है। मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन इन हालातों के बाद भी आपने हौसला नहीं हारा है, पूरी मजबूती के साथ हालात का सामना कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ये वक्त ऐसा है जब बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, लेकिन आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, सचमुच ये हौसला हम सब के लिए भी प्रेरणादायक है। ये खत हालचाल नहीं है, एक संदेश है कि अगर इंसान हिम्मत बनाए रखे तो कठिन से कठिन दौर भी गुजर जाता है। दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया कि आपने हमें याद किया। और आज अंजुम भाई ने जो खास बात लिखी है, अब वो आप तक पहुंचाते हैं। बातों बातों में ही बातों से निकल जाएंगे, जिंदगी हम तेरे हाथों से निकल जाएंगे, तुम हमें देखना बस ढूंढते रह जाओगे, हम तेरे दिन तेरी रातों से निकल जाएंगे। पता नहीं साहिबों कब किसी याद का तीर दिल की सरहद पार कर जाए, कब कौन सी याद दिल के जख्मों को महका दे, कब याद माजी का अजाब आदमी को अपने नरगे में ले ले, कोई नहीं जानता। कभी ख्याल आता है कि इससे ज्यादा गमे हयात की भला और क्या तशरीह होगी कि इंसान चराग जलाकर भी रोशनी को तरसता है। उनकी तलब, उनकी आरजू, उनका ख्याल आते ही दिल में उल्फत के आशियाने तामीर होने लगते हैं, उम्मीदों के फानूस जगमगाने लगते हैं। हर शाम गरीब खाने को सजाता हूँ, हर शाम तुम्हारे कदमों की आहट महसूस करता हूँ, मैंने हर एक रात को तमाम रंगीनियों से सजाया है, पर जब भी हकीकत का दरवाजा खोलकर देखा तुम थे ही नहीं, बस मैं था और मेरी तन्हाई। आंखें भीग सी गईं, दिल बेताब होकर ढूंढता रहा तुम्हारी तलाश में, तपते सहरा पर भटकता रहा मैं। अच्छा तुम ही बताओ, क्या यही तकाजाए इश्क है, क्या यही हासिल वफा है, या फिर ये फितरत हुस्न है। मैंने भी तुम्हारी मोहब्बत के फूलों की तमन्ना की थी, फिर मेरा दामन कांटों से क्यों भर दिया। क्या मैंने तुम्हारी चाहत में इस दिल को लहू लहू नहीं किया, तुम्हारी चाहत की तमाम मुसीबतें लेकर तुम्हारे हुस्न की आबरू नहीं रखी। मेरा इस कदर टूट कर चाहना और तुम्हारा इस तरह मुझे फरेब देना, क्या दिल तोड़ने का खूबसूरत बहाना नहीं है, क्या है ये, क्या पाओगे इस तरह दिल तोड़कर, बस हाथ मलते ही रह जाओगे। मुझे तो सब रह ही जाएगा तड़प तड़प कर, पर डरता हूं उस वक्त से कि कहीं तुम्हारी हालत मेरे जैसी ना हो जाए। दिल थाम कर रोया करोगे, कोई दिलकश नजारा भी तुम्हारा दिल ना बहला सकेगा। अभी वक्त है, लौट आओ उस राह वफा पर, मैं मुंतजिर हूं तुम्हारा। अच्छा जज्बात का सासा समेट कर चलता हूं अब, पर आज मेरे सामने ये वक्त खड़ा है, मुझसे कहता है लौट जा, किसी का प्यार पाना तेरे नसीब में नहीं। देख तू अपनी हालत देख, तेरे साथ कोई नहीं, तू अकेला है और तेरे साथ हैं तेरी तन्हाइयां। आज इतना तन्हा महसूस किया खुद को, जैसे कोई दफना कर चला गया मुझको।

कुछ मिलता है तो बहुत कुछ हम खो भी देते हैं, यही जिंदगी का फलसफा है। ऐसे में बस यादें रह जाती हैं हमारे साथ, उन खूबसूरत लम्हों के, उस बीते हुए वक्त के। हमारे साथी हैं रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया और पेंटर बाबू। उन यादों के बारे में लिखते हैं कि बीते हुए लम्हों में अक्सर पुरानी यादों के निशान हमारे जहन में बार बार दस्तक देते हैं और हम उन यादों के सहारे से अपने जीवन में अगले कदम पर उन्हें बहुत करीब पाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है विजय साहब, जब जिंदगी में किसी की याद हमारे साथ होती है तो हौसला भी देती है और हमें सबक भी देती है। गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना हैं, जो अपने बीते दिनों की रहगुजर में हमें अपने साथ ले जाते हैं। लिखते हैं कि जिंदगी में ऐसे बहुत सारे दिन भी आते हैं जिनकी याद हमेशा के लिए कायम रहती है, मगर कभी कभी फितरत इतनी मेहरबान हुआ करती है कि उसके करिश्मे दिल व नज़र में समा जाते हैं, उसके तसव्वुर से ही दिल खुश हुआ करता है। मौसम में बरसात का एक दिन मेरे दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, जब भी उसकी याद आती है तो अजीब सी कैफियत महसूस होती है, यहाँ तक कि सुरूर और मस्ती सी महसूस करने लगता हूँ। ऐसा मालूम होता है कि वही मस्त घटाएं झूम रही हैं, वही हल्की हल्की बूंदें छेड़खानी करती हुई आगे बढ़ रही हैं, खनक हवा के झोंके गाहे गाहे ऐसे झटके दे रहे हैं जैसे किसी को कोई गिरा गिरा कर संभाल लेता है। सब साथी साथ हैं, वही बागों के दरमियान वाली पगडंडी, वही मस्त कदम, कोयल की पुकार, वही फिजा, वही वीनी खुशबू, सब कुछ वही जो उस दिन था। उस दिन सुबह सवेरे से ही बादल मस्ताना होकर झूम रहे थे, हल्की हल्की बूंदें भी थीं, फिजा पुरकैफ थी और मैं उसको एक खुशगवार हसीन दिन समझकर सैर के लिए बाहर आ गया। दोस्त भी मिल गया। शहर की आलिशान इमारतें और सड़कें सुबह सवेरे ही नहा धोकर साफ हो गई थीं, अपनी पूरी आबोताब के साथ जलवागर थीं। कभी कभी आफ्ताब बादलों की ओट से झाँक कर दरो दीवार और दरीचों को एक हसीन सा रंग दे जाता। शहर की गहमा गहमी में एक सुकून, आराम और झलक ही नहीं बल्कि सुकून और राहत को मुजस्सिम देखना था, इसलिए जंगल की राह ले ली। इब्तदा आम के बागों के इस्तकबाल से हुई और अपनी पुरकैफ फिजा और रंग से भरे हुए उन फूलों के तोहफे पेश किए, कोयल ने अपनी रसीली आवाज़ में, मखसूस आवाज़ में गीत सुनाए, ऐसे में कहाँ रुक पाता कोई। मोर ने वो रक्स दिखाया कि दिल नाचने लगा, आज भी उस वक्त को दिल ढूंढता है। सच में गफ्फार खान साहब, यादों के उस दरीचे से निकल पाना खासा मुश्किल होता है, वो यादें हर पल हमारे साथ रहती हैं और गाहे बगाहे दस्तक देकर हमें अपने साथ उन पगडंडियों पर ले जाती हैं। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम के हमारे श्रोता तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा और गुलशन साहिबा लिखते हैं कि वक्त जब पलटता है तो किस्मत भी झुक जाती है, जो मिट्टी में दबे थे वही कहानी बन जाते हैं, जो हारे थे कल तक वो आज मिसाल बनते हैं, जो रोके गए थे रास्ते वही उजाले बनते हैं, जिसे लोग नाकाम समझते थे वही इतिहास रचते हैं और जो गिरकर भी उठ जाए वही असली वक्त समझते हैं। हर ठोकर सिखाती है कि गिरना हार नहीं होता, हर दर्द बताता है कि इंसान बेकार नहीं होता, उस मेहनत पर भरोसा रखें तो मंजिल खुद पुकारती है, जो सपनों को चीले उसकी तकदीर भी निखर जाती है। वक्त सबका आता है, बस सब्र चाहिए, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो सुबह जरूर होती है, किस्मत में जो है वो होकर मिलेगा। और इस दिल में बस उदासी मत रखो, मेहनत करो, कोशिश करो और दिलों की इस महफिल दिल ढूंढता है इसके कार्यक्रम को सुनते रहो, चिट्ठी लिखते रहो। हाँ एक बात तो कहूँगा कि इस प्रोग्राम को सुनने का मज़ा अलग है, अल्लाह सलामत रखे आकाशवाणी रामपुर की इस महफिल दिल ढूंढता है को। एक दिल मेरे दिल को जख्म दे गया, जिंदगी भर जीने की कसम दे गया, लाख फूलों में से एक फूल चुना जो कांटों से भी गहरी चुभन दे गया। दानी साहब और आपके साथ तौफीक, अतीक, हमजा और गुलशन, ये वो गुलशन है जो हमने और आपने बड़े प्यार से सजाया है, दिल ढूंढता है इसको नाम दिया है, और आपकी आज आमद ये संदेशा दे रही है कि आप आज भी दिलोजान से इस प्रोग्राम से मोहब्बत करते हैं। आज कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ
आपकी ही बातें हैं, और ये हमारे लिए एक हसीन तोहफा है जिससे आपने हमें नवाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया खत के लिए, और शुक्रिया इस खत के लिए भी जो आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी और रवि रस्तोगी ने लिखकर भेजा है रामपुर से। इन्होंने भी सबका दिल से शुक्रिया अदा किया है कि आप मेरे दिल के जज्बातों को सुनते हैं। ज़िंदगी में तो कुछ पाना है, कुछ खोना है, लेकिन अपने तो अपने ही होते हैं। चाहे कितने भी दूर क्यों ना चले जाएं, उनकी याद हमेशा हमारे दिल में रहती है। मौसम तो आते हैं जाते हैं, लेकिन यादों का मौसम हमारे दिल में हमेशा बसा होता है। कभी दर्द बन के तो कभी खुशी का नगमा बन के। जब कोई दगा देता है तो दिल टूट जाता है, समझ नहीं आता कि क्या करें, लेकिन दिल हरदम यही सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती हुई हमसे, ये किस बात की सज़ा मिली। लेकिन आजकल का तो दौर है, किसी पर एतबार करना मुश्किल है। गैरों से क्या शिकवा करें, अपने ही दिल तोड़कर चल देते हैं। ज़िंदगी में वो प्यार भरे लम्हे जो हमने साथ बिताए थे याद आते हैं। ये भी सच है कि किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। वक्त के साथ हर घाव भर जाता है, ये भी सच है। हम तो यही दुआ करते हैं कि ना गिला करें, ना शिकवा करें, सब सलामत रहें, ये दुआ करें। ऐसा ही प्यार भरा दिल हम सब के पास हो। ये दिल इन्हीं अरमानों के साथ ऐसे लोगों को ढूंढता है।

दोस्तों, पुरानी यादें आज भी रुला जाती हैं। वो बातें दिल को फिर से छू जाती हैं। कभी जिन लम्हों में हम मुस्कुराते थे, आज वही यादें हमें तन्हा कर जाती हैं। ऐसा हमारा सोचना भी है और ये कहना है। महेंद्र सिंह पासी, डॉक्टर वीर सिंह पासी, सुनील कुमार और इनके परिवार के सभी लोगों का, ग्राम हजरत नगर, गढ़ीवा, तहसील जिला संभल से स्वागत आपके इस खत का। वो पुरानी आवाज़, वो मीठी धुन और रेडियो की गूंज आज भी यादों के सहारे जिंदगी की शाम है। गाने और फरमाइशें खतों के जरिए पहुंचती थीं। दिलों की बात उन तक रेडियो वाले भैया सुनाते थे, फरमाइश हमारी पूरी करते थे। चाय और रेडियो, चाय की चुस्कियों के साथ रेडियो की खबरें, सुबह की वो धूप मन को महकाती थी। बदल गया है दौर, बदल गए हैं अब सुनने वाले और बदल गया है रेडियो सुनने का तरीका, लेकिन सादगी उसकी आज भी हर दिल में जिंदा है। क्या करूं मैं, खुदा नहीं जाता, दिल से वो बेवफा नहीं जाता। एक लम्हा सुकून भी दे दे, दर्द हर पल सहा नहीं जाता। मसला यह है, उस गांव को दूसरा रास्ता नहीं जाता। हो सके तो पलट के आओ, अब अकेले रहा नहीं जाता। याद रखना, ये जो मोहब्बत है इस सफर में रुका नहीं जाता। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल महेंद्र जी, मुलाकात होती रहेगी। आज आपने एक अरसे के बाद मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम में हिस्सेदारी की है। ये सिलसिला बनाए रखिएगा और अपने दिल की खास बातें मुख्तसर सा अगर हमें लिखेंगे तो गाने के साथ उस बात को अपने श्रोताओं तक भी हम अच्छे से पहुंचा पाएंगे। लेकिन एक चिट्ठी बड़े इंतजार के बाद और बड़ी तमन्ना के बाद हमें मिली है। वो चिट्ठी आई है दिल की कलम से। श्रोता समझ गए होंगे, नालापार बाग छोटे साहब रामपुर से नवाबुद्दीन निजामुद्दीन मोहम्मद जमालुद्दीन। पहले आपकी चिट्ठी पढ़े उससे पहले अपने दिल में जो आज इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं नवाबुद्दीन साहब, वो कुछ इस तरह से है। कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ में रिश्तों पर वक्त की धूल जम जाती है, बातें कम हो जाती हैं, मुलाकातें छूट जाती हैं, लेकिन कुछ लोग दिल के किसी कोने में हमेशा बसे रहते हैं। आज जब आपका ये खत आया, दिल की कलम से लिखा हुआ दिल ढूंढता है के लिए, तो ऐसा लगा जैसे बीते दिनों की कई यादें एक साथ लौटी हों। सच कहूँ तो इतने दिनों बाद याद करना केवल एक संदेशा नहीं होता, यह एहसास दिलाता है कि हम अभी भी किसी की यादों में जिंदा हैं। आपका दिल से शुक्रिया कि आपने समय निकाल कर इस महफिल को याद किया। रिश्तों की खूबसूरती भी इसी में है कि दूरियां चाहे कितनी भी बढ़ जाएं, अपनापन कम ना हो। आपकी इस चिट्ठी ने दिल को छू लिया, पुराने दिनों की मिठास फिर से ताज़ा हो गई और दिल दिमाग में एक ही बात आई कि कुछ रिश्ते रोज की बातों से नहीं बल्कि सच्ची यादों से जिंदा रहते हैं। ये विश्वास फिर से मजबूत हुआ है आज और अब आपकी बात हम भी पढ़ते हैं और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाते हैं। कभी बुझता नहीं वक्त का दिया, जलता ही रहता है, ये वो कारवां है रुकता नहीं जो चलता ही रहता है। अक्सर लोग कहते हैं कि गुजरा हुआ जमाना लौट कर नहीं आता है। शायद ये बात कुछ हद तक ठीक भी हो, मगर न जाने क्यों दिल इस बात पर पूरी तरह यकीन कामिल नहीं करता और बगावत करता है। शायद ये बगावत किसी मुगालते पर मुनासिर हो। हाँ, ये बात जरूर है कि गुजरा हुआ वक्त करवट जरूर लेता है। ये उस वक्त होता है जब आपसे बेलौस मोहब्बत करने वाले मुखलिस किसी पुरानी शहराहों से फिर आवाज दें, फिर लौट कर आने को दिल मचल उठता है। और जब ऐसे मुखलिसों का कुब्र मयसर हो जाए और बात पुरानी चले, तो फिर ज़हनी करताश पर फिर वही पुरानी यादें, पुराने ख्यालात एक के बाद एक करके रूनुमा होते चले जाते हैं। शायद इसी में मसरूर होकर इंसान का दिल ज़माना लौट कर आने की तस्दीक को असल समझ बैठता है। यकीन जाने ये ख्यालात, ये एहसासात हमारी वो विरासत है जो हमारी ज़िंदगी की मंजिल को आसान बनाती है। ऐसी कुर्बतों को पाने के लिए दिल नवाब फिर आ बैठा है अपने उन हम नवाओं के पास जो हर दौर में साथियों की मजलिस है, जहां से मोहब्बत का पैगाम आलम इंसानियत के नाम जाता है, जहां समातों के रिश्तों का अहम मुकाम है जो दिल से दिल को जोड़ते हैं और एक ऐसा खुशगवार माहौल बनता है कि दिल बहुत कुछ ढूंढने निकल पड़ता है,
खासकर दिल उन्हें ढूंढता है जिनका कुर्ब हर मजलिस का हिस्सा हुआ करता था। उम्मीद है फिर वक्त करवट लेगा और फिर हम मिलकर इस गुलशन को महकाएंगे। तुम्हारे साथ चलने का वादा कल भी था, आज भी है और ज़िंदगी की शाम ढलने तक रहेगा। बस एक वादा तुमसे भी चाहते हैं कि तुम अपनी यादों के गुलिस्तान में हमें भी परवास देते रहना। वक्त खानों से महफूज रखकर हमें खजा का हिस्सा मत बनने देना। शायद इसीलिए दिल की इस महफिल में तुम्हें दिल ढूंढता है, दिल ढूंढता था और हमेशा दिल ढूंढता रहेगा।

सचमुच दिल ढूंढता है कि ये जो महफिल है ना, ये आपकी अपनी महफिल है। आपका आना इसे रौनक बख्शता है। कई बार जिंदगी में ऐसा दौर भी आता है श्रोताओं, जब इंसान खुद को भी नहीं समझ पाता, क्या कर रहा है वो, क्यों कर रहा है। हर तरफ उलझने ही इतनी होती हैं कि दिमाग थक चुका होता है, दिल किसी भी चीज में लगता नहीं है, और ऐसे में इंसान

से तो आम आदमी जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से वो लगातार टूट रहा होता है। इसी टूटन के बीच कुछ बातें रिश्तों की। अर्चना जौहरी निकट विद्युत सब स्टेशन नैनीताल रोड बरेली से लिखती हैं, जिसको सारी दुनिया गाए वो तान कहाँ से लाऊं, बिन जाने सब पहचाने वो पहचान कहाँ से लाऊं, वही पुराने खेत खलिहान बैल कहाँ से लाऊं, इन उदास चेहरों पर मुस्कान कहाँ से लाऊं। घर के बाहर दादा दादी अक्सर बैठे रहते थे, बातें करते खटिया के धागे आपस में ऐंठे रहते थे, अब उन खटियों पर बैठे वो मेहमान कहाँ से लाऊं। आज भागम भाग भरी दौड़ भाग वाली इस जिंदगी में किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। फोन रिश्ते जोड़ने का बेहतर विकल्प है। फोन पर ऐसी बातें सहज होकर की जाती हैं जो आमने सामने होकर भी कभी कभी जुबान से नहीं निकलती, गले में अटक कर रह जाती हैं। जहां तेजी से बढ़ते संचार साधनों ने अपनों को करीब ला दिया है, वहीं रिश्तों में भी खटास आ रही है। अब प्यार आत्मीयता जैसी भावनाएं बस फॉर्मेलिटी का रूप ले रही हैं। मोबाइल फोन आने से पहले हम लोगों से मिलते जुलते थे, अब दूर रहकर ही फोन पर बात करके बस रिश्ता निभाना मान लेते हैं। आज पहले की तरह जज्बातों से हम कब जुड़ पाते हैं? आंसुओं से भीगी इंतजार की चिट्ठियां अब कभी नहीं आती। एक समय था जब किसी की चिट्ठी आती थी तो कितना अच्छा लगता था, इंतजार रहता था। जैसे ही डाकिया दरवाजे पर दस्तक देता, ऐसा लगता कि सब कुछ कह देगा, अपने खास लोगों के बारे में बहुत कुछ सुनना जानना चाहते थे हम। हर आहट पर खत का इंतजार रहता था। जज्बातों की जो छुअन होती थी उन चिट्ठियों में, अब वो इन सब साधनों में कहाँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि समाचारों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है, लेकिन इन नए साधनों ने रिश्तों में दूरियां बढ़ा दी हैं। दिल ढूंढता है उस पुराने दौर को, जब खत आता था, जब तार आते थे। बिल्कुल, इन बातें जो भी आपने लिखी हैं सच हैं, और हर दिल को इस बात की कमी महसूस होती है कि अब रिश्तों में वो गर्माहट नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। पहले जाना आना इतना होता था कि खैर खबर चिट्ठी के जरिए या फिर किसी के घर जाकर हम लोग लेते थे, लेकिन अब सिर्फ एक कॉल, और वो भी नहीं तो सिर्फ मैसेज। हमारे साथी हैं यवतमाल महाराष्ट्र से संतोष खटसे और विनोद खटसे, वो भी कुछ ऐसी ही बातें लिखते हैं। कभी कभी मुलाकातों की ज़रूरत नहीं होती, कुछ आवाज़ें ही दिल का घर बन जाती हैं। बिना देखे भी कोई अपना लगने लगता है, जैसे खामोश दुआ में नाम खुद ब खुद शामिल हो जाए। तुमसे बात करना सिर्फ बातचीत नहीं था, वो मेरे दिन भर की थकान पर ठहरती हुई छाँव का एक नरम साया था। तुम्हारे शब्दों ने दूरी को भी रिश्ता बना दिया और अनजान रास्तों में अपनापन बो दिया। अजीब है ना, मिलना ज़रूरी नहीं था पर तुम्हारी आदत दिल की ज़रूरत बन गई। मैंने सीखा किसी की मौजूदगी हमेशा पास होकर नहीं होती, कभी कभी बस एहसास ही गहरी मौजूदगी बन जाता है। तुम्हारी बातों ने सिखाया कि रिश्ते चेहरे से नहीं सच्चाई से बनते हैं, और जब दूरी भी हार जाती है दिल सच में जुड़ते हैं, और अगर खामोश हो भी जाए तो भी तुम्हारी आदत दिल में धीरे धीरे उतरती रहेगी, क्योंकि कुछ लोग मिलकर नहीं महसूस होकर हमेशा के लिए रह जाते हैं। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी साहब भी रिश्तों की उसी उधेड़बुन का जिक्र करते हैं। जख्म जब मेरे सीने के भर जाएंगे, आंसू भी मोती बन के बिखर जाएंगे, ये मत पूछना किसने धोखा दिया, वरना कुछ अपनों के भी चेहरे उतर जाएंगे। कितने लोग हैं इस जहां में, लेकिन सिर्फ नाम के रह गए हैं। किसी को कोई अपनाने को तैयार नहीं, अपना बनाने को तैयार नहीं, रिश्तेदारी निभाने को तैयार नहीं। अजीब सा माहौल, किसी के पास किसी के लिए वक्त ही नहीं। वो जो कहते हैं कि तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी है, बिछड़े तो कहने लगे तुझे छोड़ना मजबूरी है। कितना आसान है किसी से यह कहना कि हम तुम्हारे हैं, लेकिन कोई भी किसी को अपनाने से कतराता है। आज प्यार भी लोगों से भीख की तरह मांगना पड़ता है। कितना खूबसूरत दौर था वो, जब लोग एक दूसरे से प्यार से मिलते थे, शादी ब्याह में कई दिन लगाते थे, सब काम मिलजुल कर एक दूसरे का हाथ बटाते हुए करते थे। दिल ढूंढता है उन पुरानी यादों को, उन पुरानी बातों को, उन खूबसूरत पलों को, सुकून भरे लम्हों को। कौन किसके करीब होता है, अपना अपना नसीब होता है। दगा भी वही देता है जो दिल के सबसे करीब होता है।

दोस्तों, हर इंसान की ख्वाहिश यही होती है कि उसे ज़िंदगी में कभी किसी गम का सामना न करना पड़े। उसके दामन में अगर हो तो बस खुशियां ही खुशियां। लेकिन ऐसा मुमकिन कब हो पाता है? कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो दिल में पूरी तरह छुपा कर रखा जा सकता है और न ही किसी के सामने खुलकर कहा जा सकता है। ये दर्द चुपचाप भीतर ही भीतर जमा होते रहते हैं। छोटी छोटी तकलीफें, अनकहे शब्द, अधूरी उम्मीदें और अनसुने आंसू धीरे धीरे मिलकर एक ऐसा घाव बना देते हैं जो दिखाई तो नहीं देता मगर हर पल दर्द का एहसास होता है। तहसील सोहर, मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी से खत आया है। त्रिलोकीनाथ राठौर, अजय, विजय, विनय, विकास, आकाश, शिवांशी, प्रियंका, शिवाय राठौर का। क्या अजूबा हो आप, ये आपको कोई नहीं बताएगा। कोई देख ले आपको तो सीधा इश्क में पड़ जाएगा। सब चांद को सुंदर बताते हैं लेकिन चांद का क्या मुकाबला आपसे? आप जैसी आवाज कहां से लाएगा? बहुत याद आती है पुराने मकानों की छतों पर गुजरी वो बचपन की रातें जिन्हें दिल ढूंढता है। पहले झाड़ू से छत को साफ करने की मुहिम, फिर बाल्टी से छिड़काव लगाना और अंत में उस पानी के सूखने पर उठने वाली भीनी भीनी खुशबू को महसूस करना। फिर छत पर दरियां बिछाकर लाइन से बिस्तर बिछाने की कवायद, रेडियो को सीने से लगाकर सुनने की आदत, रेडियो सुनते सुनते आंख लग जाना, पानी से भरी सुराही को मुंह से सीधे लगा लेना और लोटे से उसे ढककर रखने का जतन करना, लेटकर दिखने वाले वो चमकीले तारे, रात पर बसता वो नीम का पेड़, कभी आधी रात को मौसम खराब होने पर वो अपने बिस्तर को समेटकर भागने की चलती। उन दिनों की तो बात ही कुछ अलग थी। बहुत याद आते हैं वो दिन, आज भी दिल ढूंढता है उन पुराने दिनों को, पर वापिस नहीं आते वो दिन, बस दिल ढूंढता ही रहता है। हम उन दिनों को ढूंढते हैं और कभी कभार उन खास रिश्तों को भी ढूंढते हैं। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब कुछ यही कहते हैं। रोटना मनाना ये कोई तहरीर करने की बात नहीं है, अभी तो कल की बात होगी। मेरी अहलिया से कुछ अनबन हो गई थी। 3 दिनों तक घर में खाना नहीं खाया, होटल से खाकर आता था, लेकिन जब घर आता तो मुंह सुखा लेता था ताकि कोई समझ ना सके। लेकिन माँ की अजमत को सलाम, जिन्होंने मेरे हाथ को पकड़ कर कहा कि बेटे, मैंने भी तेरे कारण 3 दिनों से खाना नहीं खाया है, आ मेरे साथ, मेरे कमरे में चल, साथ खाना खाएंगे। मेरी आंखों से अश्क रवा हो गए। माँ ने मुझे आंचल में छुपा लिया और बोली, नहीं मेरे बच्चे, ऐसे रोते नहीं, तू तो बड़ा दिल वाला है रे, तू ही रोएगा तो तेरी माँ का दिल छलनी नहीं होगा क्या? तेरे बिना मैं कैसे खा सकती हूँ? अपने आप को संभाल, मेरे साथ बैठकर खाना खा ले। इस तरह से अपने रूठे बेटे को माँ के प्यार ने अपने आंचल में छुपाकर मना डाला और मेरी जुबान पर राजा और रंग फिल्म का वो गीत आया कि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है।

सचमुच रियासत साहब माँ की अजमत ही ऐसी होती है, उसकी शान निराली है। किस्मत वाले हैं वो जिनके पास माँ की दौलत है, माँ का आशीर्वाद है। और हम अपने देश को भी अपनी माँ कहते हैं, इससे भी हम उतना ही लगाव करते हैं जितना जन्म देने वाली माँ से करते हैं, जिसकी मिट्टी ने हमें पाला पोसा है, और उसी देश को एक नमन कर रहे हैं। सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी इमरान शेख, करोला मुरादाबाद से अयूब खान और इरम कुड़िया लिखते हैं कि दिल में खास मुकाम रखता है, दिल ढूंढता है प्रोग्राम, नफीस अदायगी, खुलूस भरा लहजा, शानदार मेज़बानी हर प्रोग्राम को यादगार बना देती है। वतन की खाक में ऐसी महक समाई है, हर एक दिल ने यहाँ मोहब्बत पाई है। सलाम है मेरे हिंदुस्तान की असमत को, जिसने दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। हिंदुस्तान एक ऐसी मुकद्दस सरजमी है, जहाँ मुख्तलिफ मजाहिब, जबानें और तहजीबें एक गुलदस्ते की तरह अपनी खूबसूरती बिखेरती हैं। यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब, आपसी मोहब्बत, भाईचारा और इंसानियत की रिवायत पूरे आलम में मिसाल मानी जाती है। हमारा मुल्क इल्म, अदब, सकाफत और रूहानी विरासत का आमीन है। यहाँ त्यौहार मिलजुल कर मनाया जाता है, और यही एकजहती हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत भी है। हमें अपने वतन की असमत, उसकी तरक्की और उसकी शानदार विरासत पर फख्र है। आइए हम सब मिलकर अपने हिंदुस्तान को और ज्यादा खुशहाल, पुरअमन और तरक्की याफ्ता बनाने का अहद करें। यही अपने मुल्क से सच्ची मोहब्बत का पैगाम है। बिल्कुल साहब, घर केवल ईंट पत्थरों से बनी इमारत नहीं, वो जगह होती है जहाँ सुकून रहता है, और हमारा मुल्क ऐसी ही एक इमारत है जिसकी हिफाजत हमें करनी है। यहाँ पर हम सांसें लेते हैं, अपनेपन का एहसास पाते हैं। माँ की मुस्कान पूरी दुनिया की खुशियाँ हमें दे देती है, उसकी दुआओं में जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत छुपी होती है। लेकिन वतन वो मिट्टी है जिसने हमें पहचान दी, संस्कार दिए, जीने का हौसला दिया। इसकी संस्कृति हमारी जिंदगी का एक खास हिस्सा है। इंसान दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, लेकिन दिल में घर, माँ और वतन के लिए मोहब्बत कभी कम नहीं होती। कह सकते हैं हम कि घर से सुकून मिलता है, माँ से दुआ मिलती है, पर वतन से पहचान मिलती है, तभी तो जिंदगी खूबसूरत लगती है। माँ की ममता, घर का अपनापन, वतन की मिट्टी का प्यार, इन तीन नेमतों से रोशन होता है हर इंसान का संसार।

दोस्तों, कार्यक्रम में आज आप सबका साथ मिला, बहुत अच्छा लगा। हमारी चाहत तो यही है कि आप इसी तरह से इस प्रोग्राम को रौनक देते रहें, आते रहें, मुलाकात करते रहें। हम भी वादा करते हैं कि आपसे ज़रूर इस महफिल में मुलाकात होती रहेगी। अब इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलने के वादे के साथ असीम की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, शुभ रात्रि।

दिल ढूंढता है। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, प्रस्तुतकर्ता थे असीम सक्सेना। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: समाचार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज एआई आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का

किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की संध्याकालीन सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर मीडियम वेव और FM पर हमारी प्रातःकालीन सभा एक साथ आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।